0: आ गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदि शक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणि ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणि ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में, और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नजर वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधू की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गो पवीतकम कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णु वादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रुत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थत शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषणे प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
0: गर्ग मुनि ने,
1: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती है। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथो चित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की। दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई। हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहाँ हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है। लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पाकर के हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है। और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता, जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है, वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है। क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो है पार्वती, वो है काली, वो है दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चलते आगे आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सदेवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी। तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
0: वही विधि विधान,
1: वही विधि
0: मंत्रोच्चारण द्वारा,
1: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है। और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
0: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
1: जी,
0: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरे पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो है जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
1: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया यानी कि बरवधु भी खा लेते हैं, प्राय सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
0: बड़े आराम से।
1: हाँ,
0: बड़े आराम से लग जाते हैं,
1: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
0: लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है, तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
1: हो जाते हैं।
0: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
1: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवीय विवाह होता है,
0: क्योंकि एक
1: देवताओं का अनुग्रह बरसता है। लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
0: ब्रह्म मुहूर्त में जब,
1: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
0: हुआ,
1: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
0: लीला जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
1: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती, तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थी, नगर की वधुएँ थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया, गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधु ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुसोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए उस समय भी ये चलन में था कि वर वधु की पूजा करे या वधु वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे।

0: और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोगों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम। ये अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं, इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वर वधु दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया है कि आपने कन्या का दान किया तो आप के जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को, पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ठ सपुरोहित तम वरम वरियामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम माँ कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकर तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विधः सुरवरैः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हट के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा

0: वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि, जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन, वाच्ये महेश विषय अतिव असी तुम बहिर्मुख, त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः, अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते, शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा है। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मन शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है K P square L H B P अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है, इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है, ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
2: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की। तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
4: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
3: जी।
4: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
3: बिल्कुल।
4: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है एफर्ट्स वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
3: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कम्फर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया। तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
3: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी,
3: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी।
3: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं। हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
3: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नमस्कार।
5: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
6: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
5: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
6: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
5: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
6: तो फिर एक वादा करो।
5: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
6: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
5: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
2: रेडियो मानव रचना, रेडियो मानव रचना।
3: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति।
4: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, और देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता, है एंड दैट्स अनहेल्दी। इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन जहाँ मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टूडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज and just change somewhere else. आपको क्या पता चलेगा? Nothing. And majority children are doing that. How difficult is it कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा? Children are doing that.
3: I think it's happening every day.
4: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे, क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
3: स्कूल यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, definitely.
4: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया। अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा। आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी। अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं वी कैन टेल आर पेरेंट्स। हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दे। दे वॉन्ट दैट, लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना। जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू। सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी आउटसाइड, आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे। तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है, क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की। तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए सुनते गए, अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे, लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ।
3: यस, वेरी ट्रू।
4: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें। आई हैव टू आस्क माई सेल्फ। बहुत इजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें। क्यों क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस। फिर जब वो शेयर करते हैं तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी।
3: वंडरफुल। सो लेट बी, एक्चुअली अगर हम,
4: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह। एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है। तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट। तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे, नहीं फिर आप मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें, नहीं। लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे। यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है, हर आत्मा। हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता। एंड वेरी इम्पोर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग। जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं।
3: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
4: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस। और फिर यहाँ रेजिस्टेंस, हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है। तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट
3: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट यू नो पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
4: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर, शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
3: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
4: अब तो क्वालिटीज

0: बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है। वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं। लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या?
1: जीवन।
0: किसको?
1: जीवन दायिनी, मनुष्य को देना।
0: एब्सोल्युटली, सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
1: उसको जीवन देती थी।
0: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बीइंग, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरीथिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बीइंग। दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर।
1: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस।
0: दैट्स माय जर्नी। मैं भी तो उसी तरह हूँ। आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके, देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे, आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रीचर्स, दैट्स आल्सो ओके, बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज़ What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है, flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है,
1: उन्हें
0: nourish। और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते हैं। इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क। एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
1: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा।
0: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
1: and give them happiness, you know? Yeah.
0: ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इमेजिन हाउ द डे विल पास एंड देन आई एम शेयरिंग एंड गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग, एट द एंड ऑफ द डे मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think is satisfaction kya hoti hai, contentment kya hoti hai,
1: stress management kya hoti hai? I think stress has gone somewhere up, you know, it's like in this whole conversation I think mujhe lagta hai ki hamare darshak bhi zarur is baat ko anubhav kar pa rahe honge ki is puri baat cheet mein stress kahin dikha hi nahi, kahin tha hi
0: stress ke bare mein bahut zyada nahi baat karni thi, stress this is more the solution, ki ye solution hai, because a lot of people go to work very unwillingly. I have to go to work.
1: Work is a stress. इतनी बार ये कहा जाता है कि my work area is the stress area. The most stressing part of my life is my work.
0: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, energy exchange with everybody I meet. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये energy exchange बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलती है। Stop. My role is only two.
1: Oh, okay. Wonderful. You know, we can always remember whenever we want कि हमें मिलना चाहिए, we can always remember this. ये उदाहरण example को अगर हम याद कर लें, I am like a river, you know?
0: Flow.
1: I am nourishing.
0: Flow. And just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
1: You know, at times we stay there.
0: रुका हुआ पानी? रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
1: कई बार अपने साथ लोगों को, कईयों को ले चलते हैं, they can be part of your flow.
0: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारी जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
1: हमसे होके।
0: आई फील ब्यूटीफुल,
1: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
0: हीलिंग हो जाएगी उससे। कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है। मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना, हम मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
1: बात करना बंद कर देते हैं।
0: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर

0: वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं, वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर, बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है, उसने वो आंसर दिया है वो मुझे। दैट्स गुड फॉर मी, देन आई शुड फॉलो दैट। तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग, पास ऑन टू एवरीवन एज दे कम, एंड लिसन इनसाइड। सिंपल सिंपल थिंग्स। सुनने में इमिडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल, नहीं बहुत डिफिकल्ट, तो वेरी सिंपल सिंपल। हाँ, और
1: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव पे के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज़ मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस, और कहाँ तक पहुँचता है।
0: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए। मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते, तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए, और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज़ है। But what we didn't realize is that every time we are inflicting so much of pain on ourselves, तो गुस्सा बार बार करना या कहीं एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है। दूसरे का कम, लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो disturbance create होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे important है ये realize करना कि ये मेरी अपनी creation है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माई फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया, तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है। और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है। उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए। अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे,
2: watch it
0: and see it. तो what happens कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहां से हटा देते हैं और वहां से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है. अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
2: फ्यूल करते रहते हैं ना. वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी.
0: खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है. तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है. अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी. सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन. It builds up more and more and it can stay with me till a very, very long time. So, usse detach ho jayenge and then come back to my stage. The center, ki main kaun. Om Shanti, ye bhi agar yaad rahe, to it means main ek shant swarup atma hu. So, I come back to my stage that I am a peaceful being. The awareness, acknowledge, accept ke haan aa raha hai, phir usse detach ho jayen and then come back to my original stage. तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस. और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था. तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
2: गुस्से के दौरान भी कर सकते.
0: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है.
2: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है. और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता या मुझे तो गुस्सा नहीं आता. नो, आई एम वेरी पीसफुल पर्सन. बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस. So again, it may not go completely in one day, but the moment we start watching and going through these 5 steps, I think gradually we should be able.
0: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते. अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा. लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा, क्योंकि awareness जाएगी. You know, awareness चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है, and then it will go. And ये justification खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से. जब तक वो belief system सबसे strong है कि औरों की वजह से गुस्सा, then I will not change. Then I will keep waiting for you to change.
2: Yes, you know, we've always been saying this just a thought way. So again, the thought that I am responsible, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता ये कि हम इतने गिल्ट और रैंक मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया.
0: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए औरों से और गुस्सा करते हैं. यू नो, मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने. यू नो, सो इट इज जस्ट बिकम्स अ वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
2: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पर कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है, वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज़ रियली मेंट बाय शांति या पीस.
0: पीस इज अ वर्ड विच वी यूज़ वेरी ऑफन, but rarely understood. You know, we are all looking for peace. हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए. But we're not aware कि what are we looking for. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. Actually, अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक natural स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है. यू नो, एंड एट दैट टाइम वी से आई वांट पीस. पीस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ द बीइंग. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे. अंदर एक साइलेंस होगा. एक है साइलेंस, एक है नॉइज. You know? तो पीस doesn't mean कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइज है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. तो साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है, बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है. वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
2: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं, एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
2: आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
0: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
2: उसके लिए.
0: एब्सोल्युटली,
2: है ना. लेकिन मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है, तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिवन हो गया?
0: नहीं, गिवन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो, अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
2: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कह सकते हैं
0: ओम शांति.

गुड मॉर्निंग रेडियो मैंने रचना 7.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज है संडे का दिन, आज साक्षी है आपके साथ, बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ। और देखिए, मैं चाहे मंडे हो या संडे, मैं रोजाना आपके पास आती हूँ 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें। तो आज भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और साथ ही आपके लिए बहुत ही कमाल के गाने लेकर के आई हूँ, तो गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ आज है संडे का दिन और मैं आपके लिए ना ढेर सारी जानकारी लेकर के आ चुकी हूँ। तो देखिए क्या होता है ना, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें ना बहुत ज्यादा हम आलसी होते जा रहे हैं, हर टाइम जो है वो थकान रहती है और हमें ना नींद की जरूरत है। लेकिन क्या वो सच में आलस ही है, क्या वो सच में आपकी नींद ही है, या फिर आप तनाव में है, स्ट्रेस में है? देखिए हर बार किसी तरह की मोटिवेशन महसूस ना होना या फिर थकान जो है ये हमेशा बने रहना, काम में ध्यान ना लग पाना, इसका मतलब जो व्यक्ति है ना वो आलस नहीं, इसका हमेशा मतलब होता है कई मामलों में स्ट्रेस, तनाव, मानसिक थकान, खराब नींद और इमोशनल भारीपन भी किसी काम को शुरू करने से या खत्म करने में रुकावट आपके बन सकता है। अब आलस को ज्यादातर टाइम देखिए कम दिलचस्पी या फिर जो है वो काम करने की कम इच्छा से जोड़कर देखा जाता है, जबकि जो स्ट्रेस है वो मन के भारीपन, चिंता और मानसिक थकान की वजह से होता है। ऐसे में हो सकता है कि कोई व्यक्ति तनाव से घिरे होने के बावजूद काम करना जरूर चाहता हो, लेकिन लगातार चिंता, स्ट्रेस होने की वजह से दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हैं तो वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। और अक्सर लोग इसे ये कह देते हैं उस व्यक्ति को, ये आलसी है, ये काम करना ही नहीं चाहता है, जबकि हो सकता है कि काम हो ना रहा हो। अच्छा, अब कुछ ऐसी देखिए बात करूंगी, यानी ये कुछ लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे, क्या कुछ लक्षण है। तो देखिए सिर दर्द, मांसपेशियों में तनाव या नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना ये, या फिर भूख में बदलाव होना, कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, भी एकदम से नहीं लग रही है, ये सारे बदलाव हो सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में और थोड़ी जानकारी आपको दूंगी कि आलस या तनाव क्या है, किससे घिरे हैं आप, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और देखिए, खुद पर जो अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप खुद पर ना काफ़ी ज़्यादा दबाव तो आप डाल रहे हैं, अपने मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं. एक आसान तरीका, और ये जो बात है ना, ये हो सकती है कि देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं ना तो आप खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड तो हो नहीं सकते हैं, और ऐसे में कहीं आपका ध्यान नहीं लगेगा और आपको थकान बहुत ज़्यादा रहेगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, रात रात में नींद नहीं आ रही है. कई बार ऐसे होता है कि वो जो सुकून है ना वो नहीं मिलता, और जब सुकून नहीं मिलता है ना तब दिक्कत बढ़ जाती है. दिक्कत बढ़ना जो है वो सीधा सीधा ना सिर्फ आपको फिजिकली बल्कि मेंटली परेशान करेगा. और ऐसे में देखिए, आलस नहीं, इसे स्ट्रेस या तनाव मैं कहूँगी इसे कहते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है. और चलिए

के बारे में ना मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगी, इसके बारे में आपको ढेर सारी जानकारी है। देखिए आप जो मैं बात कर रही हूँ कि तनाव को कम कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानवी 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. तनाव की हम बात कर रहे हैं और देखिए तनाव को कम कैसे करना है. तो देखिए मन को शांत करने और फोकस बढ़ाने के लिए आपको बड़े काम को एक साथ करने की जगह छोटे छोटे कामों से शुरुआत आपको करनी है. इसी के साथ ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने काम के बीच बीच में आपको ब्रेक लेते रहने हैं और रोजाना डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही मेडिटेशन भी आपको एक रूटीन का हिस्सा आपको अपने बना लेना है. मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए हर रोज आपको घर या ऑफिस के बाहर थोड़ा सा टाइम बिताना है. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज बड़ी सेहतमंद जो है आपकी रहेगी, आपके लिए आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है. इसी के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में आपको नींद लेनी है और खुद को हाइड्रेटेड रखना है. इसके साथ फल सब्जियों अनाज वाली मिलेट्स वाली जो डाइट है वो लेनी है ताकि बैलेंस बॉडी का बना रहे. सबसे ज़रूरी बात है कि अपने स्क्रीन टाइम को आप लिमिट में रखें, ज़्यादा ना रखें. रात को सोते टाइम आपको क्या करना है, उससे पहले ही आपको अपना मोबाइल फ़ोन अपने आसपास से हटा देना है, बिल्कुल दूर कर देना है, जिससे आपको अच्छी नींद मिलेगी. और इसी के साथ साथ अपने आप को ना आलसी का लेबल नहीं देना है. चलिए कुछ और भी बात करूंगी लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ ना आज बहुत सारी बातें तो हमने करी हैं, लेकिन अब हमारे साथ ना जुड़ने वाले एक बहुत ही खास एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी हैं, जिनसे हम ढेर सारी बातें जरूर से जरूर करने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो हमारे वरिष्ठ के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, जिसके बाद ढेर सारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस देरी किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मैनेवर एचरा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ देखिए, आज हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेश. हर संडे डॉक्टर राजेश हमारे साथ जुड़ते हैं जिनसे हम ढेर सारी बातें करते हैं. और आज भी खास एक टॉपिक के साथ आज हम बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है योगा एंड ओबेसिटी. मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राजेश जो कि हमारे रेडियो मानव रचना के एक कम्युनिटी मेंबर हैं और साथ ही साथ योग गुरु हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और हैप्पीनेस कोच भी हैं. तो सबसे पहले डॉक्टर राजेश, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में.
1: नमस्कार साक्षी, नमस्कार रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिलकर के काफी अच्छा लगता है.
0: डॉक्टर राजेश, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा और ओबेसिटी पे हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ओबेसिटी और सिर्फ वेट गेन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि दोनों सिमिलर है, वेट गेन करना मतलब मोटापा होना, लेकिन दोनों में फर्क क्या है?
1: देखिए, ओबेसिटी जो है ना, ये एक चैलेंज है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसमें आप ट्रैप हो चुके हैं. वेट गेन करना, जैसे जिनकी वेट लॉस है, वेट लॉस को वेट गेन में हम डॉक्टर कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा वेट बढ़ाइए, तो वेट गेन को हम पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं. ओबेसिटी जो है वो आप ट्रैप हो गए एक पैरामीटर के अंदर, जहां आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है सब चेंज हो गया है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया है एंड एक्युमुलेशन ऑफ फैट्स जो है वह ज्यादा बन रही है.
0: जी डॉक्टर राजेश, क्या होगा अगर, क्या योगा जो है वो ओबेसिटी को मैनेज करने में जेन्युइनली हेल्प करता है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है?
1: नहीं, योगा जो है ओबेसिटी को मैनेजमेंट करने में ये एक बहुत ही कारगर और एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका अदा करता है.
0: जी,
1: योग से मोटापा कम होता है, यह बात तो सही है. और खास करके आपके जो हार्मोन असंतुलित होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड का भी असामान्य रूप से हो जाना भी, ज़्यादा थायराइड अगर बन रहा है तो प्रॉब्लम है, कम बन रहा है तो प्रॉब्लम है, तो उसको वो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये बैलेंस करता है, ये संतुलित करता है और इसके अंदर एक प्रॉपर मैनेजमेंट लाता है.
0: जी,
1: तो इसलिए योग जो है बहुत ही कारगर उपाय है. लेकिन आप रोज कीजिए. लोगों से गलती क्या होती है, योग शुरू करते हैं, 2-4 दिन करते हैं, फिर बीच में ग्रैप दे देते हैं, फिर आगे करते हैं, वैसा मत, थोड़ा सा ही कीजिए लेकिन रोज कीजिए.
0: जी डॉक्टर राजेश, कई सारे लोग हैं जिनका वेट जो है वो काफी ज्यादा है और वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो क्या योगा की जो शुरुआत की अगर बात करें तो वो कहाँ से और कैसे होनी चाहिए, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे?
1: देखिए, योग तो सेकेंड स्टेज में, पहले आप अपने अंदर में एक दृढ़ संकल्प कीजिए, लीजिए अपने अंदर में एक आत्मविश्वास पैदा कीजिए कि हमें वेट घटाना है. और इसके लिए हम चारों ओर से जितने सारे उपाय हैं उन सारे उपायों को हम करेंगे. योग उसमें एक टेक्निक है. आप पहले घूमना शुरू कीजिए, वॉकिंग करना शुरू कीजिए. कोई ज्यादा वॉक भी मत कीजिए, थोड़ा सा कि आज 10 मिनट वॉक करेंगे, कल 15 मिनट करेंगे, इस तरह से धीरे धीरे करते हुए आप 45 मिनट टू 1 आवर कीजिए. फिर थोड़ा बैठ के ब्रीदिंग टेक्निक कीजिए, थोड़े थोड़े स्ट्रेचिंग करना शुरू कीजिए और खान पान का ख्याल रखिए.
0: जी,
1: स्ट्रेस ज्यादा मत लेना है, स्ट्रेस को आप मैनेज करना सीखिए. स्ट्रेस के सारे जो टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट के, उसको आप अपनाइए और समय पर उठिए और समय पर सोइए.
0: जी जी,
1: जो इरेगुलर स्लीप जो होता है ना, वह ओबेसिटी का सबसे बड़ा दुश्मन कारण बनता है और यह आपके हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन भी है.
0: जी,
1: समय पर सोना आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है. अगर आप समय पर सोते हैं, समय पर जगते हैं, तो ओबेसिटी का सारे हेल्थ प्रॉब्लम आप 90% मैनेज कर चुके हैं.
0: बिल्कुल.
1: और 10% आपके खान पान को आप मैनेज कर लीजिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है.
0: जी डॉक्टर राजेश,
1: इसीलिए तो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में जो लोग कहते आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, उसका यही गोल है, उसका यही उद्देश्य है.
0: जी जी डॉक्टर राजेश, अभी एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, जो उसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें, कुछ और भी सवाल हैं, जरूरी सवाल हैं जो आपसे जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक, रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूं। हमारी बातें चल रही हैं अभी, हमारा आज का खास टॉपिक है योगा और ओबेसिटी का। ओबेसिटी के साथ बेली फैट भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्या होगा अगर हम योगा जो है रेगुलर करते हैं? तो कुछ स्पेसिफिकली अगर कोई योगा ऐसा कोई आसन है जिससे हमारा जो बेली फैट है वो कम हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत लोग परेशान रहते हैं।
1: योग के जो आसनों में जो सबसे अच्छा आसन जो है, ताड़ासन कीजिए, त्रियक ताड़ासन कीजिए, कटी चक्रासन कीजिए और पादहस्तासन कीजिए। ये आपका एक कंप्लीट पैकेज है
0: जी।
1: और इसके बाद सूर्य नमस्कार कीजिए, आपको सारे जगह, नॉट ओनली द बेली फैट, आपके शोल्डर से भी जाएंगे, गर्दन से भी जाएंगे, चारों ओर आपका जो मैनेज होगा। एक्चुअली योग क्या करता है, वो जड़ पर काम करता है। रूट कॉज ऑफ योर ओबेसिटी इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस में भी द प्रोफेशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, कोई ना कोई एक स्ट्रेस है जो ट्रिगर कर गया है
0: जी,
1: और योग उस पर काम करता है। तो इसलिए योग जो है, अगर आप ओबेसिटी को मैनेज करना चाहते हैं तो जीवन में योग अपनाइए।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, ओबेसिटी के की अगर हम बात कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए योगा करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आपने बताया कि आसन जो है, प्राणायाम जो है, उसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर ऑल्टरनेट भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या रोजाना योग करना है या फिर कोई ऐसा भी एक हफ्ते में दिन होना चाहिए जिसमें हम उसे स्किप कर सकें।
1: मैं रेडियो मानव रचना के श्रोतागण से पूछना चाहता हूँ, जब शरीर है तो आप रोज उसमें खाना देते हैं, भोजन देते हैं, पानी देते हैं, केयर करते हैं, ये तो बहुत जरूरी, आपको प्रतिदिन आपको करना है योग, कोई स्किप नहीं है इसके लिए।
0: बिल्कुल
1: रोज कीजिए। एक दिन भी थोड़ा समय कम कर दीजिए, लेकिन रोज कीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए इसी के साथ एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग लेकर के आ जाती हूं, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, आपसे सवाल जो है वो हमारी अभी पूछ रही हूं मैं आपसे, और बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या कुछ स्पेसिफिक योगा आसन है जो कि बिगनर्स के लिए आप रिकमेंड करेंगे, जो कि अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, और क्योंकि शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई जो है वो होती है, और अगर किसी के पास कोई योग गुरु नहीं है, कोई उनका कोई टीचर नहीं है, तो कैसे घर पर बिगनर्स के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे?
1: सबसे पहले प्रोग्राम ही मैं बता देता हूँ। ताड़ासन कीजिए, त्रियक ताड़ासन कीजिए, कटी चक्रासन कीजिए, इसके बाद पादहस्तासन कीजिए, भुजंग आसन कीजिए, नौका आसन कीजिए, और इसके कुछ हफ्ता के बाद आप शुरू कीजिए सूर्य नमस्कार। इसके बाद शवासन में लेट जाइए, फिर थोड़ा सा कपालभाति कर लीजिए, थोड़ा सा नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम, और फिर आप भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए, और इसके बाद समय जब भी मिले 10 मिनट के लिए शवासन जरूर कीजिए। जब भी ऑफिस से लौट करके आते हैं, आने के बाद, और घर में अगर आपको समय बीच में मिलता है, खास करके जो महिलाएं घर में रहती हैं, जब बच्चे उनके स्कूल चले जाते हैं, घर से मुक्त हो जाते हैं, तो 10 मिनट के लिए शवासन में लेट के डीप ब्रीदिंग का अभ्यास किए, और खान पान का हमेशा ख्याल रखिए। सुबह जब उठिए, एक और भी टिप्स मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह जब उठिए तो आप कुछ पहला भोजन जो आपके मुंह में आना चाहिए वो चबा करके खाना है, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, गाजर हो गया, फल हो गए। जब आप चबा के खाते तो आपकी लीवर जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है वह एक हेल्दी एंजाइम प्रोड्यूस करती है। सो आप कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, अभी आपने कहा कि जो पहला जो आपकी डाइट होनी चाहिए पहली, उसमें कुछ चबा के खाना है। योगा के साथ डाइट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या सिर्फ योगा करके वेट लॉस पॉसिबल है या फिर डाइट भी
1: उतनी
0: इम्पोर्टेंट?
1: डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है जीवन में। डाइट आपको खाना है, भरपेट खाना है, लेकिन हेल्दी खाना खाना है। अब कुछ लोग मैं देखता हूँ, खास करके सुबह उठता है वो छोले भटूरे पर टूट पड़े हैं। आप शुरुआत ही दिन में फ्राइड दे रहे हैं, तो आपकी लीवर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया। पूरे बॉडी आपके हो गए, डिस्टर्ब हो गए। आप इसलिए तो सुबह के समय में लोग फल खाने का ट्रेडिशन है टेबल पर, ड्राई फ्रूट्स खाने का है, और लाइट कार्बोहाइड्रेट हमें लेना है, ओट्स मिल लीजिए, ये सब का मिलेट का आप उपयोग कीजिए ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए, आपका वेट मैनेज हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और मूंग की दाल जरूर खाइए, ग्रीन मूंग जो है ना
0: जी,
1: उसको सोक करने के बाद, जिसको कहते हैं भिंगो करके रात में, और उसको जरूर आप सुबह में लीजिए। उसमें एक बहुत बड़ी गुण है, वह आपके फैट को वो बर्न करता है।
0: ओके।
1: वो आपके उसको लोग कहते हैं क्या कि ये बॉडी के सेल को भी खाता है जो, इसलिए मूंग, ग्रीन मूंग जो है ना वो बड़ा वरदान है ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए।
0: जी डॉक्टर राजेश, अभी एक मैं छोटा सा ब्रेक लेने वाली हूँ, जिसके बाद हम बहुत सारी और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग लेकर के आ जाते हैं और इस रिचार्ज मॉर्निंग में हम बहुत सारी बातें करते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, ओबेसिटी के साथ डायबिटीज, बीपी या जॉइंट पेन भी हो तो क्या योगा सेफ रहेगा करना?
1: देखिए, ओबेसिटी ही इन सारे प्रॉब्लम का जड़ है। डायबिटीज के लिए भी ओबेसिटी प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स है। अगर आप वेट को मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तो आप 90% विनर है। और 10% मैंने कह दिया है शुरू में कि खान पान का ख्याल कर लीजिए, ज्यादा पानी पीजिए, नींबू पानी का सेवन ज्यादा कीजिए, जितने सारे स्टोरेज फूड हैं फ्रीज में जो रात के बचे हुए खाने

0: अगला सवाल जानना चाहूंगी, प्राणायाम का ओबेसिटी मैनेजमेंट में क्या रोल है और क्या हर प्राणायाम ओवरवेट पर्सन को जो है वो करना उनके लिए सेफ है या ठीक है, क्या वो कर सकते हैं?
1: देखिए, प्राणायाम जो है ना, ब्रीदिंग टेक्निक जितनी है हमारे खास करके योगिक विजडम में, उसमें जो सबसे बढ़िया कपालभाति प्राणायाम जो है, यह आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म रेट को यह काफी हाई करता है जिसकी जरूरत होती है, और आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज कराता है
0: जी,
1: और फैट को बर्न करने में मदद देता है। ज्यादा नहीं करना है, आराम से करना है। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने तो 2000 राउंड किया, इतना नहीं करना है। 50-50 का 3-5 बार आप कर लीजिए, बहुत हो गया
0: जी।
1: और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम क्या करती है, आपके सिंपैथेटिक अराउजल और पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में संतुलन पैदा करती है, बनाती है
0: जी।
1: शरीर और मन के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करती है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कीजिए, और भ्रामरी प्राणायाम जो है आपके स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए और आपकी बॉडी के अंदर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्रेन में ज्यादा उत्पादन करती है। तो ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है, और ये तो आराम से आप कर सकते हैं
0: जी। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि ये नॉर्मली अगर हम इंडियंस की बात करें तो सबसे पहले ना, जैसे ही हम कुछ स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि इसके रिजल्ट हमें कब तक मिलेंगे। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो आप उनके लिए क्या उनको आप कहना चाहेंगे कि ये जो रिजल्ट है उन्हें कब तक मिल जाएंगे? और
1: 45 डेज का आप चैलेंज लीजिए। वेट ना पिए, डाइट को मैनेज कीजिए, समय पर सोना, समय पर जगना है, और आप 45 डेज में देखेंगे मिरेकल हो गया आपकी बॉडी के साथ।
0: जी जी, डॉक्टर राजेश थैंक यू सो मच कि आप हमारे रेडियो स्टेशन आए संडे वाले दिन में। आपसे ढेर सारी हमने बातें करी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि क्या वो ख़ास संदेश है जो आप हमारे सभी जो लोग हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको देना चाहेंगे?
1: खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रतिदिन योग का अभ्यास कीजिए, और अपने लिए खुशियाँ बनाए रखिए, अपने परिवार में, अपने अगल बगल।
0: बिल्कुल, चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का एक छोटे से ब्रेक की। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज हमारे साथ जुड़े हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश, जिनसे हमने बहुत सारी बातें करी हैं। डॉक्टर राजेश जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है और साथ ही साथ एक हैप्पीनेस कोच भी हैं। तो चलिए इसी के साथ आज संडे वाले दिन हमने बहुत सारी बातें तो करी हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैन ओरेशन 107.8 FM। मेरे आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, तो आप बस रेडियो मानव रचना के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। और अगर कुछ खास संदेश है जो आप किसी को आप पहुंचाना चाहते हैं या फिर कोई फरमाइश है तो आप जल्दी से कर सकते हैं, या फिर हमारे एक्सपर्ट्स है ना कुछ जानना चाहते हैं, तो अगले हफ्ते आपके पास ज़रूर आऊँगी और लेकर के जो भी सवाल है उनके जवाब। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 FM।
1: हाँ जी गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरजे सागर। आज को हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानोरचना 107.8 FM के साथ फील गुड फील लाइव। दिस शो इज वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। रीजन बीइंग हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हर बार एक केस स्टडी की, एक नए स्टार्टअप की, क्या कर रही है वो कंपनी, क्यों कर रही है, क्या फायदा उससे हो रहा है, ओवरव्यू क्या है, अलग क्या किया है, इंडस्ट्री क्या बोलती है, एंड सो ऑन। सो दिस शो विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन सो मेनी थिंग्स। आई मीन यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस, यू लर्न अबाउट द फाउंडर्स एंड देयर बैकग्राउंड, एंड वी गोना टेल एवरीथिंग। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, देन विल कंटिन्यू द शो। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील।

एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें, अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि AI पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, AI पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मींस कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे यूथ है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीज़ों में। सेकेंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहाँ पर स्मार्टफोन है वहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

0: कर तुम्हें।
1: वेलकम बैक, उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों, और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है। अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला, बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसे हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज़्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज़ अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने है, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा, उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस, एआई पावर्ड। अगर आप बात करते हैं किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपने स्किन के ऊपर, वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कंटेंट बनाते हैं, फुल फ्लैज्ड वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, फील बहुत अच्छा।

गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रस्थ 107.8 एफएम। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चले तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं अब ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान के पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं, उसमें भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजिली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकेंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए, कंज्यूमर्स के पास आप माने या ना माने लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कॉन्टेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, ताकि लोग कॉन्टेंट बनाए उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स वाई हम यहाँ पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसको अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, यानी कि ब्यूटी टेक को, एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या, ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इम्पैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज कि ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा यू नो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं, मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा, क्या मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए। कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या, कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या।

अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा। एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कहता हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या ऑल दीज थ्री आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में, डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ।

वेलकम बैक। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझाया है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफ़ी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहाँ पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज़ें अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू वांट टू सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीज़ें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीज़ें जो है देखना, प्रेडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीज़ें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानी है।

और दोस्तों अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेज होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकेंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। AR टूल्स बनाने होंगे, IoT डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। उसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा कल्चर सब चीज़ होती है, तो तमाम चीज़ें पढ़ के जहाँ पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पर आपको वहाँ की कोई चीज़ देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की।

नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आया इन गानों के साथ, साथ साथ उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो हमने इंडस्ट्री के बारे में बताया सब कुछ आप लोग समझ पाए हैं। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज कंपनी विच इज सौंदर्य। सौंदर्य एक मुंबई बेस्ड एप्लीकेशन है, बेसिकली एक स्टार्टअप है, सौंदर्य ऐप डॉट कॉम। ओके, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये कंपनी क्या अलग कर रही है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एज अ यू नो ऑडियंस या एज अ रिसर्चर अगर आप खुद को मानते हैं तो पता होनी चाहिए। इट इज़ की एआई का टाइम आ चुका है, हर एक वर्टिकल में आ चुका है। ब्यूटी टेक की हम लोग बात कर रहे हैं तो सौंदर्य खुद को उसी जगह पर पोजीशन करती है। सौंदर्य अपने आप को पोजीशन करती है एज एन एआई पावर्ड ब्यूटी डिस्कवरी एंड सलोन बुकिंग प्लेटफॉर्म। ओके, यहाँ पर बेसिकली चार चीज़ें हैं जो इसको सेपरेट करती हैं बाकी चीज़ों से। पहला तो ये है कि एआई वर्चुअल ट्राई ऑन, जो एक बहुत कॉमन फीचर है, काफ़ी सारी कंपनीज की तरफ से आपको मिलता भी है कि यू कैन सिंपली जस्ट क्लिक अ फोटो, मेक अ वीडियो एंड जस्ट पुट इट आउट देयर, पुट इट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड यू विल गेट रेफरेंसेज। सेकेंड, सलोन स्पा डिस्कवरी, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अभी भी ये प्रॉब्लम होती है, हम लोग भी देखते हैं फरीदाबाद में भी इनफैक्ट, कि जब आपको किसी सलोन जाना है, स्पा जाना है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि किसकी तरफ जाएं। मतलब डाउट होता है ना कि जो बार्बर होगा या जो वहां पर स्टाफ होगा वो कैसा होगा, किस तरह की सर्विस आपको मिलेगी, क्या आपकी बालों की जो कटिंग है वो ढंग से हो पाएगी, जो भी आप पर्पज के लिए जा रहे हो वहां पर वो फुलफिल हो पाएगा। तो ये यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको हेल्प मिल जाती है, सजेशन मिल जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज अपॉइंटमेंट बुकिंग। यू कैन डायरेक्टली बुक अपॉइंटमेंट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म विच इज सौंदर्य.com। एंड फोर्थ इज क्रिएटर लेड ब्यूटी इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर मतलब ब्यूटी की आपको इंस्पिरेशन भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कुछ नया स्टाइल डिस्कवर किया है, नई क्रिएटिविटी कुछ वो लेकर के आए हैं, सो यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स हेयर। और यहाँ पर फिर आप उनको फर्दर रेफरेंस के तौर पर यूज़ करके आगे जा सकते हो उस सलोन में या जिस भी जगह पर आप जा रहे हो वहाँ पर उन सर्विसेज को आप ऑप्ट कर सकते हो। ओके, ये अक्रॉस इंडिया लाइव है अभी, यहाँ पर 1 million+ डाउनलोड्स हैं जो कंपनी क्लेम करती है, 450+ प्रीमियम सलोन्स हैं यहाँ पर, 10 million+ ट्राई ऑन प्रीव्यूज हैं। ओके, ऐप स्टोर की जो रेटिंग है वो है 4.8 out of 5। सो डिसेंट इनफ यू नो टू स्टार्ट अ कंपनी, अ गुड स्टार्ट। सो दिस इज द कंपनी सौंदर्य। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में बात करेंगे आगे, आपको बताएंगे फर्दर कुछ चीज़ों के बारे में। बट फिलहाल जुड़ रही है हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील गुड।

0: दीप जलाए।
1: फील गुड फील लाइव शो में आगे बात करेंगे। कंपनी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सौंदर्य ऐप.com। इनकी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको प्रीवियसली। अच्छा, एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है, क्या अलग कर रही है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर एक वर्चुअल स्टूडियो आपको मिल जाता है, एंड द टैगलाइन इज ट्राई ऑन योर नेक्स्ट सेल्फ। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जाम्पल हेयर कट आपको कराना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर उस पोर्टल के ऊपर जाना है, इस पोर्टल को ओपन करके, एंड यहाँ पर आपके एक पर्टिकुलर एक वर्टिकल आपको दिखाई देगा जिसके ऊपर जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है हेयर स्टाइल। ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको फर्दर रेफरेंसेस मिलेंगे। सेकेंड यहाँ पर जो फीचर है वो है बियर्ड एंड ग्रूमिंग, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बींग, क्योंकि मेल्स को अभी तक टैप इन नहीं किया गया है बहुत ज़्यादा। मेल्स के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक ट्रेडिशनली जो आप चीज़ें देखते थे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, बिकॉज मेल्स के फेस कट को देखते हुए, उनकी आंखों को देखते हुए, उनकी आंखों का फोरहेड का डिस्टेंस कितना है, उनके चीक्स कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे फेस को 3D मैपिंग की जाएगी वहाँ पर, उसके आधार पर बियर्ड के बारे में आइडियाज़ आपको दिए जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द सीरियस बिजनेस। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर इंक एंड टैटूज, दैट इज समथिंग यू नो न्यू टू मी एज वेल, कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर बिफोर यू गो एंड गेट इंक योर सेल्फ, यू हैव दिस ऑप्शन टू यू नो चेक इट थ्रू दिस पोर्टल। आप ट्राई कर सकते हो, ए आई के थ्रू आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कैसा वो दिखने वाला है वहाँ पर टैटू, आपकी बॉडी जिस भी बॉडी पार्ट पर आपको उसको बनवाना है एग्जैक्टली वैसा आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर नेल आर्ट, स्पेशली फॉर फीमेल्स इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब डाउट होता है कि करा लें अगर अच्छा लगे ना लगे, तो यहाँ पर बिल्कुल रियल टाइम में आप उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्किन एनालिसिस। नाउ ये मिलता है बहुत जगह पर, आपको ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन क्लिनिकल ग्रेड टेक्सचर एंड टोन जो है वो आपकी स्कैनिंग यहाँ पर की जाती है प्रॉपर, और ये एक ब्यूटी टेक में डील करने वाली कंपनी कर रही है। आपकी फेस की शेप को जो है प्रॉपर मैपिंग की जाती है ज्योमेट्रिकली, और उसके बाद फिर आपको जो है वहाँ पर डिसीजन जो भी होता है वो आपको दिया जाता है, एंड दैट इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ग्रूमिंग यार सब करना चाहते हैं, मेन पॉइंट ये आता है कि ग्रूमिंग करें कैसे, कहाँ पर जाएं? तो यहाँ पर आपको बिफोर यू टेक द रियल रिस्क, बिफोर यू गो टू द स्टूडियो, आप सारी चीज़ें करा लें और फिर आपको रियलाइज हो कि नहीं यार ये अच्छा नहीं हुआ, आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ पर आप उसको ट्राई कर सकते हैं। That is the story. फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, कहीं जाइएगा मत, अभी तक मैंने आपको बताया एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। Stay tuned with us, feel good, feel.

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आइए बात करते हैं एग्जैक्टली कौन सी प्रॉब्लम को इस कंपनी ने सॉल्व किया है। तो ट्रेडिशनली जो होता था वो मैं आपको बता चुका हूँ और आप लोग भी बखूबी जानते हैं। यहाँ पर सिंपल ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है वेयर इज द सलून, प्रॉब्लम ये सॉल्व हो रही है कि कौन सा हेयर स्टाइल मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। एंड क्योंकि आप उस जमाने में जी रहे हैं जहाँ पर मोस्टली लोग सोशल मीडिया पर खुद को दिखाना चाहते हैं और अच्छा दिखाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो ग्रूमिंग है वो बेस्ट लेवल पे हो। एंड दैट्स वेयर दिस कंपनी किक्स इन। तो ये कंपनी सिंपली आपको बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शन देती है, आपके फेस की शेप को एनालाइज करती है, जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। एंड इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि अपने आप को रीइमेजिन कर सकते हो अपनी फोटो अपलोड करके। तो सिंपल आइडिया एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। बिगर आइडिया ये भी है कि इंस्पिरेशन से ट्रांजेक्शन तक लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर ये बिजनेस मॉडल अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आप इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्यूटी इंस्पिरेशन मिलते हैं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि भैया इन ब्यूटी जो आपको इंस्पिरेशन मिले हैं इनको आप एग्जीक्यूट कहाँ पे कराओगे। सो दिस कंपनी, आई मीन दिस पोर्टल प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग। आपको इंस्पिरेशन यहाँ पर अपलोड करनी है, आपको AI के थ्रू विजुअलाइज करना है, आपको पता लग जाएगा आप पैसे लगने वाले हो, फिर आपको सर्विस डिस्कवर करनी है कहाँ पर हो सकती है, आप बुकिंग करोगे और फिर उसके बाद सिंपल आपको एक्चुअल ब्यूटी सर्विस मिलेगा। जस्ट इमेजिन दिस, आपने कोई फोटो देखी, एस्थेटिक आपको बहुत अच्छी लगी पिंटरेस्ट के ऊपर, आपको लगा कि यार मुझे ये काम अपनी बॉडी के ऊपर कराना है, ऐसे बाल करवाने हैं, ऐसी बियर्ड करानी है, ऐसा नेल पेंट कराना है, ऐसा नेल आर्ट कराना है, तो कहाँ पर जाओगे आप? और वहाँ पर ये कंपनी आ जाती है। तो यहाँ पर आप आओगे इस पोर्टल पे और ये आपको बता देगा आप यहाँ पर जा सकते हो और ये आपके पास ऑप्शन है, ये सलून्स हैं, ये आर्टिस्ट हैं जो आपका ये काम कर सकते हैं। एंड सिंपल। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि अब यार वो टाइम नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ, जब हम वो बस नीड्स की बात करते थे। हमें चाहिए भाई एस्थेटिक, हमें चाहिए, हम अपनी बेस्ट शेप में खुद को कैरी करना चाहते हैं, बेस्ट पॉसिबल जो हमारा आउटफिट है वो हम कैरी करना चाहते हैं, बेस्ट पॉसिबल जो हमारा हेयर कट है वो हमको चाहिए, बेस्ट पॉसिबल जो हमारी ग्रूमिंग हो सकती है वो हम यहाँ पर करना चाहते हैं। That's what this company is doing differently. Now let's take another musical break. उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। Stay tuned, feel good, feel good. Bye.

0: वेलकम बैक, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। एंड यहां तक हमने कंपनी की बात करी है, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि कंपनी के जो फाउंडर हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो मैं माफी चाहूंगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस शो मैं आपको फाउंडर्स के बारे में नहीं बता पाऊंगा। हालांकि कुछ कुछ क्लेम्स हैं यहाँ पर जो आपको मैं बता सकता हूँ, जैसे कि डॉक्टर सौंदर्य राजेश जो हैं उनका बोला जाता है कि शी स्टार्टेड दिस कंपनी एंड शी इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ अवतार द पावर ऑफ डाइवर्सिटी, एक बहुत अच्छा पोर्टल है, ठीक है, अवार्ड विनिंग एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, बट वी आर नॉट वेरीफाइंग दिस क्लेम। रीजन बींग ये किसी वेरीफाइड सोर्स से नहीं आ रहा है, ये इंटरनेट पर स्पेकुलेशन हो सकता है। सो यस, फॉर दैट पार्ट आज की जो कंपनी है जो प्रॉपर एक ऐप की तरह काम करती है उसके फाउंडर ने खुद को बहुत ही दूर रखा हुआ है, बहुत ज्यादा उनके बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट नाम तक भी कंफर्म लेवल पे अवेलेबल नहीं है। बट व्हाट मेक्स दिस कंपनी यूनिक ये हमने आपको बता चुके हैं, यूएसपी है एआई बिफोर परचेज, यूएसपी है इंडियन ब्यूटी डेटा, बाहर वेस्टर्न डेटा के ऊपर काम नहीं करेंगे, हमारा रियल इंडियन फेस जो है वो स्कैन किया जाएगा, हमारे स्किन टोन अलग होता है, हमारा टेक्सचर अलग होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी अलग होती है, तो उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर कैटर किया गया है। कनेक्ट एआई टू फिजिकल कॉमर्स ये भी एक ऑप्शन है, ट्राई डिसाइड बुक, ओके, सैलून साइड टेक्नोलॉजी, अच्छा बिजनेस मॉडल है, ठीक है, ये अपने आप को एज अ कंज्यूमर ऐप भी पोजीशन नहीं करते हैं, एक तरीके से एक पोर्टल, एक मार्केट प्लेस के तौर पे खुद को लिस्ट करते हैं, कंज्यूमर को हेल्प करेंगे एंड दो सैलून में आप जाएंगे वहां पर उनकी हेल्प करेंगे, सो इट्स अ टू वे थिंग एंड दैट इज समथिंग जो इस कंपनी ने अलग किया। तो ये है भैया हमारी आज की कंपनी, हालांकि बहुत बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत अर्ली स्टेज में है कंपनी, बट इट इज व्हाट इट इज। उम्मीद कर रहा हूँ ये मैं आपको बता पाया हूँ, हालांकि मैंने खुद वेरीफाई किया कंपनी का जो पोर्टल है सौंदर्य.com, इनकी वेबसाइट है, इनकी एप्लीकेशन से आप जाके चेक कर सकते हैं, लिस्टिंग है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की, सलून्स, लाउंजेस, टैटू कराने हैं, स्पा, मतलब जो भी आपको वहाँ पर सर्विस चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, ऑल द टॉप नॉच आर्टिस्ट बेसिकली जो आपको मिल सकते हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, अलॉन्ग विद द रेटिंग, अलॉन्ग विद द लोकेशन, कहाँ पर चाहिए, किस लोकेशन पर चाहिए, ये कंपनी मैप करके आपको देती है। That is a business model of this company. एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने शो को यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करना चाहेंगे। Stay tuned with us.
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये अस्त्र छूट करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है, ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंजीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मारवाड़ 107.8 एफएम के साथ। एंड ऑन दिस नोट, अपने वक्त है शो को यहां पर कंक्लूड करने का। हम लोगों ने जिस कंपनी के बारे में आज बात करी प्राइमरली, दैट इज सौंदर्य। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ट्रेडिशनल मेथड से बहुत अलग है। एंड रीजन बीइंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि जब भी आप मार्केट में उतरते हो, अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, यू हैव टू रीड द मार्केट। अभी आप प्रीवियस जनरेशन की बात करेंगे, उनको बहुत मिनिमलिस्ट लाइफ जीने की आदत थी। बट करंट जनरेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो यू विल रियलाइज दिस थिंग कि उन्हें स्टैटिक चाहिए। और आप ये डिनाई नहीं कर सकते, उनको हम मॉरली जाके नॉलेज नहीं दे सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो। कुछ गलत नहीं है। हाउ कैन यू एनकैश इट, दैट इज द बिग क्वेश्चन। आप खुद को कैसे खुद पोजिशन कर सकते हो उस मार्केट में, आप उस कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हो, आप उनको कैसे नई चीज दे सकते हो, कैसे आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो या फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दैट्स हाउ दीज आर द टू स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो किसी भी स्टार्टअप के लिए मेजरली काम करते हैं, इधर एड सम वैल्यू और रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। और ये दोनों ही चीजें यहां पर ही कंपनी कर रही है आपके लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, दैट्स ऑल अबाउट सौंदर्य ऐप। अब इसी के साथ वक्त अपने शो को कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज का शो आपको मैं समझा पाया हूँ, पसंद आया होगा आज की केस स्टडी आपको। चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं आप ही का ख्याल रखने के बारे में। जी हाँ, हर हफ्ते हम बात तो करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स पे। आज हम बात करेंगे आपके दिल के बारे में। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं आज के समय में जिनको जानकर, जिनको समझकर दिल घबराता है, लेकिन आपका दिल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके दिल का ख्याल रखने के लिए आ गए हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स। हम आज बात करने वाले हैं हार्ट केयर के बारे में। वर्ल्ड हार्ट डे हर वर्ष मनाया जाता है 29 सितंबर को, और इसी उपलक्ष में हम बात करेंगे आज शहर के जाने माने हार्ट रोग एक्सपर्ट से, यानी डॉक्टर SS बंसल जी, जो कि सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, साथ ही चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से। और इनसे हम जानेंगे दिल से जुड़ी बहुत सी खास बातें कि आप अपने दिल का ख्याल कैसे रख सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ हार्ट केयर के बारे में जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम फिट हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूँ, एकदम फिट हूँ, सब कुछ सही महसूस कर रही हूँ, क्या फिर भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
3: बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दीक्षा जी। लोगों को बेसिकली हार्ट डिजीज जो है ना, बड़ी एडवांस स्टेज तक साइलेंट रहती है, छुपी हुई रहती है हमारी बॉडी में। इसीलिए आपने सुना होगा कि कई लोग जो हैं उनकी सडन डेथ हो गई और पहले कुछ था ही नहीं उनको, और जैसे रात को सोए रह गए, सुबह उठे नहीं, जिम में एक्सरसाइज करते हुए कोलैप्स हो गए, या आप एक्सरसाइज के अलावा कई बार जो रनिंग करते हैं लोग वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो ये सडन डेथ कर सकती है। इसलिए हर एक को जो है, इंडियंस आर प्रोन टू हार्ट डिजीज, हर एक को ही अपना हार्ट जो है उसका चेकअप टाइमली कराना चाहिए।
2: जी सर, आपने जिम की बात कही, और हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, फरीदाबाद की ही वीडियोस वायरल हुई हैं, जहां पर जिम में वर्कआउट करते करते कोई कोलैप्स करके, बचाने तक का समय नहीं मिलता, डॉक्टर के पास ले जाने का भी समय नहीं मिलता। और ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ भी ऐसा हुआ है, सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसा होता है। उम्र बहुत छोटी थी, 40-45 के आसपास, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। सो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और कैसे इसको रोका जा सकता है?
3: ये दीक्षा एक्चुअली क्या है, हमारे हम लोग ना अपनी हेल्थ को ग्रांटेड लेते हैं, हम सोचते हैं हमें हार्ट डिजीज हो नहीं सकती, तो उस चक्कर में कोई चेकअप नहीं कराता। नहीं तो आजकल टेक्नोलॉजी है, आप हार्ट डिजीज को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हो। जब आप जिम या कोई एक्सरसाइज करते हो और आपको पता नहीं है आपके अंदर 80-90% ब्लॉक है, बट यू आर नॉट अवेयर, कई बार 50-60% है या कई बार उससे भी ज़्यादा है, तो जब आप एक सडनली ऐसी एक्सरसाइज शुरू कर देते हो जो अनकस्टम्ड है, यू आर नॉट अकस्टम टू इट, तो ऐसी एक्सरसाइज करने में वो जो ब्लॉक होता है, एक तो हार्ट की डिमांड बढ़ जाती है बहुत ऑक्सीजन की, और उधर से वो प्लाक रप्चर होके क्लॉट बन जाता है, उससे सडन हार्ट अटैक होता है, जिससे सडन डेथ हो सकती है उसको।
2: जी, यानी मतलब
3: हाँ, तो इसलिए मेरी हर एक को मैं ये एडवाइस देता हूँ कि अगर आपने अनकस्टम्ड एक्सरसाइज शुरू करनी है, कोई विग्रस एक्सरसाइज प्रोग्राम आप शुरू कर रहे हो, तो उससे पहले कम से कम अपने हार्ट को जरूर चेक कराएं, क्योंकि सडन डेथ का बहुत बड़ा कारण है इको एंड सीटी एनजीओ। ये दो टेस्ट हैं जो जिनसे हमें हार्ट डिजीज अर्ली स्टेज में पता चल सकती है। ऐसे मैंने इतने पेशेंट ट्रीट किए हैं जिनके 90-90% से ऊपर के ब्लॉक थे और उनको कोई सिम्टम नहीं था,
2: कोई सिम्टम
3: हाँ, और वो एक्सरसाइज करते तो वो कोलैप्स कर सकते।
2: जी, और ये किसी भी एज में हो सकता है?
3: ये किसी भी एज में हो सकता है, यूजली मेल्स में ज्यादा होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है रिस्क बढ़ता जाता है। 20 ईयर्स की एज के बाद वन शुड बी वेरी कॉशियस, क्योंकि 20 की एज पे हर बॉय और एंड हर एवरी बॉय एंड गर्ल शुड गेट देयर ब्लड शुगर चेक, BP चेक एंड लिपिड प्रोफाइल चेक। तो उसमें अगर किसी की कोई एबनॉर्मेलिटी निकलती है तो वो एबनॉर्मेलिटी को उन्होंने ट्रैक करना होता है, भूलना नहीं होता, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए चाहे दवाई खानी पड़े। अगर लॉन्ग रन में वो चाहते हैं कि हार्ट डिजीज ना हो, तो ये रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करके उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
2: जी बिल्कुल, यानी जो चीज़ें जो टेस्ट हम पहले 50s के बाद कराया करते थे, या हमारे घर में कहा जाता था कि 60 के बाद हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है तो थोड़ा चेकअप कराइए, वो अब 20s में कराना चाहिए।
3: 20 में इसलिए कि जो हार्ट डिजीज की शुरुआत 20 में होती है
2: जी,
3: तो वो धीरे धीरे अंदर साइलेंटली ग्रो करती है ओवर ईयर्स। पहले तो लोगों के 60 की 50 की एज ग्रुप के ज़्यादा लोग आते थे हार्ट अटैक से, आजकल हमारे पास 30 से 40 के अंदर भी ऑलमोस्ट 20% पेशेंट आते हैं जो हार्ट अटैक, जिनको हमारे हॉस्पिटल में जो आते हैं उनमें से 20% पेशेंट्स आर यंगर देन 40। तो इससे डिजीज विच स्टार्ट्स क्वाइट अर्ली
2: जी,
3: और इट कैन बी पिक्ड अप बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। लेकिन जब तक हार्ट अटैक लेट इसलिए होते थे पहले, क्योंकि तब तक अनआइडेंटिफाइड छुपी हुई बीमारी रहती थी, सरफेस पे नहीं आती।
2: बिल्कुल। तो सर आपके हिसाब से कौन सी ऐसी सही एज है जब डॉक्टर के पास जाकर ये सारे चेकअप्स कराने चाहिए?
3: अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसको तो अपने जो रिस्क फैक्टर के लिए तो सारे 20 की एज में कराने हैं। वैसे तो कहते हैं कि प्यूबर्टी क्रॉस करते ही लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए जिसकी फैमिली हिस्ट्री है। अगर वैसे ठीक हैं इंडियन, वैसे इंडियंस ऑल इंडियंस आर प्रोन टू हार्ट डिजीज, तो इसलिए 30 की एज के बाद एक बार अपना सारा प्रोफाइल हार्ट चेकअप करा लेना चाहिए। खाली ब्लड टेस्ट नहीं, ECG, इको, स्ट्रेस टेस्ट, अगर उसमें कोई भी डाउट आता है देन CT, NGO, तो ये टेस्ट अवेलेबल है, आपकी डिजीज को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं
2: जी। यानी ये सारे टेस्ट कराते रहने
3: और हर साल कराना चाहिए, क्योंकि आपको आज बिल्कुल आप हेल्दी हो, आपके सारे चीजें ठीक आ रही हैं, एक साल में क्या हुआ वो आपको पता नहीं है, तो अगले साल भी टेस्ट होने चाहिए, तो एवरी ईयर इट शुड बी डन
2: जी। यानी हर साल ये टेस्ट कराने चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी उम्र बढ़ गई है तो टेस्ट थोड़ा और जल्दी कराने चाहिए?
3: वो ना एक्चुअली डिपेंड करता है, अगर आपके हेल्दी रिपोर्ट्स हैं सारे बिल्कुल ठीक हैं और आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आप एनुअली करा सकते हो। पर अगर आपकी डिजीज डिटेक्ट हो गई है, आपको कोई एपिसोड हो गई, आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या बाईपास हो चुकी है या एंजाइना आपको हो रहा है, तो फिर आपका कार्डियोलॉजिस्ट जो है आपकी डिजीज को देख के अकॉर्डिंगली आपके दोबारा टेस्ट कराता है, जहाँ जहाँ एबनॉर्मेलिटी होती है उसको बार बार चेक करना पड़ता है।
2: जी बिल्कुल। सो आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर डॉक्टर SS बंसल जी से, जो कि जाने माने सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही चेयरमैन और MD है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद के। इस सारी जानकारी को आप हमारे इंटरनेट रेडियो के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में भी सुन सकते हैं और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि सभी अपने दिल का ख्याल अच्छे से रख सकें। बहुत सी जानकारियां और भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और हम बात कर रहे हैं आपके दिल के बारे में। जी हाँ, दिल यानी हार्ट, और हार्ट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मैटर्स और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो हार्ट फेल, हार्ट अटैक या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं। सो एक्सपर्ट से बेहतर हमें कोई सलाह नहीं दे सकता। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसएस बंसल, जो कि जाने माने सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग होते हैं वो जो हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्लड टेस्ट कराते हैं और एकदम ब्लड टेस्ट ठीक आते हैं और उनको लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। क्या ऐसे केसेस में भी हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं?
2: ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को गलत फहमी है। वो घर में बैठ के अपने ब्लड सैंपल दे देते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं सारी नॉर्मल, और वो निश्चिंत हो जाते हैं कि मुझे तो कुछ होगा नहीं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो हार्ट अटैक से हॉस्पिटल में, जब हम उनको बोलते हैं कि आपको हार्ट अटैक है, वो कहते हैं मेरे को कैसे हो सकता है, मेरी तो सारी रिपोर्ट्स ब्लड की नॉर्मल आती थी, कभी कोई खराबी आई नहीं और मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कभी लाइफ में, तो हार्ट अटैक कैसे हो गया, मैं तो कभी कोई दवाई भी नहीं खाई। तो वो बेसिकली क्या है, ब्लड टेस्ट से हार्ट डिजीज नहीं पता चलती। उसके लिए हमें हार्ट के टेस्ट कराने पड़ते हैं हॉस्पिटल जाके, जैसे कि ईसीजी है, इको है, टीएमटी है, स्ट्रेस इको है, कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम है, सीटी कोरोनरी एनजीओ है। अब तो इतनी एडवांस चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप डिजीज को अर्ली डिटेक्शन उसकी कर सकते हो। ब्लड टेस्ट के भरोसे नहीं रहना चाहिए,
1: सिर्फ ब्लड टेस्ट से कुछ नहीं होगा।
2: जी जी,
1: वो ये ठीक है कि आप सीबीसी करा के बाकी चीजें अपनी नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन हार्ट के मामले में ब्लड टेस्ट
2: एवरीथिंग, ब्लड टेस्ट आर इम्पोर्टेंट, बट ब्लड टेस्ट डू नॉट गिव यू द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ योर हार्ट। दे विल ओनली टेल यू रिस्क फैक्टर्स लाइक लिप्ट, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ गया, शुगर ज्यादा आ गई, उससे ज्यादा उनसे कुछ नहीं पता लगेगा। और शुगर, बिना शुगर के, बिना कोलेस्ट्रॉल के भी हार्ट डिजीज हो सकती है, तो इसलिए दूसरे हार्ट के टेस्ट तो कराने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, यानी हार्ट की केयर करनी है तो हार्ट के जो टेस्ट बने हुए हैं उनको जरूर कराइए, ब्लड टेस्ट आप जरूर कराइए ताकि बाकी चीजें भी ठीक रहें, लेकिन हार्ट के लिए स्पेसिफिक टेस्ट आप डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर कराइए। डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन चीज है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम नॉर्मल होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल है कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी हार्ट अटैक हो सकते हैं?
2: ये भी एक गलत धारणा लोगों के बीच में है कि अगर कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल है तो मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये बहुत कॉमन धारणा है, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी मेरे पास जो आए उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे तो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल थे, मेरे को कैसे हो गया। एक्चुअली 50% से ज़्यादा पेशेंट्स जिनको सीरियस ब्लॉक होते हैं, 90%, 80%, बाईपास तक करानी पड़ती है, इतनी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड होती है, उनके कोलेस्ट्रॉल कराओ तो बिल्कुल नॉर्मल से भी कम। तो ऐसे पेशेंट्स में

0: नॉर्मल है या लो नॉर्मल, नॉर्मल से भी कम है, तो आप ये एज्यूम ना करें कि आपको हार्ट डिजीज नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल, यानी कोलेस्ट्रॉल के चेकअप से भी खाली ये चीज पता नहीं
0: पता लगती।
1: तो हार्ट अटैक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, तो हार्ट के स्पेसिफिक टेस्ट कराने इस केस में बहुत ज्यादा जरूरी है। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और डॉक्टर SS बंसल से अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हार्ट केयर से जुड़ा हुआ, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नंबर है बहुत आसान, 8010781078।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें चल रही हैं हार्ट केयर के बारे में। दिल बहुत ज्यादा नाजुक होता है। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज, हमारे खराब लाइफस्टाइल या फिर हमारे बेहतर लाइफस्टाइल से इस पर बहुत असर पड़ता है। साथ ही कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो दिल का ख्याल रखना हर एक दिन बहुत जरूरी है, चाहे वो मल्टीपल टेस्ट हो या फिर डॉक्टरी एडवाइस या फिर दवाइयां या फिर ट्रीटमेंट। हर एक तरीके से आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसएस बंसल, देश के जाने माने सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और साथ ही एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। आइए जानते हैं इनसे और भी बहुत सी बातें हार्ट केयर के बारे में। डॉक्टर साहब, एडवांसमेंट्स की बात करते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि काफी एडवांस हो गई है मेडिकल साइंस, स्पेशली हार्ट टेस्ट के मामले में। तो क्या क्या एडवांसमेंट हैं जो अवेलेबल हैं आज के समय में, जहां पर व्यक्ति जा सकता है, इजीली टेस्ट करा सकता है, या फिर केयर के मामले में क्या हो सकता है?
1: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट, जो सबसे यूजफुल एडवांसमेंट जो मुझे लगती है, वो ये है कि पहले हम लोग पेशेंट को स्क्रीन करते थे खाली ECG से, इको से, TMT से, स्ट्रेस इको से, और उसमें 70% से कम ब्लॉक डिटेक्ट नहीं होते थे। और कई 30% से 40% तक जिनके सीरियस ब्लॉक होते थे वो भी मिस हो जाते थे उसमें
0: जी।
1: और वो पेशेंट को और डॉक्टर को दोनों को फॉल्स एश्योरेंस हो जाती थी। पेशेंट्स को सिम्टम भी नहीं है, टेस्ट भी ठीक आए, तो वो एकदम निश्चिंत हो जाता था। अब जो CT कोरोनरी एंजियोग्राफी आई है, ये एडवांस CT स्कैन है जो हम, मेरे हॉस्पिटल में CT स्कैन बिल्कुल, इतने पेशेंट मेरे पास CT स्कैन में बीमारी निकली है, इतने पेशेंट्स को, जो बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल थे उनके। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक सबसे बड़ी एडवांसमेंट है डायग्नोसिस के लिए। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, इतनी एडवांस हो गई है एंजियोप्लास्टी, उसके कैथेटर बहुत अच्छे आ गए, उसके स्टेंट्स बहुत अच्छे आ गए, वायर्स इतनी हो गई कि जितनी मर्जी खराब आर्टरी हो, टॉर्चुअस हो, कैल्सीफाइड हो, तो अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, रोटाविलेशन से आप कैल्शियम साफ कर सकते हो। ऐसी जहाँ पे कोई स्टेंट जाना मुश्किल होता था, जहाँ पे आर्टरी में कई बैंड होते थे, अब फ्लेक्सिबल स्टेंट्स आ गए, उनमें ड्रग्स बेटर हो गई, ड्रग कोटेड बैलून आ गए। फिर उसके बाद पेसमेकर में हमें वायर कनेक्ट करनी पड़ती थी, अब वो लीडलेस पेसमेकर आ गए। फिर उसके बाद आपके हार्ट के वाल्व सर्जिकली क्लोज करने पड़ते, चेंज करने पड़ते थे वो ओपन करके। अब बिना ओपन करे एक छोटे से ग्रोइन में पंचर से हार्ट का वाल्व, मैंने कल ही चेंज किया है हार्ट का वाल्व, तो एओर्टिक वाल्व आराम से हार्ट का चेंज हो सकता है। कईयों के वाल्व बहुत लीक करते थे पहले, तो उनके लिए कोई हार्ट वीक है और माइटल वाल्व लीक कर रहा है, उसको बेसिकली हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा उसकी कोई ऑप्शन नहीं बचती थी। अब लीकेज को बंद करने के लिए माइट्रा क्लिप आ गया, वो नॉन सर्जिकल टेक्निक आ गई है। सर्जरी जिन पेशेंटों में नहीं हो सकती है, उनमें अब माइट्रा क्लिप से आप कर सकते हो नॉन सर्जिकल मेथड से। तो बहुत सारी एडवांसमेंट हुई है, जिससे कि काफ़ी पेशेंट जिनकी पहले बाईपास होती थी या वाल रिप्लेसमेंट होते थे, अब बिना सर्जरी के वही काम हो जाते हैं
0: जी। और इतनी एडवांसमेंट्स आपने बताई हैं, तो SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात अगर मैं करूं, तो किस तरीके के एडवांसमेंट आपके हॉस्पिटल में है जहां पर पेशेंट्स आ सकते हैं?
1: हमारे पास एक्चुअली हमारा मेनली फोकस हार्ट पे है
0: जी।
1: तो हमने हार्ट के एक्सपर्ट, जैसे मेरे को 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया एंजियोप्लास्टी करते हुए, हार्ट के होल बंद करते हुए, पेसमेकर लगाते हुए, हार्ट फेलियर के पेशेंट, सो मैं 35 ईयर्स से कर रहा हूँ, और मेरा कोर काम है डिफिकल्ट एंजियोप्लास्टी
0: जी।
1: दूसरा, हमारे सर्जन जो हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर सिद्धू, उनका भी 35 ईयर से वो बाईपास कर रहे हैं और हार्ट के वाल्व चेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है एक्सपीरियंस टीम ऑफ डॉक्टर्स, जो बड़े दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, गुड इक्विपमेंट एंड गुड डॉक्टर्स। तो इक्विपमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो मोस्ट एडवांस हार्ट लंग मशीन, उसके अलावा बेस्ट फ्लैप पैनल, दो कैथ लैब, उसके बाद उसमें स्टेंट बूस्ट, उसके सारे फीचर जो पेशेंट के लिए सेफ्टी के लिए चाहिए वो सारा कुछ है। रोटाब्लेशन है, 4D इको है, जो नॉर्मली इको होती है वो 2D इको होती है, ये 4D इको हमारे पास है। CT जो स्पेसिफिकली हार्ट का उसमें सॉफ्टवेयर है, हार्ट की डिजीज को, अर्ली डिजीज को डिटेक्ट करता है, ऐसा CT स्कैन लिया, वो जो नॉर्मल CT से लगभग 8 गुना महंगा है।
0: ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज
1: हैं। इसलिए हम हार्ट का पूरा स्पेक्ट्रम ट्रीट करते हैं
0: जी, यानी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सो डॉक्टर SS बंसल से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं और दिल का ख्याल रखने के बारे में अगर आपके मन में भी कुछ डाउट्स हों, कुछ दुविधा हो, तो आप हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं 8010781078 पर। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष, और आज भी हम आपको ऐसी कुछ जानकारियां वर्ल्ड हार्ट डे से पहले और वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर भी दे रहे हैं ताकि आप अपने दिल का ख्याल अच्छे से रख सकें। अगर आप ये जानकारियां किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी इंटरनेट रेडियो की ऐप डाउनलोड करके रेडियो मानव रचना 107.8, और इस ऐप के माध्यम से आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर इस पॉडकास्ट सेक्शन में जा सकते हैं और ये सारी बातचीत आप कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। आपके एक शेयर से किसी की जान बच सकती है। अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप खास प्रोग्राम दिल का ख्याल रखने के बारे में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें चल रही हैं आप ही के दिल का ख्याल रखने के बारे में, हार्ट केयर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलता लाइफस्टाइल, ख़राब होता माहौल यानी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, लेकिन क्या हमारा लाइफस्टाइल ठीक हो फिर भी हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं? ऐसे कुछ सवाल और ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम जान रहे हैं आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर एसएस बंसल जी से, जो कि देश के जाने माने सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। तो आइए जानते हैं कुछ और सवाल। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल पेशेंट्स बहुत आते हैं इंडिया में और आपके हॉस्पिटल में काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पेशेंट्स इराक से, ओमान से आते हैं, तो कितने पेशेंट्स किन किन कंट्रीज से आते हैं और क्यों आते हैं?
1: ये एक्चुअली इंडिया में ट्रीटमेंट सस्ती है
0: जी।
1: दूसरा, इंडिया के अंदर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, बाहर की कंट्रीज वालों को इंडियन डॉक्टर्स पे भरोसा हो चुका है, वो बड़े प्रोसीजर जो उनकी कंट्री में नहीं होते उनको कराने के लिए इंडिया में आते हैं। मैं पिछले 15 साल से इंटरनेशनल पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज के मैंने पेशेंट ट्रीट किए होंगे, तो अभी भी मेरे अंडर 8 पेशेंट इंटरनेशनल एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल पेशेंट इसलिए आते हैं, एक तो आते हैं वर्ड ऑफ माउथ से, जिसका मैं 15 साल से ट्रीट कर रहा हूँ, जिसका मैंने करा वो अपने रिलेटिव को लेके आता है। तो और इंडिया में अब सारी टेक्नोलॉजी

0: अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, एक्सपर्टाइज अवेलेबल है और बाकी दुनिया में जितने हॉस्पिटल हैं उन सबसे सस्ता भी है। तो यही कारण है कि इंडिया में अब इंटरनेशनल पेशेंट बहुत आते हैं।
1: जी, इंटरनेशनल पेशेंट्स आपके यहाँ काफ़ी आते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ मेडिसिंस की, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेडिसिंस दी जाती है, कईयों की एंजियोप्लास्टी होती है, कई की बाईपास होती है, सो ये डॉक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को किस तरीके की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है?
0: हाँ, ये दिक्कत ये डिपेंड करता है कि उसकी डिजीज़ का एक्सटेंट कितना है, कितने ब्लॉक हैं, कितनी सिवियरिटी है और किस तरह के ब्लॉक हैं, कितनी खराब नसें हैं, तो उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। पहले जिन लोगों को बाईपास के लिए भेजा जाता था, अब एंजियोप्लास्टी में इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि हमारे पास कई पेशेंट जो बाईपास नहीं कराना चाहते, वो खास तौर पे इंटरनेशनल पेशेंट मेरे पास जो आते हैं वो आते हैं जो बाईपास नहीं कराना चाहते और सबने बाईपास एडवाइस की होती है, तो उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके एंजियोप्लास्टी करी जा सकती है। तो एक तो ये, दूसरा जिन पेशेंट्स में लेकिन एंजियोप्लास्टी हो ही नहीं सकती या बहुत हाई रिस्क है एंजियोप्लास्टी में कि एक ही नस पे जिंदा है, उसमें सीरियस ब्लॉक है और आप उसमें एंजियोप्लास्टी के लिए बलून इन्फ्लेट करोगे क्रैश हो जाएगा, ऐसे पेशेंट में अभी भी बाईपास करानी पड़ती है। और जिनके हार्ड कैल्सीफाइड ब्लॉक हो गए सारी नसों में, उनमें उनको करना बहुत मुश्किल होता है रोटा से, उनको भी बाईपास होती है। तो बेसिकली सेलेक्ट करना पड़ता है। दूसरी बात ये है, उस पर डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट में कितनी एक्सपर्टाइज है। काफ़ी सेंटर्स में जहाँ पे वो सिंपल सिंपल केसेस करते हैं
1: जी,
0: उनमें वो थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स केस हो तो उसकी बाईपास करते हैं। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिजीज़ कैसी है और जो डॉक्टर करने वाला है उसकी एक्सपर्टाइज कैसी है। 70% से कम ब्लॉक होते हैं उनको दवाइयों से ट्रीट किया जाता है।
1: okay.
0: और जो छोटे छोटे ब्रांचेज में ब्लॉक होते हैं उनको भी दवाइयों से ट्रीट किया जाता है। जो डेंजरस पॉइंट पे जो ब्लॉक होते हैं वो दवाइयों से ट्रीट नहीं किया जा सकता
1: जी, यानी उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा,
0: बहुत ज्यादा रिस्क होता है
1: जी
0: सडनली।
1: डॉक्टर साहब, एक एंजियोप्लास्टी जो होती है वो बहुत पेशेंट्स की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंट्स के दिमाग में होता है कि एक काइंड ऑफ सर्जरी है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, तो क्या ब्लीडिंग को रोका जा सकता है?
0: पहले तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एंजियोप्लास्टी है वो एक स्मॉल पंचर से होती है, ना कोई स्टिच लगता है ना कोई कट लगता है, तो ब्लीडिंग के चांसेस वैसे ही बहुत कम होते हैं। आजकल ना रेडियल एंजियोग्राफी करते हैं, हाथ से करते हैं, 5 मिनट में एंजियोग्राफी करी और उसको घर भेज सकते हैं उसके तुरंत बाद, यहाँ पे दबा सकते हो, 10-15 मिनट दबाने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है, वो हम बंद करके भेजते हैं।
1: ओके।
0: दूसरा, अगर किसी का किसी वजह से यहाँ पे नस उसकी सूटेबल नहीं है तो हमें पैर से करना पड़ता है। तो पैर से क्या होता है कि पैर से अगर आप पंचर करते हो तो पैर में कई बार थाई में इतनी ब्लीडिंग हो जाती है या एब्डोमन में, उसमें रिस्क होता है। तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, कुछ हम कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। उसके अलावा हम लोग एंजियोप्लास्टी के बाद अब नए वेस्कुलर क्लोजर डिवाइस आ गए हैं, उसमें हम वो उससे क्लोज कर देते हैं उसका होल, नस के अंदर अंदर जाके उसको होल को क्लोज कर देते हैं उसी पंचर में से जिसमें से हमने किया है
1: जी।
0: तो उससे क्या हुआ कि पहले पेशेंट को ब्लीडिंग रोकने के लिए 6-7 घंटे पैर सीधा रख के लेटे रहना पड़ता था, जिससे उनको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आती है और बड़ी प्रॉब्लम आती है, खाना खाने में प्रॉब्लम आती है। अब हम पेशेंट को पैर से भी करी हो तो उसकी वेस्कुलर क्लोजर डिवाइस से क्लोज करके उसको बिठा के खाना खिला सकते हैं 10 मिनट बाद
1: जी, यानी अब काफी चीजें जो हैं वो बदल गई
0: जी जी जी।
1: तो बहुत सी बातें हम डॉक्टर SS बंसल जी से जान रहे हैं, लेकिन अभी बातों ही बातों में वक्त आ गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं आपकी हार्ट केयर के बारे में। हार्ट यानी दिल, दिल यानी हार्ट, जिसका ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसका ख्याल हम बखूबी रखते हैं कई बार, लेकिन कई बार नहीं रख पाते हैं। हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल, ख़राब खान पान, कुछ आदतें और ढेर सारा पॉल्यूशन इसे ख़राब करने का जिम्मेदार बन जाता है। पर डॉक्टरी एडवाइस से आप अभी भी अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। कैसे, वो हम जान रहे हैं डॉक्टर SS बंसल जी से, हमारे खास मेहमान, हमारे खास एक्सपर्ट, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और साथ ही देश के जाने माने सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे एक व्यक्ति अपना ख्याल रख सकता है और अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकता है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिनको हाइपरटेंशन भी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, वो स्मोक भी नहीं करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उन्हें ये लगे कि उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन क्या फिर भी हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं?
2: बिल्कुल।

0: होते हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन इतनी है उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता
1: जी।
0: स्ट्रेस लाइफ में बढ़ गया है, स्लीप लोगों की प्रॉपर नहीं है, स्लीप ऑल्सो इज ए हेल्पफुल थिंग, लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको आपकी फैमिली में नहीं है, आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपको हार्ट डिजीज नहीं हो सकती, तो कई वायरल इन्फेक्शन भी करती हैं गड़बड़। तो एक चीज़ होती है एंडोथेलियल डिसफंक्शन, तो जिसको एंडोथेलियल डिसफंक्शन किसी भी कारण से है उसको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डोंट टेक योर हार्ट फॉर ग्रांटेड, उसका चेकअप जरूर कराएं।
1: बिल्कुल, यानी अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको बिल्कुल आप हल्के में ना लें
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, आपने शो की शुरुआत में कहा कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हार्ट रिलेटेड, तो सभी इंडियंस आपको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
0: सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है, डोंट टेक योर हार्ट फॉर ग्रांटेड। और हार्ट आपको पता है कि आपको समय नहीं देता इलाज कराने का, लगभग 25% लोगों की डेथ हार्ट अटैक के टाइम ही हो जाती है, तो वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते
1: जी।
0: तो मेरा मैसेज ये है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, गेट योर हार्ट चेक
1: जी। बिल्कुल, और हमारे लिसनर्स जो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? खास तौर पर मैं चाहूंगी यंगस्टर्स के लिए आप जरूर दें मैसेज।
0: यंगस्टर, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप अपना लाइफस्टाइल बचपन से ही ठीक रखें
1: जी।
0: लाइफस्टाइल में क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज करना, डाइट को अपनी ठीक रखना, जिसको हम कहते हैं हेल्दी डाइट लेना, उसके बाद स्मोकिंग ना करना, किसी भी तरह का टोबैको का इस्तेमाल ना करना, एल्कोहल नहीं लेनी, और ये चार लाइफस्टाइल के शुरू से ही हर बच्चे को अडॉप्ट कर लेनी चाहिए यंग एज से
1: जी।
0: उसके बाद रिस्क फैक्टर अपने एनालाइज कराने के लिए ब्लड टेस्ट कराना चाहिए कि आपको शुगर तो नहीं है, आपको बीपी तो नहीं है, बिकॉज ये साइलेंट किलर्स हैं, ये आपको कोई तकलीफ नहीं देते
1: जी।
0: लेकिन अंदर अंदर आपके सिस्टम को खराब करते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए ब्लड प्रेशर चेक कराना, शुगर कोलेस्ट्रॉल चेक कराना बचपन में ही बहुत जरूरी है। तो यंगस्टर्स को मैं कहूँगा कि ये करें। दूसरा, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना हार्ट का चेकअप कराएं
1: जी।
0: जब आप 30 क्रॉस कर जाते हैं तो हार्ट का चेकअप बहुत जरूरी हो जाता है, खाली ब्लड टेस्ट से पता नहीं चलता, जैसे मैंने बताया था
1: जी।
0: चौथा, हार्ट के सिम्टम्स को पहचानें कि अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, शोल्डर में पेन हो रहा है, लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, ये एरिया और बैक में हो रहा है, पेट के ऊपर के हिस्से में हो रहा है, तो ये सिम्टम हार्ट के हैं। फिर कईयों को सिर्फ बेहोशी आ जाती है, कईयों को सिर्फ धड़कन होती है, कईयों को सिर्फ फटीग होती है, तो जो नए सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि हार्ट अटैक आप अगर आ गया है तो वो समय नहीं देगा आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर चेकअप्स कराना। उम्र जैसे ही आपकी, आप टीनेज से आगे निकलते हैं, तो मुझे लगता है ज़रूरी हो जाता है अपने दिल का ख्याल रखना, क्योंकि आजकल का समय पोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है वो बिगड़ चुका है। तो आपका लाइफस्टाइल बेहतर करना, अपनी डाइट का ख्याल रखना और समय समय पर चेकअप्स कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर आपने ये सारी जानकारी दी, उम्मीद है कि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कुछ ज़रूर समझेंगे और अपने इस दिल का ख्याल ज़रूर रखेंगे, क्योंकि दिल एक ही होता है और उसका ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू दीक्षा, थैंक यू।
1: तो बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और अब टाइम है आपसे इजाजत लेने का। फिर से होगी मुलाकात एक नए एपिसोड में कुछ नई हेल्थ रिलेटेड बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो फ्रेंड्स, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपके अपने कम्युनिटी मेंबर, और मेरे इस शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के शो में हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसे नाम का, एक ऐसी हस्ती का जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। फ्रॉम द स्पिरिचुअल सिटी ऑफ ऋषिकेश टू द ग्लैमरस वर्ल्ड ऑफ फैशन, इनकी जर्नी ट्रूली इंस्पायरिंग है। ही स्टार्टेड हिज करियर विद विल्स इंडिया फैशन वीक एंड सून मेड हिज मार्क एट लैक्मे फैशन वीक, ग्लोबल इंडिया कॉट्योर वीक, टाइम्स फैशन वीक और कई बड़े फैशन प्लेटफॉर्म्स। गणेश व्यास हैज स्टाइल्ड सम ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, दीपा मलिक, आलिया भट्ट, सनी लियोनी, तापसी पन्नू और बहुत सारे रिनाउंड नेम्स। हिज वर्क हैज बीन फीचर्ड इंटरनेशनली इन वोग इटली, एल ऑफिशियल इटली, एल कॉस्मोपॉलिटन एंड मेनी मोर टॉप मैगजीन्स। इन्हें यंगेस्ट फैशन अचीवर्स अवार्ड से भी ऑनर किया गया है। Along with celebrities, he has also collaborated with global brands like Samsung, Canon, Nestle. So, dosto, ek chote se shahar se lekar international fashion magazines tak ka inka ye safar hai talent, hard work aur creativity ka perfect example. So, dosto, ek chote se shahar se lekar international fashion magazines tak ka inka ye safar hai talent, hard work aur creativity ka perfect example. So please join me in welcoming the very talented and inspiring fashion stylist and designer Mr. Ganesh Vyas. Ganesh, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस शो क्रिएटिव मंच में।
1: थैंक यू सो मच गौरी मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई विल से प्लेजर इज ऑल माइन।
0: ओके गणेश, सो आप ऋषिकेश जैसे टाउन से बिलोंग करते हैं और आज एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैशन स्टाइलिस्ट और डिजाइनर बन गए हैं। So how did this inspiring journey begin? हमें ये तो बहुत ही मतलब जानने के लिए मैं excited हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो उस बारे में हमें बताइए।
1: Actually पहले तो मैं बोलूँगा ऋषिकेश is the nearest city जहाँ पे मैं रहता हूँ। okay. जो मेरा असली घर है वो है ढालवाला, इट्स इन टिहरी गढ़वाल, और जो हमारी नियरेस्ट सिटी है वो ऋषिकेश है। बट जो मेरा बचपन है वो सारा ऋषिकेश, मतलब स्कूलिंग मेरी ऋषिकेश में ही हुई है। तो मैं ढालवाला से ऋषिकेश आता था पढ़ने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज इन ऋषिकेश ओनली।
0: ओके,
1: तो मुझे बचपन से यही करना था वैसे तो, एंड लाइक उस समय नया नया फैशन टीवी आया था, आई हैव सीन फैशन टीवी, एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, तो मुझे लगा अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये तो बचपन से ही था कि मुझे यही करना है। आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि मेरे को फैशन इंडस्ट्री में ही कुछ करना है।
0: तो मतलब ये फैशन वाली जो आपने बात कही कि मुझे बचपन से, कौन सी क्या एज रही होगी तब आपकी?
1: I was in 6th, I guess, 6th, 7th.
0: Okay, मतलब काफी छोटी एज में, 6th, 7th में इतना आपने सोचा कि मुझे इसी लाइन में जाना है।
1: 10 और 11 साल का हूँगा मैं शायद उस समय।
0: Okay, okay. तो फैमिली का सपोर्ट मिला इसमें?
1: Family is okay about it. They are saying that this not be a main career. ये तो main career हो ही नहीं सकता है, आपको तो पढ़ाई करनी है। So I have done BSc in fashion, 7th, 10th, उसके साथ साथ मैंने BCom भी किया हुआ है।
0: अच्छा, तो ये आपने सब ऋषिकेश से ही किया है?
1: फैशन डिजाइनिंग मैंने दिल्ली से की है, और जो मेरा बीकॉम है वो मैंने ऋषिकेश से किया है।
0: अच्छा, नाइस। मतलब आपका जो आपने बताया कि स्टार्टिंग से फैमिली का भी इतना नहीं था कि उन्हें तो लगता होगा ये कोई
1: स्टिल थिंक, दे स्टिल थिंक, दे थिंक कि अभी भी क्या ही कर रहे हो आप।
0: okay, मतलब उनका वही माइंडसेट है कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये वाली चीज ही करियर में होनी चाहिए। बट नहीं, आपने मतलब, हम तो ये कहेंगे कि आपने बहुत इसमें भी नाम कमाया है, तो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक आप सेट कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में भी। सो इसके अलावा जैसे आपने बताया कि कॉलेज आपने किया, देन फैशन डिजाइनिंग में ही आपने किया, सो उसके बाद क्या रहा, कैसे आप इसमें आगे बढ़े?
1: सी, आई थिंक आई एम वेरी लकी। जब मेरा कॉलेज का पहला पोर्टफोलियो था तो देर इज़ अ डिज़ाइनर कॉल सामंत चौहान, उन्होंने, वो मेरी ज्यूरी में थे, तो सामंत ने मेरे, जो मैंने गारमेंट बनाया था वो खादी से रिलेटेड था, एंड सामंत जो हैं वो अहिंसा सिल्क पे काम करते हैं।
0: अच्छा।
1: इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर फैब्रिक एंड कलर्स, तो उनको मेरा कलेक्शन बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला कि यू कैन जॉइन मी फॉर द इंटर्नशिप। मैंने उनके साथ इंटर्नशिप करी, और इंटर्नशिप के साथ साथ ही उनको, मतलब जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो उसके साथ साथ ही उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर लिया।
0: okay.
1: तो फिर देन आई स्टार्ट वर्किंग विद हिम, उनके साथ मैंने विल्स इंडिया फैशन वीक किया सबसे पहले, तो दैट्स हाउ द करियर बिगिन।
0: तो योर फर्स्ट बिग ब्रेक केम विद विल्स इंडिया फैशन वीक। सो उस एक्सपीरियंस ने आपके करियर को किस तरह से शेप किया?
1: एक्चुअली विल्स इंडिया फैशन वीक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था पहले, जो कि अब मर्ज होके लैक्मे फैशन वीक हो गया. मतलब दोनों का लैक्मे और विल्स अब मर्ज होके एक ही हो गए. तो जब मैंने विल्स किया तो और लोगों ने भी मुझे रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, ही इज वेरी गुड इन स्टाइलिंग, एंड देन पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी फॉर देयर शूट्स एंड शोज. सो या ऑफ कोर्स मेरे को बहुत ही, मैं कहूंगा कि विल्स इंडिया फैशन वीक से मुझे बहुत
0: कुछ हासिल हुआ है. मतलब वो
1: हाँ, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट बने काफी वहां पे, लोगों को जाना मैंने, और मुझे मालूम चला कि काम होता कैसे है एक्चुअली.
0: अच्छा, तो इसमें भी क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट्स होने बहुत जरूरी हैं?
1: या ऑफ कोर्स यू हैव, सी केवल कॉन्टैक्ट से भी काम नहीं होता, आपका काम भी बहुत अच्छा होना चाहिए. आपके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं और अगर आपका काम ही अच्छा नहीं है तो नो यूज ऑफ दैट.
0: सो दोस्तों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. जल्दी से सुनकर आते हैं एक प्यारा सा गाना, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गणेश व्यास.

0: वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर गणेश व्यास, जो एक बहुत ही सुपर टैलेंटेड स्टाइलिस्ट हैं और डिज़ाइनर भी हैं। सो गणेश, जैसा कि आपने बताया कि आपने लैक्मे फैशन वीक, टाइम्स फैशन वीक और ग्लोबल इंडिया कोटोर वीक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर वर्क किया है। सो विच शो हैज़ बीन द मोस्ट मेमोरेबल फॉर यू टिल नाउ? क्या कोई ऐसी याद है या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको अभी तक याद है, जिसे आप भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते?
1: वैसे तो मैं बोलूँगा कि हर एक फैशन शो में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता था, बट ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है और पार्ट ऑफ मेरे ख्याल से हमारी जॉब है कि हर दिन आपको नया चैलेंज मिलेगा। बट देर इज़ अ डिज़ाइनर कॉल्ड विक्टर, ही इज़ अ दुबई बेस्ड डिज़ाइनर, उनके साथ मैंने शो किया था। वो ही इज़ द वन जो कि मेरे साथ कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, एक एक चीज़ मेरे साथ शेयर कर रहे थे, मेरे एक एक जो आइडियाज़ हैं वो ले रहे थे। तो वेरी फ्यू पीपल आर लाइक दैट। और वो शो बहुत ही अमेजिंग हुआ है, मतलब अब तक का मेरा बेस्ट शो हुआ है जो मैंने किया है। और मुझे लगता है कि जब तक आप कोलैबोरेट नहीं करोगे किसी के साथ, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ हो भी नहीं सकती है। वो इतना अच्छा जो भी आप काम कर रहे हो, वो इट्स नॉट अबाउट शो, इट्स अबाउट एवरीथिंग। जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो चीज़ उतनी अच्छे से हो नहीं सकती
0: है। बिल्कुल। और ये कब की बात है, कौन से ईयर की बात?
1: ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है।
0: अच्छा, विच मींस 2023। नाइस। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ें हो जो आप कभी नहीं भूल सकते हो? लाइक जैसे आपने बोला हर शो में ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। और भी
1: एक बहुत शो की बात मैं आपने बोला तो मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर मैं बोलूँ शूट की बात, तो जो मेरा जिंदगी का पहला ब्रेक था, पहला शूट था, वो सचिन तेंदुलकर के साथ था।
0: ओह वाओ।
1: सो यस, वाओ, ऑफ कोर्स। एंड आई वाज किड दैट टाइम। मैं सेट पे गया, शूट बॉम्बे में था, मैंने यहाँ से फ्लाई किया। मैं फ्लाई करते ही मेरी फ़्लाइट लेट हो गई और मुझे होटल पे जाने का टाइम नहीं मिला, मैं डायरेक्ट सेट पे गया हूँ वहाँ से।
0: okay.
1: मैंने फटाफट जो भी है अपना सामान वामान किया, ये किया, सचिन आए और मैं बिल्कुल कांप रहा था, मुझे लगा मैं तो लेट हो गया आज तो, पता नहीं बैंड बजने वाली है। ही टैब इन माई शोल्डर और बोला प्लीज सेट। स्पॉट बॉय को बोला पानी लेके आओ पहले सर के लिए। एंड देट वॉज सो अमेजिंग। मतलब अभी तक मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुका हूँ, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। एंड देयर द सेकंड इज डॉक्टर दीपा मलिक, शी इज़ आल्सो अमेजिंग। आई कैन थिंक, मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं ये सोचता हूँ कि शायद आई हैव टू गिव अप, तो दीपा मलिक मेरे को दिखती हैं या उनसे बात होती है, तो मुझे लगता है मैन इफ शी कैन डू इट एनी वन कैन डू इट।
0: ओके, सो गणेश आपने ये खुद से ही बता दिया, मैं अभी नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे आने ही वाली थी। सो मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, जो लोग ये शो सुन रहे हैं, कि गणेश ने बहुत ही बड़े बड़े सेलेब्स को भी स्टाइल किया हुआ है, लाइक सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर दीपा मलिक, आलिया भट्ट, सनी लियोनी एंड तापसी पन्नू जी। इसके अलावा भी आई थिंक बहुत से सेलेब्स को आपने किया हुआ है स्टाइल। सो इनमें से कोई ऐसा स्टाइलिंग मोमेंट जो आपके लिए ट्रूली स्पेशल रहा हो? एक तो आपने सचिन तेंदुलकर जी का हमें बताया, और दीपा मलिक जी के बारे में आपने जो बताया, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि वो कौन है, क्योंकि हर किसी को अभी नहीं समझ आ रहा।
1: सो दीपा मलिक जी जो है वो है पैरा ओलंपियन, उन्होंने 2016 में रियो पैरालंपिक में मेडल लिया था सिल्वर, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन आई गेस जो जिन्होंने पैरालंपिक में इंडिया के लिए मेडल लिया है। और उसके अलावा शी हैव लाइक एवरीथिंग, खेल रत्न उनके पास है, उनके पास
0: पद्मश्री
1: भी उनके पास है, तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ दिस थिंग।
0: वाओ। तो इनको जब आपने स्टाइल किया, मतलब ये कब की बात है, क्या वो कोई शो था या कोई ऐसा?
1: एक पर्सनल इवेंट था, उस पे स्टाइल किया पहली बार।
0: अच्छा।
1: फिर उसके बाद तो वी लाइक आई हैव स्टाइल्ड हर लॉट ऑफ मेनी टाइम, एंड आई विश कि मैं उनके साथ हमेशा ही बना रहूं, जुड़ा रहूं।
0: सो बीइंग अ स्टाइलिस्ट, जैसे आपने बताया बहुत से सेलेब्स को स्टाइल करते हैं, सो आपने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को भी किया है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी और दीपा मलिक जी का आपने बताया। सो आपको क्या लगता है, मतलब जैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज काफी काम और शांत है, या फिर इंडस्ट्री के जो है हमारे बॉलीवुड की पर्सनालिटीज को जब आप स्टाइल करते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहता है दोनों ही?
1: See, अगर मैं बोलूं कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को स्टाइल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि they are not that much comfortable in the thing what we are thinking.
0: Okay.
1: वो उतने क्रिएटिव नहीं है, दे हैव अ डिफरेंट विजन।
0: यस।
1: इन द केस ऑफ दीपा मलिक, शी इज वेरी ओपन अबाउट द आइडियाज, बट नॉट एवरीवन इज ओपन अबाउट द आइडियाज, राइट? तो पर जो इंडस्ट्री में, जैसे अगर मैं कहूँ कि मॉडल्स हो गए या एक्टर हो गए या एक्ट्रेसेस हो गई, दे अंडरस्टैंड कि हाँ अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम सोच समझ के ही बोल रहे हैं, दे हायर्ड अ प्रोफेशनल और वो हिसाब से ही फिर काम करते हैं।
0: तो आपने जैसे, मैं यहाँ पे नेम लूंगी आलिया भट्ट जी को, आपने किया स्टाइल, तो वो वाला एक्सपीरियंस क्या था? मतलब जो चीज आप उन्हें बता रहे हो, स्टाइल करना बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा आप पहले ये हमारे लिसनर्स को बताइए कि इसमें क्या रहता है, क्योंकि एक आप डिजाइनर भी हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों को पहले लेते हैं।
1: स्टाइलिस्ट इज द वन हु डिसाइड व्हाट टू वेयर, व्हेन टू वेयर।
0: ओके
1: आपका हेयर मेकअप क्या होगा, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स अबाउट योर फुल लुक,
0: ओवरऑल लुक, जिसमें ज्वेलरी भी आ गई, मेकअप भी,
1: इट कम्स एवरीथिंग। आपका ड्रेस कौन सा होना चाहिए, आपका मेकअप क्या होगा, आपका हेयर क्या होगा, आपका नेल पेंट कैसा होगा, आपके शूज कैसे होंगे, सो इट कम्स विद एवरीथिंग।
0: ओके, तो ये आप स्टाइलिंग में आप यही करते हैं, और डिजाइनर जो है उसमें आप डिजाइन करते हैं,
1: वी डिजाइन गारमेंट्स एंड हेडगियर एंड एवरीथिंग।
0: ठीक है, तो ये तो हमें दोनों चीजों का फर्क समझ आ गया। सो गणेश, आपने अभी जैसे बहुत सारे सेलेब्स का बताया, तो अभी रिसेंटली कोई हाल ही में आपने किसको स्टाइल किया है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए।
1: सो रिसेंटली मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर के लिए डायना पेंटी को स्टाइल किया है, शी इज अमेजिंग वुमन और वेरी अंडरस्टैंडिंग।
0: अच्छा,
1: या वेरी स्वीट, सो दैट एक्सपीरियंस वाज आल्सो वेरी नाइस।
0: सो स्टाइलिंग में आप जो भी चीजें, लाइक आपने बोला क्लोथ्स, फुटवेयर, एवरीथिंग, ज्वेलरी, सब कुछ आता है, तो आप जो उन्हें सजेस्ट करते हैं वो आराम से,
1: इट्स ऑलवेज हैपेंड कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले का प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल अलग होगा, लेकिन आई हैव टू गिव सम ऑप्शंस आल्सो कि अगर आप ये पहन रहे हो तो यू विल लुक लाइक दिस, अगर आप ये पहनोगे तो इसमें ये चीज एनहांस होगी, या ये वाला पार्ट बेटर लगेगा। सो इट डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी कि उसको खुद को क्या लग रहा है, कुछ साइकिक भी होता है हर किसी का कि आपको खुद को क्या अच्छा लगता है।
0: Exactly.
1: तो इट शुड बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग।
0: मतलब कोई कोई तो ऐसे होते हैं, रिजिड होते होंगे एक ही चीज पे, कि वो हाँ वो तब तो आपके लिए बहुत आई थिंक प्रॉब्लम हो जाती होगी, और कोई कोई सब आप पर ही छोड़ देते होंगे कि जो आप कह रहे हो वही
1: हमने।
0: नाइस, ये भी आपका बड़ा ही यू नो डिफरेंट रोल है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जल्दी से वापस आते हैं और हमारी इसी गुफ्तगू को आगे जारी रखते हैं मिस्टर गणेश व्यास के साथ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में एक बार फिर से, जिसका नाम है क्रिएटिव मंच। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गणेश व्यास, जो बहुत ही मज़ेदार बातें बता रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग बातें बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, जो ये एक सुपर स्टाइलिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, बहुत ही अमेजिंग। तो बहुत मज़ा आ रहा है सर आज आपके साथ हमें। हाँ ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको यंगेस्ट फैशन अचीवर्स अवार्ड से भी ऑनर किया गया है, सो हाउ डिड रिसीविंग दिस अवार्ड इम्पैक्ट योर कॉन्फिडेंस एंड करियर?
1: सी, कॉन्फिडेंस तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। करियर के लिए मैं कहूँगा कि बीइंग इन दिस इंडस्ट्री इज ऑलरेडी अवार्ड। अगर आप इंडस्ट्री में बने हुए हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा अवार्ड है कि मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, बीइंग फ्रॉम अ स्कूल और द कॉलेज वेयर आई एम फ्रॉम। तो मेरे लिए तो ये अवार्ड ही बहुत बड़ा है कि जिनको मैं टीवी में देख रहा था, मैं आज उनके साथ काम कर रहा हूँ, दैट्स अवार्ड फॉर मी।
0: तो इस अवार्ड के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए, मतलब कैसे आपका कुछ इसमें भी नॉमिनेशन कैसे रहता है?
1: जब मैंने सचिन तेंदुलकर के लिए शूट किया, उसके तुरंत बाद ही मुझे अवार्ड मिला था। तो आई थिंक दैट शूट वाज फॉर जेपी सीमेंट, इट्स शूट प्लस फिल्म, तो ये पूरी एक जैसे एड फिल्म होती है वो है, एंड देन इट्स अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड एड फिल्म एंड द शूट। या उसके वजह से ही मेरे को मिला, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गेट इट। नाउ आई डोंट केयर अबाउट इट, बट हाँ, जब आप छोटे होते हो, आप ये लाइक आप छोटे होते हो, आप घर वालों के साथ लड़ रहे हो कि आपको इस चीज के लिए काम करना है, एंड देन समथिंग केम अप लाइक दिस, तो घर वालों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है,
0: कि नहीं ये
1: कर रहा है जिंदगी में,
0: हाँ कि फैशन में भी करियर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये अवार्ड आपको कौन सी एज में मिला था, कितने साल हो गए?
1: आई थिंक आई I was 22 that time.
0: Okay, nice.
1: अभी मत पूछना कितने साल का
0: हूँ। Okay, okay. ठीक है, नहीं पूछते हम, लेकिन ठीक है, वो आपका ये मैं कह सकती हूँ कि वो आपका स्टार्टिंग पीरियड रहा था, तो वो आपके इस करियर को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहा है। Very nice. So Ganesh, your work has been featured in top international magazines like Vogue Italy, Elle Official Italy and Elle. जब आपने पहली बार अपना work in global platforms पर देखा, so what was the feeling like? क्योंकि बहुत बड़े-बड़े names हैं अपने आप में।
1: I know बहुत बड़े-बड़े names हैं, but when you're shooting, you know कि ये यहाँ पे publish होना ही है।
0: Okay.
1: तो वो इतना वो नहीं था, amazing, but most of my cousins are out of India. तो जब उन लोगों ने, वन ऑफ माई कजन गॉट होम एंड गेट दैट मैगजीन एंड से कि इज दिस यू, देन आई फील लाइक यस आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ।
0: अमेजिंग, वो फीलिंग तो कुछ अलग ही होती है क्योंकि सारे कजन्स में आपका एक
1: द सेम थिंग हैपेंड इन, देयर इज अ आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ माइन कि उत्तराखंड का स्टाइलिस्ट एंड दिस इज दैट, और वो फोटो किसी ने हमारे जो मतलब आई एम गणेश व्यास एंड जो व्यास है वो उत्तराखंड में बहुत ही कम लोग हैं व्यास, देयर इज अ स्मॉल
0: मतलब कम्युनिटी,
1: बहुत ही छोटी कम्युनिटी है, तो उन कम्युनिटी का एक पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस किसी ने उसमें डाल दिया।
0: अच्छा।
1: तो फिर मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो माय फादर नेम, तो दे नो माय दादाजीज नेम, तो दे पीपल आर लाइक ये उनका बेटा है, उनका बेटा, देन पीपल आर कनेक्टिंग कि नहीं है इसका बेटा नहीं, उसका बेटा नहीं है। फिर मेरे पापा ने फोन देखा, ये क्या हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में आज, देन सी ही सेड, उन्होंने मेरी फिर पिक्चर देखी, अरे तेरी फोटो छपी है क्या आज, दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी कि
0: मतलब वो पेरेंट्स के लिए भी बड़ी खुशी वाला एक पल होगा। बिल्कुल, और बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का कि आप एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं और फिर ऐसी कुछ चीजें हुए, आपका कभी न्यूज़पेपर में आपके लिए कुछ छप रहा है आर्टिकल, या फिर कभी लोकल न्यूज में भी आ जाए, तो ये चीजें छोटे छोटे मोमेंट्स है जो बहुत ही खुशी देते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी, लाइक पेरेंट्स को और हम लोगों को, और मोटिवेट ही करती हैं ये चीजें। सो गणेश, यू हैव कोलैबोरेटेड विद लीडिंग ब्रांड्स लाइक सैमसंग, कैनन, नेस्ले, so according to you what's the main difference between brands collaboration and celebrity styling?
1: See, brand collaboration में क्या होता है कि आप बहुत ही specify होते हो कि उनको people have their mindset कि उनको ये ही चाहिए, but you're saying कि rigid होते हैं, वो उनको ये color they will, जब वो मुझे हायर करेंगे वो मुझे बता देंगे ये 50 कलर हैं, ये 50 कलर यूज नहीं करने, बचे हुए जो कलर्स हैं आप उनको, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद देम। अब ये नेकलाइन यूज नहीं करनी है या कुछ

0: लोगो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दे हैव अ वेरी ह्यूज लिस्ट कि आप जब उनके साथ काम करो तो ऐसा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आप सेलिब्रिटी के साथ कर रहे हो काम तो दे आर वेरी ओपन अबाउट इट, वेरी फ्यू कलर्स विल बी देयर कि वो कहेंगे कि नो, एंड आई वी विल ऑल्सो सजेस्ट कि हाँ ये कलर आप पे अच्छा नहीं लग रहा है या ऐसा सिल्वर्ट मत पहनो. तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. क्रिएटिविटी के हिसाब से मैं बोलूँ तो ब्रांड के साथ काम करने में आपकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छे से खुल के नहीं आती है, क्योंकि वेन यू जब आप किसी क्रिएटिव पर्सन को बांध देते हो कि नहीं आपको इस दायरे में ही काम करना है
1: तो वो नहीं हो पाती, वो
0: क्रिएटिविटी आपकी निकल ही नहीं पाएगी. अनलेस अनटिल जब तक आप फ्री नहीं हो, आपके क्रिएटिव थॉट्स तभी निकलेंगे ना जब आप फ्री हो.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो यही डिफरेंस है दोनों.
1: और मुझे ऐसा लगता है फैशन भी एक आर्ट ही है अपने आप में, और यू आर लाइक अ फ्री बर्ड है ना, क्योंकि जब तक आपको वो फ्रीडम नहीं दी जाएगी वो चीज वो आउटपुट निकल के आएगा ही नहीं. बिल्कुल. तो मतलब आपको ज्यादा अच्छा मुझे लगता है सेलेब्स के साथ करने में.
0: नॉट जस्ट सेलेब्स बट
1: मतलब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर वो चीज है.
0: दैट्स व्हाई जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं थोड़ा कम करता हूं, और जो बाकी फैशन वाला काम है वो मैं ज्यादा करता हूं.
1: ओके गणेश, तो और आपके अभी क्या है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे जो आपके रिसेंटली आ रहे हैं, लाइक फैशन शोज हैं या कौन से, किनको आप स्टाइल करने वाले हो, इस बारे में कुछ हमें बताइए.
0: अभी रिसेंटली एक फैशन शो आ रहा है मेरा जो है भारत डिज़ाइन शो, उसको मैं स्टाइल करने वाला हूँ. एंड डेफिनेटली देर विल बी अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ एंड दिस थिंग. पर जो भारत डिज़ाइन शो है वो इसलिए बहुत मेरे को अट्रैक्टिव, और मैं बोलूँगा कि मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसमें जैसे IPL के लिए बिडिंग लगती है प्लेयर्स.
1: अच्छा.
0: की वैसे मॉडल्स के लिए बिडिंग लग रही है. सो इट्स अ वेरी कॉन्सेप्ट वाइज, और क्या बोलेंगे इसे, इट्स अ सीरीज ऑल्सो, आई थिंक दे विल शूट Also, and ये किसी टीवी चैनल पे भी आने वाला है.
1: अच्छा.
0: E24 or something, I have, मतलब मुझे देखना पड़ेगा वो कि कौन से टीवी चैनल पे. तो I'm very excited about it.
1: इसमें सारे इंडियन डिजाइनर्स
0: हैं. अच्छा. Almost इंडियन डिजाइनर, इंडियन मॉडल्स, मे बी फ्यू इंटरनेशनल मॉडल्स होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन डिजाइनर्स होते हैं.
1: नाइस. ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है. डेफिनेटली अगर ये टीवी पर आएगा हम तो देखेंगे ज़रूर. सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं हमारे अमेजिंग स्टाइलिस्ट जिनका नाम है मिस्टर गणेश व्यास. सो बहुत ही मज़ा आ रहा है आज इनसे बात करके. जल्दी से म्यूजिकल ब्रेक से वापस आते हैं और फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी इस बातचीत को. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8.

पुरस्रार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम जिसका नाम है क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर गणेश व्यास। सो गणेश, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री की, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही कॉम्पिटिशन है आज के टाइम में, स्पेशली फॉर द यंग टैलेंट। सो वॉट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू अपकमिंग डिजाइनर्स एंड स्टाइलिस्ट हु ड्रीम टू मेक इट बिग लाइक यू?
1: आई थिंक जो यंग टैलेंट है वो सोचता है कि वो कॉलेज से निकलते ही जो है वो डिज़ाइनर बन जाएगा। ऑफ कोर्स यू आर अ डिज़ाइनर, यू हैव अ डिग्री ऑफ डिज़ाइनिंग, पर आपको किसी को तो असिस्ट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। और आफ्टर डिज़ाइनिंग ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कोई डिज़ाइनर नहीं बन सकता, हर कोई स्टाइलिस्ट नहीं बन सकता। देर इज़ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस कि आप शायद मर्चेंडाइजर बन जाओ, या ऐसे ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आपने सोची भी नहीं। अभी तो सोशल मीडिया इतना चल रहा है, आप सोशल मीडिया डिजाइनर बन सकते हो, या आप सोशल मीडिया किसी का हैंडल कर सकते हो बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन। तो आपको पहले बाहर निकल के वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलेज में सिखाया है वो बस किताबी पढ़ाई है, आपको बाहर आके भी तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी गेन करना पड़ेगा। आई वॉज लकी कि मेरे को मतलब जो आई वॉज लकी कि मुझे फर्स्ट ईयर में ही जॉब मिल गया कॉलेज के, बट हर कोई शायद इतना लकी नहीं होता, मैं ये बोलूँगा। तो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंस ऑल्सो। जब तक आपके अंदर इतना धैर्य नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में तो काम नहीं हो सकता। अगर आप बहुत ही ज़्यादा, आजकल की जनरेशन मैंने देखी है वो दे पीपल आर नॉट पेशेंट, दे हैव नो पेशेंस, दैट्स द थिंग। और मुझे लगता है नेटवर्किंग होनी चाहिए आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और इस इन सब के अलावा आपका जो है विजन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका जो विजन है वो बहुत यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को भी कॉपी कर रहे हो, आप एक लाइन, आप अगर किसी भी डिज़ाइनर को देखोगे दे हैव अ सेंस ऑफ स्टाइल एंड डिज़ाइनिंग, तो वो हमेशा से ही चला रहे हैं। आप किसी का भी डिज़ाइन, आप सभ्यसाची देखते हो तो आपको मालूम चल जाता है कि हाँ ये सभ्यसाची है। अगर उसको कोई कॉपी भी कर रहा है तो भी लोग यही बोलेंगे कि हाँ वो सभ्यसाची है, राइट? तो यूनिक विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी नेटवर्किंग होनी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी नेटवर्किंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जब तक नेटवर्किंग नहीं होगी आपको काम नहीं मिलेगा। ऑल्सो डिसिप्लिन इज मैटर अलॉट, ये नहीं कि आपने एक दिन अच्छा काम कर लिया और दूसरे दिन आप भूल गए, है ना। आपको हर दिन ऐसे ऐसे दिखाना है कि आप आज काम पे जा रहे हो तो या आज आपका पहला दिन है काम का, आपको उतनी ही एनर्जी के साथ, उतने ही पैशन के साथ सारे प्रोजेक्ट करने जैसा आप पहले प्रोजेक्ट में कर रहे हो।
0: बिल्कुल, मतलब वो एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए,
1: वो एक्साइटमेंट भी हमेशा होनी चाहिए।
0: ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, और ये मुझे लगता है हर फील्ड के लिए ये चीज अप्लाई होती
1: है, हर फील्ड के लिए। पीपल थिंक दैट यार वी हैव मेक, हमने तो कर लिया जितना करना था, एंड देन दे फॉरगॉट अबाउट इट, अब तो ठीक है हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। आप जब जा रहे हो तो आप हर दिन बहुत अच्छे से, हर दिन ऐसे सोचो कि ये
0: आपका फर्स्ट
1: डे है और हर दिन आपको जज कर रहा है। और हमारी इंडस्ट्री है भी ऐसी यार, मतलब अगर आप सोचो मैं एक दिन किसी शूट पे जाऊं और मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस ना करूं तो लोग सारा भूल जाएंगे पीछे, और वो मुझे बुलाना बंद कर देंगे अगली बार से कि यार उसने काम खराब किया। ऐसे मुझे लगता है कि दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू बी कीप इन माइंड।
0: ओके, सो एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी गणेश, जैसे आप कोई चीज़, अगर आप डिज़ाइनर हैं सो क्या आप एक ही मतलब एथनिक ही डिज़ाइन करते हैं या वेस्टर्न भी आता है, ये कुछ अलग अलग लाइंस होती हैं या आप कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग?
1: सी, हर किसी का फोर्टे अलग होता है, जैसे मैंने बोला कि आपको एक चीज़ पे स्टक रहना चाहिए। बीइंग अ स्टाइलिस्ट आई स्टाइल इंडियन वेस्टर्न एवरीथिंग, बट अगर डिजाइनिंग करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं मेंस की डिजाइनिंग कर रहा हूं तो मेरा वेस्टर्न बहुत अच्छा है,
0: अच्छा,
1: और अगर मैं फीमेल की डिजाइनिंग कर रहा हूं तो मेरा इंडियन बहुत अच्छा है। तो दैट आल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपके अंदर की जो एबिलिटी है वो कैसी है, आपको खुद को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तभी आता है जब आप कॉलेज से बाहर निकल रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों को देख रहे हो। जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, देखोगे नहीं कौन क्या काम कर रहा है, तो ये आने में बहुत टाइम लगता है। मतलब यू हैव टू लर्न दिस वेरी क्विकली, ये समझना, जितनी जल्दी आप ये समझोगे उतनी जल्दी आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ।
0: अच्छा, मतलब चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ और अपना पता होना चाहिए कि आपका फोर्टे
1: क्या
0: है। बिल्कुल। और जैसे गणेश, फैशन शो की हमने बात की, तो इसमें अब एक रोल रहता है, मेन रोल तो मुझे लगता है क्लोथ्स का, और दूसरा मॉडल्स का ही रहता है। तो मॉडल्स भी क्या आप अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि शो में कैसे, क्योंकि मैंने सभ्यसाची के इनके पेज देखे हैं तो उसमें काफी हेल्दी वाला फोटोशूट भी रहता है मॉडल्स को लेकर, तो काफी हेल्दी मॉडल्स का भी, तो वो एक क्या कॉन्सेप्ट है और आपके में कैसा रहता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
1: मॉडल्स आर मॉडल्स, मतलब जो जो डिजाइनर कपड़े बना रहे हैं वो यूजुअली बना तो नॉर्मल लोगों के रहना, हर कोई तो पतला नहीं हो सकता, देर इज अ साइज एवरीवेयर, वो लड़का भी पहनेगा, लड़की भी पहनेगा, और जो नॉन बाइनरी लोग हैं वो लोग भी पहनेंगे. तो अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि डाइवर्सिटी आ रही है इंडस्ट्री में, कि वो टिपिकल मॉडल मॉडल टाइप मॉडल्स नहीं लेंगे. ऑफकोर्स वो तो लेंगे ही जो मॉडल्स हैं, उनके अलावा जो है वो LGBTQ कम्युनिटी से जो लोग हैं उनको लेंगे, प्लस साइज मॉडल लेंगे. तो It coming like this.
0: मतलब बहुत साल पहले मुझे याद है हम देखते थे फैशन शो जीरो साइज,
1: जीरो फिगर अभी भी है ऑफकोर्स, जो जिसका काम मतलब अगर आप बोलोगे मॉडल तो बहुत ही स्पेसिफिक वो है, उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरिया है. लेकिन अभी जो है वो चेंज होता जा
0: थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और मुझे लगता है ये अच्छा भी
1: है, डाइवर्सिटी है. क्योंकि हर कोई उतना पतला नहीं हो सकता, आप अगर हमेशा, और ये बहुत अच्छी अवेयरनेस भी है जो कि पहले शायद लोगों को नहीं लग रही थी, कि आप हमेशा लोगों को ये दिखा रहे हो कि आप पतले हो जाओ कितना हेल्दी है, ये हेल्दी है ही नहीं है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. तो और हर कोई ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकता
0: जी. सो गणेश, आपने जैसे बताया आप एक स्मॉल टाउन से हैं, और आपको लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट मिला भी और शायद नहीं भी, थोड़ा बहुत मतलब

0: मैं बहुत ही एक तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे यही करना है और मैं आजकल के बच्चों को ये बोलूंगा कि यार आप वैसे भी तो झूठ बोल के घर पे चीजें कर रहे हो ना राइट तो आप अगर आपको करना होगा तो आप करोगे ही करोगे. इफ यू वांट टू डू समथिंग यू विल डू इट. यू विल मेक योर पेरेंट्स कि आप अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी तरह से मना लोगे. मना नहीं पाओगे तो तुम उनको प्राउड फील तो करा ही दोगे अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो और आपको करना है. जस्ट मेक अ गाइडलाइन कि आपको क्या क्या कैसे करना है. यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हाँ ठीक है मुझे डिजाइनिंग करनी है, मुझे कहाँ से करनी है, मुझे क्या क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए इसके लिए. तो पहले तो एक बेसिक फॉर्मेट बनाओ, अपने घर वालों को समझाओ कि सही इतना खर्चा है, मुझे यहाँ से कॉलेज करना है, इतना टाइम मुझे चाहिए, मिनिमम मुझे इतना टाइम आप दे दो, उसके बाद आप जो बोलोगे हम वो कर लेंगे. एंड द सेम विद मॉडलिंग ऑल्सो आई गेस कि अब तो मॉडलिंग के लिए खैर काफ़ी स्कोप है, आप बिना बताए भी घर पे कर सकते हैं. आई हैव सीन लॉट्स ऑफ गर्ल्स जो कि अपने घर पे नहीं बता रही थी और मॉडलिंग कर रही हैं. व्हेन दे मेक इट बिग तो उनके घर वालों को पता चला. तो जब आपको करना होगा तो आप कर ही लोगे यार. मतलब मुझे लगता है कि यू हैव टू पुश योर सेल्फ. इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, इसमें आपका रोल है आप कितने क्लियर हो अपने थॉट्स के लिए.
1: मीन्स पैशनेट होना चाहिए आपको
0: और पेशेंस भी होना चाहिए.
1: हाँ, दोनों ही चीजें बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि एक दिन में आपको शोहरत नहीं मिलती है. तो आपको धीमे धीमे ये सब कुछ होगा. मे बी यू आर लकी इनफ कि आपको एक दिन में ही बहुत अच्छा ब्रेक मिल जाए.
1: तो जैसे अभी हमने मॉडल्स की बात की तो इसमें बॉयज भी रहते हैं मॉडलिंग में, तो उनके लिए है ये बेनिफिशियल काफी या नहीं?
0: आई थिंक बॉयज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि अगर एक किसी भी मतलब अगर मैं बोलूं मेंस वेयर का हम लोग शूट कर रहे हैं तो एक लड़के के साथ दो लड़कियां तो खड़ी होंगी.
1: Exactly.
0: है ना? तो लड़के का जिस चीज के लिए शूट हो रहा है वो बहुत कम है उसकी क्वांटिटी पर. हाँ. लड़कियां उनको फिर भी चाहिए.
1: Exactly.
0: तो लड़कियों के लिए ऑफ कोर्स ज्यादा है,
1: मतलब स्कोप
0: ज्यादा है. लड़कों के लिए भी स्कोप है, बट यू हैव टू मेक इट लाइक यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड यू हैव टू डू इट. और मैं ये भी बोलूँगा कि हाँ आप इसको फर्स्ट करियर तो मान के पहले मत ही चलो. जब तक आप बिल्कुल ही आपको हर दिन काम नहीं मिलना शुरू हो रहा है.
1: मींस जो मॉडलिंग लाइन है उसके लिए
0: उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको फर्स्ट करियर मान के मत चलो.
1: हाँ, कोई
0: स्टार्ट जब आप कर रहे हो तो उसको फर्स्ट करियर मान के मत चलो.
1: साइड बाय साइड ट्राई
0: करना चाहिए. जब बहुत अच्छा चलने लग जाए देन यू कैन मेक इट अ फर्स्ट करियर.
1: काफ़ी अच्छी आज आप हमें टिप्स दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. मे बी जो लिसनर सुन रहे होंगे उसमें से बहुत से लोग हो सकता है ऐसे हों जो फैशन में मॉडलिंग में अपना करियर देख रहे हों. तो काफ़ी बेनिफिशियल लग रही है मुझे आज आपकी बातें जो हम कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. सो अब लास्ट में गणेश मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारे लिसनर्स आज ये शो सुन रहे हैं तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते होंगे या कोई ना कोई तो इसमें स्टडीज़ भी कर रहे होंगे लाइक फैशन डिज़ाइनिंग और भी चीज़ें. सो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो?
0: सी मैं ये बोलूँगा सबको कि प्लीज़ बी डेडिकेटेड टू योर क्राफ्ट. आप अगर स्टाइलिंग स्टाइलिस्ट हैं, मॉडल आपको मॉडल बनना है, आपको स्टाइलिंग करनी है, आपको डिज़ाइनर बनना है, आप अपने क्राफ्ट पे काम करिए. यहाँ पे ट्रेंड हर दिन चेंज हो रहा है, ट्रेंड को फॉलो करिए. अब जो आप इंडिविजुअल हो, जो भी आप इंडिविजुअल हो, जो आप सोचते हो उन थॉट्स को किसी और चीज़ों के साथ मिक्स मत करिए. और अगर आप अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखोगे तो यू विल मेक इट वन डे 101%. मे बी किस कुछ लोग जल्दी कर लें, कुछ लोग को थोड़ा टाइम लग जाए. सो यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड टू योर क्राफ्ट, दैट्स इट. यही मैं बोलना चाहूँगा.
1: थैंक यू सो मच गणेश, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है. डेफिनेटली ये हमारे लिसनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो अपना करियर फैशन इंडस्ट्री में देख रहे हैं, बनाने की सोच रहे हैं. सो थैंक यू सो मच आपकी जो ये आज हमने जर्नी सुनी और आपने मतलब कितनी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रही है. एक स्मॉल टाउन का लड़का आज इतना फैशन की दुनिया में नाम कमा रहा है. सो हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हमेशा रहेंगी.
0: थैंक यू सो मच.
1: सो बहुत बहुत थैंक यू गणेश, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे लिए समय निकाला. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू. थैंक यू.
1: सो बहुत सी बातें करने के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी मेरे इस प्रोग्राम जिसका नाम है क्रिएटिव मंच. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
2: तुम्हें अपनी माशुका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ. इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है.

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
1: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर वॉइस ऑफ यूथ। ये शो हमारा बहुत स्पेशल है, रेडियो मानव रचना 107.8 की एक बहुत खास पेशकश है। उसकी वजह भी है कि यहाँ पर हर बार हमारे साथ जो मेहमान जुड़ते हैं उनके साथ हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं, पूरा संवाद होता है, एक कला को समझने की कोशिश होती है। आज हमारे साथ है हेमंत जी। हेमंत जी से हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इनका परिचय आपको देना चाहूंगा। हेमंत साहब जो हैं वो एक अभिनेता हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, निर्देशक भी हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। आज इनसे हम लोग बात करेंगे रंगमंच के बारे में, हम लोग बात करेंगे अभिनय के बारे में। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि दुनिया भर में अभी एक्टिंग को काफी नवाजा जाने लगा है, अभिनय को बहुत प्यार मिलने लगा है, उसमें कहीं ना कहीं योगदान कंटेंट क्रिएशन का है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप बनना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको अभिनय की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आज के शो से वो मूल्य हम आपको दे सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले स्वागत करेंगे हेमंत जी का। हेमंत जी, स्वागत है हमारे शो में।
2: बहुत बहुत सारा शुक्रिया सागर सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बातचीत का मौका दिया।
1: सर, आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा, अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, अपना थोड़ा परिचय दीजिए कि क्या क्या करें।
2: जी, तो मेरा नाम हेमंत देवलेकर है, मूलतः मैं उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन 2007 से मैं लगातार भोपाल में रहता हूँ और थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर यानी कि नाटक की दुनिया, रंगमंच की दुनिया। तो रंगमंच में मैं अभिनय भी कर रहा हूँ और गीत लेखन भी कर रहा हूँ और संगीत निर्देशन यानी कि संगीत को सोचना, उसकी कल्पना करना, उसको डिजाइन करना, इस पर भी काम कर रहा हूँ। और नाटक करते हुए युवाओं को प्रशिक्षण देना और संगीत के बारे में तो अलग अलग वर्कशॉप भी कर रहा हूँ। और नाटक के साथ साथ मैं हिंदी कविता में भी सक्रिय हूँ, 3 कविता संग्रह मेरे प्रकाशित हैं। तो बस तो यही है, नाटक, कविता, संगीत और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का अर्थ केवल सिखाना नहीं है, सबसे पहले तो खुद सीखना है, तो सीखना सिखाने की प्रक्रिया में लगातार काम कर रहा हूँ।
1: आपके शब्दों से
2: तो खुद सीखना है, तो सीखना सिखाने की प्रक्रिया में लगातार काम कर रहा हूँ।
1: आपके शब्दों से ये तो पता लगता है कि कितनी सहज, कितनी सरल तरीके से अपने भाव का व्यक्त कर सकते हैं, मतलब ये बहुत बड़ी एक चीज होती है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा थोड़ा सा कि एक अभिनेता के लिए कितना जरूरी है या कितना बड़ा आप कह सकते हैं भूमिका निभाता है ये शब्दावली का होना या शब्दों के ऊपर अपना जो है एक कंट्रोल होना या फिर एक लगाम होना उनके ऊपर।
2: जी, तो सर जैसे कि आपने ये सुना होगा और ये पढ़ा होगा कि जितने भी अपने ग्रेट एक्टर्स हुए हैं वो साहित्य से बहुत गहराई से जुड़े हैं। जैसे कि दिलीप कुमार साहब की बात अगर हम कहें तो, और जितने भी अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, तो उनको सबसे पहले साहित्य से ही जुड़ना पड़ता है। साहित्य से मतलब ये है कि भाषा, यानी कि शायरी, कविता, कहानियां, उपन्यास, नाटक यानी कि जो ड्रामा रहता है स्क्रिप्ट लिखित फॉर्म में। तो सबसे पहले तो सभी अभिनेता अभिनेत्रियों को साहित्य से यानी कि भाषा से जुड़ना बहुत जरूरी है। और हमने तो देखा है कि जितने भी बेहतरीन नाटक के कलाकार या फिर फिल्म के कलाकार हुए हैं वो सब बहुत बहुत गहराई से कहीं ना कहीं शायरी से, कविता से, साहित्य से, उपन्यास से, कहानी से जुड़े हुए हैं। और बस तो, और सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है, जैसे मैं भी जब थिएटर में उज्जैन से मैंने शुरुआत की, अभी विहान ड्रामा वर्क्स में मैं सौरभ अनंत जी के निर्देशन में मैं सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो हर जगह वो यही कहते हैं कि भाई अगर अभिनेता की, अभिनय की दुनिया में आ रहे हो तो साहित्य पढ़ना सीखो, साहित्य से अपना रابطہ बनाओ, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, तभी आप भाषा से जुड़ेंगे, तभी आपके पास शब्द आने लगेंगे। और जब शब्द संपदा आपके पास होगी, हिंदी यानी हिंदी का मतलब ये कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये सब मिला के, तो जो हिंदी हम बोलते हैं, बोलचाल की हिंदी जिसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, अंग्रेजी भी है, तो भाषा से जो एक्टर जितना जुड़ेगा वो उतने बेहतर ढंग से खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। और अगर वो कभी बाय चांस संवाद भूलता भी है तो इम्प्रोवाइज भी कर सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बहुत सुंदर आपने बात बोली। अगर आपके पास शब्द होंगे तो आप कभी खुद को ऐसी जगह पर नहीं पाएंगे जहां पर आप निशब्द खड़े हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा कहानी को। बहुत खूबसूरत बात है। और इसमें जावेद साहब का एक अभी

0: वेलकम बैक। मैं ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये जो शो है, जो प्रोग्राम है, ये पसंद आ रहा है। साथ साथ ही संगीत आपको पसंद आया, शो को अपने आगे लेकर के चलेंगे। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिनय के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। हेमंत जी, थोड़ा सा अपने सवालों को एक लेवल और अप ले जाते हुए, अब मैं एक एक सेगमेंट जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है उनकी बात करना चाहूंगा। प्रमुख मैं बात करना चाहूंगा सात्विक के बारे में। हमें सात्विक की दुनिया से रूबरू कराइए। सात्विक क्या होता है, या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर मुझे एक किरदार निभाना है, उदाहरण के तौर पर मुझे किरदार निभाना है महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी की दुनिया में जाने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए, क्या होगा मेरा सात्विक का रियाज?
1: जी जी जी, तो आपका फिर से शुक्रिया और सभी श्रोताओं को मेरा फिर से दिल से अभिवादन। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सात्विक के बारे में, और इसके ऊपर बात बहुत ही कम होती है, क्योंकि आमतौर पर हम एक तरह से मैकेनिकल इसको वो करते हैं, मतलब ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सागर जी, कि सारी जितनी भी कलाएं हैं, चाहे संगीत हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे नृत्य हो, अभिनय हो, और जितनी भी कलाएं होंगी, उन सब में जो मूल जो बात है, वो सबसे जरूरी एलिमेंट है, वो है संवेदना, है ना। तो संवेदना, तो जब तक आपका मन संवेदनशील नहीं होगा, तब तक आप कलाकार नहीं बन पाएंगे। और जैसे हमने सुना होगा कि कलाकार बेहतर इंसान होता है, तो इस बात में केवल इतनी सच्चाई है कि कलाकार थोड़ा अतिरिक्त संवेदनशील होता है, थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होता है। तो मेरा ये कहना है कि हर एक मनुष्य को जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है और जो जी रहा है, उसको संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। संवेदनशीलता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मान लो हमने किसी भी आदमी को, औरत को, किसी भी प्राणी को दुखी हालत में देखा, दयनीय हालत में देखा, गिरते मरते तड़पते देखा, तो क्या उसको देख के हमारे मन में बेचैनी, हमारे मन में दुख पैदा होता है, उसके प्रति कुछ मदद की भावना पैदा होती है क्या? ये संवेदना। अगर किसी की खुशी देखकर, पेड़ की खुशी, ऋतु की खुशी, चिड़िया की खुशी देखकर हमारे मन में खुशी उपजती है क्या? तो हम देखते कि हाँ होती है ना। तो संवेदना यही है कि जैसा हम देख रहे हैं दुनिया को, लोगों को, वैसा ही रिफ्लेक्शन हमारे मन में पैदा हो रहा है क्या। तो सबसे पहले तो बात यह है सागर जी, कि अपने मन के भीतर संवेदना को गाढ़ी करने की, संवेदना को उपजाने की एक्सरसाइज करना, तो उसके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन साहित्य उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कि आप जितने अलग अलग कहानियां पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, कविताएं पढ़ेंगे, उससे आपके भीतर संवेदना का विकास होगा। लेकिन हम जीवन को क्यों छोड़ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि हम जीवन में घुसे सबसे पहले हम पेड़ को देखें, नदियों को देखें, आसपास के वातावरण को देखें, तो हम ये देखेंगे कि अरे इन सबसे हमारा कोई रिश्ता है। हवा प्रदूषित हो रही, तो हवा प्रदूषित होने के पीछे हमारी चिंता है। अगर पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उनके काटे जाने का दुख हमारा दुख है ना। अगर कोई बच्चा वो उसको खाने को नहीं मिल रहा है, कुपोषित है, और ये बताया जा रहा है कि वाह वाह देखो, ये देखो सरकार कितना अच्छा उनको भोजन खिला रही है, तो इस शोषण से, इस अन्याय से हम यदि पीड़ित हैं, हमारे भीतर दर्द झलकता है, तो इस तरह से जीवन से हमारे भीतर संवेदना आती है। तो सबसे पहले आपके सवाल का जवाब शुरू होता है संवेदना से। जितना अधिक संवेदनशील होगा कलाकार या अभिनेता अभिनेत्री, उतना वो सात्विक की दुनिया में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता। अब आपने पूछा कि क्या हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे आप संवेदनशील होंगे, तो आपके भीतर एक अलग स्पेस पैदा होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, हमें डाटा रखने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, जीबी टीबी ऐसे चाहिए, तो उसी तरह हमारे मन में जितनी उदारता होगी, उदार मतलब जितना बड़ा होगा, जितने बड़े तरीके से वो सोच सकता है, महसूस कर सकता है, उतने ही किरदार उसके भीतर आसानी से समा सकते हैं। जैसे आपने गांधी जी के बारे में सवाल किया, तो गांधी जी के बारे में सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने सुना भी होगा कि हम जिन जिन किरदारों को निभाते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस पढ़ने से क्या होता है कि हमारे मन में उनके प्रति एक संवेदना का रिश्ता बनता है, कि वो कैसा सोचता था, क्या करता था। क्योंकि होता क्या है सागर जी, कि हम जैसे हमने मान लो गांधी फिल्म में बेन किंग्सले को देखा, तो हमने उनके चलने की और जितने भी रियल फुटेजेस है ना, उनके आधार पे हमने चलने की, बोलने की, ये और कपड़े पहनने की, ये तो हमने ये ढाल ली और उसको परफॉर्म कर दिया। लेकिन असल बात है कि गांधी हैं या कोई और किरदार है, वो सोचता कैसे था। तो ये जो सोचना है ना, यही भीतर जाना है, कि जब मान लो थोड़ी देर के लिए गांधी की बात है कि गांधी जी गरीबों की बस्ती में गए, अछूतों की बस्ती में गए और उन्होंने देखा कि इन लोगों के पास रहने को, खाने को, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो उनके शरीर पे जो भी कुछ ज्यादा कपड़े थे, अतिरिक्त कपड़े थे, उन्होंने तब छोड़ दिए। तो असल में हमें कैरेक्टर के भीतर जाना है कि वो सोच क्या रहा है, वो इमेजिन क्या कर रहा है। तो ये सोचने इमेजिन वाली जो बात है ये जाती है संवेदना। तो आपके मन को, आपके दिमाग को, आपके इमेजिनेशन को यही चीज खोलती है कि आप दूसरों के अंतर्मन के बारे में सोच रहे हैं। तो अंतर्मन की तैयारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक पेड़ है, एक पेड़ का आपको किरदार करना है। तो आप पेड़ बनकर देखिए कि उसकी जड़ें भी हैं, उसकी शाखाओं पे बहुत सारे पंछी भी हैं, पत्ते भी हैं और आरियां भी हैं जो चल रही हैं, और प्रदूषण भी है, उसकी खुशी भी, जब उसके ऊपर वसंत आ जाता है तो उसकी खुशी भी है, जब उसके ऊपर आम पक जाते हैं, जामफल पक जाते हैं तो खुशी भी है, बच्चे तोड़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, खुशी भी है। तो जब आप उसको महसूस करेंगे तब आप उस कैरेक्टर को निभा पाएंगे, वरना हम ये देखेंगे भाई कि पेड़ तो है, स्टैटिक है, खड़ा है और बस पत्ते हिलते हैं, लेकिन वो महसूस क्या करता है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए कविता, अब वो कविता जैसे मान लो पत्थर है या रेत है, तो कवि की नजर में कभी भी पत्थर या रेत निर्जीव नहीं है, वो जड़ नहीं है, वो हमेशा सोच रही है, हमेशा फील कर रही है। रेत क्या फील कर रही है कि जब नदी में पानी आता है तो रेत की फीलिंग अलग है, और जब उसी रेत में जेसीबी और डंपर आ जाते हैं और रेत खनन करने लग जाते हैं, है ना, अवैध तरीके से रेत चोरी हो रही है, तो वो रेत क्या सोच रही है। तो वो किसी अन्य के मन में उतरना, ये सात्विक की शुरुआत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रश्न का जवाब देने के लिए इतने सुंदर शब्दों के साथ। लेकिन एक एक छोटा सा यहाँ पर प्रश्न उठता है जो मैं पूछना चाहूंगा। अगर मैं एक अभिनेता की तरह कि महात्मा गांधी का मैं किरदार निभाने जा रहा हूँ, मैं अभिनेता की तरह गया एक गरीबों की बस्ती में और मैंने देखा कि वहां पर उनके पास पर्याप्त मात्रा में जो है वस्त्र नहीं है, मैंने अपने वस्त्रों का त्यागन कर दिया। लेकिन सर प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अभी जब इस मोमेंट पर मैं वहां पर देख रहा हूँ, ये बहुत मैकेनिकल होगा मेरे लिए, ठीक है, और एक एक्टिंग में एक लाइन होती है मैकेनिकल टू मैजिकल का हमारा सफर होता है, वो यात्रा होती है, तो वो मैकेनिक से मैजिक की तरफ मैं कब पहुंचूंगा, उस यात्रा के बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड करें आप।
1: जी जी, ये आपके पहले सवाल से जुड़ता हुआ सवाल है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी, बहुत ही बारीक बात पकड़ी है, तो मैं भी उसी पॉइंट पे आता हूँ। देखिए सागर जी, जब हम नाटक देखते हैं, स्टेज पर अभिनेता अभिनेत्री को देखते हैं या फिर स्क्रीन पर देखते हैं, तो हम ये तो देखते हैं कि वो उसने हाथ उठा लिया, वो उसने अपने कपड़े उतार के दे दिए, या फिर उसने गोली चला दी, उसने किसी को पुचकार लिया, प्यार कर लिया, गले लगा लिया, ये तो हम देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आंगिक अभिनय। लेकिन आपको मैं बहुत बारीक अंदर की बात बताना चाहता हूं कि वो गले लगने से पहले या गोली मारने से पहले या फिर अपने कपड़े उतार देने के पहले उसके मन में, जिसे हम बोलते हैं ना केमिकल रिएक्शन, वो मनोवैज्ञानिक या वो मानसिक परिवर्तन उसके भीतर घटते हैं, उस घटने को ही पकड़ना है, और वो सिर्फ और सिर्फ अभिनेता की सच्चाई है। वो बाहर से तो हम ये देखेंगे केवल कि उसने अपना कपड़ा उतार के दे दिया, लेकिन और ये इसके अंदर इसको एकदम से जस्टिफाई करना भी मुश्किल है, इसको किसी मशीन से पकड़ना भी मुश्किल है कि क्या आपके अंदर सात्विक भाव पैदा हुआ, तो वो लोग बोलेंगे हाँ हाँ हुआ। लेकिन दरअसल अगर सात्विक भाव पैदा हुआ है ना, तो आपको दिख जाएगा, जैसे आप चाहे जूम करें कैमरे से, बहुत क्लोज टाइट क्लोजअप लगा दें, तो या फिर दूर से रंगमंच पे देखें, यदि उसके मन में वो सच्चाई पैदा हुई है, जैसे बोलते हैं कि वो भाव पहले आया है, तो वो अभिनय के अंदर झलकता है। तो इसके लिए वापस हमको रस भाव की थ्योरी का आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। आपने दो शब्द तो सुने होंगे, सभी दर्शकों ने भी, श्रोताओं ने भी सुने होंगे, रस और भाव।
0: बिल्कुल।
1: तो देखिए सागर जी, जो रस भाव की जो ये जो रिएक्शन, वो जो पूरी प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। मतलब देखिए थोड़ी देर के लिए कि आपने मुझसे बोला, हेमंत जी आपकी आवाज बहुत सुंदर है, आपके पास शब्दावली बहुत अच्छी है और आप बहुत प्यारे इंसान है, तो क्या हुआ मेरे भीतर, मेरे मन में कुछ अलग से भाव पैदा हुए, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में ये कहते हैं कि हार्मोनल कुछ चेंजेस आए, मेरे भीतर हार्मोन पैदा हुआ, कोई हो सकता है वो डोपामाइन हो या कुछ भी हो। और जैसे आपने मुझसे कहा, हेमंत जी यार आप पे शर्म आती है, लानत है आपके ऊपर यार। आप बहुत घृणित इंसान है, बहुत गंदे इंसान है, आपको रहने कोई अधिकार नहीं। वो तो आप पता नहीं कैसे मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया, लेकिन आप बिल्कुल इसके हकदार नहीं है। तो मेरे मन के अंदर कुछ और पैदा होगा। तो हर एक बात का असर हो रहा है मन के ऊपर, और जब असर हो रहा है तो आपके शब्द किसी के भी मन में कोई भाव पैदा, कोई इमोशन पैदा कर रहे हैं। तो वो जो इमोशन उसके मन में पैदा हुआ, दरअसल वो रस है। उस रस के आधार पे आदमी का चेहरा खिल जाता है ना। तो ये रस भाव की बहुत बारीक बात है जो आपस में ट्रांसफर होती रहती है, और वो एक लंबी ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है। तो जैसे आपने स्क्रीन पे देखा कि एक बेटा अपनी माँ के गले मिला, और गले मिलकर उसने कहा, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपको इतने कष्ट दिए, मुझे माफ कर दो माँ। और वो उसके चरण पकड़ लेता है, उसके आंसू निकल पड़ते हैं, और बैकग्राउंड में वायलिन या सितार बजने लगता है। तो क्या होता है पता है? कैथारसिस होता है, यानी कि विरेचन, और दर्शक, सारे दर्शकों के आंख में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दृश्य देखकर दर्शकों के भीतर जो गया उसको बोलते रस, है ना। वो भाव उसने पकड़े और वो रस पैदा हुआ, तो आंखों से आंसू आ गए। अब ये रस जो है वो अपने भीतर से अपने घर ले जाएगा और अपनी बेटी को बताएगा, बेटी आज मैंने एक ऐसी फिल्म देखी जिसमें वो बेटा कहता है माँ। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रस भाव, रस से भाव बना, भाव से वापस रस बना, फिर वापस भाव बना, फिर रस बना। तो ये जो आपने सवाल, तर चलने वाली प्रक्रिया है, रस भाव, रस से भाव बना, भाव से वापस रस बना, फिर वापस भाव बना, फिर रस बना। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि हम बस्ती में चले गए, अपने कपड़े दे दिए, तो ये मैकेनिकल आपको लग सकता है, लेकिन अगर किसी के मन में वो भाव सच्चाई से पैदा हो जाता है तो अपने आप देखेंगे ना कि वो आदमी का चेहरा आपको बदलता हुआ दिखेगा, उसके शरीर पे कांटे रोंगटे खड़े होते हुए दिखेंगे, उसकी आवाज बदलती हुई दिखेगी। तो ये हर जगह मैकेनिकल होता है, ऐसा नहीं है। वो शुरुआत तो मैकेनिकल से होती है, क्योंकि वो सात्विक बहुत मुश्किल चीज है, बहुत बहुत मुश्किल चीज है। इसलिए आप देखेंगे कि सारी जो एक्सरसाइज है ना एक्टिंग की, ये आंगिक अभिनय यानी बॉडी के ऊपर है, और स्पीच, वॉइस एंड स्पीच पे है, लेकिन सात्विक में बहुत कम एक्सरसाइजेस हैं। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हमें सात्विक पर काम करना है। और सारे श्रोताओं से भी मेरा कहना है, सारे ड्रामा और एक्टिंग डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, सबसे ये निवेदन है कि आप सात्विक के ऊपर आप काम कीजिए, तो देखेंगे कि कलाकार बने ना बने, लेकिन उसके पहले वो आदमी, वो जो अभिनेता है, उसका मन बदल जाएगा, वो सारी दुनिया से प्यार करना सीख जाएगा, संवेदनशील बनेगा, घृणा नफरत को समझने लग जाएगा कि इसकी जरूरत ही नहीं है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। एक और यहाँ पर छोटा सा हम म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहेंगे। इतनी गहन बातचीत चल रही है, और क्योंकि मैं थोड़ा बायस यहाँ पर हो सकता हूँ, वजह यह है कि मैं खुद एक छात्र हूँ अभिनेता, और जब इतने महान शख्सियत या इतने खूबसूरत इंसान मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल निकलने वाले हैं। बट यहाँ पर भी छोटा सा विश्राम देंगे, आपके समय की मैं कदर करता हूँ, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। आगे हम बात करेंगे अभिनेता बनने की तैयारी का रियाज क्या होता है, बट इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

परेशान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उसपे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: दत्तात्रेय जैन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।

0: वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यू, तुम्हारे साथ हैं यहाँ पर हेमंत जी। शो को आगे बढ़ाएंगे। हेमंत जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि हम लोगों ने जो ये बात करी है अभिनेता बनने की तैयारी, अभिनय को समझा, सात्विक को समझा, दुनिया को हम लोग समझ गए हैं। ये ऐसा दिख रहा है कि दूर से एक दुनिया मुझे पता लग गई है, वो दुनिया है। उस दुनिया तक जाने का रास्ता अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि है हमारा रियाज। क्या रियाज होता है एक अभिनेता का?
1: वाह, आपके सवाल पे मेरे दिल से फिर से वाह निकलती है। शुक्रिया कि आपने इतना बारीक सवाल पूछा। देखिए, आप हम सब ये जानते हैं कि अभिनय की जो दुनिया है, नाटक जैसे कहते हैं, नाटक की दुनिया है, नाटक से फिल्म बनी, तो नाटक की जो दुनिया है ये, इसके बारे में एक श्लोक लिखा है नाट्य शास्त्र में, न तद ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सब योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन यन्न दृश्यते। यानी कि ऐसी कोई कला, ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है जो नाटक में नहीं है। यानी कि सारी कलाएं, सारी विद्याएं, सारी तकनीकें, सारा ज्ञान, जितना कुछ है वो सारा के सारा नाटक में समाहित है। ये श्लोक का भावार्थ हम समझ सकते हैं। तो इससे एक बात हम ये निकाल के हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि नाटक में सारी कलाओं का समावेश है। तो आप देखेंगे कि कामसूत्र के हिसाब से 64 कलाएं मानी गई है, बौद्ध दर्शन के हिसाब से 108 या 105 कुछ कलाएं मानी गई हैं। तो उनमें जितनी भी कलाएं जो हम मुख्य रूप से लेते हैं, ललित कलाएं, जैसे कि गायन, वादन, चित्रकला, शिल्पकला, ये कॉस्ट्यूम बनाना, सेट बनाना और भावाभिनय, बोलना इत्यादि जितनी भी कलाएं, वो सारी की सारी अभिनय में हैं, अभिनय के अंतर्गत आती हैं। अभिनेता को सारी सीखनी पड़ती हैं। तो इससे हम ये भी समझते हैं सागर जी कि अभिनेता का काम कितना दुष्कर है, कितना बहुत कठिन है। आमतौर पे हमारे से नाटक की दुनिया में या फिर नाट्य विद्यालय के बारे में से कहा जाता है कि जिनको भाई कुछ नहीं आता, जो बीएससी नहीं कर पाते, जो बीकॉम नहीं कर पाते, जो इंजीनियरिंग में नहीं जा पाते, वो सब नाटक में आ जाते हैं। लेकिन हमारे जो वरिष्ठ अभिनेता और हमारे गुरु है आलोक चटर्जी, तो आलोक चटर्जी सर कहते हैं कि भैया ये पूरी तरह से गलत है। नाटक में बहुत बुद्धिमान लोग ही आते हैं और आने चाहिए। अभिनेता जो होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत विवेकवान होता है, बहुत तर्कवान होता है, उसकी भाषा बहुत अच्छी होती है, उसे नाचना, गाना, बजाना क्या कुछ नहीं आता, उसको सब कुछ आना चाहिए, उसे सब कुछ आता है। तो आप देखेंगे कि अभिनेता की तैयारी का एक बहुत मोटा या एक बड़ा उत्तर आपके सामने में रखने की मैंने कोशिश की, और ये मैं नहीं, ये तो सदियों से सब रखते आ रहे हैं कि अभिनेता को सारी कलाओं में निपुण होना चाहिए। लेकिन यदि चलिए मान लीजिए कि वो निपुण नहीं भी है, तो भी उसको इतना, उसको संवेदनशील होना चाहिए कि हमें पेंटिंग भी देखनी है, हमें स्कल्पचर भी देखने हैं, हमें म्यूजिक भी सुनना है, हमें फिल्में भी देखनी है, हमें साहित्य भी पढ़ना है, हमें दुनिया भी घूमना है, हमें पर्यावरण की तरफ ध्यान देना है। तो आप देखेंगे कि अभिनय की, अभिनेता की तैयारी कितनी विशाल है ना, अनलिमिटेड है। ये तो हुआ पहला उत्तर। अब और थोड़ा हम जाएं तो जैसे कि मैंने साहित्य से शुरुआत की कि साहित्य को पढ़ना, शायरी को पढ़ना, उर्दू पढ़ना, हिंदी पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, उनका उच्चारण करते हुए पढ़ना, उनको भावना और कैरेक्टर के नाते पढ़ना, तो साहित्य से रब्ता बहुत कमाल का होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम, तो साहित्य से रब्ता बहुत कमाल का होना चाहिए और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम अभिनेता, जब हमारे वर्कशॉप्स हम लेते हैं और कोई भी एकदम रॉ कोई लड़का या लड़की जिसका अभिनय से कोई वास्ता नहीं रहा है, हालांकि ये कहना गलत है, बचपन से हम सब भाव से, वाणी से, अभिनय से जुड़े ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जब एकदम नए नए लड़के लड़कियां नाटक की दुनिया में आते हैं, अभिनय की कार्यशाला में आते हैं, तो हम सबसे पहले उनको मतलब दो स्तर पे काम होता है, आंगिक और वाचिक। सात्विक जो है वो बहुत धीरे धीरे आता है। तो आंगिक पे हम जाते हैं तो सबसे पहले बहुत सारे गेम्स हम खेलते हैं।

0: जो जिसमें शरीर की एक्टिविटी वाला भी गेम है, कॉन्सेंट्रेशन वाले गेम है जो एकाग्रता को बनाते हैं, स्मरण शक्ति वाले गेम है, और समूह की गेम है, ग्रुपिंग, जिसमें अलग अलग जात बिरादरी, अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं उनमें एकता हो, उनमें सद्भावना बढ़े। तो ऐसे सामूहिकता के गेम होते हैं, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, और ये सारे गेम मैंने बताए। तो ऐसे रचनात्मक खेल जैसे बोलते हैं थिएटर गेम्स, वो थिएटर गेम्स से शुरुआत करते हैं जिससे उनकी झिझक निकलती है। तो अभिनय की दुनिया में आने के लिए सबसे जो पहला जो वाक्य है या जो पहला सूत्र है सागर जी, वो है झिझक मिटाना। भीतर की जो झिझक और संकोच और डर रहता है ना, ये बहुत रहता, सब में रहता है, आप में भी, हम में भी, मुझ में भी कहीं ना कहीं है, तो वो निकलना चाहिए। तो सबसे पहले भीतर की झिझक, डर, संकोच मिटाना, किसी भी तरह की लाज शर्म को हटाना कि लोग क्या कहेंगे, मैं रोऊंगा, नाचूंगा, उठूंगा, बैठूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अलग अलग तरह की आवाजें निकालूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो भैया अभिनय की दुनिया में आने का सबसे पहला जो फॉर्मूला है कि खुद की भीतर जितनी भी जड़ता है, रिस्ट्रिक्शन हमने लगा के रखे हैं, टेबूज हमने बना के रखे हैं, सामाजिक रूढ़ियों से जो छिपने छिपाने की हमने वृत्ति बना के रखी, उसको तोड़ना और खुद को फ्री करना, खुद को अलग अलग ढंग से चलने दो, नाचने दो, बोलने दो। तो अलग अलग रिदम के ऊपर हम चलवाते हैं, मतलब लोग चलते हैं, अलग अलग आवाजें निकालते हैं, और आवाज के अंदर हम सारे गमों को बहुत महत्व देते हैं। हारमोनियम पर सरगम हम कराते हैं, रोजाना के रोजाना सरगम का अभ्यास है, सा नी ध प म ग रे सा। तो मंद्र सप्त का अभ्यास करने से आवाज की रेंज भी बड़ी होगी, हम आवाज को मधुर भी बना पाएंगे, और हम आवाज हमारे हम पहचान पाएंगे कि अलग अलग पीचेस में आवाज का क्या महत्व है। जैसे मान लो हम ऊपर जाते हैं, सा सा रे ग म प ध नी सा, तो कब हम ऊपर बोलते हैं, ओ भैया अरे जरा नीचे आओ नीचे आओ, और अगर कोई व्यक्ति पास में बैठा है, कहिए क्या हाल चाल है सागर जी, बहुत अच्छा लग रहा है, और एकदम कहीं मान लो चोरी छिपे की बात हो रही, सागर जी देखिए आवाज ठीक ठाक जा रही है ना, हाँ चलो बोलना शुरू करो, हेलो नमस्ते श्रोताओं, नमस्ते भाइयों बहनों। तो पिचेस का क्या, अलग अलग पिच का क्या असर होता है, कब कब वो अलग अलग पिचेस में हम बोलते हैं, तो वाचिक के ऊपर सरगम से ही काम शुरू होता है। फिर इधर आंगिक अभिनय में अलग अलग ताल के ऊपर चलना, पक्षियों के रूप में चलना, मेंढक के रूप में, तो शरीर को पूरा तोड़ना मरोड़ना। तो अभिनेता की तैयारी तो ऐसी होती है कि दीवानगी, जुनून, पागलपन, और खुद को भुला देना, और खुद को मंच के हवाले कर देना, चरित्र के हवाले कर देना, और हमारे जो निर्देशक या मार्गदर्शक है ना उसके हवाले कर देना, सारी शर्म झिझक छोड़ देना, छोड़ देना।
1: बहुत सुंदर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब आपने बात बोली ना कि खुद को फ्री कर देना, चोरी छुपना, ये जो हमारी आदतें हैं इनको बंद कर देना, छुपने छुपाने की हमारी आदतें होती हैं। बिल्कुल, मेरे पास हालांकि सवाल खत्म नहीं हुए हेमंत जी, लेकिन समय यहाँ पर हमारा खत्म होता है, तो आज का शो दुर्भाग्यपूर्ण मुझे यहीं पर अंत करना होगा। हालांकि मेरे बहुत सारे प्रश्न थे अभी, लेकिन जितनी मैंने बात करी है, मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी मैं कामना करता हूँ कि हमारे श्रोताओं के साथ हम न्याय कर पाए हैं, उनके वक्त के साथ हम न्याय कर पाए हैं। आपको यकीनन कुछ ऐसी चीजें मिली होंगी जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ेगी, और अगर आप अभिनेता बनना चाहते हो तो ये एक तरीके से एक आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा एक मास्टर क्लास हमने अभी यहाँ पर आपको देने की कोशिश करी है हेमंत जी की जुबान से। तो
0: अच्छा सागर जी, बस एक आखिरी वाक्य मैं बोलना चाहूंगा, चलेगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए
0: जी,
1: बोलिए
0: जी। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि नाटक या फिल्म की या अभिनय की जो दुनिया है, इसको हम वैसे नहीं समझे कि नाटक की दुनिया या फिल्म की दुनिया में जाना है तो ही ये थिएटर काम का है। मैं तो ये कहना चाहूंगा अभी तक के अपने अनुभव से कि नाटक या थिएटर हर किसी को करना चाहिए, बल्कि ये तो स्कूल से ही हो जाने चाहिए शुरू, चौथी पांचवी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा से ही बच्चों को थिएटर की ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्यों, वो तो आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि अभिनय की जो सीखने की पूरी प्रोसेस है ना, इसमें अंततः व्यक्तित्व का विकास ही है, कि हम अच्छी तरह से बोल पाए, एक साफ स्पष्ट लहजे में बोल पाए, वॉल्यूम ऐसा रख पाए कि कोई हमारी बात सुन पाए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, हमारे हमारे हमारी शरीर के ऊपर नियंत्रण है कि नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते बोलते कहीं खुजला रहे हैं, या फिर बोलते बोलते अपने हाथ, अपने मुट्ठियां तान रहे हैं, सीना तान रहे हैं। तो एक एक सरलता, सहजता कैसे दिखे आपके शरीर में, आपकी आवाज में कैसे दिखे, और दूसरी बात कि हम अपने आप को अभिव्यक्त करने की हमारे अंदर काबिलियत पैदा हो रही है कि नहीं। तो मैं बिल्कुल ही आपसे कहना चाहूंगा सारे श्रोताओं से कि अभिनय की ट्रेनिंग केवल इसलिए नहीं है कि आपको फिल्म की दुनिया में या नाटक की दुनिया में जाना है, अभिनय की ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है दोस्तों कि हमें एक सजग, सतर्क, विनम्र इंसान बनना है, संवेदनशील इंसान बनना है जो सारी दुनिया से जुड़ सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, किसी भी अन्याय शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकता है, किसी की मदद कर सकता है। यही अभिनय की

0: होंगे, आपके विचार कैसे हैं, कैसे सोचते हैं, सोचना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, शब्दावली कितनी जरूरी है, ये तमाम बातें आज हमने करी। आपको भी फीडबैक है तो मुझे बता सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल इसी नोट पर इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहां, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, खीरे के बारे में आज आपसे बात हो रही है, तो आइए बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में। इसको मिट्टी की अलग अलग किस्में जैसे कि रेतली दोमट से भारी मिट्टी में उगाया जा सकता है। खीरे की फसल के लिए दोमट मिट्टी में जिसमें जैविक तत्वों की उच्च मात्रा हो और पानी का अच्छा निकास हो, वो उचित पैदावार देती है। और खीरे की खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच है, पीएच 6 से 7 होना चाहिए। लेकिन बात आती है किस्मों की, तो इसका हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। पहली किस्म के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, जिसका नाम है पंजाब खीरा 1 2018। किसान भाइयों, ये किस्म केवल ग्रीन हाउस यानी कि पॉलिनेट हाउसेस के लिए अनुकूल है। इस किस्म का पौधा जल्दी बढ़ने वाला होता है, प्रति नोड 1 से 2 फल पैदा करता है, फूल पार्थेनोकार्पिक होते हैं और फल गहरे हरे, बीज रहित, स्वाद कम कड़वा, मध्यम आकार यानी कि 125 ग्राम 13 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इन्हें छीलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी तोड़ाई सितंबर और जनवरी महीने में फसल बोने से 45 से 60 दिनों के बाद की जा सकती है और सितंबर महीने में बोई फसल की औसतन पैदावार 304 क्विंटल प्रति एकड़ और जनवरी महीने में बोई फसल की उपज 370 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पर एक और होती है किस्म, जिसका नाम है पंजाब नवीन 2008। इस किस्म की सतह खुरदुरी होने के कारण पौधों की गहरे हरे रंग की पत्तियां होती हैं। जब फल पकने के स्तर पर पहुंच जाता है तब फल नर्म सतह के साथ आकार में बेलनाकार और फीके हरे रंग का होता है और साथ ही फल कुरकुरे, कड़वेपन रहित और बीज रहित होते हैं। इसमें विटामिन सी की उच्च मात्रा पाई जाती है और सूखे पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, ये किस्म 68 दिनों में पक के तैयार हो जाती है। इसके फल स्वादिष्ट, रंग और रूप आकर्षित, आकार और बनावट बढ़िया होती है और इस किस्म की औसतन पैदावार 70 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि जमीन की तैयारी कैसे की जाए, तो जमीन की तैयारी के बारे में बात होगी, बिजाई के बारे में भी बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, खीरे के बारे में आज आपसे बात हो रही है। पीछे आपसे जिक्र किया था कुछ किस्मों के बारे में, आइए बात कर लेते हैं कि जमीन की तैयारी कैसे की जाए। देखिए किसान भाइयों, खीरे की खेती के लिए अच्छी तरह से तैयार और नदीन रहित खेत की ज़रूरत होती है। मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बनाने के लिए बिजाई से पहले 3 से 4 बार खेत की जुताई ज़रूर करें। रूड़ी की खाद जैसे गाय के गोबर को मिट्टी में मिलाएं ताकि खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। फिर 2.5 मीटर चौड़े और 60 सेंटीमीटर के फासले पर नर्सरी बेड तैयार करें। अब बात कर लेते हैं बिजाई की। इसके बिजाई का जो समय है फरवरी या मार्च के महीने में की जाती है, और अगर फासले की बात करें तो 2.5 मीटर चौड़े बेड पर हर जगह 2 बीज बोएं और बीजों के बीच 60 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। बीज की गहराई की बात करें तो बीज को 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, लेकिन बिजाई का एक ढंग भी होता है, उसका भी ध्यान रखना होगा। एक विधि है जो कहलाती है छोटी सुरंगी विधि। इस विधि का प्रयोग खीरे की जल्दी पैदावार लेने के लिए किया जाता है। ये विधि फसल को दिसंबर और जनवरी की ठंड से बचाती है। दिसंबर के महीने में 2.5 मीटर चौड़े बेडों पर बिजाई की जाती है और बीजों को बेड के दोनों तरफ 45 सेंटीमीटर के फासले पर बोएं। बिजाई से पहले 45 से 60 सेंटीमीटर लंबे और सहायक डंडों को मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। खेत को प्लास्टिक की शीट यानी कि 100 गज मोटाई वाली को ठंडी की सहायता से ढक दें। फरवरी महीने में तापमान सही होने पर प्लास्टिक शीट को हटा दें। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया बिजाई का, लेकिन इसके बाद किसान भाइयों बात आती है बीज की मात्रा की और बीज के उपचार की और खाद की। तो खाद के बारे में, बीज के उपचार के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: लेकिन वो बात।
1: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, आज बात हो रही है खीरे के बारे में, और खीरे से संबंधित कुछ बातें आपको बताई थी, बिजाई का तरीका बताया था, बिजाई का समय भी बताया था, लेकिन अब बात आती है बीज के बारे में। बीज की मात्रा क्या होना चाहिए, इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। एक एकड़ खेत के लिए 1.0 किलोग्राम बीज की मात्रा काफ़ी होती है, लेकिन बिजाई का उपचार भी बहुत ज़रूरी है। बिजाई से पहले फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए और जीवन काल बढ़ाने के लिए अनुकूल रासायनिक के साथ उपचार करें। बिजाई से पहले बीजों का 2 ग्राम कप्तान के साथ उपचार करें। अब बात कर लेते हैं खाद की। भाई देखिए, खेत की तैयारी के समय नाइट्रोजन 40 किलो यानी यूरिया 90 किलो, फास्फोरस 20 किलो यानी सिंगल फास्फेट 125 किलो और पोटेशियम 20 किलो यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलो शुरुआत में खाद के रूप में डालें, और बिजाई के समय नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा और पोटेशियम और सिंगल सुपर फास्फेट डालें, और नाली की शुरुआती अवस्था जो कि बिजाई से 1 महीना बाद होती है, उसके बाद उसमें जो बची हुई खाद है उस बची हुई खाद को डालें। लेकिन किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हम कोई भी फसल अपने खेत में उगाते हैं तो वहाँ पर खरपतवार हमारी फसलों को तबाह बर्बाद कर देती है। अब खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके बारे में भी बात होगी, और बात होगी सिंचाई के बारे में, पौधे की देखभाल के बारे में। मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए अन्नदाता।

दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं खरपतवार के बारे में। वही खरपतवार जो कि हमारी फसलों को बर्बाद कर देती है, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। नदियों को हाथ से गुड़ाई करके या रसायनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ग्लाइफोसेट 1.6 लीटर को प्रति 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ग्लाइफोसेट की स्प्रे सिर्फ नदियों पर ही करें, मुख्य फसल पर बिल्कुल ना करें। सिंचाई की जब बात आती है तो गर्मी के मौसम में इसको बार बार सिंचाई की ज़रूरत होती है और बारिश के मौसम में सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसको कुल 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। बिजाई से पहले एक सिंचाई ज़रूरी होती है और इसके बाद 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। दूसरी बिजाई के बाद 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। लेकिन किसान भाइयों, पौधे की देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि पौधों को नष्ट कर देती हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है एंथ्राक्नोस, इसका मतलब है कि फल का गलना। ये बीमारी खीरे के लगभग सारे हिस्सों पर हमला करती है जो ज़मीन से ऊपर होते हैं। पुराने पत्तों पर पीले रंग के धब्बे और फलों पर गहरे गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं। रोकथाम कैसे की जाए, सुन लीजिए। फसल को इस बीमारी से बचाने के लिए फंगस नाशी क्लोरोथेलोनिल और बेनोमाइल डालें। इसके अलावा किसान भाइयों, एक और बीमारी होती है जो कहलाती है मुरझाना। ये बीमारी इर्विनिया ट्रैकेफिला के कारण होती है। ये पौधे नाड़ी टिश्यूओं को प्रभावित करती है जिस कारण पौधा सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए पत्तों पर कीटनाशक जो स्प्रे होता है वो स्प्रे कर देना है और अपनी फसलों को इस तरह की बीमारियों से सुरक्षित कर लेना है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत सारे ऐसे कीट भी होते हैं जो कि हमारी फसल को नेस्तनाबूत कर देते हैं। उन कीटों के बारे में भी आपसे बात करूँगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, खीरे के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ बीमारियाँ थी उनका जिक्र आपसे किया था, लेकिन एक रोग है जिसका नाम है चितकबरा। इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। पौधों का विकास रुक जाना, पत्ते मुरझाना और फल के निचले हिस्से का पीला दिखाई देना इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। इसकी रोकथाम के लिए डियाजिनोन डाली जाती है और इसके लिए इमाडोक्लोप्रिड 17.8% SL 7 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें। ये तो रही चितकबरा रोग की बात। अब बात कर लेते हैं उस कीट की, जो कीट हमारे फल को बर्बाद करता है, जिसका नाम है फल की मक्खी। ये खीरे की फसल में पाए जाने वाला गंभीर कीट है। मादा मक्खियाँ नए फल की परत के नीचे की ओर अंडे देती हैं, फिर ये फल के गुद्दे को भोजन बनाते हैं, जिस कारण फल गलना शुरू हो जाता है और फिर टूट कर नीचे गिर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 3.0% पत्तों पर नीम के तेल का स्प्रे कर दें। इसके स्प्रे करने से आपकी जो फल की मक्खी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपके खीरे का जो फल है वो एकदम सुरक्षित हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये बात तो मैंने आपको बता दी है फल की मक्खी के बारे में, लेकिन जब फसल की कटाई का समय होता है उस समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वो कौन कौन सी बातें हैं आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं बीज उत्पादन की। भूरे रंग के फल बीज उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया माने जाते हैं। बीज निकालने के लिए फलों के गुद्दे को 1 से 2 दिनों के लिए ताजे पानी में रखा जाता है, ताकि बीजों को आसानी से अलग किया जा सके। फिर इनको हाथों से रगड़ा जाता है और भारी बीज पानी में नीचे बैठ जाते हैं और इनको कई और कामों के लिए रखा जाता है। तो बीज उत्पादन के बारे में भी आपसे बात हो चुकी है। फसल की कटाई के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से जो फल के कीट हैं उनसे अपनी फसल की हिफाजत करनी चाहिए, इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं किसान भाइयों। लेकिन अब समय है आपसे आज्ञा लेने का। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं और चलते चलते करता हूं सभी किसान भाइयों को राम राम सलाम।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरला पान चबाए, आहा।

ಸೊರಗಿಂದ ಇನ್ನಾರೇ

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिनके बारे में आपसे बात करने वाला हूं वो एक मशहूर लेखिका हैं, नाम है अलका सरावगी। देखिए दोस्तों, जीवन और जगत के विषय में साहित्यकार एक विचारधारा को लेकर चलता है और वो विचारधारा समय के अनुरूप परिवर्तित भी होती है। सामाजिक विचारधारा को उतना ही प्राचीन कहा जा सकता है जितना कि समाज को। सामाजिक विचार एक व्यक्ति का भी हो सकता है और समूह का भी हो सकता है, जाति का भी हो सकता है, दल और राष्ट्र का भी हो सकता है। अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर साहित्यकार अपनी कृतियों को नई दिशा देते हैं। अलका सरावगी ने समकालीन सामाजिक आयाम को अपने उपन्यासों में सामाजिक चेतना के उत्कर्ष के रूप में स्थान दिया है, जिसमें व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खोए बिना व्यापक रूप से सामाजिक चेतना के संदर्भ को स्वीकार करके अपने को संक्रमण काल से बाहर निकालने का प्रयत्न करे। इस उद्देश्य को लेकर अलका सरावगी समकालीन शक्तियों से समाज को जागरूक करके उसे प्रेरणादायक मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं। तो दोस्तों, आज बात होगी अलका सरावगी के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके लेखन के बारे में और इनके जीवन के संघर्षों का भी जिक्र होगा। फिलहाल आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों से बदलते युग की आवश्यकताओं के कारण सामाजिक परिवेश, सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगत होता है। अलका सरावगी ने अपने समग्र उपन्यासों में सामाजिक जीवन और परिवर्तनशील मानव मूल्यों की गाथा को समाहित किया है। अपने उपन्यासों में समसामयिक यथार्थ को चित्रित करते हुए मध्यवर्गीय समाज की समस्याओं के साथ साथ रूढ़िगत परंपराओं के विघटन को स्वर दिया है। उनके कलीकथा वाया बाईपास से लेकर जानकी दास तेजपाल मेंशन तक के उपन्यासों में सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। स्वतंत्रता के पूर्व के सामाजिक जीवन एवं उसकी दशाओं को दर्शाया है, तो वहीं स्वतंत्रोत्तर सामाजिक चेतना के साथ आज के समकालीन समाज की विडंबनाओं को व्यापक रूप में अभिव्यक्त किया है। तो इनके बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, समाज के रीति रिवाज, पारिवारिक जीवन की शैलियां, जातीय व्यवस्था, सामाजिक मूल्य, नारी की स्थिति, भूमंडलीकरण की विडंबना, यानी कि इन सब को अपने समग्र उपन्यासों में विशद चित्रण किया है अलका सरावगी द्वारा। समाज एवं व्यक्ति के संबंध को गहनता से दर्शाया है। जिस समाज में मनुष्य अपनी सामाजिक समस्याओं के प्रति जागृत नहीं होता है, वो समाज प्रगति कैसे कर पाएगा? समस्याओं के समाधान के प्रति जो प्रयत्न किए जा सकते हैं, वो सामाजिक चेतना की परिणति है। सामाजिक चेतना के अभाव में समाज का सृजन और पोषण संभव नहीं है। लेकिन अलका सरावगी ने समाज की हर उन प्रथाओं को साकार किया है जो परंपरागत हैं, तो आधुनिक भी हैं और समकालीन भी हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: देखिए दोस्तों, कला की सार्थकता उसके सामाजिक संदर्भों में निहित होती है। जीवन की सार्थकता उसकी सामाजिक परिकल्पना में निहित है। सामाजिक परिवेश से अलिप्त मानव जीवन की धारणा कोरी कल्पना का भटकाव मात्र है। सामाजिक जीवन में व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज और राष्ट्र अलग अलग इकाइयों में हैं। इनका परस्पर अटूट संबंध होता है। इन्हीं के दायरे में सुख दुख, आशा निराशा, हारस परिहारस, विजय पराजय, मित्रता शत्रुता, यानी कि ये भाव भूमियों का व्यापार चलता रहता है। भाव, विचार और दर्शन की त्रयी सामाजिक जीवन पद्धति, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और धर्म का स्वरूप निर्धारित करती है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

0: सुनो हरदीप, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: जैसा कि दोस्तों मैं पीछे आपसे जिक्र कर रहा था, भाव विचार और दर्शन की त्रयी सामाजिक जीवन पद्धति परंपरा सभ्यता संस्कृति और धर्म का स्वरूप निर्धारित करती है। इन्हीं विचारों को उद्वेलित करती अलका सरावगी ने अपने समग्र उपन्यासों में प्रत्येक युग के समाज की नाड़ियों का स्पंदन महसूस किया है, जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व के समाज में प्रचलित अंधविश्वास कुप्रथाएं स्त्रियों का पिछड़ापन और अशिक्षा जैसी समस्याओं को सशक्तता के साथ उभारा है। खासकर मारवाड़ी समाज की दखियानूसी एवं पारंपरिक प्रथाओं का अलका सरावगी ने संवेदनशीलता के साथ दिखाया है, जिसमें स्त्रियों को अकेले घर से बाहर जाने की मनाही है, घूंघट में रहना है, मर्यादाओं का पालन करना शामिल था। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई हैं। तो दोस्तों, अलका सरावगी के बारे में, उनके लेखन के बारे में और भी बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, आज बात हो रही है अलका सरावगी के बारे में, उनके लेखन के बारे में, उनके उपन्यासों का भी जिक्र मैंने आपसे किया। और ये हकीकत है दोस्तों, पुरानी सड़ी गली सामाजिक कुरूतियों को तोड़ने का साहस लेखिका द्वारा निर्भीकता से किया गया है। कली कथा वाया बाईपास में लेखिका द्वारा स्वतंत्रता के पूर्व के समाज का चित्रण है, तो स्वतंत्रता के पश्चात के सामाजिक बदलाव को भी प्रतिबिंबित किया है, जिसमें शिक्षा के प्रसार के साथ स्त्रियों की दशा में सुधार के संकेत मिलते हैं। कली कथा वाया बाईपास में किशोर बाबू अपनी लड़कियों को कॉलेज पढ़ाते हैं और बहू भी पढ़ी लिखी ही लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। इनके बारे में, यानी कि अलका सरावगी के बारे में कुछ और भी बातें हैं, वो मैं आपसे करूंगा, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल इजाज़त चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर आज तक की रिलीज फिल्म के गीत, गजल, भजन, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी, शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हो। और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको सृजन और रेडियो मानव रचना भी, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर रिंकल शर्मा जी। आप लिखती हैं गीत, गजल, कविताएं, और उनको महारत हासिल है कहानियों और नाटक पर। डॉक्टर रिंकल शर्मा जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद माधुरी जी।
0: रिंकल जी, जो हमारे दोस्त आप लोगों से सबसे पहले जानना चाहते हैं, यही कि आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा?
1: माधुरी जी, लेखन की शुरुआत तो मैं कहूँगी कि बहुत देर में हुई।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, आज हम सभी इस बात को भी गहरी उसमें समझते हैं कि लिखने से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात ये रही कि मेरे परिवार में पढ़ने लिखने का माहौल था। लिखने का शायद उतना नहीं था, लेकिन पढ़ने का काफ़ी था।
0: काफ़ी था
1: जी। मेरे दादाजी को बहुत शौक था, वो नॉवल पढ़ा करते थे उस ज़माने में, तो जो वेद प्रकाश, वेद के नॉवल या सुरेंद्र मोहन पाठक,
0: इनका नाम के, मेरे पापा भी बहुत पढ़ते थे। दिस वेरी नॉस्टैल्जिक।
1: बिल्कुल। तो इनसे जो मैं वाकिफ हुई वो अपने दादाजी की वजह से ही हुई। मेरी माँ को भी पत्रिकाएं वगैरह पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ, लेकिन कौन सी पत्रिका पढ़ी जाएगी ये हमारे अखबार वाले भैया पर डिपेंड करता था। कभी वो ग्रह लक्ष्मी डालते थे, कभी सरिता, कभी ग्रह शोभा, कभी मनोहर कहानियां, लेकिन आती थी तो इसमें बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन मुझे कहानियां अपनी ओर आकर्षित करती थी और मैं कहानियां जरूर पढ़ती थी उसमें। और वहीं पढ़ते पढ़ाते हुआ ये कि एक दिन मेरे एक अंकल हैं, वो घर पर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या पढ़ती रहती हो, ग्रह शोभा और ऐसी कहानियां, अब तुम हिंदी साहित्य की तरफ जाओ, तुम प्रेमचंद को पढ़ो।
0: क्या बात है।
1: तुम मैंने कहा कि अच्छा। तो उनके पास प्रेमचंद के उस समय 8 वो आए थे, मानसरोवर के 8 खंड थे, तो उन्होंने मुझे याद है कि 4th खंड मुझे दिया, उनके पास वही था। और जब वो मैंने पढ़ा तो मैं एक के बाद एक प्रेमचंद की कहानियां पढ़ती चली गई। और आप धीरे धीरे करके देखिए कि फिर मैंने खुद बढ़कर उनसे 5वां खंड मांगा, फिर पूरी 8 के 8 खंड मैंने।
0: कहना ना होगा कि वो अंकल जो प्रेमचंद जी आपके प्रेरणा के स्रोत रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपको याद है रिंकल जी आपकी सबसे पहली रचना क्या थी और किस विषय पर थी, कुछ ध्यान आता है आपको?
1: देखिए, सबसे
0: बड़े रहे होंगे आप उस टाइम।
1: हाँ, सबसे पहले जो कहते ना कि अपना शौक पूरा करने के लिए लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर हम लोग एक तुकबंदी में कविता बनाते हैं।
0: कविता आपने लिखी।
1: और
0: अच्छा, पहली आपने कविता ही लिखी थी?
1: पहली मैंने कविता ही
0: लिखी। बाद में आपको कहानियों पर महारत हासिल हुई?
1: बिल्कुल। कहानियां पढ़ते पढ़ते जब हम पढ़ते हैं फिर हमारा रुझान होता है, और कहानियां फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि कहानियां मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। मतलब ऐसा लगता है कि ये चारों तरफ का जो वातावरण है, बहुत सारी कहानियां घूम रही है और मैं इन्हें अपने शब्दों में पिरोती जाऊं।
0: रिंकल जी, आपको याद है आपने सबसे पहले क्या लिखा था, अगर हमारे दोस्तों को आप देना चाहें?
1: देखिए, सबसे पहले
0: जो भी आप देना चाहें वो आपका अधिकार है
1: जी। सबसे पहले तो मैंने एक बहुत ही बचकानी सी कविता लिखी थी। अच्छा। और हास्य कविता थी, पहलवान का परोपकार लिखी थी, तो वो तो मुझे लगता है कि नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब कविता लिखना शुरू किया तो थोड़ा बहुत जो लिखना आया, तब मैंने एक कविता लिखी थी, दर्द की धुंध। मेरी आत्मा पर एक धुंध छाई है, जैसे कोई काली रात, एक दर्द जो कभी नहीं जाता, जैसे कोई अनंत सागर, मेरे शरीर पर एक निशान है, जैसे कोई जलता हुआ दाग, एक याद जो कभी नहीं मिटती, जैसे कोई अनमिट छाप।
0: क्या बात है।
1: मैंने अपनी आवाज खो दी है, जैसे कोई खोया हुआ स्वर, मेरे शब्दों में अब कोई अर्थ नहीं, जैसे एक खाली पन्ना। मैंने अपनी पहचान खो दी, जैसे खोया हुआ रास्ता। मेरा आत्मसम्मान अब क्षतिग्रस्त है, जैसे कोई टूटा हुआ सपना। लेकिन मैं अब भी जीवित हूँ, जैसे एक हरा भरा पेड़। मेरा दिल अब भी धड़कता है, जैसे कोई धड़कता हुआ दिल। मैं अभी भी अपने दर्द को महसूस करती हूँ, जैसे कोई जलता हुआ आग। लेकिन मैं अभी भी अपने जीवन को जीना चाहती हूँ, जैसे एक नई सुबह। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज सुनी जाए, जैसे कोई सुनने वाले कान तत्पर हों। मेरे शब्दों में अर्थ होने चाहिए, जैसे एक अर्थपूर्ण वाक्य अपने आप में सब कुछ कह जाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान वापस मिल जाए, जैसे कोई खोया हुआ रास्ता। मेरा आत्मसम्मान फिर से बहाल हो जाए, जैसे कोई टूटा हुआ सपना। मैं चाहती हूँ कि मेरा दर्द समझा जाए, मेरी पीड़ा को महसूस किया जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज उठाई जाए, मेरे अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन फिर से सामान्य हो जाए, मेरा दिल फिर से खुशी से भर जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी आत्मा फिर से शांत हो जाए और मेरे जीवन को एक नया अर्थ मिल जाए।
0: क्या बात।
1: ये कविता दरअसल एक बहुत ही दुखद एक घटना हुई थी दिल्ली में। आपको याद होगा निर्भया का जो कांड हुआ था,
0: तो कवि को जब दर्द मिला तभी तो वो कवि बना।
1: तभी ये कविता उपजी।
0: कांटों से

0: వెల్కమ్ అగైన్ టు రేడియో మానవ రచన విత్ ఫీల్ గుడ్ ఫీల్ లైవ్ 107.8 ఎఫ్ఎం పర్ ఆప్ హై మాధురి కే సాత్ ఔర్ మాధురి హాజిర్ హై ఆప్కి మహఫిల్ మే ఏక్ బార్ ఫిర్ సే సృజన్ లేకర్ ఔర్ ఆజ్ హమారే సాత్ హమారి బేహదీ బేహదీ బేహదీ ఖాస్ మెహమాన్ హై డాక్టర్ రింకల్ శర్మా జీ. కహానియా, నాటక, గీత, కవితా, గజల్ ఆప్ లిఖతీ హై ఔర్ కహానియో ने इनके मेरे दिल को इतना छुआ कि मैं मजबूर हो गई कि उनको मैं जल्द आप लोगों से मिलवाऊँ. डॉक्टर रिंकल शर्मा जी, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है.
1: धन्यवाद माधुरी जी.
0: रिंकल जी, आपसे अभी हम कहानी सुनेंगे जिसकी मैं मुरीद हूँ आपकी
1: जी.
0: लेकिन अभी उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे दोस्त इनफैक्ट जानना चाहते हैं कि आप जुड़ी हुई हैं बहुत सारी संस्थाओं से. ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, मातृभाषा उन्नयन, श्री उमापति संस्थान, कथा संवाद संस्थान, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी संस्थाओं की. गुजारिश करूँगी अपने सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए.
1: होता क्या है माधुरी जी, जब हम किसी क्षेत्र में काम करते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो अपनी आवाज़ को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि संस्थाएं जो हैं एक अच्छा माध्यम होती
0: अच्छा
1: है
0: माध्यम.
1: क्योंकि एक संस्था से करीबन बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कम से कम 100 तो मानकर ही चलिए और संख्या असंख्य भी हो सकती है. तो जब हम कोई बात कहते हैं, अभी हम हिंदी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो लगता है कि नहीं, हमारी हिंदी की एक पहचान जो बनी हुई है और आगे बढ़ना चाहिए इस क्षेत्र में और हमें चीजें नई नई करनी चाहिए. तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम किसी संस्थान से जुड़े. तो उसी तरह से कई बार बहुत से होते हैं, हमारे मन में होता है कि हम कुछ चैरिटी करें, हम कुछ ऐसा काम करें जो हमारे समाज के लिए उपयोगी हो. तो उसमें हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि एक अकेला
0: मतलब ना सिर्फ आप साहित्य के माध्यम से समाज की सेवा करिए, आप समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से भी देश की और समाज की सेवा कर.
1: कोशिश रहती है. मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत कुछ नहीं कर रही लेकिन कुछ जो थोड़ा बहुत कर पाती हूँ तो इसलिए मैं जुड़ जाती हूँ.
0: वो कहानी याद आती है कि चिड़िया अपनी चोंच में लेके दावानल को बुझाने की कोशिश कर रही है. तो हम लोग अपनी क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम साहित्य के माध्यम से हम कोशिश तो करते ही
1: बिल्कुल
0: हैं.
1: और कोशिश करते रहना चाहिए ना कि क्षमा हमेशा रोशन रहनी चाहिए.
0: गुजारिश करूंगी जिस चीज की मैं मुरीद हूँ, एक कहानी हमारे दोस्तों को आप दे दीजिए.
1: बिल्कुल, मैं खुद आतुर हूँ कि आपके माध्यम से मेरी कहानी.
0: मैं तो मुरीद हूँ, आपकी फैन हूँ मैं तो इस बात के लिए.
1: चलिए, तो फिर आपकी गुजारिश पर और मेरी भी इच्छा है तो एक लघु कथा मैं सुनाऊंगी.
0: स्वागत, स्वागत.
1: कसूर.
0: स्वागत.
1: सोसाइटी के सेक्रेटरी द्वारा बुलाए जाने पर सोसाइटी के पार्क में सभी लोग एकत्रित थे. लोगों के बीच में सुरेखा डरी सहमी सी नजरें झुकाए खड़ी थी. सेक्रेटरी ने कहा, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सुरेखा के पति किशन को पेड़ों के हिसाब में पूरे 140 रुपए की हेरा फेरी और 2 पेड़ों की चोरी करने के जुर्म में पुलिस हिरासत में भेजा गया है. अब सवाल यह है कि क्या सुरेखा को सोसाइटी के घरों में काम करने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं. सेक्रेटरी की बात सुनकर गुप्ता जी बोले, अरे अरे, तुरंत काम से निकाल देना चाहिए जी.
0: ओ,
1: तभी मिस्ट्राइन बोली, क्यों जी, क्यों निकाल देना चाहिए. उसके पति ने जो किया उसमें इस बेचारी का भला क्या कसूर. इसी महफिल में एक खान साहब थे. खान साहब अपना पान चबाते हुए सामने आए और बोले,
2: हाँ कसूर, अरे कसूर तो ये है जी कि यह एक चोर, बेईमान और घोटालेबाज की बीवी है. पति चोरी करके घर में माल लाए और बीवी को खबर ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है भला. अरे चोर की बीवी का भला क्या भरोसा, आगे जाकर ये भी चोरी कर सकती है. अरे मैं तो कहता हूँ कि इसे भी पुलिस के हवाले किया जाए. धोखेबाज की बीवी को यदि काम पर रखा तो बाकी कर्मचारियों में गलत संदेश नहीं जाएगा.
1: खान साहब की बात सुनकर सुरेखा सभी से गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए. उनको तो आप लोग पहले ही जेल भेज चुके हैं, मुझे भी भेज दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा. हम चोर नहीं है साहब, हम चोर नहीं है. सुरेखा के रोने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ. एक लंबी बहस के बाद सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि सुरेखा को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया.
0: ओहो,
1: सुरेखा के जाते ही खान साहब ने अपनी जीत की खुशी में एक बार फिर से एक पान अपने मुंह में रखा और कत्थे से सनी उंगलियों को अपने खिचड़ी बालों में पोंछते हुए गुप्ताजी से बोले,
2: भाई देखो क्या जमाना आ गया है, लोगों में ईमान धर्म तो बचा ही नहीं है। अब ऐसा भी क्या गजब हो गया खान साहब। गुप्ता जी ने भी एक गिलोरी अपने मुंह में रखते हुए खान साहब से पूछा। खान साहब बोले, अरे ये आपने अखबार नहीं पढ़ा क्या? शहर के पार्कों में बेंच लगाने के मामले में हमारे नेताजी ने पूरे 1,40,00,000 का घोटाला किया है। नेताजी को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अच्छा, लेकिन 6 महीने बाद तो चुनाव है, अब क्या होगा? होगा क्या, उनकी जगह अब उनकी बीवी चुनाव में खड़ी होंगी। अच्छा, तो क्या आप ऐसे घोटालेबाज की बीवी को वोट देंगे?
3: अरे बिल्कुल देंगे अम्मा मियाँ।
2: अब शोहर ने घोटाला किया है तो इसमें बेचारी बीवी का क्या कसूर?
0: और
2: वैसे भी सुना है मोहतरमा बड़ी बला की खूबसूरत खातून है।
1: खान साहब की बात सुनकर सभी जोर का ठहाका मारकर हंसने लगे।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब कहानी। सजन रे झू

0: वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहदी बेहदी बेहदी खास मेहमान है डॉक्टर रिंकल शर्मा जी। आप कहानीकार हैं, आप नाटक लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, गीत गजल। डॉक्टर रिंकल शर्मा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी।
0: रिंकल जी, आपको पढ़ाया गया नवभारत टाइम्स, इंद्रप्रस्थ, भारती, अमर उजाला, गृह लक्ष्मी, हिंदुस्तान, साहित्य अमृत और गृह लक्ष्मी के कवर पेज पर आपकी तस्वीर आई है।
1: जी जी जी।
0: और साहित्य अमृत और चाचा चौधरी की जो मैगजीन हम बचपन से पढ़ते हुए बड़े हुए हैं कॉमिक्स
1: जी,
0: उसमें भी आपकी बड़ी ही खास भूमिका है। गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों को अपने सफर के बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, देखिए इन ये जो पत्रिकाओं के आपने नाम लिए ना, इनमें छपना हर एक लेखक का सपना होता है।
0: बिल्कुल,
1: कि मैं एक दिन इंद्रप्रस्थ भारती में छपूं, एक दिन मैं साहित्य अमृत पे, चूंकि बहुत लोगों तक जाती है, लेकिन ये करते करते एक अलग जो सफर था वो मुझे लगता है कि वो किस्मत से आया। जब हम छोटे थे तो आप यकीन मानिए कि हम किराए पर लाके ना चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ा करते थे। तो मोहल्ले में एक दुकान हुआ करती थी, वहां से हम एक रुपए रोज किराए पे और लाके पढ़ते थे और कोशिश करते थे कि सब भाई बहन।
0: और आज आप उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल। और जब मुझे वो लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकती कि उस दिन पे कह सकती थी कि मैं आसमान पर हूं।
0: हस्ती से मुलाकात हो रही है आज आपकी
1: जी। और एक अच्छा जो काम हुआ, जैसे कहते हैं ना कि कई बार कुछ चीजें होती हैं जिनमें ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, तो चाचा चौधरी और मासिक धर्म की शिक्षा, आप जानती हैं कि अभी भी हमारे देश में मासिक धर्म को लेकर कितनी सारी रूढ़ियां हैं, बहुत मतलब पिछड़ापन है। इस पर हमने एक कॉमिक तैयार किया जिसमें मैंने चाचा चौधरी के साथ साथ बिल्लू, पिंकी, इन सारे जितने भी कैरेक्टर्स थे इन सबको इकट्ठा किया और हमने एक पीरियड गाइड तैयार किया। वो जब लिखा तो अच्छी बात ये हुई कि वो भारत सरकार ने ही उसको जारी किया और उसका 14 भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ताकि हर रूरल जितने भी हमारे एरियाज हैं, जो स्कूल्स हैं, वहां तक वो पहुंच सके। तो ये बड़ा ही रोमांचकारी मेरे लिए रहा है चाचा चौधरी की के लिए। मतलब वो जो हम बचपन से जिससे कहते हैं ना कि हम पढ़कर इसको बड़े हुए हैं, वो लिखना मेरे लिए बेहद सुखद था।
0: रिंकल जी, बचपन की हम बात कर रहे हैं तो आपकी एक बड़ी मशहूर रचना है जो बच्चों के लिए है, वो गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों को दे दीजिए।
1: जी बिल्कुल। आप देखिए, मतलब लेखक होता है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि कहीं दर्द जागता है तो कलम चलती है। हम जब बचपन में देखते थे तो गौरैया आपने और हमने तो ऐसे देखी है कि हमारे घरों के आंगन में टहल रही, लेकिन अब देखिए वो लुप्त होती जा रही है ना। तो एक मैंने छोटी सी लिखी थी, गौरैया की पुकार।
0: स्वागत स्वागत।
1: आंगन में मैं आती थी, चहक चहक इठलाती थी, तिनका तिनका जोड़ के घरौंदा अपना सजाती थी। पेड़ों की वो छांव गई, खेतों की खुशबू भी गई, शहर बड़ा जो होता गया, मेरी दुनिया भी खो गई। कभी सुबह की धूप में मैं गीत सुहाने गाती थी, अब ढूंढू अपना घर कहाँ, अब ढूंढू अपना घर कहाँ, ये सोच सोच घबराती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करो तो एक पेड़ लगाओ प्यारे, मैं फिर से लौट आऊंगी, गाऊंगी मैं गीत तुम्हारे।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।

0: वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेदी बेदी खास मेहमान है डॉक्टर रिंकल शर्मा जी। कहानीकार हैं, नाटककार हैं, गीत लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, गजल। डॉक्टर रिंकल शर्मा जी, टूरिज्म, आपको फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी।
0: रिंकल जी, आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लंबी लिस्ट है, कुछ के मैं नाम लेना चाहूँगी और गुजारिश करूँगी अपने सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताएं। बुरे फंसे, प्रेमचंद मंच पर, क्या नाम रखूँ, छल, गजरे की गंध, भारत की 75 वीरांगना, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी पुस्तकों की, गुजारिश करूँगी अपने सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताएं।
1: जी देखिए, लेखन जब हम भी करते हैं तो सपना होता है कि हमारी पुस्तक प्रकाशित हो ताकि वो लोगों तक पहुंचे। और बहुत सौभाग्य रहा मेरा कि मैंने जब नाटक लिखा बुरे फंसे, जिसका जिक्र आपने सबसे पहले किया, हास्य नाटक है, और ये इतना पसंद किया गया कि इसको राष्ट्रीय प्रचार समिति डूंगरगढ़ से पुरस्कृत हुआ।
0: क्या
1: और ये जो नाटक है ना बुरे फंसे, ये भी बड़ा मजेदार है कि ये मेरे ही परिवार की कहानी है जो मैं बचपन से सुनती आई थी, और उसको फिर घटना को मैंने नाटक में इसको पिरो दिया। और एक जो आपसे बातचीत में मैंने बताया कि प्रेमचंद को पढ़कर हम बड़े हुए, तो मेरा बड़ा मन था कि कुछ ऐसा किया जाए जो प्रेमचंद का जो साहित्य है
0: वो लोगों,
1: क्योंकि मैं नाटक से भी जुड़ी रही, तो वो नाटक के जरिए लोगों तक पहुंचे। और ऐसा ही ये जो सपना साकार हुआ कि मैंने प्रेमचंद की 14 कहानियां, यानी बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, जितनी भी आपने सुनी होंगी जो चर्चित कहानियां, उनका मैंने नाटक रूपांतरण किया।
0: क्या बात है।
1: और कहानी तो मेरी जान है, मैंने लिखना शुरू किया और अभी हाल ही में गजरे की गंध मेरी कहानी संग्रह आया है, जिसमें अलग अलग रंगों की कहानियां हैं, छल है। इसके साथ ही हाँ, एक किताब का मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, भारत की 75 वीरांगनाएं। ये किताब माधुरी जी ऐसी है जिसमें हमारी जो फ्रीडम फाइटर्स जो थी, मतलब नोन को तो हम सब लोग जानते हैं, जिन जो चर्चित नाम है हमारे की रानी लक्ष्मीबाई है और मतंगनी हजारा है, या लेकिन इसमें उन महिलाओं का जिक्र है जिनके बारे में लोगों ने नहीं जाना, जिनके बारे में लोगों ने नहीं सुना,
0: किससे अनसुने
1: और अनसुने चरित्र हैं इसमें। मतलब ये इंग्लिश में भी आई है, अनुवाद हुआ है इस किताब का। और ये किताब ऐसी है जहाँ मुझे आज भी लोगों की मेल आती है, लोगों के पत्र आते हैं कि हमने ये किताब एयरपोर्ट पर पढ़ी या हमें ये रेलवे स्टेशन पर हमने खरीदी। तो इतनी अच्छी किताब है और ये मुझे लगता है कि
0: सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है कि हमें कोई कहे कि आपकी रचना हमने यहाँ पढ़ी।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा, लेखक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार मैं मानती हूँ यही होता है जब कोई कहे कि हमने आपकी ये फला किताब पढ़ी। और जब इस तरह की चिट्ठियाँ आती है ना, चिट्ठियाँ तो अब नहीं आती हाथ से लिखी, लेकिन ईमेल आती है, फोन है, मैसेज है, बिल्कुल, वो जब आती है तो इतनी खुशी होती है।
0: रिंकल जी, आप इस मोड़ पर क्या देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को, कहानी जो भी आप देना चाहें?
1: कहानी ही सुनाते हैं, छोटी सी एक लघु कथा है।
0: स्वागत।
1: चरित्रहीन, बस में एक नवी युवती चढ़ी, टाइट जीन्स जो कई जगह से फटी हुई थी, झीना सा सफेद टॉप जिसमें से उसका बदन नजर आ रहा था, होठों पर लाल लिपस्टिक, बाल बिखरे, आंखों में मोटा मोटा काजल और कानों में फोन की लीड लगाए हुए। उसके एक हाथ में पर्स और दूसरे हाथ में मोबाइल था। बिंदास अपनी ही धुन में मगन थी, कभी कभी नजरें घुमाकर इधर उधर देख लेती। उसे देखकर खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी हुई महिला ने अपने साथ बैठे हुए पुरुष से कहा, देखा क्या जमाना आ गया है, इसको देखकर लगता है जरूर किसी बार में आइटम गर्ल होगी। पुरुष, तुम्हें कैसे पता कि ये कोई आइटम गर्ल ही होगी?
0: अच्छा।
1: अरे देखो तो कैसे कटी फिटी जीन्स पहन रखी है, और टॉप तो देखो ऐसा झीना है कि अंदर का सब कुछ नजर आ रहा है। ये ऐसी लड़कियों का तो कोई चरित्र ही नहीं होता, यह तो निकली ही बदन की नुमाइश करने के लिए है। ऐसा लगता है जैसे घर से निकली हैं तो 8-10 लड़कों को पटा कर ही दम लेंगी। अरे छोड़ो, जाने दो, हमें क्या करना, उसकी मर्जी, वह कुछ भी पहने कैसे भी रहे। अरे अरे ऐसे कैसे, कुछ भी पहने कैसे भी रहे, आखिर भारतीय सभ्यता नाम की भी तो कोई चीज होती है। ऐसी बदन उघाड़ू लड़कियां चरित्रहीन होती हैं, जो समाज को गंदा करती हैं। ओफो, अब छोड़ो भी उसको। अच्छा ये बताओ, अब फिर कब मिलोगी? क्या क्यों, अभी जी नहीं भरा क्या? अरे तुमसे भी कभी जी भर सकता है क्या? बताओ ना कब मिलोगी? देखती हूँ आज रात को नलिन टूर से दिल्ली से वापस आ जाएंगे।
0: ओहो, ओहो।
1: अब तो तभी मिलना होगा जब वे अगली बार टूर पर जाएंगे। जब भी जाएंगे मैं तुम्हें पहले से बता दूंगी।
0: वेरी गुड।
1: और सुनो, यही वाला होटल बुक कराना, ये बहुत अच्छा था। अच्छा चलो, अब मेरा स्टॉप आ गया, चलती हूँ, बाय बाय कहकर वह स्त्री अगले स्टॉप पर उतर गई।
0: कहिए,
1: सुनिए, सुनिए ना, कहिए, कहते सुन

0: इन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहदी बेहदी बेहदी खास मेहमान है डॉक्टर रिंकल शर्मा जी। आप कहानीकार हैं, नाटककार हैं, गीतकार, कविता लिखती हैं, आप गजल भी लिखती हैं और बहुत खूबसूरती से अपनी कहानियों को प्रस्तुत करती हैं। डॉक्टर रिंकल शर्मा जी आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी।
0: रिंकल जी आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, हिंदी अकादमी नाटक सम्मान, शिव प्रसाद सिंह शिवपाल अवार्ड आपको प्राप्त है, नाहर सिंह स्मृति सम्मान, अमृतलाल नागर सम्मान, शेरा खत्री कथा शंख सम्मान, कियान कथा सम्मान, बहुत लंबी लिस्ट है आपके अवार्ड्स की। गुजारिश करूंगी अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताएं।
1: देखिए सम्मान वैसे तो सही बात यह है कि जो हमने अभी पहले बोला कि सम्मान जब कोई लेखक कहता है कि आपकी कहानी या रचना पढ़ी वो है, लेकिन फिर भी
0: वो भी रिंकल जी आपकी जो गृह शोभा है उसके कवर पेज पर आपकी तस्वीर आई है
1: जी,
0: वो भी एक बहुत बड़ी,
1: ये बहुत बड़ा सम्मान है।
0: और आप मुझे बताएं इन सब के बारे में।
1: जी देखिए कहते हैं कि अब मेरे लेख पाठकों की प्यार की वजह से, ऊपर वाले के ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से कह सकती हूँ कि पिछले साल हिंदी अकादमी के जो सम्मान घोषित हुए तो उसमें मुझे हिंदी अकादमी नाटक सम्मान घोषित किया गया। साथ ही मेरी कहानी है बत्तो बुआ, जिस जो आपने भी सुनी थी, जो
0: बिल्कुल वही तो आपकी मैं फैन हुई,
1: बिल्कुल जिसकी वजह से मैं कहूंगी कि मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। तो मेरी कहानी को सेरा यात्री कथा गौरव सम्मान से नवाजा गया।
0: क्या बात,
1: मेरे जो एक कहानी है प्यारा सठक, बड़ी प्यारी सी कहानी है, उसे ज्ञान कथा सम्मान मिला। और उसके साथ ही एक अच्छी खबर अभी मेरे पास कुछ ही दिनों पहले आई है कि दूरदर्शन में कुछ कहानियां मंगाई गई थी तो मेरी इस कहानी का चयन हुआ है जिस पर बहुत जल्दी एक शॉर्ट फिल्म बनेगी।
0: क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, किस हस्ती से मुलाकात हो रही है देखिए।
1: तो इस तरह से कह सकते हैं कि लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है जो सम्मान के रूप में, फिर चाहे वो शहादत हसन मंटो कथा सम्मान हो या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान हो, डॉक्टर सरोजिनी नायडू अवार्ड हो, इन रूपों में आशीर्वाद मिलता रहता है।
0: बहुत खूब, अपने दोस्तों को आज क्या देना चाहेंगे आप इस मोड़ पर?
1: एक मैंने जो एक रचना लिखी थी और वो लोगों को काफी पसंद आई।
0: स्वागत है, स्वागत।
1: लेकिन माधुरी जी एक मुश्किल है कि वो तरन्नुम में अगर ना सुनी जाए तो
0: ये तो हमारी गुजारिश है कि आप तरन्नुम में सुनाएं।
1: उम्मीद है कि श्रोताओं को पसंद आएगी।
0: आपका ये रंग भी हम देखने के लिए आतुर हैं रिंकल जी।
1: चलिए तो फिर तो
0: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत
1: जी।

0: ट्विंकल जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से हमारे दोस्तों के लिए समय निकाले, आप हमारे स्टूडियो में चले आए, मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ मुझे नहीं पता।
1: शुक्रिया तो मुझे अदा करनी है माधुरी जी, क्योंकि आपके माध्यम से आज इतने लोगों तक मेरी बात पहुंची है, मेरी आवाज़ पहुंची है, और सच बताएं तो इस बातचीत में बहुत मज़ा आया, समय कहाँ गया पता ही नहीं चला।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों सुन रहे हैं इस शो को डॉक्टर विक्रम गौर, संगीता अहलावत, राजेंद्र अग्रवाल, अरविंद सिंह, उमाशंकर शुक्ला, अलका शर्मा, प्रीता कौशिक, तनिष्क शर्मा, प्रियम वत्स, वीनू, नीता, अमृता, प्रभात, सुदर्शन, उपमा, रितेश, पूर्वा, आर के सिंह, सुजीत, सलमान, अंकित, मुकेश शर्मा, अनिता सिंह, महेश चंद जैन, नेहा अरोड़ा, आर बी कपूर, सुमन, देवेंद्र, बहुत लंबी लिस्ट है, आपका भी मैं अगली बार नाम लूँगी। आप भी मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर।

0: सुरक्षा की बात होती है तो कभी साइबर फ्रॉड की तो कभी ट्रैफिक की। लेकिन आज इसी कड़ी में हम जो बात करने वाली हैं वो बात हम सभी से जुड़ी हुई है, हर किसी के घर से जुड़ी हुई है, हर किसी के लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वेरिफिकेशंस के बारे में, हम बात करने वाले हैं ड्रग्स के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में, और साथ ही थोड़ी सी बात करेंगे सड़क पर चलते हुए लोगों के बारे में जो गाड़ियां चला रहे हैं पर पेशेंस खो चुके हैं, यानी कुछ हद तक ट्रैफिक के भी बारे में। तो बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं, किसी एक टॉपिक पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे मुद्दे, ये सारे टॉपिक हम सबसे और आप सबसे जुड़े हुए हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एसीपी अर्जुन जी, जो कि बटकल के एसीपी हैं और फरीदाबाद पुलिस से जुड़े रहे हैं और काफ़ी समय से पुलिस सेवाओं से जुड़े हुए हैं। तो अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में।
1: धन्यवाद जी।
0: सबसे पहले सर आपसे जानना चाहती हूँ, हम वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे, नशा मुक्ति के भी बारे में बात करेंगे और ट्रैफिक के भी बारे में बात करेंगे। ये तीनों चीज़ें एक आम इंसान से जुड़ी हुई हैं क्योंकि हम सड़क पे जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि ट्रैफिक में लोग अपना आपा खो देते हैं, लड़ने लग जाते हैं अगर ज़रा सी गाड़ी कहीं टच हो जाती है, या अगर कोई आपसे तेज़ चला लेता है तो रोड रेज हो जाती है, या फिर अगर कहीं पर थोड़ा सा भी कट मिला तो रॉन्ग साइड भी गाड़ी निकाल लेते हैं। तो ये एक कंट्रोल लोगों का जो है खुद पर से जाता जा रहा है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नशा, ड्रग्स। बच्चे खास तौर पर से इसमें बहुत छोटी उम्र से इन्वॉल्व होने लगते हैं, लेकिन पुलिस हमसे ज़्यादा जानती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो अपराध को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो है वेरिफिकेशन, खास तौर पर से वेरिफिकेशन। अगर आप अपने घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प लगा रहे हैं या फिर आप किसी व्यक्ति को अपना मकान या दुकान किराए पर दे रहे हैं, तो सर सबसे पहले वेरिफिकेशन से शुरू करते हैं। वेरिफिकेशन कितनी ज़रूरी है ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, विस्तार से समझाएं और फिर उसके प्रोसेस के बारे में मैं आपसे सवाल पूछूंगी।
1: वेरिफिकेशन आम आदमी की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है
0: जी,
1: टेनेंट के लिए भी ज़रूरी है और लैंडलॉर्ड के भी ज़रूरी है
0: जी।
1: आजकल हर घर में कोई ना कोई टेनेंट है, हर घर में कोई ना कोई एक या दो नौकर हैं और उनकी वेरिफिकेशन होती है तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर उनसे कोई गलती होती है या वो गलती करते हैं जानबूझ के, छुपने की कोशिश करते हैं, अपराध की नीयत से कोई काम करते हैं, बहुत लोग नाम बदल के यहाँ रहते हो, अगर उनकी वेरिफिकेशन समय पे हो जाए तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है। अब पश्चिमी बंगाल का आदमी कोई यहाँ आके रह रहा है, काम कर रहा है, फरीदाबाद, गुड़गांव, NCR में, महानगर में अगर कोई काम कर रहा है तो उनको, क्योंकि मानव मात्र की गिनती में बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि भारत में कोई कहीं जा सकता है और एक यूनिक आईडी ना होने की वजह से हम उसको हर जगह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक की वेरिफिकेशन हो। वेरिफिकेशन के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि वेरिफिकेशन अगर करवाते हैं तो लैंडलॉर्ड है उसके लिए एक बहुत सुरक्षा का, मान लिया वो उनके साथ नहीं करे, अड़ोस पड़ोस में कहीं, रात में, दिन में, कहीं भी अगर कोई वो क्राइम करता है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और ट्रेस हो जाएगा
0: जी।
1: इसलिए बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा कहिए, आंतरिक सुरक्षा कहिए, इसमें वेरिफिकेशन प्रति व्यक्ति बहुत ज़रूरी है
0: जी। अर्जुन जी, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है जो स्लम एरियाज होते हैं या जो छोटी कॉलोनीज हैं, फरीदाबाद में काफ़ी ऐसी कॉलोनीज हैं और यहाँ पर किराएदार रखना बहुत कॉमन है, या फिर जो गांव बने हुए हैं अर्बन विलेजेस जिनको आप कह लेते हैं, उनमें लोगों ने एक एक घर में 10-10 कमरे बना रखे हैं, उन 10-10 कमरों में बहुत सारे लोग जो हैं वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर जो काम करते हैं वो रहते हैं, बहुत सारे लेबर वहाँ पर रहते हैं, इनकी वेरिफिकेशन कराना उनके लिए मुश्किल काम होता है। सो क्या कोई ऐसा प्रोसेस या तरीका है, एक तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी प्रॉपर वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, और बाकी इस तरीके से जहाँ पर ज़्यादा टेनेंट्स रह रहे हैं जो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति को लगता है कि इतना तो दिन उसने रहना भी नहीं है जितना मैं वेरिफिकेशन कराऊँ।
1: वेरिफिकेशन के लिए मैम बड़ी सी बात यह है कि हम समय समय पर अभियान चलाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों को आपके FM के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जगह जगह पर अभियान चला के लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, टेनेंट वेरिफिकेशन करवाएं, सर्वेंट वेरिफिकेशन करवाएं। उन स्लम एरियाज के लिए तो हमने यही अभियान रखा हुआ है कि जब जब मौका मिलता है, जब जब पुलिस राइडर्स जाती है, PCR जाती है, ERVs जाती है, फिजिकली जाके लोगों को बताते हैं, और कभी कभी हम एक कॉम्बिंग अभियान चलाते हैं। कॉम्बिंग अभियान में हम एक साइड से ले लेते हैं एक बस्ती को, उसको पूरे को कॉम्ब की तरह छानते हैं, कौन वेरिफिकेशन है दिखाइए, वेरिफिकेशन नहीं होती उनकी उस दिन पकड़ के वेरिफिकेशन करवाते हैं, वेरीफाई करते हैं उनको। एक तो ये है। दूसरा जो आपने प्रावधान पूछा, प्रोसीजर पूछा, उसके लिए हमें दो सिस्टम रखे हुए हैं, एक तो है मैनुअल और एक है ऑनलाइन।
0: ओके।

0: लाइन के लिए ये है कि आपके पास किसी भी व्यक्ति ने जो वेरिफिकेशन करवानी है, हमारा हर समय पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाएंगे, उस पे वेरिफिकेशन लिख के आएगी, टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, सर्विस वेरिफिकेशन और पांच चार वेरिफिकेशन और है उनमें। तो जैसे मोस्टली हम जब देखते हैं तो टेनेंट वेरिफिकेशन और सर्वेंट वेरिफिकेशन है, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो उन पे अपलोड कर देंगे, उनके अपलोड करने के बाद वो पोर्टल के माध्यम से हमारे पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएंगे, पुलिस स्टेशन के लोग उसको देख के उस जगह पे वेरीफाई करके, उस आदमी को वेरीफाई करके, दो लोगों को वेरीफाई करवा के वापस अपलोड कर देंगे और वो वहाँ आके वापस उसी पोर्टल पे आके जैसे अब क्लिक होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी और आपको सर्टिफिकेट निकाल लेंगे। एक प्रोसीजर तो ये है। दूसरा ये है कि अगर कहीं कुछ दिक्कत आती है, नहीं करवा पाता कोई आदमी, तो वो एक हमारा चैम्बर बना हुआ है, उस चैम्बर में वो जाएं और वहाँ 9 to 5 चलता है, वो सीपी ऑफिस में हमारे यहाँ
1: जी,
0: और वहाँ पे रसीट कटती है, वो आपको डॉक्यूमेंट लेके रसीट काट के दे देंगे, वो फिजिकली कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में चला जाएगा, वो लोग उसी तरह वेरिफिकेशन करवा के वापस वहाँ जमा करवा देंगे और उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये प्रोसीजर है।
1: यानी पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आकर वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे
0: जी।
1: इसमें सर मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो जरूरी होते हैं। एक आधार कार्ड जो है वो तो अब सभी के पास होता है।
0: हम दो डॉक्यूमेंट, दो आईडी रिक्वायर रखते हैं, एक आधार प्लस एक आईडी कोई और जो फोटो वाली आईडी रहे, जैसे डीएल है, कोई पासपोर्ट है, कोई और है, जो भी फोटो वाली दो आईडी को देखते हैं ताकि उनको मैच करवाने में, उनको वेरीफाई करने में दिक्कत ना हो, एक पे भरोसा ना रखें हम
1: जी, जी, जी।
0: दो आईडी मांगे,
1: यानी जिन पे आपकी फोटो लगी हुई हो सिर्फ दो चीजें,
0: दो आईडी
1: वो मांगी जाती हैं।
2: तो आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में एसीबी बटकल श्री अर्जुन जी से, बहुत सी बातें और भी जारी रहेंगी। अभी हमने जाना वेरिफिकेशन के बारे में, आगे भी हम बहुत से ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो आम इंसान से जुड़े होते हैं। खास तौर पर से हम बात करेंगे नशा मुक्ति अभियान जो फरीदाबाद पुलिस चला रही है और साथ ही ट्रैफिक को लेकर क्या कर रही है ट्रैफिक पुलिस। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम सुरक्षा संवाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ कार्यक्रम सुरक्षा संवाद, जिसे आपके बीच लेकर आता है फरीदाबाद पुलिस। और आज इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं नशा मुक्ति अभियान, वेरिफिकेशन और फरीदाबाद के ट्रैफिक के बारे में। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं ACP बटकल श्री अर्जुन। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फरीदाबाद में क्या वाकई लोग वेरिफिकेशन कराते हैं बहुत ज्यादा या कम ही है?
1: नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो वेरिफिकेशन करवाते हैं खुद से, फिर हम अभियान चलाते हैं, फिर हम रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और खुद जाके लोगों को जागरूक करते हैं। तो बहुत लोग करवाते हैं, विशेष अभियान में बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन होती है, बहुत ज्यादा। एक डेटा बन जाता है पुलिस के पास, कोई गड़बड़ करता है, कोई क्राइम करके भागता है, या यहाँ दिन में कोई क्राइम कर रहा है, रात में क्राइम कर रहा है, कहीं रात में काम कर रहा है, कहीं दिन में काम, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सेफ्टी की दृष्टि से वो ठीक ठाक एनालाइज कर लेते हैं।
0: दिल्ली NCR में एक बहुत प्रचलन है कि यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प जो है वो फुल टाइम होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और मेट्रो सिटीज़ में ये कल्चर आ गया है सपोर्ट के लिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। ऐसे में सर, एहतियात के तौर पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप डोमेस्टिक हेल्प रख रहे हैं सुबह से रात तक, या फुल टाइम है आपके पास 24 घंटे? अब कई बार ना लोग विश्वास में आ जाते हैं कि ये हमारी डोमेस्टिक हेल्प थी, उसकी बेटी है या बेटा है, वो हमारे घर में रह रहा है, हम उसे 10 साल से जानते हैं, तो इतना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, शायद उसे बुरा ना लग जाए।
1: लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर कोई विश्वास पात्र आपके पास सर्विस दे रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करवा ले अपना। देर सवेर कहीं ना कहीं जिस दिन दिक्कत आती है उस दिन वो विश्वास रखा रह जाता है और कागज आपके पास होता नहीं है। तो ये हमारी राय ये है, हमारी प्रार्थना भी है ये आम जन से, कि वो मैक्सिमम अपनी वेरिफिकेशन करवाएं टेनेंट की और सर्वेंट की।
0: आजकल सर काफी ट्रेंड चल गया है कि लोगों ने अपने जो घर हैं वो टूरिस्ट प्लेसेस पे खास तौर पर से छोटे छोटे समय के लिए रेंट पे देना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे शहरों की जहाँ पर टूरिस्ट अब ज़्यादा जाने लग गया है, पहाड़ी एरिया हो गए, या लोग वैसे ही घूमने के लिए चले जाते हैं कि वीकेंड आ रहा है, बट वो ऑफिशियली होम स्टे नहीं होते हैं, या फिर ऐसा कहें कि होटल्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे से घर हैं और घर में एक कमरा दे दिया कि यंगस्टर्स आ गए, उनको कितना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको स्पेशली गाइडलाइन जारी की गई है कि जिसको भी आप किराए पे रखेंगे, वो चाहे परमानेंट टेंट रखें, 2 दिन के लिए रखें, होम स्टे में रखें, होटल्स में रखें, ओयो में रखें, जैसी जिसकी सुविधा बनती है, ये सेकेंडरी मैटर है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, बट जिस आदमी को आप रख रहे हैं तो कम से कम उसका रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कर लें, उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें कि आपके पास प्रॉपर आईडी फोटो स्टेट की हुई हो, आपने आईडी मैच करवा रखी हो कि जो आईडी दे रहा है, क्योंकि आधार पे, पैन पे, इन पे कई बार फोटो ऐसी होती है वो मिसमैच सी लगती है, तो अच्छे से वेरिफिकेशन करके अपने पास अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और रजिस्टर हम हर महीने लगभग चेक करते हैं कि आपके पास कितने लोग आए हैं किराए पे, ऐसी सबकी लिस्ट होती है, तो सबको चेक किया जाता है बीच बीच।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी अगर आप अपने घर को किसी भी फॉर्म में किराए पर दे रहे हैं, चाहे आप 10 दिन के लिए दे रहे हैं, चाहे आप होटल बना रहे हैं, चाहे आप होम स्टे कर रहे हैं, चाहे वैसे ही किराए पर दे रहे हैं, आपको ज़रूर वेरिफिकेशन कराना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग सर एक शहर में रहते हैं और दूसरे शहर में घर किराए पे होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने घर किराए पे दे दिया, आप 2-2, 3-3 साल वहाँ जाते ही नहीं हैं, और वहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं कुछ नहीं पता होता। अब आजकल समय ऐसा है कि आसपास वाले भी ज़्यादा मेलजोल नहीं रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कितने कितने समय में क्या एहतियात बरतना चाहिए?
1: ऐसी परिस्थिति में 89 डेज का प्रावधान है कि 90 दिन किसी टेनेंट को ना होने दे, किराएदार जहां बैठे हैं आपके, जब आप किसी शहर में रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट 90 दिन से पहले एक बार उनको चेक कर लें कि जिसको आपने किराए पे दिया क्या वही वाकई रह रहा है, जिसकी वेरिफिकेशन आपने करवाई वही रह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप जा नहीं रहे 6 महीने, और 6 महीने बीच में कोई और लोग घुस गए उसमें, ताकि वो वेरीफाइड भी ना हो और आपके साथ भी कोई गड़बड़ हो जाए तो पता चले आपको। तो इसलिए हर 3 महीने में 89 डेज में हर जो ऑनर है जिसने किराए पे दे रखा है, तो उससे यही अपील करते हैं बार बार कि वो अपने टेनेंट्स को चेक करता रहे कि यही टेनेंट है जिनके हमने वेरिफिकेशन करवाई थी।
0: जी, और ये मुझे लगता है लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपका एक घर कहीं बम्बई में है या लखनऊ में है, और वहाँ पर आपने वो किराए पे दे रखा है, तो आप कहाँ जा पाते हैं, लोगों के पास में समय होता है, बट एक्चुअली में 90 दिन में अगर जा रहे हैं तो आप चेक रख पाते हैं कि वाकई वही लोग रह रहे हैं या कुछ और गतिविधियाँ चल रही हैं, तो घर के अंदर जाके एक बार जरूर देखें, आपका घर है कोई रोकेगा नहीं आपको, आप फोन करके जाएं चाहे वैसे जाएं,
1: बिल्कुल
0: पर जाना जरूर चाहिए।
2: बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं तो बिल्कुल भेज सकते हैं हमें 8010781078 पर। और साथ ही अगर आप ये कॉन्वर्सेशन इस पॉडकास्ट को किसी के साथ शेयर करना चाहें या सुनना चाहें तो फिर आप हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको सुरक्षा संवाद के नाम से ACP श्री अर्जुन के साथ ये सारी बातचीत मिल जाएगी जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। वक्त है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें जारी हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में। एसीपी अर्जुन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसीपी हैं बटकल क्षेत्र के फरीदाबाद में, और इस कार्य को करते हुए बहुत से वक्त हो गया है इनको, और ये आज जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं वो है वेरिफिकेशन। जी हाँ, वेरिफिकेशन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नशा मुक्ति और फरीदाबाद के ट्रैफिक को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। आइए करते हैं और भी विस्तार से बात। अब सर बात करते हैं एक ऐसी परेशानी की जो एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में कह रहा हुआ है, और वो है नशा। अब नशा एक तो होता है अल्कोहल, जो आम तौर पर लोग लेते हैं, बड़ी उम्र के भी लेते हैं और कुछ यंगस्टर्स भी लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नशा होता है ड्रग्स का, जिसके बारे में वर्ल्ड वाइड बहुत से अभियान चलाए जाते हैं। हर देश कोशिश करता है कि ड्रग्स के सर्कुलेशन को लोगों तक पहुंचाने में रोका जाए, पर फिर भी ये खुलकर बिकता है और खुलकर युवा जो है इसको कंज्यूम करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे अब इस मुद्दे पर ये है कि हम अपने आसपास आजकल बहुत सारी फिल्में देख रहे हैं, बहुत सारे गाने देख रहे हैं जिसमें गन कल्चर, ड्रग्स कल्चर, वीड की बात, इस तरीके के बहुत से शब्दों का इस्तेमाल होता है और खुल के होता है। रोक भी लगी है, एक बीप लगाने से सबको समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या है वो दिख जाता है, पता चल जाता है। अब इससे युवा कितने प्रभावित हो रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद इस प्रोफेशन में हैं कि आप युवाओं के पूरे आंकड़े या फिर कुछ जानकारियां ज़्यादा हम एक आम आदमी से ज़्यादा रखते हैं।
1: मैम बिल्कुल सही सवाल है आपका। नशे से सरकार नशे के प्रति बहुत बड़े अभियान चला रही है। सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग हम फरीदाबाद में कहें तो 36-37 डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए सरकार की हिदायत है कि नशे को बिल्कुल बंद करना है, नशे को नो कहना है, किसी सूरत में नशे को यस नहीं कहना है। और नशे की वजह से हमारी पीढ़ी समाप्त हो रही है, खासकर युवा पीढ़ी जिसको पता नहीं है, बच्चे जिनको अंदाज़ा ही नहीं है जीवन में क्या हो रहा है क्या चल रहा है, वो कोई सीरीज़ देख के कहिए या कोई रील देख के कहिए कि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। और जो ड्रग पेडलर है उनके लिए भी बच्चा एक आसान सा स्टेप है, उसको मोल्ड करना, उसको पैसे का लालच दे के खुद को उसको डाल देना या आगे ड्रग पेडलिंग में यूज कर लेना बड़ा आसान है। इसके लिए पुलिस के द्वारा विशेष अभियान अब भी चल रहा है, और हर 15 दिन में एक पुलिस स्टेशन, कोई ना कोई एक पुलिस चौकी, कोई ना कोई कार्यक्रम हर एक बस्ती में, हर एक बीट लेवल पे, बीट लेवल का मीन 2-3 गलियों तक के हम प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और इस विषय में मैं यही कहूँगा कि शराब को पीछे छोड़ दिया है नशे ने। आज के दिन अगर ये कहें कि शराब नशा नहीं रहा, नशे की गिनती में नहीं रहा, नशे की गिनती से बाहर हो गया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आजकल गांजा, भांग, चिट्टा और कई तरह के सिंथेटिक नशे हैं, कोई सूखे नशे हैं, वो इतने आगे हैं कि आप शराब को भूल जाएंगे। हम नशे के किसी भी सूरत में हक में नहीं हैं। रोज प्रचार प्रसार करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, परिवारों में जाते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, ये कहने के लिए कि एक आदमी नशे के चपेट में आता है तो कम से कम पूरा परिवार खत्म कर देता है। तो नशे के जागरूकता के बारे में बच्चों को हम जाते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि एक व्यक्ति 5 लोगों को नशे की बुराइयां बताए, अपने आप नशा कम होता जाएगा, और लोग खुल के विरोध करें। जो लोग नशा करते हैं वो तो पीड़ित है, नशा कहाँ से आ रहा है, वो वहीं बस्ती से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो वो लोग नशा बेचने वालों का हर हाल में विरोध करें। एक बार देशव्यापी विरोध हो गया तो नशे को जगह नहीं मिलेगी।
0: जी जी, और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये जो पूरा एक चलता है सिस्टम, ये एक देश से दूसरे देश बहुत इजीली चला जाता है।
1: ये वर्ल्ड वाइड है, प्रतिबंधित है, फिर भी वर्ल्ड वाइड है।
0: हाँ।
1: प्रतिबंधित है, किसी भी देश में नशा शायद ही कहीं खुला हो, हर एक जगह प्रतिबंधित है, लेकिन हर एक जगह नशा है। तो इसके लिए वर्ल्ड वाइड अभियान चला रखे हैं, भारत सरकार ने विशेष अभियान चलाया हुआ है, विशेष टीमें गठित की है, पुलिस ने अपनी विशेष टीम गठित की है, रोज कम से कम 5 या 6 प्रोग्राम स्कूलों में, पब्लिक में, स्लम बस्ती में, सबको जाके नशे के प्रति जागरूक करते हैं, और उन लोगों के प्रति कार्रवाइयाँ रोज हो रही है। आंकड़े देखेंगे तो हमने अभी NDPS की जितनी भी FIR लॉज की है उनके आंकड़े के हाई लेवल पे गए, वो इसलिए कि इधर जागरूकता अभियान है, इधर धरपकड़ शुरू है, तो लोग भी सहयोग कर रहे हैं लेकिन छुप के कर रहे हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि लोग खुल के सामने आए, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है हमें क्या ले रहा है, हमारा क्या ले रहा है। सवाल आपका हमारा नहीं, सवाल पीढ़ी का है। वो घूमते घूमते पता नहीं किस दिन किसके घर में नशा घुस जाएगा, हम सोच भी नहीं पाएंगे। सबसे अपील यही करते हैं कि नशे के विरोध में खड़े हों और हर आदमी जहाँ खड़ा है वहीं से चार लोगों को जागरूक करे, यही अपील करते हैं।
0: जी जी सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी ये शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि आप बहुत क्लोजली बच्चों को भी देखते हैं, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, बड़ों को भी देखते हैं, ये शुरुआत कैसे होती है, कैसे बच्चों को फंसाया जाता है इस पूरे ट्रैप में?
1: बच्चे का मन बिल्कुल साफ बिल्कुल शुद्ध होता है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, घर में होता है तो माँ बाप को रोल मॉडल मानता है, स्कूल में पढ़ता है तो टीचर्स को रोल मॉडल मानता है। इसी तरह से उसकी जो दिमाग की मॉडलिटी है, जो उसका मूव करना है, उसका सीखने का, लर्न करने का या उसको मोल्ड करने का जो सिस्टम है बहुत नरम है। इसी का फायदा उठा के घुसपैठिए कहिए या उनसे थोड़ी बड़े उम्र के कहिए या ऐसे लोग जो बच्चों को बरगलास के, वो बच्चों की मार्फत एंट्री करते हैं,
0: यानी बच्चों को अपने उसमें
1: चंगुल में फंसाते हैं,
0: चंगुल में फंसाते हैं।
1: एक बार जो बच्चा या तो पेडलिंग में, ड्रग पेडलिंग में आ गया या बच्चा कंज्यूम करने लग गया, तो वो नशे ऐसे हैं कि शराब छूट सकती है, वो नशे छूट नहीं सकते, वो दलदल में धंसता चला जाता है। इसीलिए हम बार बार अपील करते हैं कि सब लोग नशे वालों के खिलाफ खड़े हों, एकजुट एकजुट, जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई हमारी जन जन के पास थी, तो आज वो समय आ गया है कि जन जन को नशे के खिलाफ बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब इस चीज के लिए शायद इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर जिसके घर में होता है सिर्फ वही समझ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: और कुछ हमारे देश में ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से है। सर, इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बच्चा अगर एक बार इस चीज में फंस जाता है, एज क्या होती है नॉमिनल, जो अगर हम एक नॉर्मल एज देखें बच्चे,
1: मान के चलेंगे हम 12-13 साल का बच्चा अगर बड़ा इजी फंसता है इसमें, उसको पता नहीं होता इसकी बुराइयां क्या है, क्योंकि वो 12-13 की जो एज होती है वो 18 साल से नीचे और 12 साल से ऊपर की एज होती है, तो वो घर वालों की प्रतिबंधता को नकारते हुए दोस्तों में जाना पसंद करेगा। हर प्रत्येक वो चीज जो उनका परिवार, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स मना करेंगे, उसकी तरफ वो दौड़ेगा, और उसी का फायदा ये ड्रग पेडलर उठा के उसको शिकार बनाते हैं।
0: मतलब 12 साल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता को बहुत ध्यान देना चाहिए।
1: 12 से 18, जैसे 18 पार कर जाएगा बच्चा तो वो समझने लगेगा, देखने लगेगा, उसमें जिम्मेवारी थोड़ी थोड़ी आने लगेगी, वो समझता। ये बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी के, मान के चलो जो रूप देंगे इन बच्चों को वही रूप चला जाएगा, तो इसी का फायदा उठा के लोग घुसपैठ करते हैं।
0: जी जी, और सोशल मीडिया इसमें कितना रोल प्ले करता है आपको?
1: सोशल मीडिया रोल प्ले करता है, पीछे जो बहुत ऐसे गाने भी हुए हैं जिनमें नशे की बात, गन कल्चर की बातें आई, वो प्रतिबंधित भी हुए हैं, बट सरकार भी अपने लेवल पे काम कर रही है, पर ये सरकार के साथ सहयोग करना पड़ेगा आम जन को। सरकार काम कर रही है आम जन के लिए, आम जन को भी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, जो सरकार चाह रही है कि ये काम नहीं होना चाहिए, और उसमें भी आम जन के ही आदमी है, सरकार के आदमी बहुत नहीं मिलेगा कोई आदमी के सरकार का आदमी कोई इस काम में हो, तो आम जन का आदमी है, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इस बात के लिए कि आइडेंटिफाई किया हमने, ये आदमी नशा भेजते हैं, यहाँ ये एक्टिविटी हो रही है, ये प्रशासन को बताना पड़ेगा, तभी एक्शन हो पाएगा। मान लिया कोई PCR राइडर गश्त पे है तो वो पेट्रोलिंग कर रही है, उनके सामने से हट गया, तो आम जन जिसने देखा वो रिपोर्ट करे, उस पे एक्शन होगा।
0: तो लोग क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं, अभी भी डरते हैं पुलिस से?
1: पुलिस से नहीं डर रहे हैं, दिक्कत कई तरह की है, कुछ लोग तो इस बात के लिए अवेयर नहीं है कि हम क्यों करें,
0: एक जागरूकता नहीं,
1: जागरूकता नहीं है। हम जागरूकता अभियान इसीलिए चला रहे हैं, सरकार ने एक विशेष टीमें बना के हर एक डिपार्टमेंट को बोला है कि रोज कोई ना कोई जागरूकता अभियान चलाएंगे। आप पेपर देखेंगे तो रोज पुलिस भी कर रही है और डिपार्टमेंट भी नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं और वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं।
0: जी, तो नशा मुक्ति की जब हम बात करते हैं सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी किस किस तरीके के नशे जो हैं आते हैं। हमने पहले देखा था कि दवाइयां बहुत ऐसी होती हैं जो प्रतिबंधित होती हैं पर वो मिल जाती हैं इजली, दवाइयां जो होती हैं वो कितना इफेक्ट करती हैं, कैसे बच्चों को फंसाती हैं, और इसके अलावा क्या क्या होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को जनरली नहीं पता होता, ये सिर्फ यंगस्टर्स को पता होता है कि किस किस तरीके के नशे जो हैं वो मिल रहे हैं, किस किस फॉर्म में मिल रहे हैं, क्या उनका कलर होता है, क्या वो लिक्विड हैं, इंजेक्टेबल हैं, या पाउडर्स हैं, या टैबलेट्स हैं, क्या है?
1: बच्चे को जो सबसे पहले नशे की तरफ लेके जाते हैं, कहीं कहीं से शराब का सेवन बहुत कम रह गया है, उससे पहले सिगरेट में कुछ मिला के पिला दिया, एक बार उसने सुट्टा लगा लिया, जो सुट्टे के नाम पे बहुत रील्स आती हैं, बहुत सीरीज आती हैं, तो उनको वो देखता है बच्चा, वो सुट्टा लगा लिया, उसने जब एक बार लगा लिया तो उसी में कुछ कुछ कुछ देते जाते हैं। वो इंजेक्ट की स्टेज जो आती है वो तो 3rd-4th स्टेज है,
0: काफी बाद में
1: होता, उससे पहले तो कुछ और चीजें हैं, उनको कुछ मिला के खिला दिया, कुछ पिला दिया, सिगरेट में पिला दिया या कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया, इस चीज़ के आते हैं। इंजेक्ट वाली स्टेज तो लास्ट में आते हैं। इंजेक्ट वाली स्टेज के बाद संभलना बड़ा भारी काम है, बहुत भारी काम है। वो तो ड्रग एडिक्शन सेंटर में भी बात बन सकती है, अदरवाइज बाहर नहीं पेरेंट्स रोक पाए,
0: खुद नहीं छोड़ सकते।
1: नहीं, जो क्योंकि जैसे ही वो नशे की तरफ घुसेगा तो वो घर से परिवार से कटने लगेगा, चोरियां करने लगेगा बच्चा, तो क्राइम की दुनिया में इसी रास्ते से इंटर करते हैं लोग। तो नशा बहुत बुराई मानेंगे हम तो, कि नशा किसी सूरत में नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल, यानी इतनी सारी चीज़ें जो दुनिया भर में मिल रही हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनकी 12-13 साल की उम्र है और इन टीनेजर्स को आप एकदम सही जीवन देना चाहते हैं तो इनके साथ थोड़ा समय बिताना ज़रूरी है, इनकी थोड़ा सा चेक रखना भी ज़रूरी है।
1: हम तो ये कहेंगे कि बच्चे को दोस्त की ज़रूरत होती है और वो दोस्त घर से बाहर तलाशता है। हम पेरेंट्स से प्रार्थना करेंगे कि वो दोस्त अपने आप को मोल्ड करके अपने आप को तरीके से उसके दोस्त बन जाएं, ताकि उसको दोस्ती के लिए बाहर ना जाना पड़े। आप पेरेंट्स का हिटलरशिप ना चला के मित्रता पूर्ण उनके साथ रहिए, ताकि
0: वो की बात करें।
1: हाँ, ताकि वो 70% कम से कम 80% 70% आपके साथ बात कर ले, तो उससे उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको उनके पास जाने की। वो दिक्कत का बात यह है कि हम पेरेंटिंग करते करते ये भूल जाते हैं कि बच्चे की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चेंजेज आते हैं बच्चे में, ऐसे हार्मोनल चेंजेज आती हैं, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, तो उन चेंजेज को वो आपसे शेयर ना करके कहीं और शेयर करें। इससे अच्छा तो आप एजुकेट करें बच्चे को, फ्रेंडशिप रखें उसके साथ, ताकि वो आपसे शेयर कर ले तो नौबत नहीं आएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, सुरक्षा संवाद में बातचीत जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM मैं हूं दीक्षा, आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे खास मेहमान ACP बटकल अर्जुन जी, जो कि फरीदाबाद पुलिस में हैं और साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम के आज गेस्ट भी हैं। हम इस कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से और बहुत से अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। आज जिन विषयों पर हमने बातचीत करी है वो है वेरिफिकेशन, यानी आप अपने घर में अगर कोई हाउस हेल्प रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, या फिर आप अपना घर या दुकान किसी को रेंट पर देते हैं, तो वेरिफिकेशन कराना यानी पुलिस वेरिफिकेशन का क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से वेरिफिकेशन कराना लाभदायी साबित हो सकता है, इस पर चर्चा करी है। साथ ही हमने नशा मुक्ति पर बात करी है और फरीदाबाद ट्रैफिक के बारे में भी बात कर रहे हैं।
1: सर, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, तो क्या ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई इन्फॉर्म कर रहा है तो उसकी पहचान, उसका नाम जो है वो एकदम छुपा के रखा जाएगा, रिवील नहीं किया जाएगा?
2: बिल्कुल ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, हमने नीचे कांस्टेबल लेवल तक ये कहा हुआ है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन आने के बाद उस पर एक्शन होना चाहिए। जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उनका नाम, बेशक उनकी झूठी कंप्लेंट रही हो या कामयाबी ना मिली हो, उनका नाम ना पब्लिश करेंगे ना किसी को बताएंगे हम। वो हमारे लिए एक सोर्स है, अच्छा सोर्स है, आज नहीं तो कल वो हेल्प ही कर रहे हैं हमारी। तो पहले ही ऐसा था, कुछ साल पहले, 15 साल पहले कहेंगे तो पुलिस के पास जाने से लोग कतराते थे, पुलिस को बताने से कतराते थे, हम लफड़े में क्यों पड़े। अभी ऐसा नहीं है, अगर आदमी कोई बताता है, इंसान बताता है, तो उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रखी जाती है और उस पर एक्शन होता है।
1: जी बिल्कुल, यानी सीक्रेट आइडेंटिटी का प्रावधान है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो वो इजिली कंप्लेंट कर सकता है। अब सर बात करते हैं ट्रैफिक, क्योंकि दो मुद्दे ऐसे रहे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आम इंसान के, उन पे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब ट्रैफिक के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जो घर से बाहर निकलेगा वो ट्रैफिक का सामना करेगा, और गाड़ी भी चलाएगा, बाइक भी चलाएगा, स्कूटर, साइकिल, नहीं तो पैदल तो चल ही रहा है। तो इन सड़कों पर जो रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, तो आज कल के समय में क्यों लोगों में सब्र नहीं है सड़क पर चलते हुए, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर आप चल रहे हैं, अगर लिमिट 100 की है तो 120, 130 से नीचे कोई नहीं चलाना चाहता, और ऐसे में एक्सीडेंट होना लाजमी होता है। दूसरी चीज़ जो सुबह के वक्त होती है या शाम के वक्त होती है, सुबह ऑफिस पहुंचने की जल्दी होती है, आप लेट निकलते हैं घर से, ट्रैफिक हल्का सा मिलता है तो आप रॉन्ग साइड लेते हैं, शाम को आपको वैसे ही घर जल्दी पहुंचना होता है क्योंकि आप थक चुके होते हैं, तो लोग रॉन्ग साइड बहुत लेते हैं। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई सड़क पर चल रहा है, उसने ज़रा सा आपसे तेज़ गाड़ी निकाल ली तो आप रोड रेज में आ जाते हैं, और इसकी वजह से सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होते, हमने ये देखा है कि मार पिटाई से लेकर खून खराबे तक की बात आ जाती है।
2: बिल्कुल सही बात है। आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से पेशेंस लूज हो गया है। पेशेंस लूज हो गया तो वो ना तो रोड रेज से चूकता है, वहाँ पे भी बिल्कुल तुरंत से एक्शन करके लड़ना पसंद करता है, और ना ही ट्रैफिक के जो प्रेशर है ट्रैफिक का उसको सहन कर पाता है। अब छोटा सा उदाहरण NCR का, हम यहाँ से फरीदाबाद से गुड़गांव का लेते हैं जी। गुड़गांव से फरीदाबाद जाने के लिए एक सड़क जाने की है और एक सड़क आने की है। एक सड़क पे जाते वक्त दो व्हीकल साथ निकल सकते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा समय होता है जो ट्रैफिक रश होता है, क्रॉल करके चलता है, उसमें लोग पेशेंस करने के बजाय ओवरटेक करके आ जाएंगे, रॉन्ग साइड चले जाएंगे, तो आपकी ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रही, स्लो चल रही है, इतना ही है, थोड़ी देर क्योंकि प्रेशर है सुबह शाम का तो स्लो चलेगी। आप उसको थोड़ा जज्ब कर लें, अंदाज़ा लगाएं कि हमारी वजह से दूसरों को दिक्कत ना हो। जो सामने से आने वाला है उसने कोई गलती थोड़ी की है, हम दूसरी साइड रॉन्ग साइड चले जाएंगे, जाम लग जाएगा, वो सब लोग ओवर फंस जाएंगे, इससे अच्छा तो अपनी रो में चले, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जहाँ 15 मिनट लगने थे वहाँ 17 मिनट लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 2 मिनट से फालतू। लॉन्ग ड्राइव तो आप कहीं 100 की स्पीड पे जा रहे हैं और उसी स्पीड को आप 120 कर दें तो 300 किलोमीटर पे जाके 12 मिनट का फर्क पड़ता है। 300 किलोमीटर सफर करने पे 12 मिनट का फर्क पड़ेगा, 12 मिनट के लिए आप अपनी दूसरों की परिवार की जिंदगी दाव पे लगा देते हैं। और NCR में तो इसलिए कि सब आदमी काम करने के लिए निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, तो प्रेशर होता है, ये मन मनाना पड़ेगा लोगों को भी इस वक्त ट्रैफिक का प्रेशर है, ना कोई जाम है, ना कोई देर है। अब एकदम से जब टोल पे चले जाएंगे तो टोल की लंबी लाइन हो जाती है, लंबी लाइन में थोड़ा पेशेंस करना पड़ेगा, उसको भी टाइम लगता है जी। वो रीड करेगा, सर्च करेगा, निकालेगा, इतना
1: और कभी टेक्निकल एरर्स भी हो जाते हैं,
2: बिल्कुल नॉर्मल। तो हमें पेशेंस की जरूरत है, और सड़क पे जो घर से निकलता है वो अपने काम से निकलता है, कोई लड़ने के लिए, कोई एक्सीडेंट करने के लिए नहीं निकलता। एक्सीडेंट बाय चांस हो जाता है, तो हमें पेशेंस की जरूरत है। और दूसरी बात, मैं तो ये भी कहूँगा, एक्सीडेंट चलो हो गया तो हम जो लाखों रुपए इंश्योरेंस के देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि वो ठीक करवा लेना, कि इसलिए देते हैं कि हम लड़ लें।
1: बिल्कुल, लड़ने की आदत बहुत दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है।
2: वो अग्रेसिव इसलिए हो गए हैं कि उनके फिजिकल वर्कआउट नहीं रहा। अगर कोई इंसान फिजिकल वर्कआउट, योग, प्राणायाम करेगा, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, जिम जाएगा और जाएगा, तो उससे उसका स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, तो उससे फिर वो लड़ने की तरफ नहीं जाएगा, काम की तरफ फोकस करेगा। जो आदमी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा उसके दिमाग में एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे, स्ट्रेस के चक्कर में लड़ भिड़ पड़ता है वो।
1: बिल्कुल, यानी कहीं का गुस्सा
2: कहीं निकलता है। बिल्कुल सही कहा आप।
1: और हमेशा हमने ये देखा है कि जो भी स्ट्रांग होता है वो अपने से कमजोर वाले गुस्सा निकालता है, तो वही चीज हो जाती है कि आपकी गाड़ी बड़ी है, आप छोटी गाड़ी वाले से लड़ लेते हैं या ऑटो वाले से लड़ लेते।
2: बड़ी गाड़ी रखी है, इंश्योरेंस की गाड़ी रखी है, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं समय पे, तो ये हमें बड़ा दिल करना पड़ेगा कि वो इंश्योरेंस इसीलिए दिन के लिए पे किया था हमने, कि अगर कोई छोटी मोटी बात गलती से, ना गलती से एक्सीडेंट हो गया तो उसके कवर करने के लिए हमने इंश्योरेंस करवाया था, ना कि लड़ने के लिए करवाया था। ये पेशेंस हमें बड़ा दिल करके करना ही पड़ेगा
1: जी। अब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बिल्कुल अपने दो मिनट बचाने के लिए रॉन्ग साइड लेते हैं? और खास तौर पर से मैंने ये देखा है कि फरीदाबाद में रॉन्ग साइड का कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा है। आप दिल्ली जाएं चालान से डर लगता है, लेकिन फरीदाबाद में लोगों को शायद चालान से डर ही नहीं लगता है। हालांकि हम बहुत ट्रैफिक ऑफिसर से बात कर चुके हैं और उन सब के बाद चीज़ें यही निकल के आती है कि चालान तो बहुत हो रहे हैं, अभियान तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहे।
2: अभी इसमें दो बातें कहेंगे हम। एक तो NPR कैमरेज लगा रखे हैं, हर एक जगह कैमराज हैं, उनमें बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारा चालान हो कहाँ रहा है। वो रॉन्ग साइड जाएंगे और उनका हो जाएगा। पीछे एक किसी ने आके बताया, जी मेरा 1,12,000 का चालान हो गया स्कूटी का।
1: अच्छा,
2: हम बहुत हैरान थे इस बात के लिए कैसे हुआ। पता चला कि वो श्रीमान जी घर से निकलते हैं विदाउट हेलमेट होते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं और सिग्नल जंप करते हैं, तो तीन चालान आते वक्त हर रोज लेते
1: हैं,
2: छह चालान डेली के ले रहे हैं। तो वो उनको पता ही नहीं चला, 3 महीने में लगभग वो 1,00,000 कुछ के पार निकल गए।
1: अच्छा,
2: उसके बाद उनको दिमाग में आया, वो खुद अब 2-3 जगह में पता चला कि वो खुद लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, आपके घर चालान पहुंचे।
1: ये फरीदाबाद के हैं,
2: ये फरीदाबाद के हैं। दूसरा एक अभियान और चलाया फरीदाबाद पुलिस ने कि रॉन्ग साइड जाने वालों को कोशिश करेंगे हम कंट्रोल करें, फिर भी ना हो तो रॉन्ग साइड जब एक जहां बीच में डिवाइडर बना हुआ है, एक सड़क जाने की है एक आने की है, अगर उस पर रॉन्ग साइड है तो उसका चालान की बजाय व्हीकल जब्त करके पैदल जाए।
1: जी,
2: स्पष्ट पता है कि हमें ये सड़क जाने की और आने की, फिर भी धक्का कर रहे हैं, तो उनके व्हीकल जब्त कर लिया जाए, वो पैदल टैक्सी से निकल जाए, वो एक बार जाएंगे दोबारा नहीं जाएंगे,
1: दोबारा नहीं जाएंगे। तो ये सिग्नल जरूरी है,
2: ये लास्ट में आके तब करनी पड़ी जब जागरूक अभियान चला दिए हमने, सब कुछ कर दिया, फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो मन मना के चला है, तो मन मना के पुलिस ने मन मना लिया है कि जी ऐसे जो करेंगे उनका व्हीकल जब्त कर लिया जाए, उनको पैदल भेजा जाए।
1: और जब्त करते हैं?
2: हाँ करते हैं, शुरू कर दिया काम,
1: कर दिया है। तो शुरू, जो लोग हमें सुन रहे हैं और वो रॉन्ग साइड के आदि हो चुके हैं, तो आपको हम ये बता दें कि गाड़ियां जब्त करने का जो ट्रेंड है वो फरीदाबाद पुलिस का शुरू हो चुका है। तो अगर आपको लग रहा है आप रॉन्ग साइड लेके आसानी से निकल जाएंगे, कभी एक आधी बार निकल सकते हैं, पर जनरली अब आप पकड़ में भी आ जाएंगे
2: जी।
1: तो सर, बहुत सारी बातें आपने कही हैं और बहुत सारी जानकारी दी है। चलते चलते एक छोटा सा मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए जरूर कही।
2: हम सभी से प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि नशे के खिलाफ एकजुट होके, जैसे स्वतंत्रता संग्राम चलाया था, स्वतंत्रता की लड़ाई चलाई थी, हर घर से इंसान स्वतंत्रता के लिए निकला था, इसी तरह अपील करें कि नशे के खिलाफ भी हर घर से हर इंसान जागरूक हो और जागरूक करे और नशे को बाय बाय कहे। ट्रैफिक के बारे में ये भी प्रार्थना करेंगे कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जहाँ जहाँ बंद पड़ता है हर एक जगह पुलिस व्यवस्था के लिए लगाई हुई है, लेकिन हर आदमी के लिए हर जगह पुलिस लगाना संभव नहीं है। जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे ट्रैफिक स्मूथ नहीं चल पाएगी, सबकी व्यवस्था के लिए सब लोग सहयोग करें। और तीसरा हमारा वेरिफिकेशन के लिए था, वेरिफिकेशन आपकी, आपके नगर की, आपके देश की सुरक्षा के लिए है, कोई इसमें बुराई नहीं है, समय पे कराने पे कोई फालतू लफड़ा नहीं है, आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल ठीक स्मूथ हो जाएगा, यही हमारी प्रार्थना है, यही इंतजार है
1: जी। तो बहुत सारी बातें आज हमने सुरक्षा संवाद में जानी है। हमारे साथ जुड़े रहे भटकल के ACP श्री अर्जुन जी, और जिन्होंने बहुत सारी डिटेल में बातें बताई हैं कि वेरिफिकेशन कितनी ज़रूरी होती है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी तक जब्त हो सकती है, और सबसे ज़रूरी चीज़, नशे के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी, आपको जागरूक होना पड़ेगा और अपने बच्चों को इस नशे से बचाना पड़ेगा। फिलहाल सुरक्षा संवाद में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से करेंगे मुलाकात एक नए अधिकारी के साथ। उम्मीद है आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने सवाल हमें 8010781078 पर भेजते रहें। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कार्यक्रम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। यानी ये वो कार्यक्रम है जिसमें मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। और आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है मनी अग्रवाल जी। मनी जी आकृति फाउंडेशन की फाउंडर हैं और आकृति फाउंडेशन बहुत खूबसूरत काम कर रहा है। तो किस प्रकार ये फाउंडेशन का गठन हुआ, किस तरीके का काम ये कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें आज आप जानने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और उसके लिए करेंगे मनी जी का स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। मनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद भावना जी।
1: मनी जी, सबसे पहला सवाल, आकृति फाउंडेशन, तो इसकी नींव कब रखी गई, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे क्या कहानी है?
2: इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। वो भी एक अजीब इत्तेफाक था। मैं भी एक स्पेशल बच्चे की मदर हूँ। मैं इसको लेकर के दिल्ली जाया करती थी सन 1996 से। तो ये वाक्य है सन 2003 का, कि जब उस स्कूल में हमारा ये स्पेशल डे मनाया जा रहा था 3 दिसंबर को, तो वहाँ पर मुझे इत्तेफाकन एक प्रोफेसर जो कि

0: इसी फील्ड के थे, उनसे मिलने का अवसर मिला। उनसे उन्होंने मुझे से बात करी और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप फरीदाबाद में ही एक सेंटर खोलिए, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं गाइडेंस लेने के लिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, डेली अप एंड डाउन पॉसिबल नहीं होता है
1: जी,
0: दिल्ली जाना बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए फाइनेंशियल स्टेटस भी सब बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो उनके कहने पर हमने कहा कि हम तो इस लाइन में अभी हैं नहीं, हमारे पास कोई प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि प्रोफेशनल गाइडेंस वो देंगे और धीरे धीरे आप इसमें अपने आप को क्वालिफाई कर लीजिएगा स्पेशल एजुकेशन में। तो सन 2004 अप्रैल में हमने एक पेरेंट्स मीटिंग करी, मैंने अपने घर में ही करी, और हमने फिर उसकी नींव डाली आकृति की। हमने उस आकृति का स्टार्ट किया अपने ही एक घर को किराए पर लेकर के, कुछ पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ते चले गए और हमने आकृति फाउंडेशन बनाया जिसका नाम था आकृति इन इटसेल्फ मींस एसोसिएशन फॉर एबिलिटी केयर रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी।
1: भाई देखिए, आकृति फाउंडेशन की नींव एक जरूरत से शुरू हुई और जहाँ एक जरूरत थी वहीं एक आशा भी थी और वहीं शायद एक रास्ता था उन सभी बच्चों के लिए जो फरीदाबाद में रहते थे स्पेशली एबल्ड, लेकिन अपनी ट्रेनिंग के लिए या फिर कहना चाहिए कुछ नया सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए उन्हें दिल्ली तक जाना पड़ता था। और ऐसे में शायद उनकी होप का दिया बनी मनी जी। मनी जी ने ना सिर्फ आकृति फाउंडेशन की नींव यहाँ रखकर यहाँ के बहुत सारे बच्चों के लिए सुविधा की दी, लेकिन साथ के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत सारे बच्चों के लिए ये सहूलियत हो गई है कि वो यहीं अपने ही घर के आसपास बहुत कुछ सीख सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं मनी अग्रवाल जी के साथ, जो कि आकृति फाउंडेशन की फाउंडर है। मनी जी, आप मुझे बताइए कि इन स्पेशली एबल्ड बच्चों को किस प्रकार से आप मदद करती हैं, किस प्रकार की स्किल्स आप इन्हें सिखाती हैं?
1: हाँ जी, देखिए ऐसा है कि इनको हमें असेसमेंट करना होता है, और ये सब करने के लिए पहले मैंने भी स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स के लिए। फिर हमने इन बच्चों के अंदर असेसमेंट किया, कुछ हमारे अपने टूल्स होते हैं उनके साथ वर्क करके हमने इनके असेसमेंट करके हमने इनके प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं कि हमें इनको किस तरह की ट्रेनिंग देनी है। मेनली हमारा फोकस बिहेवियर मैनेजमेंट पे होता है। सबसे पहले हम बच्चों का बिहेवियर मैनेजमेंट पे फोकस करके उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, किस भी लेवल का बच्चा है अकॉर्डिंगली, उसके लिए हम एक गोल सेट करते हैं और उस गोल के हिसाब से उसका करिकुलम बनाया जाता है और उसको हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वो ट्रेनिंग डिपेंड करती है कि सबसे पहले हमें होता है कि उसको सोशलाइजेशन इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो मेन स्ट्रीमिंग में आ सके और एक सोसाइटी के साथ मूव कर सके।
0: तो ये जैसे आप बता रही हैं मनी जी, उनके लिए एक असेसमेंट करते हैं और उनके असेसमेंट के साथ साथ आप उनके लिए ट्रेनिंग कैप्सूल्स या फिर कहना चाहिए ट्रेनिंग के टूल्स क्रिएट करती हैं। तो ये तो हर बच्चे के लिए अलग करना होता होगा?
1: जी हाँ, करिकुलम हर बच्चे का अलग होता है, वो उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली होता है। उसका किस लेवल का बच्चा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर कैटेगरी का है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम उसका प्रोग्राम सेट करते हैं।
0: जी, तो मनी जी, जब आप ये कह रही हैं कि हर बच्चे के लिए एक अलग करिकुलम हो, हर बच्चे की एक अलग जरूरत है और उस तरीके से ही आप उनके लिए सुविधा प्रोवाइड करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे के साथ बहुत सारे केयर और बहुत सारे मैन पावर की जरूरत पड़ती होगी। क्या वाकई एक बहुत बड़ी जरूरत है?
1: जी हाँ, मैन पावर की बहुत सख्त जरूरत होती है। वैसे भी हम लोग जो है एक स्पेशल एजुकेटर के साथ 4 या 5 बच्चे ही रखते हैं, हम कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं पहुँच सकते, जिससे कि प्रॉपरली बच्चे को अटेंशन दी जा सके और उसका जो भी गोल हमने सेट किया उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क किया जा सके और बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके।
0: और ये जो आप कह रही हैं कि जो ट्रेनिंग कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, असेसमेंट्स की जाती हैं, तो क्या ये जो कैप्सूल्स हैं या फिर कहना चाहिए ये टूल्स हैं, ये साल दर साल बदलते रहते हैं?
1: नहीं, टूल्स जो है वो तो एक परमानेंट बने हुए हैं
0: जी,
1: जिसमें एक्चुअली क्या है कि एक्टिविटीज लिखी होती हैं बच्चों की, जो फंक्शनल लेवल है उसके अकॉर्डिंगली उनका प्लानिंग बना हुआ होता है। वो हम बच्चे का असेस करते हैं कि वो किस लेवल पे कहाँ पर आकर के अटक रहा है
0: जी,
1: वहाँ से उसको फिर हम ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं।
0: ओके,
1: जिससे कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए और वो और बेटर और बेटर, और जितना जिसके अंदर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ हम काम कर सकें।
0: तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे थे कि स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ काम करना आसान होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। हर बच्चे की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है और उस इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को मीट करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपके दिल में ढेर सारा प्यार है और आपके पास एक जुनून है कि हमें कुछ करना है, तो उसके बाद ये चीजें तब आसान हो जाती हैं जब आप अपने सपनों को साकार होते देखते हैं, यानी इन बच्चों की दिन प्रतिदिन जब आप इम्प्रूवमेंट देखते हैं, तो ये शायद अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। वक्त है एक और प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, ले रही हूँ एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं आकृति फाउंडेशन के साथ और आकृति फाउंडेशन की फाउंडर मनी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मनी जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, हम अक्सर स्पेशली एबल्ड बच्चों को देखते हैं और जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें ये एक आस रहती है कि धीरे धीरे धीरे धीरे एक दिन ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने लगेंगे। बट मैं आपसे सच जानना चाहती हूँ कि क्या स्पेशली एबल्ड बच्चे अपने आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं लाइफ में, या कहीं ना कहीं किसी लेवल का डिपेंडेंसी रहती ही है?
1: हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअली डिफरेंट है, उसका लेवल अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उसके चैलेंजेस अलग हैं। तो उसके बेस पर ये कहना कि वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट बन सकता है, हो सकते हैं, बहुत बच्चे हो भी जाते हैं, पर लेकिन हर बच्चे के लिए हम ऐसी आस नहीं रख सकते
0: जी।
1: वो कहीं ना कहीं डिफरेंस उनमें रहेगा ही, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट चाहिए ही होगा, अंत तक, लाइफ के अंत तक एक सपोर्ट चाहिए होगा। उसके बावजूद भी इंटेंसिव ट्रेनिंग से बच्चे बहुत कुछ सोशलाइजेशन में इम्प्रूव कर जाते हैं, अपनी स्किल्स में फंक्शन लेवल को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ पर ये भी आता है कि डिसेबिलिटी किस किस कैटेगरी की है
0: जी।
1: हर कैटेगरी की अपनी लिमिटेशन है, बहुत सारी कैटेगरी है, जहाँ एज फार एज ऑटिज्म कंसर्न है, ऑटिज्म में बच्चे जो हाई फंक्शनल बच्चे होते हैं वो काफी इम्प्रूव भी कर जाते हैं और नॉर्मल स्ट्रीम्स में भी आ जाते हैं। हमारे अपने बच्चे भी कई नॉर्मल स्ट्रीम्स में, हमने उनको बिहेवियर मैनेजमेंट करके, स्किल डेवलपमेंट करके नॉर्मल स्कूल्स में ट्रांसफर किया है
0: जी।
1: हमने मानव रचना की में भी एक बच्चा हमारा गया था
0: जी,
1: और भी स्कूल्स में गए हैं बच्चे हमारे
0: जी।
1: तो ये कहना कि इंडिपेंडेंट टोटली बन जाएंगे वो भी एक अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मेहनत से हम किसी हद तक उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं।
0: वाओ, और देखिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये जान लें कि इन बच्चों की लेवल क्या है, यानी मॉडरेट है, सिवियर है, माइल्ड है, और उस हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा आने वाले समय में या भविष्य में कितना इंडिपेंडेंट हो सकता है। मनीष जी, एक और सवाल जो मैं चाहूंगी, हमारे लिसनर्स के भी मन में कभी आया होगा, जिस प्रकार से बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है तो क्या इनका जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, जिस तरीके से होता है, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि उम्र के एक पड़ाव पर आकर उनका जो मानसिक विकास

0: बस है, वो बिल्कुल वैसे ही होने लगे जैसे बाकी सभी लोगों का होने लग जाता है। क्या एक उम्र के बाद ये उतना ही समझदार होने लग जाते हैं?
1: नहीं, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट जो शारीरिक विकास है वो तो अपनी ही स्पीड से होता है, अपनी उम्र के हिसाब से होता रहता है, लेकिन जहाँ तक मानसिक विकास की बात है वो कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअल लेवल है बच्चे का
0: जी,
1: बाई बर्थ है या जीन्स के साथ साथ चलता है, हेरिडिटी चलता है, तो वो जो लेवल है वो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आ सकता है ये स्किल ट्रेनिंग के साथ, लेकिन वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकता।
0: मनी जी, जब आप कह रही हैं स्किल ट्रेनिंग, तो मुझे ना बताइए ना कि इन बच्चों के लिए किस प्रकार की स्किल ट्रेनिंग है जो आकृति फाउंडेशन इन तक लाती है, और किस चीज का हुनर इनके लिए सबसे अच्छा है?
1: देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो डेली लिविंग एक्टिविटीज में बच्चे को ट्रेन करना है कि वो अपना पर्सनल काम खुद कर सके, बेडिंग है, टॉयलेटिंग है, ड्रेसिंग है, ये सारी एक्टिविटीज वो परफॉर्म अपने आप से कर सके, उसमें वो इंडिपेंडेंट हो सके। उसके साथ साथ एजुकेशनल आता है कि वो किस लेवल पर एजुकेशन में पहुंच सकता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ क्लास है, किस लेवल, क्योंकि इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे जो हैं उनको जिनका लेवल 70% IQ होता है उसके बिलो के जितने भी बच्चे हैं दे आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअली चैलेंज।
0: जी,
1: उस केस में आप खुद भी समझ सकते हैं कि हम एक नॉर्मल इंसान का IQ लेवल 100 मान के चलता है, इन बच्चों में अगर 70 से बिलो होगा तो वो कहाँ तक जा सकते हैं
0: जी,
1: कितनी एजुकेशन वो ले सकते हैं। तो इस कैटेगरी में जब 22 कैटेगरी में आते हैं हम 70 के पास या 70 से थोड़ा सा अबव जब होने लगते हैं बच्चे
0: जी,
1: तो वो किसी हद तक 8th-10th तक भी पास हो जाते हैं
0: जी,
1: नॉट मतलब बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के एजुकेशन के साथ हैं, लेकिन विथ सम ऑल्ट्रेशंस, विथ सम अकोमोडेशंस एंड अदर उनके फैसिलिटीज के साथ हम उनको अगर करते हैं तो बच्चे पास हो जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उनको हमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ता है, जिससे कि हम कुछ उनको इस तरह की स्किल सिखा सकें कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोसाइटी में एब्जॉर्व कर सकें और कुछ अर्निंग कर सकें, जिससे कि इंडिपेंडेंट हम कह सकें कि वो हो रहे हैं।
0: तो जब आप वोकेशन की बात कर रही है, तो किस प्रकार के वोकेशंस में ज्यादातर आपने देखा है कि हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे जो हैं वो काफी अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं?
1: जिसमें देखिए फंक्शनल लेवल जहाँ पर बच्चे का सही होगा, मतलब हाथ पैर उसके काम कर रहे हैं, पैर फिर रहा है, मूवमेंट्स उसके ठीक है, तो हम छोटे मोटे उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे पैकिंग हो गई चीजों की, मतलब फैक्ट्री लेवल पे हम छोटे छोटे आइटम्स की पैकिंग्स में दे सकते हैं, बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ बच्चे इस हद तक भी पहुंच जाते हैं कि कंप्यूटर में कोई भी एक ऐप को सीख करके वो साथ काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री वगैरह है, ये सब चीजें हैं हम कम सिखा सकते हैं, जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाते हैं वो उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कुछ बच्चे इस लेवल के हैं कि हम उनको पेंटिंग या पेंटिंग्स ये सब चीजों के ला करके इस तरह के कामों में हम इन्वॉल्व कर लेते हैं
0: जी,
1: डायरी मेकिंग है
0: जी जी,
1: स्पाइरल बाइंडिंग है, एनवेलप मेकिंग है, इस तरह की चीजों में हम इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं।
0: तो देखिए बहुत सारे वोकेशंस हैं दोस्तों जिनमें हम इन बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और आने वाले समय में जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये इस तरीके के काम को ना सिर्फ अपना रोजगार बना सकते हैं लेकिन उससे ये आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। मनी जी, जब आप बात कर रही हैं वोकेशन की, जब आप बात कर रही हैं कि अलग अलग किस्म की उन्हें स्किल सिखाई जाती है, तो एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आज के जमाने में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और उसकी सहायता से क्या इन बच्चों को कुछ बेनिफिट दिया जा सकता है?
1: मैं जहाँ तक सोचती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत आसान है
0: जी,
1: तो एक्चुअली अभी तक हमने इससे काम नहीं किया है
0: जी,
1: लेकिन अगर हम काम करें तो शायद बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं
0: जी।
1: मैं इस बारे में भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ
0: जी,
1: क्योंकि इसको अभी हम प्रैक्टिकली हमने अभी इसको
0: अपने अप्लाई करने की कोशिश
1: अप्लाई नहीं किया है हाँ, पर लेकिन जितना मेरे को नॉलेज है IT या जितना मैंने जाना है ये बहुत इजी प्रोसीजर है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है
0: जी।
1: और ऐसे बच्चों के साथ जब हम रिपीटेडली कोई भी इस तरह का एक फिक्स पैटर्न का काम करते हैं ना, तो बच्चे इसको लर्न कर लेते हैं, उनको इससे फायदा होना चाहिए
0: जी। तो दोस्तों जहाँ टेक्नोलॉजी इतना अपने आप को एडवांस कर रही है, वहीं पर इन स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात ये रहती है कि इनके लिए क्या हम इस तरीके के टूल्स डेवलप कर सकते हैं, क्या इस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए जो मेटा ग्लासेस आए हैं वो काफी कारगर रहते हैं। और देखिए, अगर आप देखें तो अब तो सरकार भी, जितने भी हमारे नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड है, उन सभी को ये दिए भी जा रहे हैं। अगर हम एम्स में जाएं या कहीं और जाएं तो आप देखेंगे कि उनके लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। तो इसी तरीके से हम इन स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप इनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं तो ये सवाल मैं इनसे पूछने वाली हूँ। लेकिन वक्त एक और प्यारे से गाने का, जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं मनी अग्रवाल जी के साथ, जो कि आकृति फाउंडेशन से हैं। मनी जी, अब एक और अहम सवाल। देखिए, मैं जानती हूँ कि जितने भी एनजीओ होते हैं, और खास तौर पर ऐसे बच्चों के लिए एनजीओ जो स्पेशली एबल्ड हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए आता है फंड्स का, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप में आपके लिए चैलेंज लाती होंगी। तो किस प्रकार की चुनौतियां हैं आपकी जिंदगी में?
1: ये एक बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है, नो डाउट, क्योंकि फंड्स के साथ साथ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए इन बच्चों के लिए
0: जी,
1: क्योंकि हम एक कोई बहुत बड़ी बड़ी क्लासेज इनके लिए नहीं बना सकते। हम चार चार पांच पांच बच्चों के ग्रुप में ही बच्चों को अकॉर्डिंग इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस के बच्चों के साथ ही हम काम करते हैं, जो उनका ग्रुप बनाते हैं
0: जी।
1: तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि इनको हम स्पोर्ट्स में भी लेके आते हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए भी। और स्पोर्ट्स का तो आपको पता है कि स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स
0: जी,
1: ये सब में बच्चे जब इन्वॉल्व होते हैं तो एक उनके अंदर अलग ही स्किल्स डेवलप होती हैं
0: जी,
1: और उसका उनको अच्छे परिणाम भी मिलते हैं
0: जी।
1: तो फंड्स के साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी बहुत जरूरी है, साथ
0: ही
1: मैन पावर, अच्छे स्टैंडर्ड का मैन पावर होना भी बहुत जरूरी है, अच्छे फील्ड के हों, अच्छे बैकग्राउंड के हों, जो कि एक बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर सके
0: जी।
1: क्योंकि मैंने इतने 24 साल मुझे हो गए फील्ड में काम करते हुए, पता नहीं कितने सारे मैंने एजुकेटर्स के साथ काम किया है
0: जी।
1: तो हर एक के अंदर वो एबिलिटी भी नहीं हो सकती कि हर कैटेगरी के बच्चे को वो डील कर सके
0: जी।
1: तो चैलेंजेस हर जगह हर समय आते हैं इन बच्चों के साथ,
0: बिल्कुल,
1: उनको समझना, उनके साथ प्रोग्राम बनाना, उनको उसमें सक्सेस दिलाना, इट्स वेरी चैलेंजिंग। सबसे बड़ा चैलेंज हमें एक तब आता है जब हमें उनके पेरेंट्स को ही समझाना, उनकी एक्सेप्टेंस लेना कि इस बच्चे में खासियत है और आपको उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा
0: जी। देखिए दोस्तों, मनी जी जो बात कह रही हैं वो सुनकर हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कहानी हमने पहले भी सुनी है, लेकिन क्या आपको पता है जिस पर बीतती है और जिसके घर में एक स्पेशली एबल्ड बच्चा होता है, सबसे पहले तो उस परिवार में एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, या इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं जहां पर कि वो स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें सबसे बड़ी चुनौती आती है एक्सेप्टेंस की, यानी पेरेंट्स कन्विंस हो और पेरेंट्स ये समझें कि अब हमें इसे इसी सोसाइटी में इंक्लूड करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि ये एक लॉन्ग रनिंग जर्नी है, ये एक दिन की जर्नी नहीं है, ओवरनाइट कभी भी कोई भी बच्चा या बड़ा ठीक नहीं होता है। सो आपको जीवन भर उनके साथ उतनी ही पेशेंस रखने की जरूरत है, यानी एक तरफ तो इन बच्चों को आपको ख्याल रखना है, लेकिन अपनी एनर्जी लेवल्स को डबल करके रखना है, यानी आपको इस बात को इंश्योर करना है कि ये भी खुश रहें और आप अपने मानसिक संतुलन को भी बिल्कुल ठीक रखें, अपने व्यवहार को ठीक रखें, क्योंकि ऐसा समय भी आता है जब आप झल्ला जाते हैं, आप ब्रेकडाउन पर आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग। सो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम इन्हें ना तब पहले फोर्सी नहीं कर पाते हैं, और जब ये होती हैं तब अजीब होती हैं। इसीलिए जितने भी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए काम कर रही हैं, वो एक्स्ट्रा एम्पैथेटिक होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है, मेरे तो दिल का एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा ऐसी संस्थाओं के साथ रहता है। अब मैं पूछने वाली हूँ एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आप सभी बन सकते हैं, लेकिन वो सवाल पूछूंगी प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं आकृति फाउंडेशन की फाउंडर मनी अग्रवाल जी के साथ। मनी जी, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं हमारे इंटरनेट रेडियो के जरिए। अब जब ये आपकी कहानी सुन रहे हैं, जब ये आपकी बातें सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे, कुछ लोग आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। तो मुझे बताइए, कोई आपके साथ कैसे जुड़ सकता है?
1: हमारे साथ एज ए वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, बच्चों के साथ आकर के टाइम टू टाइम कुछ उनको भी एक्टिविटी सिखा सकते हैं जिनके अंदर स्किल्स है, बच्चों को वोकेशनल स्किल्स भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपको होली के गुलाल बनाने आते हैं, कलर्स बनाने आते हैं, आप बच्चों के साथ आइए, उनको सिखाइए
0: जी।
1: कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है या उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकली मतलब क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है
0: जी,
1: आप वो आके बच्चों के साथ सिखा सकते हैं, पेरेंट्स आ सकते हैं, बच्चों के साथ खेल कूद सकते हैं, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं
0: जी,
1: ठीक है ना। वैसे भी हमें हमारे साथ इस तरह से भी जुड़ सकते हैं कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं
0: जी,
1: और हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको सेल करने में हमारी हेल्प भी कर सकते हैं
0: जी।
1: और कुछ लोग जिनके फैक्ट्री ओनर्स हैं या जिनके इस तरह के काम हैं, वो बच्चों के लिए कुछ काम जनरेट कर सकते हैं जो कि बच्चे सीख करके और इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें पैकिंग का है, स्टिकर्स वगैरह लगाने का काम है, तो जो इजी जॉब्स हैं बच्चे कर सकते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह से हम तो चाहते हैं कि समाज जो है हमारे साथ जुड़ करके हमारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे
0: जी,
1: जिससे कि वो कुछ अर्निंग कर सकें, कुछ अच्छा मतलब सीख सकें
0: जी,
1: और साथ में सोसाइटी जो है वो जान सके कि इन बच्चों के साथ उनको कैसे डील करना है। आज भी अगर चार बच्चे कहीं दिखाई दे जाएं स्पेशल, तो लोग हंसने लगते हैं, मजाक बनाते हैं उनका,
0: वाकई
1: उनको बुली करने लगते हैं, वो चीज सबसे बुरी चीज, और उन बच्चों का इससे बहुत ही मेंटल कहना चाहिए ब्रेक डाउन हो जाता है कई बार, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे में।
0: वाकई वाकई,
1: तो इसलिए हमें अपनी सोसाइटी को भी अवेयर करने की जरूरत है, उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि हाउ यू हैव टू डील विद दिस चिल्ड्रन। उनके साथ आपको एक पेशेंस रखना, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना, एक एम्पैथेटिक बिहेवियर रखना जरूरी है अपना, जिससे कि ये बच्चे कभी भी अपने आप को आइसोलेटेड ना समझ सके।
0: दोस्तों, ये हमारे ही समाज का हिस्सा है और इन बच्चों के साथ अक्सर ऐसी बहुत सारी कहना चाहिए कि ऐसी वारदात हो जाती है, जहाँ पर कि मान लीजिए किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं, किसी सोसाइटी किसी मॉल में गए हैं, लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, बच्चे जो कि शायद कहना चाहिए इतने अवेयर नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि वो उन्हें बुली करने लग जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो एक समाज के रूप में और शायद एक भारतीय नागरिक होने के रूप में हमें सबसे पहले ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हम इनके प्रति एम्पैथेटिक हों, हमारी इनके प्रति प्यार भरी भावना हो। और दूसरा सबसे अहम सवाल और वो कि क्या हम कभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके प्रति, मतलब हमारे समाज में इतने सारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने आप से पूछा है कि हमने अपनी जिंदगी का एक घंटा भी क्या कभी जाकर उन्हें दिया है? हम शायद घंटों अपने मोबाइल फोन पर रील्स देखते हुए या फिर कहना चाहिए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कुछ देखते हुए निकाल देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी का एक घंटा भी निकालते हैं और इनके साथ बिताते हैं, तो इनके लिए वो लाइफ टाइम की हैप्पीनेस हो सकती है, वो आपके इस एक्सपीरियंस को चेरिश करेंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सुनने वाले हैं, मेरे प्यारे लिसनर्स हैं, आप सभी मुझे हर रोज सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आप आकृति फाउंडेशन आए, अपने आसपास की किसी भी ऐसे एनजीओ में जहाँ पर स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, जाइए, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए। अगर आपके पास समय की कमी है, आप उन लोगों में से हैं जो धन के साथ इन्हें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आकृति फाउंडेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ये एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ इन बच्चों के लिए क्लासेस क्रिएट की जा सके और थोड़ा सा बड़ा स्पेस इन्हें मिल सके। आइए हम सब हाथ मिलाते हैं और आगे बढ़कर इन बच्चों को एक अच्छा भविष्य देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप वॉलंटियर कर सकते हैं और जाकर इन्हें कोई स्किल सिखा सकते हैं, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। हमारे ढेर सारे सुनने वाले ऐसे भी हैं जिनके पास खुद के अपने रोजगार के बहुत तरीके हैं, तो आप इन बच्चों को अपने उस बिजनेस में एक छोटा सा हिस्सा बना सकते हैं, कोई छोटा सा दायित्व तो इन्हें दे सकते हैं, और इन सारी चीजों से हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो चलिए, कर दीजिए मुझसे वादा कि ये आप जरूर करने वाले हैं, और मैं वादा कर रही हूँ कि आपको प्यारा सा गाना जरूर सुनाऊंगी। जुड़े रहिए रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चले मनी अग्रवाल जी के साथ, आकृति फाउंडेशन की फाउंडर है। मनी जी, ढेर सारी बातें की और मुझे पता है कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत मेहनत भरी रही है। आपने कहना चाहिए बड़ी लगन से इन बच्चों के साथ एक लंबा समय दिया है और देती आ रही है। ढेर सारी बातें हमने आपसे जानी आकृति फाउंडेशन के बारे में और साथ के साथ आपके इन प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगी?
1: यही कहना चाहेंगी कि आप इन बच्चों के साथ एक जुड़िए और इनको समझने की कोशिश करिए, शायद इनकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आए और ये भी अपने आप को एक इंसान समझ सके। आज समाज में, हमारे समाज में इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें तो बस इतना सही कहना है
0: जी,
1: आप लोग आइए, मिलिए इन बच्चों के साथ और इनको समझिए।
0: वाकई दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा संदेश दिया है मनी जी ने। हमारी आज की जिंदगी में हम बड़े सेल्फिश होते जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। हम बियॉन्ड अस कुछ देखते ही नहीं है, हम और हम बस। और कहना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही साथ जीते जीते ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास भी एक दुनिया है। इस दुनिया का एक बड़ा खूबसूरत सा हिस्सा ये प्यारे प्यारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। तो इनके साथ भी समय निकालिए, इनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए और इन्हें भी समाज का हिस्सा बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मनी जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू भावना जी।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए मैं वादा जरूर करती हूँ अगले हफ्ते मेरी और आपकी होगी मुलाकात। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जुड़े रहेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो वारवरेष्णा 107.8 एफएम के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
3: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा। ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़ कर उठना चाहा, ऊपर खट खट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था। मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावल पिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावल पिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसके दोस्त एक औरत से हो गई, उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुंचकर खुदा बख्श ने 20 रुपए पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी, पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी, पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6 जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे, पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई? होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
4: डरने की बात ही क्या थी?
3: इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामूली शक्ल सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांची उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भन्ना कर कहा, ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूँ। तो मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो, मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हिला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तो मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ, मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी, ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं, छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो। बोलो क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है। साफ साफ कहो तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ। तो कहो क्या इरादा है? तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी। तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? हाँ, सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी उटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई? सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो? ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

રેડિયો 101 7.2 FM પર ઢેર સારી મસ્તી, ખૂબ સારા ફન, ક્યોંકિ યે હૈ ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1. हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा. और आप सभी को पता है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फील गुड फील लाइव. जी हाँ, और इसी के साथ मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा. जी हाँ, सक्सेस मंत्रा एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आ जाते हैं हम आपके लिए हर हफ्ते किसी नई जर्नी को, किसी नई स्टोरी को, जो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करती है बल्कि अपनी जर्नी से आपको इंस्पायर करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है. और दोस्तों मैं आपको सही बताऊं, लाइफ में ना हम सबके पास कुछ ना कुछ सपने होते हैं, सबके ड्रीम्स होते हैं. हम अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो कोई राइटर बनना चाहता है, तो कोई बस इतना चाहता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें खुशी मिले और हम अपनी मुकाम को हासिल कर सके. लेकिन एक सवाल कि क्या हम अपने सेफ करियर को छोड़कर अपने पैशन को चूज करने की हिम्मत कर सकते हैं? आज के सक्सेस मंत्रा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही पर्सनालिटी की, जी हाँ, जिन्होंने एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर से अपनी राइटिंग जर्नी की तरफ कदम बढ़ाया और आगे चलकर इंडिया के मोस्ट पॉपुलर राइटर में से एक अपनी जगह बना ली. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिनकी, उनका नाम है चेतन भगत. जी हाँ, ये नाम आपने सुना होगा मुझे पता है. और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं. आज हम उन्हें सिर्फ एक राइटर के रूप में ही नहीं जानेंगे बल्कि हम जानेंगे कि उस यंग चेतन भगत को, जो दिल्ली में बड़े हुए, IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की और IIM अहमदाबाद से MBA किया और फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में चले गए. और एक तरफ था उनका सक्सेसफुल करियर और दूसरी तरफ थी उनकी राइटिंग करने की पैशन. और फिर आया वो मोमेंट जब उन्होंने अपनी पहली नॉवल 5 Point Someone लिखी. शायद उस वक्त उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ये कहानी एक दिन इतनी पॉपुलर होगी कि इससे इंस्पायर होकर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 Idiots बन जाएगी. लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, उनकी और भी बुक्स आई, उनकी स्टोरीज पर मूवीज भी बनी, उन्हें अवार्ड्स ऑन नेशनल लेवल तक के रिकॉग्नाइजेशन भी मिले. और वो सिर्फ राइटर ही नहीं बल्कि स्क्रीन राइटर, कॉलमनिस्ट और पब्लिक स्पीकर के रूप में भी पहचाने गए. लेकिन दोस्तों, हर सक्सेसफुल स्टोरी की तरह चेतन भगत की जर्नी में भी चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म और डिफिकल्ट सिचुएशन भी आई, डिफिकल्ट डिसीजन भी लेने पड़े उन्हें. तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे उनको, बहुत करीब से जानेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर राइटर कैसे बन गए, उनकी बुक्स ने यंग इंडिया को कैसे कनेक्ट किया, उनकी स्टोरीज सिल्वर स्क्रीन तक कैसे पहुंची और उनकी जर्नी हमें सक्सेस के बारे में क्या क्या सिखाती है. तो चलिए तैयार हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम चेतन भगत की जर्नी पर चलने वाले हैं. पर उसी के साथ मैं आपके लिए कर आ गई हूँ बहुत ही प्यारे प्यार से गाने भी. तो गाने भी सुनेंगे और उनकी जर्नी को भी जानेंगे. पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, आज सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ मैं और जिसमें आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत की। जी हाँ, चेतन भगत की जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं और अब जब हम चेतन भगत का नाम सुनते हैं ना तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक राइटर की इमेज क्रिएट होने लग जाती है, लेकिन राइटर बनने से पहले उनकी जर्नी एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में ही जा रही थी। जी हाँ, चेतन भगत का जन्म 22 अप्रैल 1974 को दिल्ली में हुआ था। उनकी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल धोला कुआं से हुई। स्कूल के बाद उन्होंने एक ऐसा करियर चूज किया जो इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है और वो है इंजीनियरिंग। जी हाँ, उन्होंने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी उनकी जर्नी रुकने वाली कहाँ थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करना चाहते हैं और फिर उन्होंने एडमिशन ले लिया IIM अहमदाबाद में, जहाँ से उन्होंने फिर MBA करा। और अब जरा इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट जो IIT और IIM जैसे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर चुका हो, उनके सामने करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन चेतन भगत ने भी एक कॉर्पोरेट करियर को ही चूज किया था उस समय। MBA के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना शुरू किया और हांगकांग में गोल्डमैन सच के साथ इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। यहाँ तक उनकी स्टोरी एक ट्रेडिशनल सक्सेसफुल करियर जैसी ही लगती है, लेकिन गुड एजुकेशन, टॉप इंस्टीट्यूशन और एक रेप्यूटेटेड कॉर्पोरेट जॉब। लेकिन इसी बिजी कॉर्पोरेट लाइफ के बीच उनके अंदर एक राइटर भी अलाइव था। जी हाँ, उन्हें राइटिंग का इंटरेस्ट था और वो अपने आइडियाज और एक्सपीरियंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहते थे और धीरे धीरे उनके माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं एक नॉवल लिखूं। और बस फिर क्या, यही थॉट आगे चलकर उनकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवल 5 Someone पर काम शुरू किया। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का अपनी फर्स्ट बुक लिखना शायद उस टाइम पर एक सिंपल सा डिसीजन लगा हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये बुक उनकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल देगी। और दोस्तों, आगे इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं कि इस बुक से उनकी लाइफ में कैसे वो टर्निंग पॉइंट आया, कैसे उनकी जर्नी बदली, उनकी जर्नी का ये रियल टर्निंग पॉइंट क्या बना, तो इसके बारे में भी जानेंगे। पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel alive.

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ खास लोगों की जर्नी जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको अपनी जर्नी से इंस्पायर करते हैं कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं ना, तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बस आपके अंदर होनी चाहिए वो मेहनत करने की लगन और वो डेडिकेशन कि हाँ, आप इस काम को पूरा कर ही मानेंगे। तो बस इसीलिए अपने सपनों को ना पूरा करिए, अपने अंदर का जो जोश है, जो आग है ना, उसको बुझने मत दीजिए, उस पर काम करते रहिए। आप देखिए, आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। और इसी के साथ आज जिस जर्नी के साथ हम चल रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों ने इनका नाम बहुत सुना है, बहुत जानते हैं आप इनको, जिनका नाम है चेतन भगत। जी हाँ, चेतन भगत की जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे चेतन भगत ने IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाया, और हांगकांग में गोल्डमैन सैक्स के साथ काम भी किया। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ के बीच उनके अंदर एक राइटर भी था, और फिर उन्होंने लिखी अपनी पहली नॉवल यानी कि 5 Point Someone। ये नॉवल 2004 में पब्लिश हुई और इसका कनेक्शन भी इंटरेस्टिंग था। स्टोरी 3 IIT स्टूडेंट के अराउंड थी, उनके कॉलेज लाइफ, एकेडमिक फ्रेंडशिप प्रेशर और उन सपनों के अराउंड जो मार्क्स से कहीं ज्यादा बड़े थे। चेतन भगत ने एक ऐसी स्टोरी लिखी जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं थी, लैंग्वेज सिंपल थी, कैरेक्टर्स यंग थे और सिचुएशन रिलेटेबल थी। शायद इसी वजह से यंग रीडर्स ने इस बुक से बहुत ही जल्दी कनेक्शन फील करना शुरू कर दिया था। एक न्यू राइटर की फर्स्ट नॉवल का इतना पॉपुलर होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन चेतन भगत के लिए ये सिर्फ एक बुक की सक्सेस ही नहीं थी, ये उनकी आइडेंटिटी चेंज होने की बिगनिंग थी। और यहीं से उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज प्रूव की कि राइटर बनने के लिए सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड या फिर कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग जरूरी नहीं होगी, बल्कि अगर आपकी स्टोरी लोगों को रियल फीलिंग और एक्सपीरियंस से कनेक्ट करवा पाए ना, तो सिंपल वर्ड्स भी बहुत पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 5 Point Someone की जर्नी का एक और बड़ा चैप्टर था जो कुछ साल बाद सामने आया। 2009 में राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 Idiots रिलीज हुई। फिल्म ने स्टूडेंट्स, एजुकेशन सिस्टम, फ्रेंडशिप और ड्रीम्स को एक कम्प्लीटली मेमोरेबल वे में प्रेजेंट किया। ये फिल्म चेतन भगत की 5 Point Someone से इंस्पायर्ड थी। जी हाँ, और 3 Idiots की सक्सेस ने चेतन भगत के नाम को और भी ज्यादा हाउस होल्ड्स तक पहुंचा दिया। सोचिए, जिस स्टोरी को एक राइटर ने अपने शब्दों में क्रिएट किया था, वही स्टोरी इंस्पायर्ड इतने बड़े स्क्रीन पर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा था। लेकिन चेतन भगत की जर्नी में 5 Point Someone के बाद भी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी था। उनकी नेक्स्ट बुक्स आई, उनकी स्टोरीज ने अलग अलग थीम को टच किया और धीरे धीरे वो इंडिया की मोस्ट रिकग्नाइज्ड ऑथर्स में काउंट होने लगे, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो इसी के साथ अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आगे जानेंगे बहुत सारी बातें उनके बारे में कि उनकी बाकी की जो बुक्स थी उन बुक्स से बॉलीवुड तक पहुंचने वाली स्टोरीज कौन कौन सी रही, बताऊंगी ये भी मैं आपको। पर आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना, फील गुड।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं चेतन भगत की जर्नी के साथ, बहुत सारी बातें जान रहे हैं आज हम उनके बारे में। पिछले सेगमेंट में हमने बात की कि चेतन भगत की फर्स्ट नॉवल 5.7 की, जिसने उन्हें एक सक्सेसफुल राइटर के रूप में एस्टेब्लिश किया, लेकिन ये तो सिर्फ बिगनिंग थी। चेतन भगत ने एक के बाद एक स्टोरीज लिखी और उनकी राइटिंग का एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि उनकी कई स्टोरीज का कनेक्शन बॉलीवुड से भी बना। जी हाँ, 2005 में आई उनकी सेकंड नॉवल वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर। जी हाँ, स्टोरी कॉल सेंटर में काम करने वाले यंग पीपल के अराउंड थी। वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप्स और ड्रीम्स और लाइफ के स्ट्रगल को उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया। बाद में इसी नॉवल पर बेस्ड फिल्म आई हेलो, जिसे रिलीज किया गया। फिर आई द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। इस स्टोरी में फ्रेंडशिप, बिजनेस, क्रिकेट और पर्सनल स्ट्रगल्स के साथ एक सीरियस सोशल बैकड्रॉप भी था। इस नॉवल से इंस्पायर्ड फिल्म आई काईपोचे। जी हाँ, काईपोचे बनी, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से ही अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद चेतन भगत की एक और पॉपुलर बुक आई, वो आई टू स्टेट्स। ये स्टोरी लव के साथ फैमिली और कल्चरल डिफरेंस को भी एक्सप्लोर करती है। डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले दो लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज, उनके कल्चर्स भी स्टोरी का पार्ट बन

जाते हैं। 2014 में टू स्टेट्स नाम से फिल्म रिलीज हुई और ये भी ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। फिर आई फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, जी हाँ, एक लव स्टोरी जिसमें लैंग्वेज, बैकग्राउंड और सोशल डिफरेंस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस नॉवल पर भी फिल्म बनी। तो दोस्तों, अगर हम चेतन भगत की जर्नी देखते हैं तो एक पैटर्न क्लियरली नजर आता है कि उन्होंने स्टोरीज उन लोगों के बारे में लिखी जिनके बीच में हम खुद को देख सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, फ्रेंड्स, लवर्स और फैमिलीज। और शायद इसी रिलेटेबिलिटी ने उनकी बुक्स को रीडर्स तक और उनकी स्टोरीज को स्क्रीन तक पहुंचाया है। लेकिन सक्सेस के साथ क्वेश्चंस और क्रिटिसिज्म भी आए हैं। उनकी राइटिंग को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस रहे हैं और हर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की तरह उन्हें भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने लिखना कंटिन्यू रखा, जी हाँ, और यही कंसिस्टेंसी उनकी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। तो अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगले सेगमेंट में होगी उनके कुछ अलग फेस की बातें। चेतन भगत ने अपनी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर को पीछे छोड़कर फुल टाइम राइटिंग को कैसे चूज करा, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.FM और मैं हूँ आरजी सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए हर हफ्ते कुछ नई मोटिवेशनल स्टोरीज। जी हाँ, मोटिवेशनल जर्नी आपके साथ हम शेयर करते हैं और उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ हम सीखने की कोशिश करते हैं। और आज जिसकी जर्नी के साथ हम चल रहे हैं वो है चेतन भगत। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने स्टोरी में देखा कि चेतन भगत ने IIT और IIM जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाया और साइड बाय साइड राइटिंग को भी कंटिन्यू रखा। लेकिन अब आता है उनकी लाइफ का वो डिसीजन जहां उन्होंने अपने करियर की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। जरा सोचिए, आपने इंजीनियरिंग की है, MBA भी किया है, एक रेप्यूटेटेड इंटरनेशनल कंपनी में जॉब भी करते हैं, एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर है और प्रोफेशनली लाइफ में अच्छा भी चल रहा है सब कुछ। ऐसे में अगर आपको अपने पैशन और सिक्योर करियर में से किसी एक को चूज करना पड़े तो आप क्या करेंगे? चेतन भगत ने राइटिंग को चूज किया। जी हाँ, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अपनी जॉब को ग्रेजुअली लीव कर दिया और 2009 में फुल टाइम राइटिंग की तरफ आ गए। ये डिसीजन सिर्फ जॉब चेंज करना ही नहीं था, ये एक माइंडसेट चेंज करना था, क्योंकि राइटिंग तब उनके लिए सिर्फ हॉबी नहीं रह गई थी। उनकी बुक्स रीडर्स तक पहुंच रही थी, उनकी स्टोरीज पॉपुलर हो रही थी और उन्हें एक राइटर के रूप में अपनी आइडेंटिटी भी मिल रही थी। और उनकी राइटिंग जर्नी भी सिर्फ नॉवेल्स तक ही लिमिटेड नहीं रही थी। उन्होंने न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स लिखे, पब्लिक इश्यूज और यंग जनरेशन के टॉपिक्स पर अपनी ओपिनियंस भी रखी और स्क्रीन राइटिंग में भी काम किया। उनके करियर का एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट फिल्म काईपोचे से भी जुड़ा हुआ है। फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए उन्हें रिकग्नाइजेशन भी मिला और फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले भी मिला। यानी जो पर्सन कभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना फ्यूचर देख रहा था, वही पर्सन कुछ सालों बाद स्टोरीज और सिनेमा के थ्रू एक कम्प्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी बना चुका था। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझना ज़रूरी है कि पैशन को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि सक्सेस तुरंत मिल जाएगी। चेतन भगत की जर्नी में भी क्रिटिसिज्म आया, उनकी राइटिंग को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस भी रहे हैं लोगों के, लेकिन उन्होंने अपना क्रिएटिव वर्क कंटिन्यू रखा। और शायद सक्सेस का रियल मीनिंग भी यही है कि अपने फैसलों पर काम करते रहना चाहिए, चाहे लोग आपके डिसीजन को समझे या ना समझे। चेतन भगत की जर्नी हमें एक सिंपल सा लेसन भी देती है कि अगर आपके अंदर किसी काम को लेकर रियल पैशन है तो उसे सिर्फ कभी ना कभी हो जाएगा के लिए मत छोड़िए। उस पैशन को स्किल बनाइए और उस पर काम कीजिए, और जब राइट टाइम आएगा ना तो अपने डिसीजन पर बिलीव करने की हिम्मत भी रखिएगा। और दोस्तों, चेतन भगत की स्टोरी में सक्सेस के साथ रिकग्नाइजेशन भी आई है, अवार्ड्स, ऑनर्स और नेशनल लेवल अचीवमेंट्स भी मिले हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जानेंगे। पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel light.

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं चेतन भगत की जर्नी के साथ। और अब तक हमने चेतन भगत की जर्नी के कई सारे चैप्टर्स को देखा है कि कैसे उन्होंने दिल्ली से शुरुआत की अपनी पढ़ाई की, IIT में पढ़ाई की और IIM तक का सफर तय किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का करियर भी बनाया, राइटिंग की तरफ कदम और फिर उनकी स्टोरीज का रीडर्स से लेकर बॉलीवुड तक पहुंचना। लेकिन जब कोई पर्सन अपनी फील्ड में कंटिन्यूसली काम करता है तो एक वक्त के बाद उसके काम को रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो काम करते हैं उसका एक एंड रिजल्ट जरूर आता है। अगर हम एग्जाम देते हैं तो उसका रिजल्ट भी जरूर आता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि चेतन भगत की जर्नी में भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स भी आए हैं। जी हाँ, उनके करियर का एक इंटरेस्टिंग माइलस्टोन राइटिंग से पहले भी आ चुका था। 1997 में IIM अहमदाबाद ने उन्हें बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड दिया था, यानी कि एकेडमिक्स और लीडरशिप के लेवल पर भी उनकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही है। राइटिंग में आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है। और फिर 2010 में टाइम मैगजीन ने उन्हें टाइम 100 लिस्ट में इंक्लूड किया, जो दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की एनुअल लिस्ट है। सोचिए दोस्तों, एक इंडियन ऑथर का नाम दुनिया के इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज के साथ आना, ये भी राइटर के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। उनकी स्टोरीज का कनेक्शन सिनेमा से भी स्ट्रॉन्ग होता है। काइपोचे के स्क्रीन प्ले के लिए उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिला। फिल्म ने नेशनल लेवल पर अटेंशन को अट्रैक्ट किया और चेतन भगत को स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले भी मिला। 2014 में उन्हें CNN और IBN इंडिया ऑफ द ईयर एंटरटेनमेंट रिकॉग्नाइजेशन भी मिला है। और उनके करियर के इंपॉर्टेंट ऑनर्स में से एक है IIT दिल्ली एलुमनाई अवार्ड, जो उन्हें 2018 में दिया गया था। यानी जिस इंस्टीट्यूट में कभी चेतन भगत एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ते थे, ईयर्स लेटर वही इंस्टीट्यूट उनके प्रोफेशनल अचीवमेंट को ऑनर कर रहा था। दोस्तों, अवार्ड्स कभी किसी जर्नी का ब्यूटीफुल पार्ट हो सकता है, लेकिन अवार्ड्स मिलना सक्सेस का फाइनल पॉइंट नहीं होता है। चेतन भगत की स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि उनकी जर्नी एक सिंगल फील्ड तक लिमिटेड नहीं रही। इंजीनियरिंग, MBA करना, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना, नॉवेलिस्ट बनना, कॉलमनिस्ट बनना और स्क्रीन राइटर और पब्लिक स्पीकर, उन्होंने अपने करियर में मल्टीपल रोल्स को एक्सप्लोर किया है। और शायद इसी वजह से उनकी जर्नी यंग जनरेशन के लिए काफ़ी रिलेटेबल भी है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत से यंग पीपल ये सोचते हैं कि अगर एक करियर चूज कर लिया तो वही करियर लाइफ भर कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन चेतन भगत की जर्नी हमें दिखाती है कि करियर में डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल है। बस जरूरी है कि आप अपने डिसीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले और अपने चूजन पाथ पर कंटिन्यूसली काम करें। और दोस्तों, अवार्ड्स और सक्सेस के बाद एक और चीज ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की जर्नी में आती है, वो है क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों, अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आगे और भी बातें हैं इस प्रोग्राम को एंड तक लेकर के जाने का अब समय आ गया है, पर उससे पहले, जाने से पहले मैं आपसे कुछ और भी बताऊंगी, इनके सक्सेस मंत्रा भी बताऊंगी। तो आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ, और आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें आज इस एपिसोड में हमने बात की चेतन भगत की, उनकी जर्नी के साथ चले और अब बहुत ही करीब से समझने की कोशिश की एक ऐसे स्टूडेंट की जर्नी जिसने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की, IIM अहमदाबाद से MBA किया और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे सक्सेसफुल करियर को चूज किया, लेकिन उनके अंदर का एक राइटर भी था। उन्होंने अपने फर्स्ट नॉवल 5 Points लिखी और फिर राइटिंग उनकी आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। उसके बाद तो उन्होंने वन नाइट एट द रेट, दी कॉल सेंटर, दी थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, टू स्टेट्स रिवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, वन अरेंज्ड मर्डर, 400 डेज और दूसरी बुक्स रीडर्स तक पहुंचाई है। उनकी स्टोरीज का कनेक्शन बॉलीवुड से भी बना। हेलो, काइपोचे, टू स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्म्स उनकी बुक से इंस्पायर्ड या फिर अडेप्टेड रही है, और 5 Points ने 3 Idiots को इंस्पायर किया है। उन्हें अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन भी मिले हैं। टाइम 100 में इंक्लूजन से लेकर IIT दिल्ली के एलुमिनाई अवार्ड और स्क्रीन प्ले के लिए रिकॉग्नाइजेशन तक। लेकिन दोस्तों, चेतन भगत की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन अवार्ड्स या फिर बेस्ट सेलिंग बुक नहीं है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है अपनी जर्नी को डिफाइन करने की हिम्मत रखना। और कभी कभी हम अपने करियर इसलिए चूज करते हैं क्योंकि सोसाइटी कहती है कि ये सक्सेसफुल करियर रहेगा, लेकिन सक्सेस सिर्फ एक सैलरी या फिर एक बिग डेजिनेशन या फिर एक रेपुटेटेड कंपनी का नाम ही नहीं होता है, बल्कि सक्सेस तब होती है जब हम अपने टैलेंट को पहचानते हैं और उस पर सीरियसली काम करते हैं। चेतन भगत ने भी एक पॉइंट पर अपने पैशन को प्रायोरिटी दी। उन्होंने अपनी राइटिंग को सिर्फ हॉबी नहीं रहने दिया, बल्कि उसे अपना प्रोफेशन बनाया। और हाँ, उनकी राइटिंग को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुए हैं। हर किसी को उनकी राइटिंग पसंद आए ये जरूरी नहीं, लेकिन किसी भी क्रिएटिव फील्ड में डिफरेंट ओपिनियन का होना बहुत नॉर्मल होता है। आप सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो शायद अपनी ओरिजिनल वॉइस खो देंगे। तो आज के इस एपिसोड सक्सेस मंत्रा को बहुत ही सिंपल तरीके से समझे तो अपनी ताकत को पहचानिए, अपने पैशन को स्किल बनाइए, क्रिटिसिज्म से सीखिए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लाइफ में हर किसी का पाथ अलग होता है। किसी की स्टोरी IIT से शुरू हो सकती है, किसी की राइटिंग से और किसी की बिजनेस से और किसी की बिल्कुल जीरो से। बस जरूरी ये है कि आप अपनी स्टोरी खुद लिखे। मैं हूँ आरजे स्नेहा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। इसी के साथ मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी की जर्नी के साथ, उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे, पर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप बिलीविंग, और अपनी कहानी खुद लिखिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमि और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरंजना 107.8 एफएम।
2: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आरजे सागर, आज को हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानोरंजना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। दिस शो इज वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस, रीजन बीइंग हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हर बार एक केस स्टडी की, एक नए स्टार्टअप की, क्या कर रही है वो कंपनी, क्यों कर रही है, क्या फायदा उससे हो रहा है, ओवरव्यू क्या है, अलग क्या किया है, इंडस्ट्री क्या बोलती है, एंड सो ऑन। सो दिस शो will definitely help you out in so many things. I mean, you will learn about the process, you will learn about the founders and their background, and we're gonna tell everything. Just stay tuned with us, kyunki filhal lenge ek musical break, then we'll continue the show. Stay tuned, feel good, feel.

एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। एडटेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेडटेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें, अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज़ है, तो वो तमाम चीज़ें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में। सेकंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहां पर स्मार्टफोन है वहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

0: पर तुम्हें।
1: वेलकम बैक, उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों, और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है, अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला। बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसे हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने है, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा, उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं, किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपने स्किन के ऊपर और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कंटेंट बनाते हैं, फुल फ्लैश्ड वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, फील गुड।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रश्न 107.8 FM। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चलें तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं अब ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान के पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजिली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकेंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए, कंज्यूमर्स के पास आप माने या ना माने लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कॉन्टेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं ताकि लोग कॉन्टेंट बनाए उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसको अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को यानी कि ब्यूटी टेक को एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स, फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इम्पैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज कि ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा यू नो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा कि हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसीडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कहता हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में। डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ।

वेलकम बैक। नाउ दिस नोट, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझा है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकती हैं कंपनीज के पास, ये ऑप्शन है कि जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफ़ी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहाँ पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज़ें अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू वांट टू सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीज़ें इसमें फॉलो करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीज़ें जो है देखना, प्रिडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीज़ें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ दिस नोट, लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानी आपका।

और दोस्तों अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेज होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकेंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। AR टूल्स बनाने होंगे, IoT डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। उसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा कल्चर सब चीज़ होती है, तो तमाम चीज़ें पढ़ के जहाँ पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पर आपको वहाँ की कोई चीज़ देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की।

उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आया इन गानों के साथ, साथ साथ उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो हमने इंडस्ट्री के बारे में बताया सब कुछ आप लोग समझ पाए हैं। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज कंपनी विच इज सौंदर्य। सौंदर्य एक मुंबई बेस्ड एप्लीकेशन है, बेसिकली एक स्टार्टअप है, सौंदर्य ऐप डॉट कॉम। ओके, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये कंपनी क्या अलग कर रही है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एज अ यू नो ऑडियंस या एज अ रिसर्चर अगर आप खुद को मानते हैं तो पता होनी चाहिए। इट इज़ की एआई का टाइम आ चुका है, हर एक वर्टिकल में आ चुका है। ब्यूटी टेक की हम लोग बात कर रहे हैं तो सौंदर्य खुद को उसी जगह पर पोजीशन करती है, सौंदर्य अपने आप को पोजीशन करती है एज एन एआई पावर्ड ब्यूटी डिस्कवरी एंड सलोन बुकिंग प्लेटफॉर्म। ओके, यहाँ पर बेसिकली चार चीज़ें हैं जो इसको सेपरेट करती हैं बाकी चीज़ों से। पहला तो ये है कि एआई वर्चुअल ट्राई ऑन, जो एक बहुत कॉमन फीचर है, काफ़ी सारी कंपनीज की तरफ से आपको मिलता भी है कि यू कैन सिंपली जस्ट क्लिक अ फोटो, मेक अ वीडियो एंड जस्ट पुट इट आउट देयर, पुट इट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड यू विल गेट रेफरेंसेज। सेकेंड, सलोन स्पा डिस्कवरी, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अभी भी ये प्रॉब्लम होती है, हम लोग भी देखते हैं फरीदाबाद में भी इनफैक्ट, कि जब आपको किसी सलोन जाना है, स्पा जाना है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि किसकी तरफ जाएं। मतलब डाउट होता है ना कि जो बार्बर होगा या जो वहां पर स्टाफ होगा वो कैसा होगा, किस तरह की सर्विस आपको मिलेगी, क्या आपकी बालों की जो कटिंग है वो ढंग से हो पाएगी, जो भी आप पर्पज के लिए जा रहे हो वहां पर वो फुलफिल हो पाएगा। तो ये यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको हेल्प मिल जाती है, सजेशन मिल जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज अपॉइंटमेंट बुकिंग, यू कैन डायरेक्टली बुक अपॉइंटमेंट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म विच इज सौंदर्य.com। एंड फोर्थ इज क्रिएटर लेड ब्यूटी इंस्पिरेशन, तो यहाँ पर मतलब ब्यूटी की आपको इंस्पिरेशन भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कुछ नया स्टाइल डिस्कवर किया है, नई क्रिएटिविटी कुछ वो लेकर के आए हैं, सो यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स हेयर। और यहाँ पर फिर आप उनको फर्दर रेफरेंस के तौर पर यूज़ करके आगे जा सकते हो, उस सलोन में या जिस भी जगह पर आप जा रहे हो वहाँ पर उन सर्विसेज को आप ऑप्ट कर सकते हो। ओके, ये अक्रॉस इंडिया लाइव है अभी, यहाँ पर 1 million+ डाउनलोड्स हैं जो कंपनी क्लेम करती है, 450+ प्रीमियम सलोन्स हैं यहाँ पर, 10 million+ ट्राई ऑन प्रीव्यूज हैं। ओके, ऐप स्टोर की जो रेटिंग है वो है 4.8 out of 5, सो डिसेंट इनफ यू नो टू स्टार्ट अ कंपनी, अ गुड स्टार्ट। सो दिस इज द कंपनी सौंदर्य। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में बात करेंगे आगे, आपको बताएंगे फर्दर कुछ चीजों के बारे में, बट फिलहाल जुड़ रही है हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून, फील गुड, फील।

शो में आगे बात करेंगे। कंपनी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सौंदर्य ऐप.com इनकी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको प्रीवियसली। अच्छा, एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है, क्या अलग कर रही है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर एक वर्चुअल स्टूडियो आपको मिल जाता है एंड द टैगलाइन इज ट्राई ऑन योर नेक्स्ट सेल्फ। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जाम्पल हेयर कट आपको कराना है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर उस पोर्टल के ऊपर जाना है, इस पोर्टल को ओपन करके एंड यहाँ पर आपके एक पर्टिकुलर एक वर्टिकल आपको दिखाई देगा जिसके ऊपर जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है हेयर स्टाइल। ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको फर्दर रेफरेंसेस मिलेंगे। सेकेंड यहाँ पर जो फीचर है वो है बियर्ड एंड ग्रूमिंग, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बींग क्योंकि मेल्स को अभी तक टैप इन नहीं किया गया है बहुत ज़्यादा। मेल्स के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक ट्रेडिशनली जो आप चीज़ें देखते थे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है बिकॉज मेल्स के फेस कट को देखते हुए, उनकी आंखों को देखते हुए, उनकी आंखों का फोरहेड का डिस्टेंस कितना है, उनके चीक्स कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे फेस को 3D मैपिंग की जाएगी वहाँ पर, उसके आधार पर बियर्ड के बारे में आइडियाज़ आपको दिए जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द सीरियस बिजनेस। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर इंक एंड टैटूज, दैट इज समथिंग यू नो न्यू टू मी एज वेल, कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर बिफोर यू गो एंड गेट इंक योर सेल्फ यू हैव दिस ऑप्शन टू यू नो चेक इट थ्रू दिस पोर्टल। आप ट्राई कर सकते हो, ए आई के थ्रू आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कैसा वो दिखने वाला है वहाँ पर टैटू, आपकी बॉडी जिस भी बॉडी पार्ट पर आपको उसको बनवाना है एग्जैक्टली वैसा आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर नेल आर्ट, स्पेशली फॉर फीमेल्स इट इज इम्पॉर्टेंट, मतलब डाउट होता है कि करा लें अगर अच्छा लगे ना लगे, तो यहाँ पर बिल्कुल रियल टाइम में आप उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्किन एनालिसिस। नाउ ये मिलता है बहुत जगह पर, आपको ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन क्लिनिकल ग्रेड टेक्सचर एंड टोन जो है वो आपकी स्कैनिंग यहाँ पर की जाती है प्रॉपर, और ये एक ब्यूटी टेक में डील करने वाली कंपनी कर रही है। आपकी फेस की शेप को जो है प्रॉपर मैपिंग की जाती है ज्योमेट्रिकली, और उसके बाद फिर आपको जो है वहाँ पर डिसीजन जो भी होता है वो आपको दिया जाता है, एंड दैट इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड बिकॉज ग्रूमिंग यार सब करना चाहते हैं, मेन पॉइंट ये आता है कि ग्रूमिंग करें कैसे, कहाँ पर जाएं। तो यहाँ पर आपको बिफोर यू टेक द रियल रिस्क, बिफोर यू गो टू द स्टूडियो, आप सारी चीज़ें करा ले और फिर आपको रियलाइज हो कि नहीं यार ये अच्छा नहीं हुआ, आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ पर आप उसको ट्राई कर सकते हैं। That is the story. फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, कहीं जाइएगा मत, अभी तक मैंने आपको बताया एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। Stay tuned with us, feel good, feel.

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आइए बात करते हैं एग्जैक्टली कौन सी प्रॉब्लम को इस कंपनी ने सॉल्व किया है। तो ट्रेडिशनली जो होता था वो मैं आपको बता चुका हूँ और आप लोग ही बखूबी जानते हैं। यहाँ पर सिंपली ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है वेयर इज द सलून, प्रॉब्लम ये सॉल्व हो रही है कि कौन सा हेयर स्टाइल मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। एंड क्योंकि आप उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर मोस्टली लोग सोशल मीडिया पर खुद को दिखाना चाहते हैं और अच्छा दिखाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो ग्रूमिंग है वो बेस्ट लेवल पे हो। एंड दैट्स वेयर दिस कंपनी किक्स इन। तो ये कंपनी सिंपली आपको बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शन देती है, आपके फेस की शेप को एनालाइज करती है, जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। एंड इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि अपने आप को रीइमेजिन कर सकते हो अपनी फोटो अपलोड करके। तो सिंपल आइडिया एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। बिगर आइडिया ये भी है कि इंस्पिरेशन से ट्रांजेक्शन तक लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर ये बिजनेस मॉडल अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आप इंस्टाग्राम पिंट्रस्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्यूटी इंस्पिरेशन मिलते हैं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि भैया इन ब्यूटी जो आपको इंस्पिरेशन मिले हैं इनको आप एग्जीक्यूट कहाँ पे कराओगे। सो दिस कंपनी, आई मीन दिस पोर्टल प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग। आपको इंस्पिरेशन यहाँ पर अपलोड करनी है, आपको AI के थ्रू विजुलाइज करना है, आपको पता लग जाएगा आप पैसे लगने वाले हो, फिर आपको सर्विस डिस्कवर करनी है कहाँ पर हो सकती है, आप बुकिंग करोगे और फिर उसके बाद सिंपल आपको एक्चुअल ब्यूटी सर्विस मिलेगा। जस्ट इमेजिन दिस, आपने कोई फोटो देखी, एस्थेटिक आपको बहुत अच्छी लगी पिंट्रस्ट के ऊपर, आपको लगा कि यार मुझे ये काम अपनी बॉडी के ऊपर कराना है, ऐसे बाल करवाने हैं, ऐसी बियर्ड करानी है, ऐसा नेल पेंट कराना है, ऐसा नेल आर्ट कराना है, तो कहाँ पर जाओगे आप? और वहाँ पर ये कंपनी आ जाती है। तो यहाँ पर आप आओगे इस पोर्टल पे और ये आपको बता देगा आप यहाँ पर जा सकते हो और ये आपके पास ऑप्शन है, ये सलून्स हैं, ये आर्टिस्ट हैं जो आपका ये काम कर सकते हैं। एंड सिंपल। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि अब यार वो टाइम नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ, जब हम वो बस नीड्स की बात करते थे। हमें चाहिए भाई एस्थेटिक, हमें चाहिए, हम अपनी बेस्ट शेप में खुद को कैरी करना चाहते हैं, बेस्ट पॉसिबल जो हमारा आउटफिट है वो हम कैरी करना चाहते हैं, बेस्ट पॉसिबल जो हमारा हेयर कट है वो हमको चाहिए, बेस्ट पॉसिबल जो हमारी ग्रूमिंग हो सकती है वो हम यहाँ पर करना चाहते हैं। That's what this company is doing differently. Now let's take another musical break. उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। Stay tuned, feel good, feel good. Bye.

0: वेलकम बैक, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। एंड यहां तक हमने कंपनी की बात करी है, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि कंपनी के जो फाउंडर हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो मैं माफी चाहूंगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस शो मैं आपको फाउंडर्स के बारे में नहीं बता पाऊंगा। हालांकि कुछ कुछ क्लेम्स हैं यहाँ पर जो आपको मैं बता सकता हूँ, जैसे कि डॉक्टर सौंदर्य राजेश जो हैं उनका बोला जाता है कि शी स्टार्टेड दिस कंपनी एंड शी इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ अवतार द पावर ऑफ डाइवर्सिटी, एक बहुत अच्छा पोर्टल है, ठीक है, अवार्ड विनिंग एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, बट वी आर नॉट वेरीफाइंग दिस क्लेम। रीजन बींग ये किसी वेरीफाइड सोर्स से नहीं आ रहा है, ये इंटरनेट पर स्पेकुलेशन हो सकता है। सो यस, फॉर दैट पार्ट आज की जो कंपनी है जो प्रॉपर एक ऐप की तरह काम करती है उसके फाउंडर ने खुद को बहुत ही दूर रखा हुआ है, बहुत ज्यादा उनके बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट नाम तक भी कंफर्म लेवल पे अवेलेबल नहीं है। बट व्हाट मेक्स दिस कंपनी यूनिक, ये हमने आपको बता चुके हैं, यूएसपी है एआई बिफोर परचेज, यूएसपी है इंडियन ब्यूटी डेटा। बाहर वेस्टर्न डेटा के ऊपर काम नहीं करेंगे, हमारा रियल इंडियन फेस जो है वो स्कैन किया जाएगा, हमारे स्किन टोन अलग होता है, हमारा टेक्सचर अलग होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी अलग होती है, तो उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर कैटर किया गया है। कनेक्ट एआई टू फिजिकल कॉमर्स, ये भी एक ऑप्शन है, ट्राई डिसाइड बुक, ओके, सैलून साइड टेक्नोलॉजी, अच्छा बिजनेस मॉडल है, ठीक है, ये अपने आप को एज अ कंज्यूमर ऐप भी पोजीशन नहीं करते हैं, एक तरीके से एक पोर्टल, एक मार्केट प्लेस के तौर पे खुद को लिस्ट करते हैं, कंज्यूमर को हेल्प करेंगे एंड दो सैलून में आप जाएंगे वहां पर उनकी हेल्प करेंगे, सो इट्स अ टू वे थिंग एंड दैट इज समथिंग जो इस कंपनी ने अलग किया। तो ये है भैया हमारी आज की कंपनी, हालांकि बहुत बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत अर्ली स्टेज में है कंपनी, बट इट इज व्हाट इट इज। उम्मीद कर रहा हूँ ये मैं आपको बता पाया हूँ, हालांकि मैंने खुद वेरीफाई किया, कंपनी का जो पोर्टल है सौंदर्यऐप.com, इनकी वेबसाइट है, इनकी एप्लीकेशन से आप जाके चेक कर सकते हैं, लिस्टिंग है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की, सलून्स, लाउंजेस, टैटू कराने हैं, स्पा, मतलब जो भी आपको वहाँ पर सर्विस चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। ऑल द टॉप नॉच आर्टिस्ट बेसिकली जो आपको मिल सकते हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, अलॉन्ग विद द रेटिंग, अलॉन्ग विद द लोकेशन, कहाँ पर चाहिए, किस लोकेशन पर चाहिए, ये कंपनी मैप करके आपको देती है। That is a business model of this company. एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने शो को यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करना चाहेंगे। Stay tuned with us.
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छुकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पष्टीकरण तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मारवाड़ 107.8 एफएम के साथ। एंड ऑन दिस नोट, अपने वक्त है शो को यहां पर कंक्लूड करने का। हम लोगों ने जिस कंपनी के बारे में आज बात करी प्राइमरली, दैट इज सौंदर्य। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ट्रेडिशनल मेथड से बहुत अलग है। एंड रीजन बीइंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कि जब भी आप मार्केट में उतरते हो, अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, यू हैव टू रीड द मार्केट। अभी आप प्रीवियस जनरेशन की बात करेंगे, उनको बहुत मिनिमलिस्ट लाइफ जीने की आदत थी। बट करंट जनरेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो यू विल रियलाइज दिस थिंग, कि उन्हें स्टैटिक चाहिए। और आप ये डिनाई नहीं कर सकते, उनको हम मॉरली जाके नॉलेज नहीं दे सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो। कुछ गलत नहीं है। हाउ कैन यू एनकैश इट, दैट इज द बिग क्वेश्चन। आप खुद को कैसे खुद पोजिशन कर सकते हो उस मार्केट में, आप उस कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हो, आप उनको कैसे नई चीज दे सकते हो, कैसे आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो या फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दैट्स हाउ दीज आर द टू स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो किसी भी स्टार्टअप के लिए मेजरली काम करते हैं, इधर एड सम वैल्यू और रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। और ये दोनों ही चीजें यहां पर ही कंपनी कर रही है आपके लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, दैट्स ऑल अबाउट सौंदर्य ऐप। अब इसी के साथ वक्त अपने शो को कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज का शो आपको मैं समझा पाया हूँ, पसंद आया होगा आज की केस स्टडी आपको। चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल पे वहाँ अकेला क्या कर रहा है?
2: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
3: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
4: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं आप ही का ख्याल रखने के बारे में। जी हाँ, हर हफ्ते हम बात तो करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स पे। आज हम बात करेंगे आपके दिल के बारे में। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं आज के समय में जिनको जानकर, जिनको समझकर दिल घबराता है। लेकिन आपका दिल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके दिल का ख्याल रखने के लिए आ गए हैं हेल्थ एक्सपर्ट। हम आज बात करने वाले हैं हार्ट केयर के बारे में। वर्ल्ड हार्ट डे हर वर्ष मनाया जाता है 29 सितंबर को, और इसी उपलक्ष में हम बात करेंगे आज शहर के जाने माने हार्ट रोग एक्सपर्ट से, यानी डॉक्टर एसएस बंसल जी, जो कि सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, साथ ही चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से। और इनसे हम जानेंगे दिल से जुड़ी बहुत सी खास बातें कि आप अपने दिल का ख्याल कैसे रख सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: थैंक यू।
4: सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ हार्ट केयर के बारे में, जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम फिट हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूँ, एकदम फिट हूँ, सब कुछ सही महसूस कर रही हूँ, क्या फिर भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
5: बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीक्षा। ये लोगों को बेसिकली हार्ट डिजीज जो है ना, बड़ी एडवांस स्टेज तक साइलेंट रहती है, छुपी हुई रहती है हमारी बॉडी में। इसीलिए आपने सुना होगा कि कई लोग जो हैं उनकी सडन डेथ हो गई, और पहले कुछ था ही नहीं उनको, और जैसे रात को सोए रह गए, सुबह उठे नहीं, जिम में एक्सरसाइज करते हुए कोलैप्स हो गए, या आप एक्सरसाइज के अलावा कई बार जो रनिंग करते हैं लोग, वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये सडन डेथ कर सकती है। इसलिए हर एक को जो है, इंडियंस आर प्रोन टू हार्ट डिजीज, हर एक को ही अपना हार्ट जो है उसका चेकअप टाइमली कराना चाहिए।
4: जी सर, आपने जिम की बात कही, और हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, फरीदाबाद की ही वीडियोस वायरल हुई हैं, जहां पर जिम में वर्कआउट करते करते कोई कोलैप्स कर गए, बचाने तक का समय नहीं मिलता, डॉक्टर के पास ले जाने का भी समय नहीं मिलता। और ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ भी ऐसा हुआ है, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ऐसा होता है। उम्र बहुत छोटी थी, 40-45 के आसपास, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। सो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और कैसे इसको रोका जा सकता है?
5: ये दीक्षा एक्चुअली क्या है, हमारे हम लोग ना अपनी हेल्थ को ग्रांटेड लेते हैं, हम सोचते हैं हमें हार्ट डिजीज हो नहीं सकती, तो उस चक्कर में कोई चेकअप नहीं कराता। नहीं तो आजकल टेक्नोलॉजी है, आप हार्ट डिजीज को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हो। जब आप जिम या कोई एक्सरसाइज करते हो और आपको पता नहीं है, आपके अंदर 80-90% ब्लॉक है, बट यू आर नॉट अवेयर, कई बार 50-60% है, या कई बार उससे भी ज़्यादा है, तो जब आप एक सडनली ऐसी एक्सरसाइज शुरू कर देते हो जो अनकस्टम्ड है, यू आर नॉट अकस्टम टू इट, तो ऐसी एक्सरसाइज करने में वो जो ब्लॉक होता है, एक तो हार्ट की डिमांड बढ़ जाती है बहुत ऑक्सीजन की, और उधर से वो प्लाक रप्चर होके क्लॉट बन जाता है, उससे सडन हार्ट अटैक होता है, जिससे सडन डेथ हो सकती है उसको।
4: जी यानी मतलब
5: हाँ, तो इसलिए मेरी इस हर एक को मैं ये एडवाइस देता हूँ कि अगर आपने अनकस्टम्ड एक्सरसाइज शुरू करनी है, कोई विग्रस एक्सरसाइज प्रोग्राम आप शुरू कर रहे हो, तो उससे पहले कम से कम अपने हार्ट को जरूर चेक कराएं, क्योंकि सडन डेथ का बहुत बड़ा कारण है इको एंड सीटी एनजीओ। ये दो टेस्ट हैं जो जिनसे हमें हार्ट डिजीज अर्ली स्टेज में पता चल सकती है। ऐसे मैंने इतने पेशेंट ट्रीट किए हैं जिनके 90-90% से ऊपर के ब्लॉक थे और उनको कोई सिम्टम नहीं था,
4: कोई सिम्टम
5: हाँ, और वो एक्सरसाइज करते तो वो कोलैप्स कर सकते।
4: जी, और ये किसी भी एज में हो सकता है?
5: ये किसी भी एज में हो सकता है, यूजली मेल्स में ज्यादा होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है रिस्क बढ़ता जाता है। 20 ईयर्स की एज के बाद वन शुड बी वेरी कॉशियस, क्योंकि 20 की एज पे हर बॉय और एंड हर एवरी बॉय एंड गर्ल शुड गेट देयर ब्लड शुगर चेक, बीपी चेक एंड लिपिड प्रोफाइल चेक। तो उसमें अगर किसी की कोई एबनॉर्मलिटी निकलती है, तो वो एबनॉर्मेलिटी को उन्होंने ट्रैक करना होता है, भूलना नहीं होता, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए चाहे दवाई खानी पड़े। अगर लॉन्ग रन में वो चाहते हैं कि हार्ट डिजीज ना हो, तो ये रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करके उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
4: जी बिल्कुल, यानी जो चीज़ें, जो टेस्ट हम पहले 50s के बाद कराया करते थे, या हमारे घर में कहा जाता था कि 60 के बाद हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है तो थोड़ा चेकअप कराइए, वो अब 20s में कराना चाहिए।
5: 20 में इसलिए कि जो हार्ट डिजीज की शुरुआत 20 में होती है
4: जी,
5: तो वो धीरे धीरे अंदर साइलेंटली ग्रो करती है ओवर ईयर्स। पहले तो लोगों के 60 की 50 की एज ग्रुप के ज़्यादा लोग आते थे हार्ट अटैक से, आजकल हमारे पास 30 से 40 के अंदर भी ऑलमोस्ट 20% पेशेंट आते हैं जो हार्ट अटैक, जिनको हमारे हॉस्पिटल में जो आते हैं उनमें से 20% पेशेंट्स आर यंगर देन 40। तो इट्स ए डिजीज विच स्टार्ट्स क्वाइट अर्ली
4: जी,
5: और इट कैन बी पिक्ड अप बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। लेकिन जब तक हार्ट अटैक लेट इसलिए होते थे पहले, क्योंकि तब तक अनआइडेंटिफाइड छुपी हुई बीमारी रहती थी, सरफेस पे नहीं आती।
4: बिल्कुल, तो सर आपके हिसाब से कौन सी ऐसी सही एज है जब डॉक्टर के पास जाकर ये सारे चेकअप्स कराने चाहिए?
5: अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसको तो अपने जो रिस्क फैक्टर के लिए तो सारे 20 की एज में कराने हैं। वैसे तो कहते हैं कि प्यूबर्टी क्रॉस करते ही लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए जिसकी फैमिली हिस्ट्री है। अगर वैसे ठीक हैं, ऑल इंडियंस आर प्रोन टू हार्ट डिजीज, तो इसलिए 30 की एज के बाद एक बार अपना सारा प्रोफाइल हार्ट चेकअप करा लेना चाहिए। खाली ब्लड टेस्ट नहीं, ECG, ECO, स्ट्रेस टेस्ट, अगर उसमें कोई भी डाउट आता है देन CT NGO, तो ये टेस्ट अवेलेबल है, आपकी डिजीज को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं
4: जी। यानी ये सारे टेस्ट कराते रहने
5: और हर साल कराना चाहिए, क्योंकि आपको आज बिल्कुल आप हेल्दी हो, आपके सारे चीजें ठीक आ रही हैं, एक साल में क्या हुआ वो आपको पता नहीं है, तो अगले साल भी टेस्ट होने चाहिए, तो एवरी ईयर इट शुड बी डन
4: जी। यानी हर साल ये टेस्ट कराने चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी उम्र बढ़ गई है तो टेस्ट थोड़ा और जल्दी कराने चाहिए?
5: वो ना एक्चुअली डिपेंड करता है, अगर आपके हेल्दी रिपोर्ट्स हैं, सारे बिल्कुल ठीक हैं और आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो आप एनुअली करा सकते हो। पर अगर आपकी डिजीज डिटेक्ट हो गई है, आपको कोई एपिसोड हो गई, आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी या बाईपास हो चुकी या एंजाइना आपको हो रहा है, तो फिर आपका कार्डियोलॉजिस्ट जो है आपकी डिजीज को देख के अकॉर्डिंगली आपके दोबारा टेस्ट कराता है। जहाँ जहाँ एबनॉर्मेलिटी होती है उसको बार बार चेक करना पड़ता है।
4: जी बिल्कुल। सो आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर डॉक्टर SS बंसल जी से, जो कि जाने माने सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही चेयरमैन और MD है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद के। इस सारी जानकारी को आप हमारे इंटरनेट रेडियो के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में भी सुन सकते हैं और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि सभी अपने दिल का ख्याल अच्छे से रख सकें। बहुत सी जानकारियां और भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूँ दीक्षा आपके साथ और हम बात कर रहे हैं आपके दिल के बारे में। जी हाँ, दिल यानी हार्ट, और हार्ट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मैटर्स और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो हार्ट फेल, हार्ट अटैक या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं। सो एक्सपर्ट से बेहतर हमें कोई सलाह नहीं दे सकता। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SS बंसल, जो कि जाने माने सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग होते हैं वो जो हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्लड टेस्ट कराते हैं और एकदम ब्लड टेस्ट ठीक आते हैं और उनको लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। क्या ऐसे केसेस में भी हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं?
2: ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को गलत फहमी है, वो घर में बैठ के अपने ब्लड सैंपल दे देते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं सारी नॉर्मल और वो निश्चिंत हो जाते हैं कि मुझे तो कुछ होगा नहीं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो हार्ट अटैक से हॉस्पिटल में, जब हम उनको बोलते हैं कि आपको हार्ट अटैक है, वो कहते हैं मेरे को कैसे हो सकता है, मेरी तो सारी रिपोर्ट्स ब्लड की नॉर्मल आती थी, कभी कोई खराबी आई नहीं और मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कभी लाइफ में, तो हार्ट अटैक कैसे हो गया, मैं तो कभी कोई दवाई भी नहीं खाई। तो वो बेसिकली क्या है, ब्लड टेस्ट से हार्ट डिजीज नहीं पता चलती। उसके लिए हमें हार्ट के टेस्ट कराने पड़ते हैं हॉस्पिटल जाके, जैसे कि ECG है, इको है, TMT है, स्ट्रेस इको है, कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम है, CT कोरोनरी एनजियो है। अब तो इतनी एडवांस चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप डिजीज को अर्ली डिटेक्शन उसकी कर सकते हो। ब्लड टेस्ट के भरोसे नहीं रहना चाहिए,
1: सिर्फ ब्लड टेस्ट से कुछ नहीं।
2: जी जी,
1: वो ये ठीक है कि आप CBC कर

0: एक बहुत कॉमन चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम नॉर्मल होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल है कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी हार्ट अटैक हो सकते हैं?
1: ये भी एक गलत धारणा लोगों के बीच में है कि अगर कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल है तो मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये बहुत कॉमन धारणा है, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी मेरे पास जो आए उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे तो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल थे, मेरे को कैसे हो गया। एक्चुअली 50% से ज़्यादा पेशेंट्स जिनको सीरियस ब्लॉक होते हैं, 90%, 80% बाईपास तक करानी पड़ती है, इतनी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड होती है, उनके कोलेस्ट्रॉल कराओ तो बिल्कुल नॉर्मल से भी कम। तो ऐसे पेशेंट्स में एक्चुअल में ब्लॉक बनते नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल ही, जहाँ पे नस वीक होती है, चाहे जेनेटिकली वीक है या डायबिटीज़ की वजह से वीक है या हाई ब्लड प्रेशर से वीक है या लाइफस्टाइल ख़राब है, जहाँ पे वीक होता है पॉइंट, वहाँ पे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल ही डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जो है कराना जरूरी है, बट उसके वो अगर नॉर्मल है या लो नॉर्मल, नॉर्मल से भी कम है, तो आप ये एज्यूम ना करें कि आपको हार्ट डिजीज नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल, यानी कोलेस्ट्रॉल के चेकअप से भी खाली ये चीज पता नहीं चलती। तो हार्ट अटैक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, तो हार्ट के स्पेसिफिक टेस्ट कराने इस केस में बहुत ज्यादा जरूरी है।
2: बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ, और डॉक्टर SS बंसल से अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हार्ट केयर से जुड़ा हुआ, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नंबर है बहुत आसान, 8010781078।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें चल रही हैं हार्ट केयर के बारे में। दिल बहुत ज्यादा नाजुक होता है। हमारे डे टू डे एक्टिविटीज, हमारे खराब लाइफस्टाइल या फिर हमारे बेहतर लाइफस्टाइल से इस पर बहुत असर पड़ता है। साथ ही कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो दिल का ख्याल रखना हर एक दिन बहुत जरूरी है, चाहे वो मल्टीपल टेस्ट हो या फिर डॉक्टरी एडवाइस या फिर दवाइयां या फिर ट्रीटमेंट। हर एक तरीके से आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसएस बंसल, देश के जाने माने सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और साथ ही एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। आइए जानते हैं इनसे और भी बहुत सी बातें हार्ट केयर के बारे में। डॉक्टर साहब, एडवांसमेंट्स की बात करते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि काफी एडवांस हो गई है मेडिकल साइंस, स्पेशली हार्ट टेस्ट के मामले में। तो क्या क्या एडवांसमेंट है जो अवेलेबल है आज के समय में, जहाँ पर व्यक्ति जा सकता है, इजिली टेस्ट करा सकता है, या फिर केयर के मामले में क्या हो सकता है?
1: दीक्षा, सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट, जो सबसे यूजफुल एडवांसमेंट जो मुझे लगती है, वो ये है कि पहले हम लोग पेशेंट को स्क्रीन करते थे खाली ईसीजी से, इको से, टीएमटी से, स्ट्रेस इको से, और उसमें 70% से कम ब्लॉक डिटेक्ट नहीं होते थे। और कई 30% से 40% तक जिनके सीरियस ब्लॉक होते थे वो भी मिस हो जाते थे उसमें
0: जी।
1: और वो पेशेंट को और डॉक्टर को दोनों को फॉल्स एश्योरेंस हो जाती थी। पेशेंट्स को सिम्टम भी नहीं है, टेस्ट भी ठीक आए, तो वो एकदम निश्चिंत हो जाता था। अब जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आई है, ये एडवांस सीटी स्कैन है जो हम, मेरे हॉस्पिटल में सीटी स्कैन बिल्कुल, इतने पेशेंट मेरे पास सीटी स्कैन में बीमारी निकली है, इतने पेशेंट्स को, जो बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल थे उनके। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक सबसे बड़ी एडवांसमेंट है डायग्नोसिस के लिए। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, इतनी एडवांस हो गई है एंजियोप्लास्टी, उसके कैथेटर बहुत अच्छे आ गए, उसके स्टेंट्स बहुत अच्छे आ गए, वायर्स इतनी हो गई कि जितनी मर्जी खराब आर्टरी हो, टॉर्चुअस हो, कैल्सीफाइड हो, तो अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, रोटाविलेशन से आप कैल्शियम साफ कर सकते हो। ऐसी जहाँ पे कोई स्टेंट जाना मुश्किल होता था, जहाँ पे आर्टरी में कई बैंड होते थे, अब फ्लेक्सिबल स्टेंट्स आ गए, उनमें ड्रग्स बेटर हो गई, ड्रग कोटेड बैलून आ गए। फिर उसके बाद पेसमेकर में हमें वायर कनेक्ट करनी पड़ती थी, अब वो लीडलेस पेसमेकर आ गए। फिर उसके बाद आपके हार्ट के वाल्व सर्जिकली क्लोज करने पड़ते, चेंज करने पड़ते थे वो ओपन करके। अब बिना ओपन करे एक छोटे से ग्रोइन में पंचर से हार्ट का वाल्व, मैंने कल ही चेंज किया है हार्ट का वाल्व, तो एओर्टिक वाल्व आराम से हार्ट का चेंज हो सकता है। कईयों के वाल्व बहुत लीक करते थे पहले, तो उनके लिए कोई हार्ट वीक है और माइटल वाल्व लीक कर रहा है, उसको बेसिकली हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा उसकी कोई ऑप्शन नहीं बचती थी। अब लीकेज को बंद करने के लिए माइट्रा क्लिप आ गया, वो नॉन सर्जिकल टेक्निक आ गई है। सर्जरी जिन पेशेंटों में नहीं हो सकती है, उनमें अब माइट्रा क्लिप से आप कर सकते हो नॉन सर्जिकल मेथड से। तो बहुत सारी एडवांसमेंट हुई है, जिससे कि काफ़ी पेशेंट जिनकी पहले बाईपास होती थी या वाल रिप्लेसमेंट होते थे, अब बिना सर्जरी के वही काम हो जाते हैं
0: जी। और इतनी एडवांसमेंट्स आपने बताई हैं, तो एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात अगर मैं करूं, तो किस तरीके के एडवांसमेंट आपके हॉस्पिटल में है जहां पर पेशेंट्स आ सकते हैं?
1: हमारे पास एक्चुअली, हमने, हमारा मेनली फोकस हार्ट पे है
0: जी।
1: तो हमने हार्ट के एक्सपर्ट, जैसे मेरे को 35 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया एंजियोप्लास्टी करते हुए, हार्ट के होल बंद करते हुए, पेसमेकर लगाते हुए, हार्ट फेलियर के पेशेंट, सो मैं 35 इयर्स से कर रहा हूँ, और मेरा कोर काम है डिफिकल्ट एंजियोप्लास्टी
0: जी।
1: दूसरा, हमारे सर्जन जो हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर सिद्धू, वो भी, उनका भी 35 ईयर से वो बाईपास कर रहे हैं और हार्ट के वाल चेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक्सपीरियंस टीम ऑफ डॉक्टर्स जो बड़े, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, गुड इक्विपमेंट एंड गुड डॉक्टर्स। तो इक्विपमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो मोस्ट एडवांस हार्ट लंग मशीन, उसके अलावा बेस्ट फ्लैग पैनल, दो कैथ लैब, उसके बाद उसमें स्टेंट बूस्ट, उसके सारे फीचर जो पेशेंट के लिए सेफ्टी के लिए चाहिए वो सारा कुछ है। रोटाब्लेशन है, 4D इको है, जो नॉर्मली इको होती है वो 2D इको होती है, ये 4D इको हमारे पास है। CT जो स्पेसिफिकली हार्ट का उसमें सॉफ्टवेयर है, हार्ट की डिजीज को, अर्ली डिजीज को डिटेक्ट करता है, ऐसा CT स्कैन लिया, वो जो नॉर्मल CT से लगभग 8 गुना महंगा है।
0: ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज
1: हैं। इसलिए हम हार्ट का पूरा स्पेक्ट्रम ट्रीट करते हैं
0: जी, यानी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सो डॉक्टर SS बंसल से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं और दिल का ख्याल रखने के बारे में, अगर आपके मन में भी कुछ डाउट्स हों, कुछ दुविधा हो, तो आप हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं 8010781078 पर। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष, और आज भी हम आपको ऐसी कुछ जानकारियां वर्ल्ड हार्ट डे से पहले और वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर भी दे रहे हैं, ताकि आप अपने दिल का ख्याल अच्छे से रख सकें। अगर आप ये जानकारियां किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी इंटरनेट रेडियो की ऐप डाउनलोड करके रेडियो मानव रचना 107.8, और इस ऐप के माध्यम से आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर इस पॉडकास्ट सेक्शन में जा सकते हैं और ये सारी बातचीत आप कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। आपके एक शेयर से किसी की जान बच सकती है। अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप खास प्रोग्राम दिल का ख्याल रखने के बारे में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें चल रही हैं आप ही के दिल का ख्याल रखने के बारे में, हार्ट केयर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बदलता लाइफस्टाइल, खराब होता माहौल यानी पोल्यूशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, लेकिन क्या हमारा लाइफस्टाइल ठीक हो फिर भी हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं? ऐसे कुछ सवाल और ऐसे ही

0: कुछ सवालों के जवाब हम जान रहे हैं आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर एसएस बंसल जी से, जो कि देश के जाने माने सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। तो आइए जानते हैं कुछ और सवाल। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल पेशेंट्स बहुत आते हैं इंडिया में और आपके हॉस्पिटल में काफी सालों से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पेशेंट्स इराक से, ओमान से आते हैं, तो कितने पेशेंट्स किन किन कंट्रीज से आते हैं और क्यों आते हैं?
1: ये एक्चुअली इंडिया में, अब इंडिया में ट्रीटमेंट सस्ती है
0: जी,
1: दूसरा इंडिया के अंदर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, बाहर की कंट्रीज वालों को इंडियन डॉक्टर्स पे भरोसा हो चुका है, वो बड़े प्रोसीजर जो उनकी कंट्री में नहीं होते उनको कराने के लिए इंडिया में आते हैं। मैं पिछले 15 साल से इंटरनेशनल पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज के मैंने पेशेंट ट्रीट किए होंगे, तो अभी भी मेरे अंडर 8 पेशेंट इंटरनेशनल एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल पेशेंट इसलिए आते हैं, एक तो आते हैं वर्ड ऑफ माउथ से, जिसका मैं 15 साल से ट्रीट कर रहा हूँ, जिसका मैंने करा वो अपने रिलेटिव को लेके आता है। तो और इंडिया में अब सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, एक्सपर्टाइज अवेलेबल है और बाकी दुनिया में जितने हॉस्पिटल हैं उन सबसे सस्ता भी है, तो यही कारण है कि इंडिया में अब इंटरनेशनल पेशेंट बहुत आते हैं।
0: जी, इंटरनेशनल पेशेंट्स आपके यहाँ काफ़ी आते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ मेडिसिंस की, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेडिसिंस दी जाती है, कईयों की एंजियोप्लास्टी होती है, कई की बाईपास होती है, तो ये डॉक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को किस तरीके की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है?
1: हाँ, ये दीक्षा, ये डिपेंड करता है कि उसकी डिजीज का एक्सटेंट कितना है, कितने ब्लॉक हैं, कितनी सिवियरिटी है और किस तरह के ब्लॉक हैं, कितनी खराब नसें हैं, तो उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। पहले जिन लोगों को बाईपास के लिए भेजा जाता था, अब एंजियोप्लास्टी में इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि हमारे पास कई पेशेंट जो बाईपास नहीं कराना चाहते, वो खास तौर पे इंटरनेशनल पेशेंट मेरे पास जो आते हैं वो आते हैं जो बाईपास नहीं कराना चाहते और सबने बाईपास एडवाइस की होती है, तो उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके एंजियोप्लास्टी करी जा सकती है। तो एक तो ये, दूसरा जिन पेशेंट्स में लेकिन एंजियोप्लास्टी हो ही नहीं सकती या बहुत हाई रिस्क है एंजियोप्लास्टी में कि एक ही नस पे जिंदा है, उसमें सीरियस ब्लॉक है और आप उसमें एंजियोप्लास्टी के लिए बलून इन्फ्लेट करोगे, क्रैश हो जाएगा, ऐसे पेशेंट में अभी भी बाईपास कराने पड़ते हैं। और जिनके हार्ड कैल्सिफाइड ब्लॉक हो गए सारी नसों में, उनमें उनको करना बहुत मुश्किल होता है रोटा से, उनको भी बाईपास होती है, तो बेसिकली सेलेक्ट करना पड़ता है। दूसरी बात ये है, उस पर डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट में कितनी एक्सपर्टाइज है। काफ़ी सेंटर्स में जहाँ पे वो सिंपल केसेस करते हैं
0: जी,
1: उनमें वो थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स केस हो तो उसकी बाईपास कराते हैं। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिजीज़ कैसी है और जो डॉक्टर करने वाला है उसकी एक्सपर्टाइज कैसी है। 70% से कम ब्लॉक होते हैं उनको दवाइयों से ट्रीट किया जाता है, और जो छोटे छोटे ब्रांचेज में ब्लॉक होते हैं उनको भी दवाइयों से ट्रीट किया जाता है, जो डेंजरस पॉइंट पे जो ब्लॉक होते हैं वो दवाइयों से ट्रीट नहीं किया जा सकते
0: जी, यानी उसमें रिस्क फैक्टर
1: बहुत ज्यादा रिस्क होता है
0: जी
1: सडनली।
0: डॉक्टर साहब, एक एंजियोप्लास्टी जो होती है वो बहुत पेशेंट्स की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंट्स के दिमाग में होता है कि एक काइंड ऑफ सर्जरी है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, तो क्या ब्लीडिंग को रोका जा सकता है?
1: पहले तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एंजियोप्लास्टी है वो एक स्मॉल पंचर से होती है, ना कोई स्टिच लगता है ना कोई कट लगता है, तो ब्लीडिंग के चांसेस वैसे ही बहुत कम होते हैं। आजकल ना रेडियल एंजियोग्राफी करते हैं, हाथ से करते हैं, 5 मिनट में एंजियोग्राफी करी और उसको घर भेज सकते हैं उसके तुरंत बाद, यहाँ पे दबा सकते हो, 10-15 मिनट दबाने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है, वो हम बंद करके भेजते हैं।
0: ओके।
1: दूसरा, अगर किसी का किसी वजह से यहाँ पे नस उसकी सूटेबल नहीं है तो हमें पैर से करना पड़ता है, तो पैर से क्या होता है कि पैर से अगर आप पंचर करते हो तो पैर में कई बार थाई में इतनी ब्लीडिंग हो जाती है या एब्डोमन में, उसमें रिस्क होता है, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, कुछ हम कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। उसके अलावा हम लोग एंजियोप्लास्टी के बाद अब नए वेस्कुलर क्लोजर डिवाइस आ गए हैं, उसमें हम वो उससे क्लोज कर देते हैं उसका होल, नस के अंदर जाके उसको होल को क्लोज कर देते हैं उसी पंचर में से जिसमें से हमने किया है
0: जी।
1: तो उससे क्या हुआ कि पहले पेशेंट को ब्लीडिंग रोकने के लिए 6-7 घंटे पैर सीधा रख के लेटे रहना पड़ता था, जिससे उनको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आती है और बड़ी प्रॉब्लम आती है, खाना खाने में प्रॉब्लम आती है। अब हम पेशेंट को पैर से भी करी हो तो उसकी वेस्कुलर क्लोजर डिवाइस से क्लोज करके उसको बिठा के खाना खिला सकते हैं 10 मिनट बाद,
0: जी, यानी अब काफी चीजें जो हैं वो बदल गई।
1: जी जी जी।
0: तो बहुत सी बातें हम डॉक्टर एस एस बंसल जी से जान रहे हैं, लेकिन अभी बातों ही बातों में वक्त आ गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं आपकी हार्ट केयर के बारे में। हार्ट यानी दिल, दिल यानी हार्ट, जिसका ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसका ख्याल हम बखूबी रखते हैं कई बार, लेकिन कई बार नहीं रख पाते हैं। हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल, खराब खान पान, कुछ आदतें और ढेर सारा पॉल्यूशन इसे खराब करने का जिम्मेदार बन जाता है। पर डॉक्टरी एडवाइस से आप अभी भी अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। कैसे, वो हम जान रहे हैं डॉक्टर SS बंसल जी से, हमारे खास मेहमान, हमारे खास एक्सपर्ट, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और साथ ही देश के जाने माने सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे एक व्यक्ति अपना ख्याल रख सकता है और अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकता है।
1: डॉक्टर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, जिनको हाइपरटेंशन भी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, वो स्मोक भी नहीं करते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उन्हें ये लगे कि उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन क्या फिर भी हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं?
2: बिल्कुल होते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन इतनी है उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता
1: जी।
2: स्ट्रेस लाइफ में बढ़ गया है, स्लीप लोगों की प्रॉपर नहीं है, स्लीप आल्सो इज ए हेल्पफुल थिंग, लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको आपकी फैमिली में नहीं है, आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपको हार्ट डिजीज नहीं हो सकती, तो कई वायरल इन्फेक्शन भी करती हैं गड़बड़। तो एक चीज़ होती है एंडोथेलियल डिसफंक्शन, तो जिसको एंडोथेलियल डिसफंक्शन किसी भी कारण से है उसको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डोंट टेक योर हार्ट फॉर ग्रांटेड, उसका चेकअप जरूर कराएं।
1: बिल्कुल, यानी अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको बिल्कुल आप हल्के में ना लें
2: जी।
1: डॉक्टर साहब, आपने शो की शुरुआत में कहा कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हार्ट रिलेटेड, तो सभी इंडियंस आपको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
2: सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है, डोंट टेक योर हार्ट फॉर ग्रांटेड। और हार्ट आपको पता है कि आपको समय नहीं देता इलाज कराने का, लगभग 25% लोगों की डेथ हार्ट अटैक के टाइम ही हो जाती है, तो वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते
1: जी।
2: तो मेरा मैसेज ये है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, गेट योर हार्ट चेक
1: जी। बिल्कुल, और हमारे लिसनर्स जो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? खास तौर पर मैं चाहूंगी यंगस्टर्स के लिए आप जरूर दें मैसेज।
2: यंगस्टर, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप अपना लाइफस्टाइल बचपन से ही ठीक रखें
1: जी।
2: लाइफस्टाइल में क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज करना, डाइट को अपनी ठीक रखना, जिसको हम कहते हैं हेल्दी डाइट लेना, उसके बाद सब स्मोकिंग ना करना, किसी भी तरह का टोबैको का इस्तेमाल ना करना, अल्कोहल नहीं लेनी, और ये चार लाइफस्टाइल के शुरू से ही हर बच्चे को अडॉप्ट कर लेनी चाहिए यंग एज से
1: जी।
2: उसके बाद रिस्क फैक्टर अपने एनालाइज कराने के लिए ब्लड टेस्ट कराना चाहिए कि आपको शुगर तो नहीं है, आपको BP तो नहीं है, बिकॉज ये साइलेंट किलर्स हैं, ये आपको कोई तकलीफ नहीं देते
1: जी,
2: लेकिन अंदर अंदर आपके सिस्टम को खराब करते हैं
1: जी।
2: तो इसलिए ब्लड प्रेशर चेक कराना, शुगर कोलेस्ट्रॉल चेक कराना बचपन में ही बहुत जरूरी है। तो यंगस्टर्स को मैं कहूँगा कि ये करें। दूसरा, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना हार्ट का चेकअप कराएं
1: जी।
2: जब आप 30 क्रॉस कर जाते हैं तो हार्ट का चेकअप बहुत जरूरी हो जाता है, खाली ब्लड टेस्ट से पता नहीं चलता, जैसे मैंने बताया था
1: जी।
2: चौथा, हार्ट के सिम्टम्स को पहचाने कि अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, शोल्डर में पेन हो रहा है, लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, ये एरिया और बैक में हो रहा है, पेट के ऊपर के हिस्से में हो रहा है, तो ये सिम्टम हार्ट के हैं। फिर कईयों को सिर्फ बेहोशी आ जाती है, कईयों को सिर्फ धड़कन होती है, कईयों को सिर्फ फटीग होती है, तो जो नए सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि हार्ट अटैक आप अगर आ गया तो वो समय नहीं देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर चेकअप्स कराना। उम्र जैसे ही आपकी, आप टीनेज से आगे निकलते हैं, तो मुझे लगता है ज़रूरी हो जाता है अपने दिल का ख्याल रखना, क्योंकि आजकल का समय पोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है वो बिगड़ चुका है। तो आपका लाइफस्टाइल बेहतर करना, अपनी डाइट का ख्याल रखना और समय समय पर चेकअप्स कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर आपने ये सारी जानकारी दी, उम्मीद है कि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कुछ ज़रूर समझेंगे और अपने इस दिल का ख्याल ज़रूर रखेंगे, क्योंकि दिल एक ही होता है और उसका ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।
2: थैंक यू दीक्षा, थैंक यू।
1: तो बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और अब टाइम है आपसे इजाज़त लेने का। फिर से होगी मुलाकात एक नए एपिसोड में कुछ नई हेल्थ रिलेटेड बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: हेलो फ्रेंड्स, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपके अपने कम्युनिटी मेंबर, और मेरे इस शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के शो में हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसे नाम का, एक ऐसी हस्ती का जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। फ्रॉम द स्पिरिचुअल सिटी ऑफ ऋषिकेश टू द ग्लैमरस वर्ल्ड ऑफ फैशन, इनकी जर्नी ट्रूली इंस्पायरिंग है। ही स्टार्टेड हिज करियर विद विल्स इंडिया फैशन वीक एंड सून मेड हिज मार्क एट लैक्मे फैशन वीक, ग्लोबल इंडिया कॉट्योर वीक, टाइम्स फैशन वीक और कई बड़े फैशन प्लेटफॉर्म्स। गणेश व्यास हैज स्टाइल्ड सम ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, दीपा मलिक, आलिया भट्ट, सनी लियोनी, तापसी पन्नू और बहुत सारे रिनाउंड नेम्स। हिज वर्क हैज बीन फीचर्ड इंटरनेशनली इन वोग इटली, एल ऑफिशियल इटली, एल कॉस्मोपॉलिटन एंड मेनी मोर टॉप मैगजीन्स। इन्हें यंगेस्ट फैशन अचीवर्स अवार्ड से भी ऑनर किया गया है। Along with celebrities, he has also collaborated with global brands like Samsung, Canon, Nestle. So, दोस्तों, एक छोटे से शहर से लेकर international fashion magazines तक का इनका ये सफर है talent, hard work और creativity का perfect example. So, दोस्तों, एक छोटे से शहर से लेकर international fashion magazines तक का इनका ये सफर है talent, hard work और creativity का perfect example. So please join me in welcoming the very talented and inspiring fashion stylist and designer Mr. Ganesh Vyas. Ganesh, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस शो क्रिएटिव मंच में।
5: थैंक यू सो मच गौरी मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई विल से प्लेजर इज ऑल माइन।
4: ओके गणेश, सो आप ऋषिकेश जैसे टाउन से बिलोंग करते हैं और आज एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैशन स्टाइलिस्ट और डिजाइनर बन गए हैं। So how did this inspiring journey begin? हमें ये तो बहुत ही मतलब जानने के लिए मैं excited हूँ कि आपकी journey कैसे start हुई, तो उस बारे में हमें बताइए।
5: Actually पहले तो मैं बोलूँगा ऋषिकेश is the nearest city जहाँ पे मैं रहता हूँ।
4: okay.
5: जो मेरा असली घर है वो है ढालवाला, it's in टिहरी गढ़वाल, और जो हमारी nearest city है वो ऋषिकेश है। बट जो मेरा बचपन है वो सारा ऋषिकेश, मतलब स्कूलिंग मेरी ऋषिकेश में ही हुई है। तो मैं ढालवाला से ऋषिकेश आता था पढ़ने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज इन ऋषिकेश ओनली।
4: ओके,
5: तो मुझे बचपन से यही करना था वैसे तो, एंड लाइक उस समय नया नया फैशन टीवी आया था, आई हैव सीन फैशन टीवी, एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, तो मुझे लगा अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये तो बचपन से ही था कि मुझे यही करना है, आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि मेरे को फैशन इंडस्ट्री में ही कुछ करना है।
4: तो मतलब ये फैशन वाली जो आपने बात कही कि मुझे बचपन से, कौन सी क्या एज रही होगी तब आपकी?
5: I was in 6th, I guess, 6th, 7th.
4: Okay, मतलब काफी छोटी एज में 6th, 7th में इतना आपने सोचा कि मुझे इसी लाइन में
5: जाना है। 10 और 11 साल का हूंगा मैं शायद उस समय।
4: Okay, okay. तो फैमिली का सपोर्ट मिला इसमें?
5: Family is okay about it. They are saying that this not be a main career. ये तो main career हो ही नहीं सकता है, आपको तो पढ़ाई करनी है। So I have done BSc in fashion, 7th, 10th, उसके साथ साथ मैंने BCom भी किया हुआ है।
4: अच्छा, तो ये आपने सब ऋषिकेश से ही किया है?
5: फैशन डिजाइनिंग मैंने दिल्ली से की है, और जो मेरा बीकॉम है वो मैंने ऋषिकेश से किया है।
4: अच्छा, नाइस। मतलब आपका जो आपने बताया कि स्टार्टिंग से फैमिली का भी इतना नहीं था कि उन्हें तो लगता होगा ये कोई
5: स्टिल थिंक, दे स्टिल थिंक, दे थिंक कि अभी भी क्या ही कर रहे हो आप।
4: मतलब उनका वही माइंडसेट है कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये वाली चीज ही करियर में होनी चाहिए। बट नहीं, आपने मतलब हम तो ये कहेंगे कि आपने बहुत इसमें भी नाम कमाया है, तो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक आप सेट कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में भी। सो इसके अलावा जैसे आपने बताया कि कॉलेज आपने किया, देन फैशन डिजाइनिंग में ही आपने किया, सो उसके बाद क्या रहा, कैसे आप इसमें आगे बढ़े?
5: सी, आई थिंक आई एम वेरी लकी। जब मेरा कॉलेज का पहला पोर्टफोलियो था तो देर इज़ अ डिज़ाइनर कॉल सामन चौहान, उन्होंने, वो मेरी ज्यूरी में थे, तो सामंत ने मेरे जो मैंने गारमेंट बनाया था वो खादी से रिलेटेड था, एंड सामंत जो हैं वो अहिंसा सिल्क पे काम करते हैं. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर फैब्रिक एंड कलर्स. तो उनको मेरा कलेक्शन बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला कि यू कैन जॉइन मी फॉर द इंटर्नशिप. मैंने उनके साथ इंटर्नशिप करी, और इंटर्नशिप के साथ साथ ही उनको, मतलब जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो उसके साथ साथ ही उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर लिया. तो फिर देन आई स्टार्ट वर्किंग विद हिम. उनके साथ मैंने विल्स इंडिया फैशन वीक किया सबसे पहले, तो दैट्स हाउ द करियर बिगिन.
4: तो योर फर्स्ट बिग ब्रेक केम विद विल्स इंडिया फैशन वीक. सो उस एक्सपीरियंस ने आपके करियर को किस तरह से शेप किया?
5: एक्चुअली विल्स इंडिया फैशन वीक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था पहले, जो कि अब मर्ज हो के लैक्मे फैशन वीक हो गया. मतलब दोनों का लैक्मे और विल्स अब मर्ज हो के एक ही हो गए हैं. तो जब मैंने विल्स किया तो और लोगों ने भी मुझे रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, ही इज़ वेरी गुड इन स्टाइलिंग, एंड देन पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी फॉर देयर शूट्स एंड शोज. सो या ऑफकोर्स मेरे को बहुत ही, मैं कहूँगा कि विल्स इंडिया फैशन वीक से मुझे बहुत
4: कुछ हासिल हुआ है. मतलब
5: मेरे कॉन्टैक्ट बने काफी वहाँ पे, लोगों को जाना मैंने, और मुझे मालूम चला कि काम होता कैसे है एक्चुअली.
4: अच्छा, तो इसमें भी क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट्स होने बहुत जरूरी हैं?
5: या ऑफ कोर्स यू हैव, सी केवल कॉन्टैक्ट से भी काम नहीं होता, आपका काम भी बहुत अच्छा होना चाहिए. आपके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं, और अगर आपका काम ही अच्छा नहीं है तो नो यूज ऑफ दैट.
4: सो दोस्तों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. जल्दी से सुनकर आते हैं एक प्यारा सा गाना, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गणेश व्यास.

0: वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर गणेश व्यास, जो एक बहुत ही सुपर टैलेंटेड स्टाइलिस्ट हैं और डिज़ाइनर भी हैं। सो गणेश, जैसा कि आपने बताया कि आपने लैक्मे फैशन वीक, टाइम्स फैशन वीक और ग्लोबल इंडिया कोट्योर वीक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर वर्क किया है। सो विच शो हैज़ बीन द मोस्ट मेमोरेबल फॉर यू टिल नाउ? क्या कोई ऐसी याद है या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको अभी तक याद है, जिसे आप भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते?
1: वैसे तो मैं बोलूँगा कि हर एक फैशन शो में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो लगता है कि यार ये तो हो

0: सकती है, वो इतना अच्छा जो भी आप काम कर रहे हो वो, इट्स नॉट अबाउट शो, इट्स अबाउट एवरीथिंग. जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो चीज़ उतनी अच्छे से हो नहीं सकती.
1: बिल्कुल. और ये कब की बात है, कौन से ईयर की बात?
0: ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है.
1: अच्छा, विच मीन्स 2023. नाइस. इसके अलावा और कोई ऐसी चीजें हो जो आप कभी नहीं भूल सकते हो? Like, जैसे आपने बोला हर शो में ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए. और भी
0: एक बहुत शो की बात मैं आपने बोला तो मैं बता रहा हूँ. वैसे अगर मैं बोलूँ शूट की बात, तो जो मेरा जिंदगी का पहला ब्रेक था, पहला शूट था, वो सचिन तेंदुलकर के साथ था.
1: ओह वाओ.
0: सो यस वाओ ऑफ कोर्स. एंड आई वाज किड दैट टाइम. मैं सेट पे गया, शूट बॉम्बे में था, मैंने यहाँ से फ्लाई किया. मैं फ्लाई करते ही मेरी फ्लाइट लेट हो गई और मुझे होटल पे जाने का टाइम नहीं मिला. मैं डायरेक्ट सेट पे गया हूँ वहाँ से.
1: okay.
0: मैंने फटाफट जो भी है अपना सामान वामान किया, ये किया, सचिन आए और मैं बिल्कुल कांप रहा था. मुझे लगा मैं तो लेट हो गया आज, तुम पता नहीं बैंड बजने वाली है. ही टैब इन माय शोल्डर और बोला प्लीज सेट. स्पॉट भाई को बोला पानी लेके आओ पहले सर के लिए. एंड देट वॉज सो अमेजिंग. मतलब अभी तक मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुका हूँ, उनको कोई बीट नहीं कर सकता. एंड देर द सेकेंड इज डॉक्टर दीपा मलिक. वो शी इज़ ऑल्सो अमेजिंग. आई कैन थिंक, मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं ये सोचता हूँ कि शायद आई हैव टू गिव अप, तो दीपा मलिक मेरे को दिखती हैं या उनसे बात होती है, तो मुझे लगता है मैन इफ शी कैन डू इट एनी वन कैन डू इट.
1: ओके. सो गणेश, आपने ये खुद से ही बता दिया, मैं अभी नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे आने ही वाली थी. सो मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, जो लोग ये शो सुन रहे हैं, कि गणेश ने बहुत ही बड़े बड़े सेलेब्स को भी स्टाइल किया हुआ है, लाइक सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर दीपा मलिक, आलिया भट्ट, सनी लियोनी एंड तापसी पन्नू जी. इसके अलावा भी आई थिंक बहुत से सेलेब्स को आपने किया हुआ है स्टाइल. सो इनमें से कोई ऐसा स्टाइलिंग मोमेंट जो आपके लिए ट्रूली स्पेशल रहा हो? एक तो आपने सचिन तेंदुलकर जी का हमें बताया, और दीपा मलिक जी के बारे में आपने जो बताया, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि वो कौन है, क्योंकि हर किसी को अभी नहीं समझ आ रहा.
0: सो दीपा मलिक जी जो है वो है पैरा ओलंपियन. उन्होंने 2016 में रियो पैरालंपिक में मेडल लिया था सिल्वर. एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन आई गेस जो जिन्होंने पैरालंपिक में इंडिया के लिए मेडल लिया है. और उसके अलावा शी हैव लाइक एवरीथिंग. खेल रत्न उनके पास है, उनके पास
1: पद्मश्री
0: भी उनके पास है. तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ दिस थिंग.
1: वाओ. तो इनको जब आपने स्टाइल किया, मतलब ये कब की बात है, क्या वो कोई शो था या कोई ऐसा?
0: एक पर्सनल इवेंट था, उस पे स्टाइल किया पहली बार.
1: अच्छा.
0: फिर उसके बाद तो उनके साथ हमेशा ही बना रहूं, जुड़ा रहूं.
1: So being a stylist, जैसे आपने बताया बहुत से celebs को style करते हैं. So आपने sports personalities को भी किया है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी और दीपा मलिक जी का आपने बताया. So आपको क्या लगता है, मतलब जैसे sports personalities काफी काम और शांत है, या फिर industry के जो है हमारे Bollywood की personalities को जब आप style करते हैं, तो क्या experience रहता है दोनों ही?
0: See, अगर मैं बोलूं कि sports personality को style करना थोड़ा सा difficult होता है.
1: अच्छा.
0: क्योंकि they are not that much comfortable in the thing what we are thinking.
1: Okay.
0: वो उतने क्रिएटिव नहीं है. They have a different vision.
1: Yes.
0: In the case of Deepa Malik, she is very open about the ideas, but not everyone is open about the ideas, yeah. right? तो पर जो इंडस्ट्री में, जैसे अगर मैं कहूँ कि मॉडल्स हो गए या एक्टर हो गए या एक्ट्रेसेस हो गई, दे अंडरस्टैंड कि हाँ अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम सोच समझ के ही बोल रहे हैं. दे हायर्ड अ प्रोफेशनल और वो हिसाब से ही फिर काम करते.
1: तो आपने जैसे, मैं यहाँ पे नेम लूंगी आलिया भट्ट जी को, आपने किया स्टाइल, तो वो वाला एक्सपीरियंस क्या था? मतलब जो चीज़ आप उन्हें बता रहे हो, स्टाइल करना बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा आप पहले ये हमारे लिसनर्स को बताइए कि इसमें क्या रहता है, क्योंकि एक आप डिजाइनर भी हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों को पहले लेते हैं.
0: स्टाइलिस्ट इज द वन हु डिसाइड व्हाट टू वेयर, व्हेन टू वेयर.
1: ओके.
0: ओके. आपका हेयर मेकअप क्या होगा, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स अबाउट योर फुल लुक,
1: ओवरऑल जिसमें ज्वेलरी भी आ गई, मेकअप भी,
0: इट कम्स एवरीथिंग. आपका ड्रेस कौन सा होना चाहिए, आपका मेकअप क्या होगा, आपका हेयर क्या होगा, आपका नेल पेंट कैसा होगा, आपके शूज कैसे होंगे.
1: ओके.
0: सो इट कम्स विद एवरीथिंग.
1: ओके. तो ये आप स्टाइलिंग में आप यही करते हैं, और डिजाइनर जो है उसमें आप डिजाइन करते हैं,
0: वी डिजाइन गारमेंट्स एंड हेडगियर एंड एवरीथिंग.
1: ठीक है. तो ये तो हमें दोनों चीज़ों का फर्क समझ आ गया. सो गणेश, आपने अभी जैसे बहुत सारे सेलेब्स का बताया, तो अभी रिसेंटली कोई हाल ही में आपने किसको स्टाइल किया है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए.
0: सो रिसेंटली मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर के लिए डायना पेंटी को स्टाइल किया है. शी इज अमेजिंग वुमन और वेरी अंडरस्टैंडिंग.
1: अच्छा.
0: वेरी स्वीट. सो दैट एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो वेरी नाइस.

0: सो स्टाइलिंग में आप जो भी चीज़ें लाइक आपने बोला क्लोथ्स फुटवेयर एवरीथिंग ज्वेलरी सब कुछ आता है, तो आप जो उन्हें सजेस्ट करते हैं वो आराम से?
1: इट्स ऑलवेज हैपेंड कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले का प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल अलग होगा, लेकिन आई हैव टू गिव सम ऑप्शंस आल्सो कि अगर आप ये पहन रहे हो तो यू विल लुक लाइक दिस, अगर आप ये पहनोगे तो इसमें ये चीज़ एनहांस होगी या ये वाला पार्ट बेटर लगेगा. सो इट डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी कि उसको खुद को क्या लग रहा है. कुछ साइकिक भी होता है हर किसी का कि आपको खुद को क्या अच्छा लगता है.
0: एग्जैक्टली,
1: तो इट शुड बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग.
0: मतलब कोई कोई तो ऐसे होते होंगे रिजिड होते होंगे एक ही चीज पे, वो हाँ वो तब तो आपके लिए बहुत आई थिंक प्रॉब्लम हो जाती होगी. और कोई कोई सब आप पर ही छोड़ देते होंगे कि जो आप कह रहे हो वही
1: हमने.
0: नाइस, ये भी आपका बड़ा ही यू नो डिफरेंट रोल है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, सो साथियों अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जल्दी से वापस आते हैं और हमारी इसी गुफ्तगू को आगे जारी रखते हैं मिस्टर गणेश व्यास के साथ.

0: वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में एक बार फिर से, जिसका नाम है क्रिएटिव मंच। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गणेश व्यास, जो बहुत ही मज़ेदार बातें बता रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग बातें बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, जो ये एक सुपर स्टाइलिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, बहुत ही अमेजिंग। तो बहुत मज़ा आ रहा है सर आज आपके साथ हमें। हाँ ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको यंगेस्ट फैशन अचीवर्स अवार्ड से भी ऑनर किया गया है, सो हाउ डिड रिसीविंग दिस अवार्ड इंपैक्ट योर कॉन्फिडेंस एंड करियर?
1: सी, कॉन्फिडेंस तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है करियर के लिए। मैं कहूँगा कि बीइंग इन दिस इंडस्ट्री इज ऑलरेडी अवार्ड। अगर आप इंडस्ट्री में बने हुए हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा अवार्ड है कि मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, बीइंग फ्रॉम अ स्कूल और द कॉलेज वेयर आई एम फ्रॉम। तो मेरे लिए तो ये अवार्ड ही बहुत बड़ा है कि जिनको मैं टीवी में देख रहा था, मैं आज उनके साथ काम कर रहा हूँ, दैट्स अवार्ड फॉर मी।
0: तो इस अवार्ड के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए, मतलब कैसे आपका कुछ इसमें भी नॉमिनेशन कैसे रहता है?
1: जब मैंने सचिन तेंदुलकर के लिए शूट किया, उसके तुरंत बाद ही मुझे अवार्ड मिला था। तो आई थिंक दैट शूट वाज फॉर जेपी सीमेंट, इट्स शूट प्लस फिल्म, तो ये पूरी एक जैसे एड फिल्म होती है वो है, एंड देन इट्स अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड एड फिल्म एंड द शूट। या उसके वजह से ही मेरे को मिला, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गेट इट। नाउ आई डोंट केयर अबाउट इट, बट हाँ, जब आप छोटे होते हो, आप ये लाइक आप छोटे होते हो, आप घर वालों के साथ लड़ रहे हो कि आपको इस चीज के लिए काम करना है, एंड देन समथिंग केम अप लाइक दिस, तो घर वालों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है,
0: कि नहीं ये
1: कर रहा है जिंदगी में,
0: कि फैशन में भी करियर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये अवार्ड आपको कौन सी एज में मिला था, कितने साल हो गए?
1: आई थिंक आई I was 22 that time.
0: Okay, nice.
1: अभी मत पूछना कितने साल का
0: हूँ। Okay, okay. ठीक है, नहीं पूछते हम, लेकिन ठीक है, वो आपका, ये मैं कह सकती हूँ कि वो आपका स्टार्टिंग पीरियड रहा था, तो वो आपके इस करियर को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहा है। Very nice. So Ganesh, your work has been featured in top international magazines like Vogue Italy, Elle Official Italy and Elle. जब आपने पहली बार अपना work in global platforms पर देखा, so what was the feeling like? क्योंकि बहुत बड़े-बड़े names हैं अपने आप में।
1: I know बहुत बड़े-बड़े names हैं, but when you're shooting, you know कि ये यहाँ पे publish होना ही है।
0: Okay.
1: तो वो इतना वो नहीं था amazing, but most of my cousins are out of India. तो जब उन लोगों ने, वन ऑफ माई कजिन गॉट होम एंड गेट दैट मैगजीन एंड से कि इज दिस यू, देन आई फील लाइक यस आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ।
0: अमेजिंग, वो फीलिंग तो कुछ अलग ही होती है, क्योंकि सारे कजिन्स में आपका एक
1: द सेम थिंग हैपेंड इन, देयर इज अ आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ माइन कि उत्तराखंड का स्टाइलिस्ट एंड दिस इज दैट, और वो फोटो किसी ने हमारे जो, मतलब आई एम गणेश व्यास एंड जो व्यास है वो उत्तराखंड में बहुत ही कम लोग हैं व्यास, सो देयर इज अ स्मॉल
0: मतलब कम्युनिटी,
1: बहुत ही छोटी कम्युनिटी है, तो उन कम्युनिटी का एक पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस किसी ने उसमें डाल दिया।
0: अच्छा।
1: तो फिर मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो माय फादर नेम, तो दे नो माय दादाजी नेम, तो दे पीपल आर लाइक ये उनका बेटा है, उनका बेटा, देन पीपल आर कनेक्टिंग कि नहीं है इसका बेटा, नहीं उसका बेटा, नहीं। फिर मेरे पापा ने फोन देखा, ये क्या हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में आज, देन सी ही सेड, उन्होंने मेरी फिर पिक्चर देखी, अरे तेरी फोटो छपी है क्या आज, दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी, कि
0: मतलब वो पेरेंट्स के लिए भी बड़ी खुशी वाला एक पल होगा। बिल्कुल, और बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का कि आप एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं और फिर ऐसी कुछ चीजें होए, आपका कभी न्यूज़पेपर में आपके लिए कुछ छप रहा है आर्टिकल, या फिर कभी लोकल न्यूज में भी आ जाए, तो ये चीजें छोटे छोटे मोमेंट्स है जो बहुत ही खुशी देते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी, लाइक पेरेंट्स को और हम लोगों को, और मोटिवेट ही करती हैं ये चीजें। सो गणेश, यू हैव कोलैबोरेटेड विद लीडिंग ब्रांड्स लाइक सैमसंग, कैनन, नेस्ले, so according to you what's the main difference between brands collaboration and celebrity styling?
1: See, brand collaboration में क्या होता है कि आप बहुत ही specify होते हो कि उनको they people have their mindset कि उनको ये ही चाहिए, what you're saying कि rigid होते हैं, वो उनको ये color, they will जब वो मुझे हायर करेंगे वो मुझे बता देंगे ये 50 कलर हैं, ये 50 कलर यूज नहीं करने हैं, बचे हुए जो कलर्स हैं आप उनको, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद देम। अब ये नेकलाइन यूज नहीं करनी है, या कुछ लोगो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दे हैव अ वेरी ह्यूज लिस्ट कि आप जब उनके साथ काम करो तो ऐसा ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप सेलिब्रिटी के साथ कर रहे हो काम, तो दे आर वेरी ओपन अबाउट इट, वेरी फ्यू कलर्स विल बी देयर कि वो कहेंगे कि नो एंड वी विल ऑल्सो सजेस्ट कि हाँ ये कलर आप पे अच्छा नहीं लग रहा है या ऐसा सिल्वर्ट मत पहनो. तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. क्रिएटिविटी के हिसाब से मैं बोलूँ तो ब्रांड के साथ काम करने में आपकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छे से खुल के नहीं आती है, क्योंकि वेन यू जब आप किसी क्रिएटिव पर्सन को बांध देते हो कि नहीं आपको इस दायरे में ही काम करना है
0: तो वो नहीं हो पाती, वो
1: क्रिएटिविटी आपकी निकल ही नहीं पाएगी. अनलेस अनटिल जब तक आप फ्री नहीं हो, आपके क्रिएटिव थॉट्स तभी निकलेंगे ना जब आप फ्री.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो यही डिफरेंस है दोनों.
0: और मुझे ऐसा लगता है फैशन भी एक आर्ट ही है अपने आप में, और यू आर लाइक अ फ्री बर्ड है ना, क्योंकि जब तक आपको वो फ्रीडम नहीं दी जाएगी वो चीज, वो आउटपुट निकल के आएगा ही नहीं. बिल्कुल. तो मतलब आपको ज्यादा अच्छा मुझे लगता है सेलेब्स के साथ करने में.
1: नॉट जस्ट सेलेब्स बट
0: मतलब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर वो चीज है.
1: दैट्स व्हाई जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं थोड़ा कम करता हूं, और जो बाकी फैशन वाला काम है वो मैं ज्यादा करता हूं.
0: ओके गणेश, तो और आपके अभी क्या है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे जो आपके रिसेंटली आ रहे, लाइक फैशन शोज हैं या कौन से, किनको आप स्टाइल करने वाले हो, इस बारे में कुछ हमें बताइए.
1: अभी रिसेंटली एक फैशन शो आ रहा है मेरा जो है भारत डिजाइन शो, उसको मैं स्टाइल करने वाला हूँ. एंड डेफिनेटली देर विल बी अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज एंड दिस थिंग. पर जो भारत डिजाइन शो है वो इसलिए बहुत मेरे को अट्रैक्टिव, और मैं बोलूँगा कि मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसमें जैसे IPL के लिए बिडिंग लगती है प्लेयर्स की, वैसे मॉडल्स के लिए बिडिंग लग रही है. सो इट्स अ वेरी कॉन्सेप्ट वाइज, और क्या बोलेंगे इसे, इट्स अ सीरीज ऑल्सो. आई थिंक दे विल शूट Also, and ये किसी टीवी चैनल पे भी आने वाला है.
0: अच्छा.
1: E24 or something, I don't, I have, मतलब मुझे देखना पड़ेगा वो कि कौन से टीवी चैनल पे.
0: तो
1: I'm very excited about it.
0: इसमें सारे इंडियन डिजाइनर्स
1: हैं.
0: अच्छा.
1: Almost इंडियन डिजाइनर, इंडियन मॉडल्स, मे बी फ्यू इंटरनेशनल मॉडल्स होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन डिजाइनर्स होते हैं.
0: नाइस, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है. डेफिनेटली अगर ये टीवी पर आएगा हम तो देखेंगे ज़रूर. सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं हमारे अमेजिंग स्टाइलिस्ट जिनका नाम है मिस्टर गणेश व्यास. सो बहुत ही मज़ा आ रहा है आज इनसे बात करके. जल्दी से म्यूजिकल ब्रेक से वापस आते हैं और फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी इस बातचीत को. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8.

पुरस्रार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम जिसका नाम है क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर गणेश व्यास। सो गणेश, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री की, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही कॉम्पिटिशन है आज के टाइम में, स्पेशली फॉर द यंग टैलेंट। सो वॉट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू अपकमिंग डिजाइनर्स एंड स्टाइलिस्ट हु ड्रीम टू मेक इट बिग लाइक यू?
1: आई थिंक जो यंग टैलेंट है वो सोचता है कि वो कॉलेज से निकलते ही जो है वो डिज़ाइनर बन जाएगा। ऑफ कोर्स यू आर अ डिज़ाइनर, यू हैव अ डिग्री ऑफ डिज़ाइनिंग, पर आपको किसी को तो असिस्ट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। और आफ्टर डिज़ाइनिंग ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कोई डिज़ाइनर नहीं बन सकता, हर कोई स्टाइलिस्ट नहीं बन सकता। देर इज़ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस कि आप शायद मर्चेंडाइजर बन जाओ, या ऐसे ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आपने सोची भी नहीं। अभी तो सोशल मीडिया इतना चल रहा है, आप सोशल मीडिया डिजाइनर बन सकते हो, या आप सोशल मीडिया किसी का हैंडल कर सकते हो बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन। तो आपको पहले बाहर निकल के वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलेज में सिखाया है वो बस किताबी पढ़ाई है, आपको बाहर आके भी तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी गेन करना पड़ेगा। आई वॉज लकी कि मेरे को मतलब जो आई वॉज लकी कि मुझे फर्स्ट ईयर में ही जॉब मिल गया कॉलेज के, बट हर कोई शायद इतना लकी नहीं होता, मैं ये बोलूँगा। तो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंस ऑल्सो। जब तक आपके अंदर इतना धैर्य नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में तो काम नहीं हो सकता। अगर आप बहुत ही ज़्यादा, आजकल की जनरेशन मैंने देखी है, वो दे पीपल आर नॉट पेशेंट, दे हैव नो पेशेंस, दैट्स द थिंग। और मुझे लगता है नेटवर्किंग होनी चाहिए आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और इस इन सब के अलावा आपका जो है विजन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका जो विजन है वो बहुत यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को भी कॉपी कर रहे हो, आप एक लाइन, आप अगर किसी भी डिज़ाइनर को देखोगे, दे हैव अ सेंस ऑफ स्टाइल एंड डिज़ाइनिंग, तो वो हमेशा से ही चला रहा है। आप किसी का भी डिज़ाइन, आप सभ्यसाची देखते हो तो आपको मालूम चल जाता है कि हाँ ये सभ्यसाची, अगर उसको कोई कॉपी भी कर रहा है तो भी लोग यही बोलेंगे कि हाँ सभ्यसाची है, राइट। तो यूनिक विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी नेटवर्किंग होनी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी नेटवर्किंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जब तक नेटवर्किंग नहीं होगी आपको काम नहीं मिलेगा। ऑल्सो डिसिप्लिन इज मैटर अलॉट, ये नहीं कि आपने एक दिन अच्छा काम कर लिया और दूसरे दिन आप भूल गए, है ना। आपको हर दिन ऐसे दिखाना है कि आप आज काम पे जा रहे हो तो ये आज आपका पहला दिन है काम का, आपको उतनी ही एनर्जी के साथ, उतने ही पैशन के साथ सारे प्रोजेक्ट करने जैसा आप पहले प्रोजेक्ट में कर रहे हो।
0: बिल्कुल, मतलब वो एक्साइटमेंट भी होनी
1: चाहिए, वो एक्साइटमेंट भी हमेशा होनी चाहिए।
0: ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, और ये मुझे लगता है हर फील्ड के लिए ये चीज अप्लाई होती
1: है, हर फील्ड के लिए। पीपल थिंक दैट वी हैव मेक, हमने तो कर लिया जितना करना था, एंड देन दे फॉरगॉट अबाउट इट, अब तो ठीक है, हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। आप जब जा रहे हो तो आप हर दिन बहुत अच्छे से, हर दिन ऐसे सोचो कि ये
0: आपका फर्स्ट
1: डे है, और हर दिन आपको जज कर रहा है। और हमारी इंडस्ट्री है भी ऐसी यार, मतलब अगर आप, मैं सोचो मैं एक दिन किसी शूट पे जाऊं और मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस ना करूं तो लोग सारा भूल जाएंगे पीछे, और वो मुझे बुलाना बंद कर देंगे अगली बार से कि यार उसने काम खराब किया। ऐसे मुझे लगता है कि दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू बी कीप इन माइंड।
0: ओके, सो एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी गणेश, जैसे आप कोई चीज, अगर आप डिजाइनर हैं, सो क्या आप एक ही, मतलब एथनिक ही डिजाइन करते हैं या वेस्टर्न भी आता है, ये कुछ अलग अलग लाइंस होती हैं, या आप कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग?
1: सी, हर किसी का फोर्टे अलग होता है, जैसे मैंने बोला कि आपको एक चीज पे स्टक रहना चाहिए। बीइंग अ स्टाइलिस्ट आई स्टाइल इंडियन वेस्टर्न एवरीथिंग, बट अगर मैं डिजाइनिंग करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं मेंस की डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो मेरा वेस्टर्न बहुत अच्छा है,
0: अच्छा,
1: और अगर मैं फीमेल की डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो मेरा इंडियन बहुत अच्छा है। तो दैट ऑल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपके अंदर की जो एबिलिटी है वो कैसी है, आपको खुद को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तभी आता है जब आप कॉलेज से बाहर निकल रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों को देख रहे हो। जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, देखोगे नहीं कौन क्या काम कर रहा है, तो ये आने में बहुत टाइम लगता है। मतलब यू हैव टू लर्न दिस वेरी क्विकली, ये समझना, जितनी जल्दी आप ये समझोगे उतनी जल्दी आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ।
0: अच्छा, मतलब चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ और अपना पता होना चाहिए कि आपका फोर्टे क्या है। बिल्कुल। और जैसे गणेश, फैशन शो की हमने बात की, तो इसमें अब एक रोल रहता है, मेन रोल तो मुझे लगता है क्लोथ्स का, और दूसरा मॉडल्स का ही रहता है। तो मॉडल्स भी क्या आप अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि शो में कैसे, क्योंकि मैंने सभ्यसाची के इनके पेज देखे हैं, तो उसमें काफी हेल्दी वाला फोटोशूट भी रहता है मॉडल्स को लेकर, तो काफी हेल्दी मॉडल्स का भी, तो वो एक क्या कॉन्सेप्ट है और आपके में कैसा रहता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
1: मॉडल्स आर मॉडल्स, मतलब जो जो डिजाइनर कपड़े बना रहा है वो यूजुअली बना तो नॉर्मल लोगों के लिए रहना, हर कोई तो पतला नहीं हो सकता, देर इज अ साइज एवरीवेयर, वो लड़का भी पहनेगा लड़की भी पहनेगा और जो नॉन बाइनरी लोग हैं वो लोग भी पहनेंगे. तो अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि डाइवर्सिटी आ रही है इंडस्ट्री में, कि वो टिपिकल मॉडल मॉडल टाइप मॉडल्स नहीं लेंगे. ऑफकोर्स वो तो लेंगे ही जो मॉडल्स हैं, उनके अलावा जो है वो LGBTQ कम्युनिटी से जो लोग हैं उनको लेंगे, प्लस साइज मॉडल लेंगे. तो इट कमिंग लाइक दिस,
0: मतलब बहुत साल पहले मुझे याद है हम देखते थे फैशन शो जीरो साइज,
1: जीरो फिगर अभी भी है ऑफकोर्स, जो जिसका काम मतलब अगर आप बोलोगे मॉडल तो बहुत ही स्पेसिफिक वो है, उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरिया है. लेकिन अभी जो है वो चेंज होता जा रहा है,
0: थोड़ा सा चेंज हो रहा है और मुझे लगता है ये अच्छा भी है,
1: डाइवर्सिटी है. क्योंकि हर कोई इतना पतला नहीं हो सकता. आप अगर हमेशा, और ये बहुत अच्छी अवेयरनेस भी है जो कि पहले शायद लोगों को नहीं लग रही थी, कि आप हमेशा लोगों को ये दिखा रहे हो कि आप पतले हो जाओ पतले हो जाओ, कितना हेल्दी है ये, हेल्दी है ही नहीं है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. तो और हर कोई ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकता
0: जी. सो गणेश, आपने जैसे बताया आप एक स्मॉल टाउन से हैं और आपको लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट मिला भी और शायद नहीं भी, थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रगल तो रहा ही आपके साथ, है ना? हाँ, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि फैशन में क्या ही करियर होगा. तो आजकल की जो हमारी जनरेशन है जो फैशन की लाइन में आना चाहती है, फिर मे बी चाहे वो मॉडलिंग हो या फिर स्टाइलिंग हो या डिजाइनिंग हो, तो वो अपने पेरेंट्स को किस तरीके से समझाएं, मतलब आपको क्या लगता है कैसे समझाना चाहिए उन्हें? क्योंकि हर पेरेंट अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो माइंडसेट है कि डॉक्टर इंजीनियर, बहुत लोगों का चेंज भी हुआ है नो डाउट, बट कुछ फिर भी उस पे हैं अड़े हुए कि नहीं ये करियर वाइज अच्छा नहीं है. सो कैसे समझाएं?
1: ऑफ कोर्स हर किसी को ये लगता है कि इंडस्ट्री बहुत खराब है, मतलब डिजाइनिंग मॉडलिंग के लिए भी लोगों को यही लगता है. बट मुझे एक चीज, मैं बहुत क्लियर था कि मुझे यही करना है. और मैं आजकल के बच्चों को ये बोलूंगा कि यार आप वैसे भी तो झूठ बोल के घर पे चीजें कर रहे हो ना, राइट? तो आप अगर आपको करना होगा तो आप करोगे ही करोगे. इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू विल डू इट, यू विल मेक योर पेरेंट्स, कि आप अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी तरह से मना लोगे, मना नहीं पाओगे तो तुम उनको प्राउड फील तो करा ही दोगे अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो और आपको करना है. जस्ट मेक अ गाइडलाइन कि आपको क्या क्या कैसे करना है. यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हाँ ठीक है मुझे डिजाइनिंग करनी है, मुझे कहाँ से करनी है, मुझे क्या क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए इसके लिए. तो पहले तो एक बेसिक फॉर्मेट बनाओ, अपने घर वालों को समझाओ कि सही इतना खर्चा है, मुझे यहाँ से कॉलेज करना है, इतना टाइम मुझे चाहिए, मिनिमम मुझे इतना टाइम आप दे दो, उसके बाद आप जो बोलोगे हम वो कर लेंगे. सेम विद मॉडलिंग ऑल्सो आई गेस, कि अब तो मॉडलिंग के लिए खैर काफ़ी स्कोप है, आप बिना बताए भी घर पे कर सकते हैं. आई हैव सीन लॉट्स ऑफ गर्ल्स जो कि अपने घर पे नहीं बता रही थी और मॉडलिंग कर रही हैं, व्हेन दे मेक इट बिग तो उनके घर वालों को पता चला. तो जब आपको करना होगा तो आप कर ही लोगे यार, मतलब मुझे लगता है कि यू हैव टू पुश योर सेल्फ. इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, इसमें आपका रोल है, आप कितने क्लियर हो अपने थॉट्स के लिए.
0: मींस पैशनेट होना चाहिए आपको
1: और पेशेंस भी होना चाहिए.
0: हाँ, दोनों ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि एक दिन में आपको शोहरत नहीं मिलती है. तो आपको धीमे धीमे ही सब कुछ होगा. मे बी यू आर लकी इनफ कि आपको एक दिन में ही बहुत अच्छा ब्रेक मिल जाए.
0: तो जैसे अभी हमने मॉडल्स की बात की, तो इसमें बॉयज भी रहते हैं मॉडलिंग में, तो उनके लिए है ये बेनिफिशियल काफी या नहीं?
1: आई थिंक बॉयज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि अगर एक किसी भी मतलब अगर मैं बोलूं मेंस वेयर का हम लोग शूट कर रहे हैं, तो एक लड़के के साथ दो लड़कियां तो खड़ी होंगी.
0: Exactly.
1: है ना? तो लड़के का जिस चीज के लिए शूट हो रहा है वो बहुत कम है उसकी क्वांटिटी, पर लड़कियां उनको फिर भी चाहिए.
0: Exactly.
1: तो लड़कियों के लिए ऑफ कोर्स ज्यादा है,
0: मतलब
1: स्कोप ज्यादा है. लड़कों के लिए भी स्कोप है, बट यू हैव टू मेक इट लाइक यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड यू हैव टू डू इट. और मैं ये भी बोलूँगा कि हाँ आप इसको फर्स्ट करियर तो मान के पहले मत ही चलो, जब तक आप बिल्कुल ही आपको हर दिन काम नहीं मिलना शुरू हो रहा है.
0: मींस जो मॉडलिंग लाइन है उसके लिए
1: उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको फर्स्ट करियर मान के मत चलो.
0: हाँ, कोई
1: स्टार्ट जब आप कर रहे हो तो उसको फर्स्ट करियर मान के मत चलो,
0: साइड बाय साइड ट्राई
1: करना चाहिए. जब बहुत अच्छा चलने लग जाए देन यू कैन मेक इट अ फर्स्ट करियर.
0: काफ़ी अच्छी आज आप हमें टिप्स दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. मे बी जो लिसनर सुन रहे होंगे उसमें से बहुत से लोग हो सकता है ऐसे हों जो फैशन में मॉडलिंग में अपना करियर देख रहे हों, तो काफ़ी बेनिफिशियल लग रही है मुझे आज आपकी बातें जो हम कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. सो अब लास्ट में गणेश, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारे लिसनर्स आज ये शो सुन रहे हैं, तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, या कोई ना कोई तो इसमें स्टडीज़ भी कर रहे होंगे लाइक फैशन डिज़ाइनिंग और भी चीज़ें. सो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो?
1: सी, मैं ये बोलूँगा सबको कि प्लीज़ बी डेडिकेटेड टू योर क्राफ्ट. आप अगर स्टाइलिंग स्टाइलिस्ट हैं, मॉडल, आपको मॉडल बनना है, आपको स्टाइलिंग करनी है, आपको डिज़ाइनर बनना है, आप अपने क्राफ्ट पे काम करिए. यहाँ पे ट्रेंड हर दिन चेंज हो रहा है, ट्रेंड को फॉलो करिए. अब जो आप इंडिविजुअल हो, जो भी आप इंडिविजुअल हो, जो आप सोचते हो, उन थॉट्स को किसी और चीज़ों के साथ मिक्स मत करिए. और अगर आप अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखोगे तो यू विल मेक इट वन डे 101%. मे बी किस कुछ लोग जल्दी कर लें, कुछ लोग को थोड़ा टाइम लग जाए. सो यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड टू योर क्राफ्ट, दैट्स इट. यही मैं बोलना चाहूँगा.
0: थैंक यू सो मच गणेश, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है. डेफिनेटली ये हमारे लिसनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो अपना करियर फैशन इंडस्ट्री में देख रहे हैं, बनाने की सोच रहे हैं. सो थैंक यू सो मच आपकी जो ये आज हमने जर्नी सुनी, और आपने मतलब कितनी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रही है. एक स्मॉल टाउन का लड़का आज इतना फैशन की दुनिया में नाम कमा रहा है. सो हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हमेशा रहेंगी.
1: थैंक यू सो मच.
0: सो बहुत बहुत थैंक यू गणेश, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे लिए समय निकाला. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. थैंक यू.
0: सो बहुत सी बातें करने के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी मेरे इस प्रोग्राम जिसका नाम है क्रिएटिव मंच. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
2: तुम्हें अपनी माशुका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ. इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है.

0: Hi, I'm Tigmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Aaja tujhe bhi main kara dun ta man che pe disco.
2: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सागर। शो चल रहा है यहां पर वॉइस ऑफ यूथ। ये शो हमारा बहुत स्पेशल है, रेडियो मानव रचना 107.8 की एक बहुत खास पेशकश है। उसकी वजह भी है कि यहां पर हर बार हमारे साथ जो मेहमान जुड़ते हैं उनके साथ हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं, पूरा संवाद होता है, एक कला को समझने की कोशिश होती है। आज हमारे साथ है हेमंत जी। हेमंत जी से हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इनका परिचय आपको देना चाहूंगा। हेमंत साहब जो हैं वो एक अभिनेता हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, निर्देशक भी हैं बहुत अच्छे और बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। आज इनसे हम लोग बात करेंगे रंगमंच के बारे में, हम लोग बात करेंगे अभिनय के बारे में। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि दुनिया भर में अभी एक्टिंग को काफी नवाजा जाने लगा है, अभिनय को बहुत प्यार मिलने लगा है, उसमें कहीं ना कहीं योगदान कंटेंट क्रिएशन का है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप बनना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको अभिनय की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आज के शो से वो मूल्य हम आपको दे सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले स्वागत करेंगे हेमंत जी का। हेमंत जी, स्वागत है हमारे शो में।
3: बहुत बहुत सारा शुक्रिया सागर सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बातचीत का मौका दिया।
2: सर, आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा, अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, अपना थोड़ा परिचय दीजिए कि क्या क्या करें।
3: जी, तो मेरा नाम हेमंत देवलेकर है, मूलतः मैं उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन 2007 से मैं लगातार भोपाल में रहता हूँ और थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर यानी कि नाटक की दुनिया, रंगमंच की दुनिया। तो रंगमंच में मैं अभिनय भी कर रहा हूँ और गीत लेखन भी कर रहा हूँ और संगीत निर्देशन, यानी कि संगीत को सोचना, उसकी कल्पना करना, उसको डिजाइन करना, इस पर भी काम कर रहा हूँ। और नाटक करते हुए युवाओं को प्रशिक्षण देना और संगीत के बारे में, तो अलग अलग वर्कशॉप भी कर रहा हूँ। और नाटक के साथ साथ मैं हिंदी कविता में भी सक्रिय हूँ, 3 कविता संग्रह मेरे प्रकाशित हैं। तो बस, तो यही है, नाटक, कविता, संगीत और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का अर्थ केवल सिखाना नहीं है, सबसे पहले तो खुद सीखना है, तो सीखना सिखाने की प्रक्रिया में लगातार काम कर रहा हूँ।
2: आपके शब्दों से ये तो पता लगता है कि कितनी सहज, कितनी सरल तरीके से अपने भाव का व्यक्त कर सकते हैं, मतलब ये बहुत बड़ी एक चीज होती है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा थोड़ा सा कि एक अभिनेता के लिए कितना जरूरी है या कितना बड़ा आप कह सकते हैं भूमिका निभाता है ये शब्दावली का होना, या शब्दों के ऊपर अपना जो है एक कंट्रोल होना या फिर एक लगाम होना उनके ऊपर।
3: जी, तो सर जैसे कि आपने ये सुना होगा और ये पढ़ा होगा कि जितने भी अपने ग्रेट

0: सुबह हैं वो साहित्य को, साहित्य से बहुत गहराई से जुड़े हैं, जैसे कि दिलीप कुमार साहब की बात अगर हम कहें तो, और जितने भी अभिनेता हैं अभिनेत्रियां हैं, तो उनको सबसे पहले साहित्य से ही जुड़ना पड़ता है। साहित्य से मतलब ये है कि भाषा, यानी कि शायरी, कविता, कहानियां, उपन्यास, नाटक, यानी कि जो ड्रामा रहता है स्क्रिप्ट लिखित फॉर्म में। तो सबसे पहले तो सभी अभिनेता अभिनेत्रियों को साहित्य से, यानी कि भाषा से जुड़ना बहुत जरूरी है। और हमने तो देखा है कि जितने भी बेहतरीन नाटक के कलाकार या फिर फिल्म के कलाकार हुए हैं, वो सब बहुत बहुत गहराई से कहीं ना कहीं शायरी से, कविता से, साहित्य से, उपन्यास से, कहानी से जुड़े हुए हैं। और बस, तो और सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है, जैसे मैं भी जब थिएटर में उज्जैन से मैंने शुरुआत की, अभी विहान ड्रामा वर्क्स में मैं सौरभ अनंत जी के निर्देशन में मैं सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो हर जगह वो यही कहते हैं कि भाई अगर अभिनेता की अभिनय की दुनिया में आ रहे हो तो साहित्य पढ़ना सीखो, साहित्य से अपना राबता बनाओ, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, तभी आप भाषा से जुड़ेंगे, तभी आपके पास शब्द आने लगेंगे। और जब शब्द संपदा आपके पास होगी, हिंदी, यानी हिंदी का मतलब ये कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये सब मिला के, तो जो हिंदी हम बोलते हैं, बोलचाल की हिंदी, जिसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, अंग्रेजी भी है, तो भाषा से जो एक्टर जितना जुड़ेगा वो उतने बेहतर ढंग से खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। और अगर वो कभी बाय चांस संवाद भूलता भी है तो इम्प्रोवाइज भी कर सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बहुत सुंदर आपने बात बोली। अगर आपके पास शब्द होंगे तो आप कभी खुद को ऐसी जगह पर नहीं पाएंगे जहां पर आप निशब्द खड़े हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा कहानी को। बहुत खूबसूरत बात है। और इसमें जावेद साहब का एक, अभी मैंने हाल फिलहाल एक वीडियो भी देखा था, वो कह रहे थे कि आपके पास, आपकी वोकेबुलरी कमजोर है इसलिए आप गालियों का चयन करते हैं, अगर वोकेबुलरी आपकी अच्छी होगी तो आपको गालियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने शब्दों का व्यक्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल
1: मैं हेमंत जी एक और बात आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा। अगर हम एक मकान की बात करते हैं, जब आप एक मकान बनाते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको ईंट पत्थर की जरूरत पड़ती है, आपको सीमेंट की सरिया की जरूरत पड़ती है। ठीक ऐसे ही जब हम एक कार बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, उसमें भी बहुत सारे पुर्जे लगते हैं। एक अभिनेता बनने के लिए अगर मैं पुर्जों की बात करूं एक एक करके, कौन कौन से पुर्जे होते हैं एक अभिनेता के?
0: सागर जी, आपने बहुत ही कमाल का सवाल पूछा, इसको सुनते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो देखिए कि नाट्य शास्त्र में, जैसे कि हमने जाना है, सुना है, पढ़ा है भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, कि अभिनय चार तरीके से होता है, चार प्रकार का होता है। आंगिक अभिनय, यानी जिसमें हमारी पूरी बॉडी, पूरा शरीर हमारा काम करता है, उससे हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे हमारे चरित्र को, हमारे इमोशंस को। दूसरा होता है वाचिक अभिनय, यानी ये जो हम आप बोल रहे हैं, स्पीच है ना, तो बोलने के माध्यम से, गाने के माध्यम से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, अभिनय करते हैं। और तीसरा होता है शरीर हो गया, यानी काया हो गई, वचन हो गया। तीसरा आता है मन, तो मन को हम बोलते हैं सात्विक अभिनय, यानी मन से भी अभिनय किया जा सकता है, यानी मन में जब तक आपके वो भाव नहीं आएंगे तब तक वो सच्चाई मंच पर या कैमरे के सामने आ ही नहीं सकती, मतलब एक्सप्रेस नहीं हो सकती। तो मन, वचन, काया, तो इन तीनों पर ही काम किया जाता है। जितने भी अभिनय के स्कूल्स हैं, जितने भी अभिनय की टेक्निक्स हैं, चाहे कैमरे वाली हो, चाहे रंगमंच वाली हो, ये तीन ही प्रमुख हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, भले ही हजारों तरीके की टेक्निक मतलब डिस्कवर हुई हो, इनोवेट हुई हो, लेकिन मुख्य मूलतः तीन है, आंगिक, वाचिक और सात्विक। और चौथी जो आती है उसको हम बोलते हैं आहार्य। आहार्य यानी कि ये जो हम आप पहनते हैं ना, मतलब कपड़े पहनना, मेकअप करना, हाथ में कमंडल लेना, हाथ में डंडा लेना, हाथ में मोबाइल लेना, और ये तमाम जो चीजें हमारे शरीर और आवाज के अतिरिक्त जो कुछ हमने ओढ़ा है या इस्तेमाल किया है, वो है आहार्य। तो बस शरीर की एक्सरसाइज करना, शरीर को अलग अलग लय ताल में चलाना, आंखों की एक्सरसाइज, अलग जितने भी हमारे भाव हैं, यानी कि नौ मूल भाव हैं, नौ रस भाव हैं, कि श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत, विभत्स और शांत, तो ये तो नौ रस भाव तो हैं ही सही, लेकिन इनके अलावा और जो अन्य भाव हैं, जिसको नाट्य शास्त्र में कहा गया संचारी भाव, यानी या व्यभिचारी भाव, जो आते हैं जाते हैं, तो ये 33 और नाट्यशास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि 33 तो उस समय उन्होंने महसूस किए और लिखे, लेकिन उसके बाद और भी कई ऐसे भाव हैं जो हम उसमें जोड़ सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि मोर देन 33। तो 33 से ज्यादा जितने भी छोटे बड़े इमोशंस हैं, इन सबको शरीर के द्वारा प्रस्तुत करना, इन सबको आवाज के द्वारा प्रस्तुत करना और इन सबको अपने मन में महसूस करना, उसके बाद ही तो शरीर में और आवाज में जाएंगे। तो शरीर, मन और आवाज को तैयार करना, यही तीन बेसिक इंस्ट्रूमेंट कहें या टूल कहें, पूरे वर्ल्ड में ये तीन ही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने हेमंत जी से बात करी है, यहाँ पर मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हम वो दरवाजा खोल पाए हैं आपके लिए अभिनय की दुनिया का, कि ये अभिनय होता है उसको मैकेनिकल वे में अगर आप देखेंगे तो इन चीजों के ऊपर काम करना होता है। एक छोटा सा यहाँ पर हम म्यूजिकल ब्रेक लेने वाले हैं, उसके बाद इस दुनिया को और हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे से जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। वो सिनेमा की दुनिया में जो जूम लेंस कहते हैं, उस जूम लेंस की तरफ चलेंगे थोड़ा सा, कि सात्विक की दुनिया क्या होती है, इसके ऊपर काम कैसे होता है। घबराइएगा मत, ये भी आपको बताया जाएगा यहाँ पर कि आप एक्सरसाइज या रियाज जो आपका है वो किस किस तरीके से आप कर सकते हैं अपने घर बैठे, करेंगे डिस्कस। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं हूं सागर, शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक। मैं ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये जो शो है, जो प्रोग्राम है, ये पसंद आ रहा है। साथ साथ ये संगीत आपको पसंद आया, शो को अपने आगे लेकर के चलेंगे। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिनय के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। हेमंत जी, थोड़ा सा अपने सवालों को एक लेवल और अप ले जाते हुए, अब मैं एक एक सेगमेंट जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है उनकी बात करना चाहूंगा। प्रमुख मैं बात करना चाहूंगा सात्विक के बारे में। हमें सात्विक की दुनिया से रूबरू कराइए। सात्विक क्या होता है, या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर मुझे एक किरदार निभाना है, उदाहरण के तौर पर मुझे किरदार निभाना है महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी की दुनिया में जाने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए, क्या होगा मेरा सात्विक का रियाज?
1: जी। तो आपका फिर से शुक्रिया और सभी श्रोताओं को मेरा फिर से दिल से अभिवादन। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सात्विक के बारे में, और इसके ऊपर बात बहुत ही कम होती है, क्योंकि आमतौर पर हम एक तरह से मैकेनिकल इसको वो करते हैं, मतलब ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सागर जी, कि सारी जितनी भी कलाएं हैं, चाहे संगीत हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे नृत्य हो, अभिनय हो, और जितनी भी कलाएं होंगी, उन सब में जो मूल जो बात है, वो सबसे जरूरी एलिमेंट है, वो है संवेदना, है ना। तो संवेदना, तो जब तक आपका मन

0: देख के हम हमारे मन में बेचैनी, हमारे मन में दुख पैदा होता है, उसके प्रति कुछ मदद की भावना पैदा होती है क्या? ये संवेदना। अगर किसी की खुशी देखकर, पेड़ की खुशी, ऋतु की खुशी, चिड़िया की खुशी देखकर हमारे मन में खुशी उपजती है क्या, तो हम देखते कि हाँ होती है ना। तो संवेदना यही है कि जैसा हम देख रहे हैं दुनिया को, लोगों को, वैसा ही रिफ्लेक्शन हमारे मन में पैदा हो रहा है क्या। तो सबसे पहले तो बात यह है सागर जी, कि अपने मन के भीतर संवेदना को गाढ़ी करने की, संवेदना को उपजाने की एक्सरसाइज करना, तो उसके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन साहित्य उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कि आप जितने अलग अलग कहानियां पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, कविताएं पढ़ेंगे, उससे आपके भीतर संवेदना का विकास होगा। लेकिन हम जीवन को क्यों छोड़ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि हम जीवन में घुसे सबसे पहले हम पेड़ को देखें, नदियों को देखें, आसपास के वातावरण को देखें, तो हम ये देखेंगे कि यार इन सबसे हमारा कोई रिश्ता है। हवा प्रदूषित हो रही, तो हवा प्रदूषित होने के पीछे हमारी चिंता है। अगर पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उनके काटे जाने का दुख हमारा दुख है ना। अगर कोई बच्चा वो, मतलब वो उसको खाने को नहीं मिल रहा है, कुपोषित है, और ये बताया जा रहा है कि वाह वाह देखो, ये देखो सरकार कितना अच्छा उनको भोजन खिला रही है, तो इस शोषण से, इस अन्याय से हम यदि पीड़ित हैं, हमारे भीतर दर्द झलकता है, तो इस तरह से जीवन से हमारे भीतर संवेदना आती है। तो सबसे पहले आपके सवाल का जवाब शुरू होता है संवेदना से। जितना अधिक संवेदनशील होगा कलाकार या अभिनेता अभिनेत्री, उतना वो सात्विक की दुनिया में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता। अब आपने पूछा कि क्या हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे आप संवेदनशील होंगे तो आपके भीतर एक अलग स्पेस पैदा होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, हमें डाटा रखने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, GB TB ऐसी चाहिए, तो उसी तरह हमारे मन में जितनी उदारता होगी, उदार मतलब जितना बड़ा होगा, जितने बड़े तरीके से वो सोच सकता है, महसूस कर सकता है, उतने ही किरदार उसके भीतर आसानी से समा सकते हैं। जैसे आपने गांधी जी के बारे में सवाल किया, तो
1: बिल्कुल
0: गांधी जी के बारे में सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने सुना भी होगा कि हम जिन जिन किरदारों को निभाते हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस पढ़ने से क्या होता है कि हमारे मन में उनके प्रति एक संवेदना का रिश्ता बनता है कि वो कैसा सोचता था, क्या करता था। क्योंकि होता क्या है सागर जी, कि हम जैसे हमने मान लो गांधी फिल्म में बेन किंग्सले को देखा, तो हमने उनके चलने की और जितने भी रियल फुटेजेस है ना, उनके आधार पे हमने चलने की, बोलने की, ये और कपड़े पहनने की, ये तो हमने ये ढाल ली और उसको परफॉर्म कर दिया। लेकिन असल बात है कि गांधी हैं या कोई और किरदार है, वो सोचता कैसे था। तो ये जो सोचना है ना, यही भीतर जाना है। कि जब मान लो थोड़ी देर के लिए गांधी की बात है, कि गांधी जी गरीबों की बस्ती में गए, अछूतों की बस्ती में गए, और उन्होंने देखा कि इन लोगों के पास रहने को, खाने को, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो उनके शरीर पे जो भी कुछ ज्यादा कपड़े थे, अतिरिक्त कपड़े थे, उन्होंने तब छोड़ दिए। तो असल में हमें कैरेक्टर के भीतर जाना है कि वो सोच क्या रहा है, वो इमेजिन क्या कर रहा है। तो ये सोचने, इमेजिन वाली जो बात है, ये जाती है संवेदना। तो आपके मन को, आपके दिमाग को, आपके इमेजिनेशन को यही चीज खोलती है कि आप दूसरों के अंतर्मन के बारे में सोच रहे हैं। तो अंतर्मन की तैयारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक पेड़ है, एक पेड़ का आपको किरदार करना है, तो आप पेड़ बनकर देखिए कि उसकी जड़ें भी हैं, उसकी शाखाओं पे बहुत सारे पंछी भी हैं, पत्ते भी हैं, और आरियां भी हैं जो चल रही हैं, और प्रदूषण भी है, उसकी खुशी भी, जब उसके ऊपर बसंत आ जाता है तो उसकी खुशी भी है, जब उसके ऊपर आम पक जाते हैं, जामफल पक जाते हैं, तो खुशी भी है, बच्चे तोड़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, खुशी भी है। तो जब आप उसको महसूस करेंगे, तब आप उस कैरेक्टर को निभा पाएंगे। वरना हम ये देखेंगे भाई कि पेड़ तो है, वो स्टैटिक है, खड़ा है, और बस पत्ते हिलते हैं, लेकिन वो महसूस क्या करता है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए कविता, अब वो कविता जैसे मान लो पत्थर है या रेत है, तो कवि की नजर में कभी भी पत्थर या रेत निर्जीव नहीं है, वो जड़ नहीं है, वो हमेशा सोच रही है, हमेशा फील कर रही है। रेत क्या फील कर रही है कि जब नदी में पानी आता है तो रेत की फीलिंग अलग है, और जब उसी रेत में JCB और डंपर आ जाते हैं और रेत खनन करने लग जाते हैं, है ना, अवैध तरीके से रेत चोरी हो रही है, तो वो रेत क्या सोच रही है। तो वो किसी अन्य के मन में उतरना, ये सात्विक की शुरुआत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रश्न का जवाब देने के लिए इतने सुंदर शब्दों के साथ। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर प्रश्न उठता है जो

0: पूछना चाहूंगा जी, अगर जी, मैं एक अभिनेता की तरह कि महात्मा गांधी का मैं किरदार निभाने जा रहा हूँ, मैं अभिनेता की तरह गया एक गरीबों की बस्ती में और मैंने देखा कि वहां पर उनके पास पर्याप्त मात्रा में जो है वस्त्र नहीं है, मैंने अपने वस्त्रों का त्यागन कर दिया। लेकिन सर प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अभी जब इस मोमेंट पर मैं वहां पर देख रहा हूँ, ये बहुत मैकेनिकल होगा मेरे लिए, ठीक है, और एक एक्टिंग में एक लाइन होती है मैकेनिकल टू मैजिकल का हमारा सफर होता है, वो यात्रा होती है, तो वो मैकेनिक से मैजिक की तरफ मैं कब पहुंचूंगा, उस यात्रा के बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड करें आप।
1: जी जी, ये आपके पहले सवाल से जुड़ता हुआ सवाल है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी, बहुत ही बारीक बात पकड़ी है, तो मैं भी उसी पॉइंट पे आता हूँ। देखिए सागर जी, जब हम नाटक देखते हैं, स्टेज पर अभिनेता अभिनेत्री को देखते हैं या फिर स्क्रीन पर देखते हैं, तो हम ये तो देखते हैं कि वो उसने हाथ उठा लिया, वो उसने अपने कपड़े उतार के दे दिए, या फिर उसने गोली चला दी, उसने किसी को पुचकार लिया, प्यार कर लिया, गले लगा लिया, ये तो हम देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आंगिक अभिनय। लेकिन आपको मैं बहुत बारीक अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि वो गले लगने से पहले या गोली मारने से पहले या फिर अपने कपड़े उतार देने के पहले उसके मन में, जिसे हम बोलते हैं ना केमिकल रिएक्शन, है ना, वो मनोवैज्ञानिक या वो मानसिक परिवर्तन उसके भीतर घटते हैं, उस घटने को ही पकड़ना है, और वो सिर्फ और सिर्फ अभिनेता की सच्चाई है। वो बाहर से तो हम ये देखेंगे केवल कि उसने अपना कपड़ा उतार के दे दिया, लेकिन और ये इसके अंदर इसको एकदम से जस्टिफाई करना भी मुश्किल है, इसको किसी मशीन से पकड़ना भी मुश्किल है कि क्या आपके अंदर सात्विक भाव पैदा हुआ, तो वो लोग बोलेंगे हाँ हाँ हुआ, लेकिन दरअसल अगर सात्विक भाव पैदा हुआ है ना, तो आपको दिख जाएगा, जैसे आप चाहे जूम करें कैमरे से, बहुत क्लोज टाइट क्लोजअप लगा दें, तो या फिर दूर से रंगमंच पे देखें, यदि उसके मन में वो सच्चाई पैदा हुई है, जिसे बोलते हैं कि वो भाव पहले आया है, तो वो अभिनय के अंदर झलकता है। तो इसके लिए वापस हमको रस भाव की थ्योरी का आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। आपने दो शब्द तो सुने होंगे, सभी दर्शकों ने भी, श्रोताओं ने भी सुने होंगे, रस और भाव।
0: बिल्कुल।
1: तो देखिए सागर जी, जो रस भाव की जो ये जो रिएक्शन, वो जो पूरी प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। मतलब देखिए थोड़ी देर के लिए कि आपने मुझसे बोला, हेमंत जी आपकी आवाज बहुत सुंदर है, आपके पास शब्दावली बहुत अच्छी है और आप बहुत प्यारे इंसान हैं, तो क्या हुआ, मेरे भीतर मेरे मन में कुछ अलग से भाव पैदा हुए, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में ये कहते हैं कि हार्मोनल कुछ चेंजेस आए, मेरे भीतर हार्मोन पैदा हुआ, कोई हो सकता है वो डोपामाइन हो या कुछ भी हो, और जैसे आपने मुझसे कहा हेमंत जी यार आप पे शर्म आती है, लानत है आपके ऊपर यार, आप बहुत घृणित इंसान है, बहुत गंदे इंसान है, आपको रहने कोई अधिकार नहीं, वो तो आप पता नहीं कैसे मैंने आपको इंटरव्यू ले लिया, लेकिन आप बिल्कुल इसके हकदार नहीं है, तो मेरे मन के अंदर कुछ और पैदा होगा। तो हर एक बात का असर हो रहा है मन के ऊपर, और जब असर हो रहा है तो आपके शब्द किसी के भी मन में कोई भाव पैदा, कोई इमोशन पैदा कर रहे हैं, तो वो जो इमोशन उसके मन में पैदा हुआ दरअसल वो रस है, उस रस के आधार पर आदमी का चेहरा खिल जाता है, है ना। तो ये रस भाव की बहुत बारीक बात है जो आपस में ट्रांसफर होती रहती है, और वो एक लंबी ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रक्रिया है। तो जैसे आपने स्क्रीन पे देखा कि एक बेटा अपनी माँ के गले मिला, और गले मिलकर उसने कहा, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपको इतने कष्ट दिए, मुझे माफ कर दो माँ, और वो उसके चरण पकड़ लेता है, उसके आंसू निकल पड़ते हैं, और बैकग्राउंड में वायलिन या सितार बजने लगता है। तो क्या होता है पता है, कैथार्सिस होता है, यानी कि विरेचन, और दर्शक सारे दर्शकों के आंख में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दृश्य देखकर दर्शकों के भीतर जो गया उसको बोलते रस, है ना, वो भाव उसने पकड़े और वो रस पैदा हुआ, तो आंखों से आंसू आ गए। अब ये रस जो है वो अपने भीतर से अपने घर ले जाएगा और अपनी बेटी को बताएगा, बेटी आज मैंने एक ऐसी फिल्म देखी जिसमें वो बेटा कहता है माँ। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रस भाव, रस से भाव बना, भाव से वापस रस बना, फिर वापस भाव बना, फिर रस बना। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि हम बस्ती में चले गए, अपने कपड़े दे दिए, तो ये मैकेनिकल आपको लग सकता है, लेकिन अगर किसी के मन में वो भाव सच्चाई से पैदा हो जाता है, तो अपने आप देखेंगे ना कि वो आदमी का चेहरा आपको बदलता हुआ दिखेगा, उसके शरीर पे कांटे रोंगटे खड़े होते हुए दिखेंगे, उसकी आवाज बदलती हुई दिखेगी। तो ये हर जगह मैकेनिकल होता है, ऐसा नहीं है, वो शुरुआत तो मैकेनिकल से होती है, क्योंकि वो सात्विक बहुत मुश्किल चीज है, बहुत बहुत मुश्किल चीज है। इसलिए आप देखेंगे कि सारी जो एक्सरसाइज है ना एक्टिंग की, ये आंगिक अभिनय यानी बॉडी के ऊपर है, और स्पीच, वॉइस एंड स्पीच पे है, लेकिन सात्विक में बहुत कम एक्सरसाइजेस हैं, तो आप इस बात को भी ध्यान रखेगा कि हमें सात्विक पर काम करना है। और सारे श्रोताओं से भी मेरा कहना है, सारे ड्रामा और एक्टिंग डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, सबसे ये निवेदन है कि आप सात्विक के ऊपर आप काम कीजिए, तो देखेंगे कि कलाकार बने न बने, लेकिन उसके पहले वो आदमी, वो जो अभिनेता है, उसका मन बदल जाएगा, वो सारी दुनिया से प्यार करना सीख जाएगा, संवेदनशील बनेगा, घृणा नफरत को समझने लग जाएगा कि इसकी जरूरत ही नहीं है।
0: बिल्कुल। एक और यहाँ पर छोटा सा हम म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहेंगे। इतनी गहन बातचीत चल रही है, और क्योंकि मैं थोड़ा बायस यहाँ पर हो सकता हूँ, वजह यह है कि मैं खुद एक छात्र हूँ अभिनेता, और जब इतने महान शख्सियत या इतने खूबसूरत इंसान मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल निकलने वाले हैं। बट यहाँ पर भी छोटा सा विश्राम देंगे, आपके समय की मैं कदर करता हूँ, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। आगे हम बात करेंगे अभिनेता बनने की तैयारी का रियाज क्या होता है, बट इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती, भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

का प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: आजाद होने का।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: सकता तेज जैन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यू, तुम्हारे साथ हैं यहां पर हेमंत जी। शो को आगे बढ़ाएंगे। हेमंत जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि हम लोगों ने जो ये बात करी है अभिनेता बनने की तैयारी, अभिनय को समझा, सात्विक को समझा, दुनिया को हम लोग समझ गए हैं। ये ऐसा दिख रहा है कि दूर से एक दुनिया मुझे पता लग गई है, वो दुनिया है। उस दुनिया तक जाने का रास्ता अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि है हमारा रियाज। क्या रियाज होता है एक अभिनेता का?
1: वाह, आपके सवाल पे मेरे दिल से फिर से वाह निकलती है। शुक्रिया कि आपने इतना बारीक सवाल पूछा। देखिए, आप हम सब ये जानते हैं कि अभिनय की जो दुनिया है, नाटक जैसे कहते हैं, नाटक की दुनिया है, नाटक से फिल्म बनी, तो नाटक की जो दुनिया है ये, इसके बारे में एक श्लोक लिखा है नाट्य शास्त्र में, न तद ज्ञानम न तद शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सब योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन यन्न दृश्यते। यानी कि ऐसी कोई कला, ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है जो नाटक में नहीं है। यानी कि सारी कलाएं, सारी विद्याएं, सारी तकनीकें, सारा ज्ञान, जितना कुछ है वो सारा के सारा नाटक में समाहित है। ये श्लोक का भावार्थ हम समझ सकते हैं। तो इससे एक बात हम ये निकाल के हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि नाटक में सारी कलाओं का समावेश है। तो आप देखेंगे कि कामसूत्र के हिसाब से 64 कलाएं मानी गई है, बौद्ध दर्शन के हिसाब से 108 या 105 कुछ कलाएं मानी गई हैं। तो उनमें जितनी भी कलाएं जो हम मुख्य रूप से लेते हैं, ललित कलाएं, जैसे कि गायन, वादन, चित्रकला, शिल्पकला, ये कॉस्ट्यूम बनाना, सेट बनाना और भावाभिनय, बोलना इत्यादि, जितनी भी कलाएं वो सारी की सारी अभिनय में हैं, अभिनय के अंतर्गत आती हैं। अभिनेता को सारी सीखनी पड़ती हैं। तो इससे हम ये भी समझते हैं सागर जी कि अभिनेता का काम कितना दुष्कर है, कितना बहुत कठिन है। आमतौर पे हमारे से नाटक की दुनिया में या फिर नाट्य विद्यालय के बारे में से कहा जाता है कि जिनको भाई कुछ नहीं आता, जो बीएससी नहीं कर पाते, जो बीकॉम नहीं कर पाते, जो इंजीनियरिंग में नहीं जा पाते, वो सब नाटक में आ जाते हैं। लेकिन हमारे जो वरिष्ठ अभिनेता और हमारे गुरु है आलोक चटर्जी, तो आलोक चटर्जी सर कहते हैं कि भैया ये पूरी तरह से गलत है। नाटक में बहुत बुद्धिमान लोग ही आते हैं और आने चाहिए। अभिनेता जो होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत विवेकवान होता है, बहुत तर्कवान होता है, उसकी भाषा बहुत अच्छी होती है, उसे नाचना, गाना, बजाना क्या कुछ नहीं आता, उसको सब कुछ आना चाहिए, उसे सब कुछ आता है। तो आप देखेंगे कि अभिनेता की तैयारी का एक बहुत मोटा या एक बड़ा उत्तर आपके सामने में रखने की मैंने कोशिश की, और ये मैं नहीं, ये तो सदियों से सब रखते आ रहे हैं कि अभिनेता को सारी कलाओं में निपुण होना चाहिए। लेकिन यदि चलिए मान लीजिए कि वो निपुण नहीं भी है, तो भी उसको इतना, उसको संवेदनशील होना चाहिए कि हमें पेंटिंग भी देखनी है, हमें स्कल्पचर भी देखने हैं, हमें म्यूजिक भी सुनना है, हमें फिल्में भी देखनी है, हमें साहित्य भी पढ़ना है, हमें दुनिया भी घूमना है, हमें पर्यावरण की तरफ ध्यान देना है। तो आप देखेंगे कि अभिनय की, अभिनेता की तैयारी कितनी विशाल है ना, अनलिमिटेड है। ये तो हुआ पहला उत्तर। अब और थोड़ा हम जाएं तो जैसे कि मैंने साहित्य से शुरुआत की कि साहित्य को पढ़ना, शायरी को पढ़ना, उर्दू पढ़ना, हिंदी पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, उनका उच्चारण करते हुए पढ़ना, उनको भावना और कैरेक्टर के नाते पढ़ना, तो साहित्य से रब्ता बहुत कमाल का होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम अभिनेता, जब हमारे वर्कशॉप हम लेते हैं और कोई भी एकदम रॉ कोई लड़का या लड़की जिसका अभिनय से कोई वास्ता नहीं रहा है, हालांकि ये कहना गलत है, बचपन से हम सब भाव से, वाणी से, अभिनय से जुड़े ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जब एकदम नए नए लड़के लड़कियां नाटक की दुनिया में आते हैं, अभिनय की कार्यशाला में आते हैं, तो हम सबसे पहले उनको मतलब दो स्तर पर काम होता है, आंगिक और वाचिक। सात्विक जो है वो बहुत धीरे धीरे आता है। तो आंगिक पे हम जाते हैं तो सबसे पहले बहुत सारे गेम्स हम खेलते हैं, जो जिसमें शरीर की एक्टिविटी वाला भी गेम है, कॉन्सेंट्रेशन वाले गेम है जो एकाग्रता को बनाते हैं, स्मरण शक्ति वाले गेम है, और समूह की गेम है, ग्रुपिंग, जिसमें अलग अलग जात बिरादरी, अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं उनमें एकता हो, उनमें सद्भावना बढ़े, तो ऐसे सामूहिकता के गेम होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, और ये सारे गेम मैंने बताए। तो ऐसे रचनात्मक खेल जैसे बोलते हैं थिएटर गेम्स, वो थिएटर गेम्स से शुरुआत करते हैं जिससे उनकी झिझक निकलती है। तो अभिनय की दुनिया में आने के लिए सबसे जो पहला जो वाक्य है ना, या जो पहला सूत्र है सागर जी, वो है झिझक मिटाना। भीतर की जो झिझक और संकोच और डर रहता है ना, ये बहुत रहता, सब में रहता है। आप में हम में भी मुझ में भी कहीं ना कहीं है, तो वो निकलना चाहिए। तो सबसे पहले भीतर की झिझक, डर, संकोच मिटाना, किसी भी तरह की लाज शर्म को हटाना कि लोग क्या कहेंगे, मैं रोऊंगा, नाचूंगा, उठूंगा, बैठूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अलग अलग तरह की आवाजें निकालूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो भैया अभिनय की दुनिया में आने का सबसे पहला जो फॉर्मूला है कि खुद की भीतर जितनी भी जड़ता है, रिस्ट्रिक्शन हमने लगा के रखे, टेबूज हमने बना के रखे, सामाजिक रूढ़ियों से जो छिपने छिपाने की हमने वृत्ति बना के रखी, उसको तोड़ना और खुद को फ्री करना, खुद को अलग अलग ढंग से चलने दो, नाचने दो, बोलने दो। तो अलग अलग रिदम के ऊपर हम चलवाते हैं, मतलब लोग चलते हैं, अलग अलग आवाजें निकालते हैं, और आवाज के अंदर हम सारे गमों को बहुत महत्व देते हैं। हारमोनियम पर सरगम हम कराते हैं, रोजाना के रोजाना सरगम का अभ्यास है, स नी ध प म ग रे सा। तो मंत्र सप्तक का अभ्यास करने से आवाज की रेंज भी बड़ी होगी, हम आवाज को मधुर भी बना पाएंगे, और हम आवाज हमारे हम पहचान पाएंगे कि अलग अलग पीचेस में आवाज का क्या महत्व है। जैसे मान लो हम ऊपर जाते हैं, सा सा रे ग म प ध नी सा, तो कब हम ऊपर बोलते हैं, ओ भैया अरे जरा नीचे आओ नीचे आओ। और अगर कोई व्यक्ति पास में बैठा है, कहिए क्या हाल चाल है सागर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और एकदम कहीं मान लो चोरी छिपे की बात हो रही, सागर जी देखिए आवाज ठीक ठाक जा रही है ना, हाँ चलो बोलना शुरू करो, हेलो नमस्ते श्रोताओं, नमस्ते भाइयों बहनों। तो पिचेस का क्या, अलग अलग पिच का क्या असर होता है, कब कब वो अलग अलग पिचेस में हम बोलते हैं, तो वाचिक के ऊपर सरगम से ही काम शुरू होता है। फिर इधर आंगिक अभिनय में अलग अलग ताल के ऊपर चलना, पक्षियों के रूप में चलना, मेंढक के रूप में, तो शरीर को पूरा तोड़ना मरोड़ना। तो अभिनेता की तैयारी तो ऐसी होती है कि दीवानगी, जुनून, पागलपन, और खुद को भुला देना, और खुद को मंच के हवाले कर देना, चरित्र के हवाले कर देना, और हमारे जो निर्देशक या मार्गदर्शक है ना उसके हवाले कर देना, सारी शर्म झिझक छोड़ देना।
0: बहुत सुंदर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब आपने बात बोली ना कि खुद को फ्री कर देना, चोरी छुपना, ये जो हमारी आदतें हैं इनको बंद कर देना, छुपने छुपाने की हमारी आदतें होती हैं बिल्कुल। मेरे पास हालांकि सवाल खत्म नहीं हुए हेमंत जी, लेकिन समय यहाँ पर हमारा खत्म होता है, तो आज का शो दुर्भाग्यपूर्ण मुझे यहीं पर अंत करना होगा। हालांकि मेरे बहुत सारे प्रश्न थे अभी, लेकिन जितनी मैंने बात करी है, मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी मैं कामना करता हूँ कि हमारे श्रोताओं के साथ हम न्याय कर पाए हैं, उनके वक्त के साथ हम न्याय कर पाए हैं। आपको यकीनन कुछ ऐसी चीजें मिली होंगी जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ेगी, और अगर आप अभिनेता बनना चाहते हो तो ये एक तरीके से एक आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा एक मास्टर क्लास हमने अभी यहाँ पर आपको देने की कोशिश करी है हेमंत जी की जुबान से।
1: तो अच्छा सागर जी, बस एक आखिरी वाक्य मैं बोलना चाहूंगा, चलेगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए
1: जी जी। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि नाटक या फिल्म की या अभिनय की जो दुनिया है, इसको हम वैसे नहीं समझे कि नाटक की दुनिया या फिल्म की दुनिया में जाना है तो ही ये थिएटर काम का है। मैं तो ये कहना चाहूंगा अभी तक के अपने अनुभव से कि नाटक या थिएटर हर किसी को करना चाहिए, बल्कि ये तो स्कूल से ही हो जाने चाहिए शुरू, चौथी पांचवी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा से ही बच्चों को थिएटर की ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्यों, वो तो आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि अभिनय की जो सीखने की पूरी प्रोसेस है ना, इसमें अंततः व्यक्तित्व का विकास ही है कि हम अच्छी तरह से बोल पाए, एक साफ स्पष्ट लहजे में बोल पाए, वॉल्यूम ऐसा रख पाए कि कोई हमारी बात सुन पाए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, हमारे हमारे हमारी शरीर के ऊपर नियंत्रण है कि नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते बोलते कहीं खुजला रहे हैं, या फिर बोलते बोलते अपने हाथ अपने मुठ्ठियां तान रहे हैं, सीना तान रहे हैं। तो एक एक सरलता सहजता कैसे दिखे आपके शरीर में, आपकी आवाज में कैसे दिखे, और दूसरी बात कि हम अपने आप को अभिव्यक्त करने की हमारे अंदर काबिलियत पैदा हो रही है कि नहीं। तो मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा सारे श्रोताओं से कि अभिनय की ट्रेनिंग केवल इसलिए नहीं है कि आपको फिल्म की दुनिया में या नाटक की दुनिया में जाना है, अभिनय की ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है दोस्तों कि हमें एक सजग, सतर्क, विनम्र इंसान बनना है, संवेदनशील इंसान बनना है, जो सारी दुनिया से जुड़ सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, किसी भी अन्याय शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकता है, किसी की मदद कर सकता है, यही अभिनय की मूल बात है। शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे पता है कि जब अभिनय प्रेमी लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो संवाद कभी खत्म हो ही नहीं सकता है क्योंकि इतनी बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं एक और बार ये बात बोलूंगा कि हमें समय समाप्त हमारे यहाँ पर होता है, तो अपने शुक्र हमें यहाँ पर खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: बहुत सारे शुक्रिया, बहुत सारे शुक्रिया।
0: पलट दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि हेमंत जी की जुबानी जो बातें आप लोगों तक हमने पहुंचाई आपके काम की रही होंगी, आप जान पाए होंगे चार चीजें, आप थोड़ा सा अपने अंदर की यात्रा पर निकल पाए होंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा तो, लेकिन आप निकल पाए होंगे आपके विचार कैसे हैं, कैसे सोचते हैं, सोचना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, शब्दावली कितनी जरूरी है, ये तमाम बातें आज हमने करी। आपको भी फीडबैक है तो मुझे बता सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल इसी नोट पर इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।
2: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहां, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, खीरे के बारे में आज आपसे बात हो रही है, तो आइए बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में। इसको मिट्टी की अलग अलग किस्में जैसे कि रेतली दोमट से भारी मिट्टी में उगाया जा सकता है। खीरे की फसल के लिए दोमट मिट्टी में जिसमें जैविक तत्वों की उच्च मात्रा हो और पानी का अच्छा निकास हो, वो उचित पैदावार देती है। और खीरे की खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच है, पीएच 6 से 7 होना चाहिए। लेकिन बात आती है किस्मों की, तो इसका हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। पहली किस्म के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, जिसका नाम है पंजाब खीरा 1/2018। किसान भाइयों, ये किस्म केवल ग्रीन हाउस यानी कि पॉलिनेट हाउसेस के लिए अनुकूल है। इस किस्म का पौधा जल्दी बढ़ने वाला होता है, प्रति नोड 1 से 2 फल पैदा करता है, फूल पार्थेनोकार्पिक होते हैं और फल गहरे हरे, बीज रहित, स्वाद कम कड़वा, मध्यम आकार यानी कि 125 ग्राम 13 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इन्हें छीलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी तोड़ाई सितंबर और जनवरी महीने में फसल बोने से 45 से 60 दिनों के बाद की जा सकती है और सितंबर महीने में बोई फसल की औसतन पैदावार 304 क्विंटल प्रति एकड़ और जनवरी महीने में बोई फसल की उपज 370 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पर एक और होती है किस्म, जिसका नाम है पंजाब नवीन 2008। इस किस्म की सतह खुरदुरी होने के कारण पौधों की गहरे हरे रंग की पत्तियां होती हैं। जब फल पकने के स्तर पर पहुंच जाता है तब फल नर्म सतह के साथ आकार में बेलनाकार और फीके हरे रंग का होता है और साथ ही फल कुरकुरे, कड़वेपन रहित और बीज रहित होते हैं। इसमें विटामिन सी की उच्च मात्रा पाई जाती है और सूखे पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, ये किस्म 68 दिनों में पक के तैयार हो जाती है। इसके फल स्वादिष्ट, रंग और रूप आकर्षित, आकार और बनावट बढ़िया होती है और इस किस्म की औसतन पैदावार 70 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि जमीन की तैयारी कैसे की जाए, तो जमीन की तैयारी के बारे में बात होगी, बिजाई के बारे में भी बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, खीरे के बारे में आज आपसे बात हो रही है। पीछे आपसे जिक्र किया था कुछ किस्मों के बारे में, आइए बात कर लेते हैं कि जमीन की तैयारी कैसे की जाए। देखिए किसान भाइयों, खीरे की खेती के लिए अच्छी तरह से तैयार और नदीन रहित खेत की ज़रूरत होती है। मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बनाने के लिए बिजाई से पहले 3 से 4 बार खेत की जुताई ज़रूर करें। रूड़ी की खाद जैसे गाय के गोबर को मिट्टी में मिलाएं ताकि खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। फिर 2.5 मीटर चौड़े और 60 सेंटीमीटर के फासले पर नर्सरी बेड तैयार करें। अब बात कर लेते हैं बिजाई की। इसके बिजाई का जो समय है, फरवरी या मार्च के महीने में की जाती है, और अगर फासले की बात करें तो 2.5 मीटर चौड़े बेड पर हर जगह 2 बीज बोएं और बीजों के बीच 60 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। बीज की गहराई की बात करें तो बीज को 2 से लेकर

के 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, लेकिन बिजाई का एक ढंग भी होता है, उसका भी ध्यान रखना होगा। एक विधि है जो कहलाती है छोटी सुरंगी विधि। इस विधि का प्रयोग खीरे की जल्दी पैदावार लेने के लिए किया जाता है। ये विधि फसल को दिसंबर और जनवरी की ठंड से बचाती है। दिसंबर के महीने में 2.5 मीटर चौड़े बेडों पर बिजाई की जाती है और बीजों को बेड के दोनों तरफ 45 सेंटीमीटर के फासले पर बोएं। बिजाई से पहले 45 से 60 सेंटीमीटर लंबे और सहायक डंडों को मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। खेत को प्लास्टिक की शीट यानी कि 100 गज मोटाई वाली को ठंडी की सहायता से ढक दें। फरवरी महीने में तापमान सही होने पर प्लास्टिक शीट को हटा दें। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया बिजाई का, लेकिन इसके बाद किसान भाइयों बात आती है बीज की, बीज की मात्रा की और बीज के उपचार की और खाद की। तो खाद के बारे में, बीज के उपचार के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में ये सारी बातें आपको बताऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, आज बात हो रही है खीरे के बारे में, और खीरे से संबंधित कुछ बातें आपको बताई थी, बिजाई का तरीका बताया था, बिजाई का समय भी बताया था, लेकिन अब बात आती है बीज के बारे में। बीज की मात्रा क्या होना चाहिए, इसको भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक एकड़ खेत के लिए 1.0 किलोग्राम बीज की मात्रा काफ़ी होती है, लेकिन बिजाई का उपचार भी बहुत ज़रूरी है। बिजाई से पहले फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए और जीवन काल बढ़ाने के लिए अनुकूल रासायनिक के साथ उपचार करें। बिजाई से पहले बीजों का 2 ग्राम कप्तान के साथ उपचार करें। अब बात कर लेते हैं खाद की। भाई देखिए, खेत की तैयारी के समय नाइट्रोजन 40 किलो यानी यूरिया 90 किलो, फास्फोरस 20 किलो यानी सिंगल फास्फेट 125 किलो और पोटेशियम 20 किलो यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलो शुरुआत में खाद के रूप में डालें, और बिजाई के समय नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा और पोटेशियम और सिंगल सुपर फास्फेट डालें, और नाली की शुरुआती अवस्था जो कि बिजाई से 1 महीना बाद होती है, उसके बाद उसमें जो बची हुई खाद है उस बची हुई खाद को डालें। लेकिन किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हम कोई भी फसल अपने खेत में उगाते हैं तो वहाँ पर खरपतवार हमारी फसलों को तबाह बर्बाद कर देती है। अब खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके बारे में भी बात होगी, और बात होगी सिंचाई के बारे में, पौधे की देखभाल के बारे में। मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए अन्नदाता।

दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। आइए किसान भाइयों बात कर लेते हैं खरपतवार के बारे में। वही खरपतवार जो कि हमारी फसलों को बर्बाद कर देती है, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। नदियों को हाथ से गुड़ाई करके या रसायनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ग्लाइफोसेट 1.6 लीटर को प्रति 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ग्लाइफोसेट की स्प्रे सिर्फ नदियों पर ही करें, मुख्य फसल पर बिल्कुल ना करें। सिंचाई की जब बात आती है तो गर्मी के मौसम में इसको बार बार सिंचाई की ज़रूरत होती है और बारिश के मौसम में सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसको कुल 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। बिजाई से पहले एक सिंचाई ज़रूरी होती है और इसके बाद 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। दूसरी बिजाई के बाद 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। लेकिन किसान भाइयों पौधे की देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि पौधों को नष्ट कर देती हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है एंथ्राक्नोस, इसका मतलब है कि फल का गलना। ये बीमारी खीरे के लगभग सारे हिस्सों पर हमला करती है जो ज़मीन से ऊपर होते हैं। पुराने पत्तों पर पीले रंग के धब्बे और फलों पर गहरे गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं। रोकथाम कैसे की जाए, सुन लीजिए। फसल को इस बीमारी से बचाने के लिए फंगस नाशी क्लोरोथेलोनिल और बेनोमाइल डालें। इसके अलावा किसान भाइयों एक और बीमारी होती है जो कहलाती है मुरझाना। ये बीमारी इर्विनिया ट्रैकेफिला के कारण होती है। ये पौधे नाड़ी टिश्यूओं को प्रभावित करती है जिस कारण पौधा सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए पत्तों पर कीटनाशक जो स्प्रे होता है वो स्प्रे कर देना है और अपनी फसलों को इस तरह की बीमारियों से सुरक्षित कर लेना है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत सारे ऐसे कीट भी होते हैं जो कि हमारी फसल को नेस्तनाबूद कर देते हैं। उन कीटों के बारे में भी आपसे बात करूँगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, खीरे के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ बीमारियाँ थी उनका जिक्र आपसे किया था, लेकिन एक रोग है जिसका नाम है चितकबरा। इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। पौधों का विकास रुक जाना, पत्ते मुरझाना और फल के निचले हिस्से का पीला दिखाई देना इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। इसकी रोकथाम के लिए डियाजिनोन डाली जाती है और इसके लिए इमाडोक्लोप्रिड 17.8% SL 7 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें। ये तो रही चितकबरा रोग की बात। अब बात कर लेते हैं उस कीट की, जो कीट हमारे फल को बर्बाद करता है, जिसका नाम है फल की मक्खी। ये खीरे की फसल में पाए जाने वाला गंभीर कीट है। मादा मक्खियाँ नए फल की परत के नीचे की ओर अंडे देती हैं, फिर ये फल के गुद्दे को भोजन बनाते हैं, जिस कारण फल गलना शुरू हो जाता है और फिर टूट कर नीचे गिर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 3.0% पत्तों पर नीम के तेल का स्प्रे कर दें। इसके स्प्रे करने से आपकी जो फल की मक्खी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपके खीरे का जो फल है वो एकदम सुरक्षित हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये बात तो मैंने आपको बता दी है फल की मक्खी के बारे में, लेकिन जब फसल की कटाई का समय होता है उस समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वो कौन कौन सी बातें हैं आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं बीज उत्पादन की। भूरे रंग के फल बीज उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया माने जाते हैं। बीज निकालने के लिए फलों के गुद्दे को 1 से 2 दिनों के लिए ताजे पानी में रखा जाता है, ताकि बीजों को आसानी से अलग किया जा सके। फिर इनको हाथों से रगड़ा जाता है और भारी बीज पानी में नीचे बैठ जाते हैं और इनको कई और कामों के लिए रखा जाता है। तो बीज उत्पादन के बारे में भी आपसे बात हो चुकी है। फसल की कटाई के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से जो फल के कीट हैं उनसे अपनी फसल की हिफाजत करनी चाहिए, इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं किसान भाइयों। लेकिन अब समय है आपसे आज्ञा लेने का। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं और चलते चलते करता हूं सभी किसान भाइयों को राम राम सलाम।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरला पान चबाए। आहा। अरे

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रतबाला, खुल जाए बंद अकल का ताला।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है अलका सरावगी के बारे में, जो एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे उपन्यास लिखे हैं जिन उपन्यासों को पढ़कर लोग जागरूक हुए हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी कि कली कथा वाया बाईपास में किशोर बाबू अपनी लड़कियों को कॉलेज पढ़ाते हैं और बहू भी पढ़ी लिखी ही लेकर आते हैं। कोई बात नहीं, उपन्यास में लेखिका द्वारा शशांक की दादी के जीवन को पुराने काल में जीती एक स्त्री के संग्राम को दिखाया है, तो आधुनिक समय में शशांक की माँ को एक सुदृढ़ एवं शिक्षित महिला के रूप में दर्शाया है, जो शारीरिक रूप से कमजोर बेटे का संबल बनती है और घर से बाहर जाकर काम भी करती है। शशांक की दादी के द्वारा विकलांग शशांक के लिए झाड़ फूंक करवाने की परंपराओं पर कुठार घात करती लेखिका द्वारा दर्शाया गया है कि विकलांग शशांक नहीं है, बल्कि समाज के लोग वैचारिक रूप से विकलांगता से ग्रसित हैं। इस प्रकार के परंपरागत मूल्यों का विघटन आवश्यक है और शशांक की मां की दृढ़ता के द्वारा सामाजिक चेतना के उत्कर्ष को दिखाया गया है। तो दोस्तों, अलका सरावगी के बारे में, उनके लेखन के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, व्यक्ति का समाज के प्रति विद्रोह प्रत्यक्ष ना होकर धर्म, रीति, रिवाज, परंपरा, संस्कार, संस्कृति यानी कि इनके प्रति है। प्रत्यक्ष रूप की अपेक्षा संघर्ष के इस परोक्ष रूप का संबंध समाज के सभी पहलुओं से होता है। इसी परोक्ष रूप का चित्रांकन लेखिका द्वारा सामाजिक परिवर्तन के स्वर में मुखरित हुआ है, क्योंकि एक जमाने का सत्य दूसरे जमाने की मिथ्या हो जाता है। जानकी दास तेजपाल मेंशन का जय गोविंद इसी मिथ्या सत्य का विरोध करता प्रतीत होता है। क्या गोविंद नहीं जानता कि ये दुनिया उन लोगों के तलवे चाटती है जिनका बैंक बैलेंस उनसे दुगने से लेकर 100 गुने तक होता है। तो इस तरह से दोस्तों, बहुत सारी कड़वी लेकिन सच्ची बातें अलका सरावगी ने अपने शब्दों के माध्यम से कही हैं। इनकी बातों का जिक्र होता रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: देखिए दोस्तों, वास्तव में ये सामाजिक आर्थिक विषमता का ढांचा हमारे समाज पर इतना गहरा प्रभाव डालता है कि नैतिक विकृतियां जन्म लेने लगती हैं, वर्ग भेद की खाई गहरी होने लगती है। तो अलका सरावगी ने समाज की इस दोहरी सोच को बखूबी प्रस्तुत किया है। पैसे की होड़, उसके पीछे दौड़ता समाज, सारी मर्यादाओं एवं नैतिकताओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लेखिका ने व्यक्ति प्रतिष्ठा के मूल्य का प्रत्यक्ष स्वरूप भी प्रस्तुत किया है। जानकी दास तेजपाल मेंशन का जय गोविंद जानता है कि माँ ने ये विश्वास बनाए रखा है कि वो दोनों अनपढ़ लोगों की दुनिया से अलग हैं। भले ही छठी क्लास फेल पड़ोसी भी करोड़ों में खेल रहा हो, पर उनके पास ऐसा कुछ है जो किसी के पास नहीं है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, आज बात हो रही है लेखिका अलका सरावगी के बारे में। सामाजिक चेतना को संदर्भित करते हुए अलका सरावगी ने उसकी सार्थकता को दर्शाया है, जिसके लिए उन्होंने मुक्त एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाने से परहेज नहीं किया है। उन्होंने विगत के सुलभ परंपरागत आग्रह के साथ आधुनिक वैज्ञानिक बदलाव को प्रतिष्ठित किया है। एक बेरक के बाद उपन्यास में के शंकर अय्यर एक तमिल ब्राह्मण हैं, परंतु वो एक बंगाली कायस्थ कन्या से प्रेम विवाह करता है। एक शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण का मांस मछली खाने वाली बंगाली बाला से प्रेम विवाह को समय के साथ होने वाले सामाजिक परिवर्तन को दर्शाया है। तो इस तरह से दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं उन्होंने अपने लेखन में शामिल की हैं। इनकी बातों का जिक्र होता रहेगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: सुनो हरदी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहां पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अलका सरावगी ने अपनी औपन्यासिक कृतियों में समकालीन समाज की दशा एवं दिशा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। आज के दौर की सामाजिक चेतना कुछ अलग ही दिशा की ओर बढ़ रही है। पहला संचार की प्रचुरता और दूसरा उपभोक्तावादी समाज का आविर्भाव नए किस्म का सामाजिक स्तरीकरण, जिसमें उपभोक्ता और अलग अलग जीवन शैली के लोग उभर कर आए हैं। ये समकालीन समाज का भौतिकतावादी स्वरूप है, जिसे अलका सरावगी ने वैश्वीकरण के संदर्भ में विस्तार दिया है, जिसके कारण जीवन मूल्यों का संक्रमण, व्यक्ति का असंतोष, नए पुराने विचारों का संघर्ष, नारी का बदलता स्वरूप, जो कुछ सकारात्मक है तो कुछ नकारात्मक भी है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है अलका सरावगी के बारे में, जो एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। वास्तव में अलका सरावगी के समग्र उपन्यासों में अपने समय के सामाजिक यथार्थ का मौलिक विवेचन है, जो आज के जटिल समाज के बहुआयामी चित्र को उकेरते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति में फंसे अंतर्द्वंद से ग्रस्त सामान्य व्यक्ति कब स्वार्थी, भ्रष्ट एवं अनैतिक बन जाता है, उसे मालूम ही नहीं रहता। कली कथा वाया बाईपास में किशोर बाबू का लड़का, जो उनके व्यवसाय अब चला रहा है, किशोर बाबू के पूछने पर कि मेघना जूट का ऑर्डर मिल गया है तक लड़का बोलता है, कहाँ पापा, सेल्स डिपार्टमेंट ने सैंपल रिजेक्ट कर दिया है, उसका आदमी लेबी घूस खाना चाहता है, कहा है 20 गांधी से कम नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, अलका सरावगी ने उन मुद्दों को उठाया है जो कि हमारे समाज को कमजोर करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने अपने लेखन में शामिल की हैं कि जिन बातों को अगर लोग अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो ये हमारा समाज और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अलका सरावगी के अगले एपिसोड में इन्हीं के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें करूँगा। फिलहाल इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।
2: चलो।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

0: हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर आज तक रिलीज फिल्म के गीत, गजल, भजन, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हो, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको सृजन और रेडियो मानव रचना भी, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर रिंकल शर्मा जी। आप लिखती हैं गीत, गजल, कविताएं, और उनको महारत हासिल है कहानियों और नाटक पर। डॉक्टर रिंकल शर्मा जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद माधुरी जी।
0: रिंकल जी, जो हमारे दोस्त आप लोगों से सबसे पहले जानना चाहते हैं, यही कि आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा?
1: माधुरी जी, लेखन की शुरुआत तो मैं कहूंगी कि बहुत देर में हुई।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, आज हम सभी इस बात को भी गहरी उसमें समझते हैं कि लिखने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात ये रही कि मेरे परिवार में पढ़ने लिखने का माहौल था। लिखने का शायद उतना नहीं था, लेकिन पढ़ने का काफी था। जी, मेरे दादाजी को बहुत शौक था, वो नॉवल पढ़ा करते थे उस जमाने में। तो जो वेद प्रकाश, वेद के नॉवल, या सुरेंद्र मोहन पाठक,
0: इनका नाम के, मेरे पापा भी बहुत पढ़ते थे। दिस वेरी नॉस्टैल्जिक।
1: बिल्कुल। तो इनसे जो मैं वाकिफ हुई वो अपने दादाजी की वजह से ही हुई। मेरी माँ को भी पत्रिकाएं वगैरह पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ, लेकिन कौन सी पत्रिका पढ़ी जाएगी ये हमारे अखबार वाले भैया पर डिपेंड करता था। कभी वो ग्रह लक्ष्मी डालते थे, कभी सरिता, कभी ग्रह शोभा, कभी मनोहर कहानियां, लेकिन आती थी। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन मुझे कहानियां अपनी ओर आकर्षित करती थी, और मैं कहानियां जरूर पढ़ती थी उसमें। और वही पढ़ते पढ़ाते हुआ ये कि एक दिन मेरे एक अंकल हैं, वो घर पर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या पढ़ती रहती हो, ग्रह शोभा और ऐसी कहानियां, अब तुम हिंदी साहित्य की तरफ जाओ, तुम प्रेमचंद को पढ़ो।
0: क्या बात है।
1: तुम मैंने कहा कि अच्छा। तो उनके पास प्रेमचंद के उस समय 8 वो आए थे, मानसरोवर के 8 खंड थे। तो उन्होंने, मुझे याद है कि 4th खंड मुझे दिया, उनके पास वही था। और जब वो मैंने पढ़ा तो मैं एक के बाद एक प्रेमचंद की कहानियां पढ़ती चली गई। और आप धीरे धीरे करके देखिए कि फिर मैंने खुद बढ़कर उनसे 5वां खंड मांगा, फिर पूरी 8 के 8 खंड मैंने।
0: कहना ना होगा कि वो अंकल जो प्रेमचंद जी आपके प्रेरणा के स्रोत रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपको याद है अंकल जी आपके सबसे पहली रचना क्या थी और किस विषय पर थे, कुछ ध्यान आता है आपको?
1: देखिए, सबसे
0: बड़े रहे होंगे आप उस टाइम।
1: हाँ, सबसे पहले जो कहते ना कि अपना शौक पूरा करने के लिए लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर हम लोग एक तुकबंदी में कविता बनाते हैं।
0: कविता आपने लिखी?
1: और
0: अच्छा, पहली आपने कविता ही लिखी थी?
1: पहली मैंने कविता ही
0: लिखी। बाद में आपको कहानियों पर महारत हासिल हो गया?
1: बिल्कुल। कहानियां पढ़ते पढ़ते जब हम पढ़ते हैं, फिर हमारा रुझान होता है, और कहानियां फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि कहानियां मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। मतलब ऐसा लगता है कि ये चारों तरफ का जो वातावरण है, बहुत सारी कहानियां घूम रही है, और मैं इन्हें अपने शब्दों में पिरोती जाऊं।
0: रिंकल जी, आपको याद है आपने सबसे पहले क्या लिखा था, अगर हमारे दोस्तों को आप देना चाहें?
1: देखिए, सबसे पहले
0: जो भी आप देना चाहें वो आपका अधिकार है।
1: जी, सबसे पहले तो मैंने एक बहुत ही बचकानी सी कविता लिखी थी। अच्छा। और हास्य कविता थी, पहलवान का परोपकार लिखी थी। तो वो तो मुझे लगता है कि नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब कविता लिखना शुरू किया तो थोड़ा बहुत जो लिखना आया, तब मैंने एक कविता लिखी थी, दर्द की धुंद।
0: स्वागत है।
1: मेरी आत्मा पर एक धुंध छाई है, जैसे कोई काली रात, एक दर्द जो कभी नहीं जाता, जैसे कोई अनंत सागर, मेरे शरीर पर एक निशान है, जैसे कोई जलता हुआ दाग, एक याद जो कभी नहीं मिटती, जैसे कोई अनमिट छाप।
0: क्या बात है।
1: मैंने अपनी आवाज खो दी है, जैसे कोई खोया हुआ स्वर, मेरे शब्दों में अब कोई अर्थ नहीं, जैसे एक खाली पन्ना। मैंने अपनी पहचान खो दी, जैसे खोया हुआ रास्ता। मेरा आत्मसम्मान अब क्षतिग्रस्त है, जैसे कोई टूटा हुआ सपना। लेकिन मैं अब भी जीवित हूँ, जैसे एक हरा भरा पेड़। मेरा दिल अब भी धड़कता है, जैसे कोई धड़कता हुआ दिल। मैं अभी भी अपने दर्द को महसूस करती हूँ, जैसे कोई जलता हुआ आग। लेकिन मैं अभी भी अपने जीवन को जीना चाहती हूँ, जैसे एक नई सुबह। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज सुनी जाए, जैसे कोई सुनने वाले कान तत्पर हों। मेरे शब्दों में अर्थ होने चाहिए, जैसे एक अर्थपूर्ण वाक्य अपने आप में सब कुछ कह जाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान वापस मिल जाए, जैसे कोई खोया हुआ रास्ता। मेरा आत्मसम्मान फिर से बहाल हो जाए, जैसे कोई टूटा हुआ सपना। मैं चाहती हूँ कि मेरा दर्द समझा जाए, मेरी पीड़ा को महसूस किया जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज उठाई जाए, मेरे अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन फिर से सामान्य हो जाए, मेरा दिल फिर से खुशी से भर जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी आत्मा फिर से शांत हो जाए और मेरे जीवन को एक नया अर्थ मिल जाए।
0: क्या बात,
1: ये कविता दरअसल एक बहुत ही दुखद एक घटना हुई थी दिल्ली में। आपको याद होगा निर्भया का जो कांड हुआ था,
0: तो कवि को जब दर्द मिला तभी तो वो कवि बना,
1: तभी ये कविता उपजी।
0: कांटों से

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में

म्यूजियम में म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था। फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1 करोड़ 3 साल 7 दिन पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1 करोड़ वर्ष 3 साल 7 दिन पुराना। उन्होंने कहा 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है? उसने कहा, कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का? तो उसने कहा, ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तब मैं उसने जोड़ता जाता हूँ, क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए? 2500 साल बाद। तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए? अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओ? अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था। अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही। और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे? अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी। यहाँ कोई पहला नहीं और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहाँ संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही 2 से, तो यहाँ से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है जहाँ तख्ती लगी चुंगी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना।

यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंगी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे। ऐसी कोई चुंगी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है, तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है, तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई। कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो कोई झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी। तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी, जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं, नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या, अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा, जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या, सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था, फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता, तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा, यह शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाए फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं, साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है, आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते? तो अकबर ने कहा, तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच ले रहा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा, हटो बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके? आदमी का सिर किस काम आता है? अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या, ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से, कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं, उल्टे लोग नाराज होते। जिसके पास हम गए उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या? तो अकबर ने कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर था, आदमी के सिर की कीमत क्या है, दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा? तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है, उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं। इसका नाम झुकाना है, सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो। तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा कि सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए, सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की, इसलिए पूरब में हम सिर झुकाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए,
सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं। पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं? सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ। सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से। अब भूल जाओ सिर को, अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं। और अब पूछो कि शिष्य की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी। अब क्या करूं? व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं? ये पूछ। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है? ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण। मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे। अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे? गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा, लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए? ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं, तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए। बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई, तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो। इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए। और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा? मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा? तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी। उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर।
मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुर्य लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी, वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता, वो तो कहता आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की पगध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे, चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है, इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी बहुत चकितपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आग का हर कुआं है, तने इंद्रधनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विश्व बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रुके रह जाना, झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना न चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे, तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली। फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे ये मैं तुम्हें कह दूं,
मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक, तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे। तुम जाओ तो ही परमात्मा आए। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूं तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत। देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझ पर जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी, और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क शायद ये है कि वो श्रद्धा ईसाइत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ, लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पर श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो। तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं, अक्सर समझना, जिसने सच में ही नानक पर श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पर श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पर श्रद्धा आ जाती और नानक पर श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा नहीं वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पर श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला है। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ, स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ था, अब साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है, तो ही
अगर मैं जानता हूं कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उससे विपरीत

0: बोलता है। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में ही शब्द नहीं बोल सकता। मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उस एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणतः तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में न रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पार। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। इंसानों को कुछ तर्क नहीं दिए लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जज गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा, अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ, फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर तो भरोसा आ गया, ये सहयोगी बात है, अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना, कि तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर का भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए, कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो, ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लू, और बड़े पद तक पहुंच जाऊं, ये कर गुजरू, वो कर गुजरू। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा? मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो, तो मेरी सुनो भी, उस अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी, तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी, वो असली श्रद्धा होगी। क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो, फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाए, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा, उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे? तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं। बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं, फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल, तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती, तो आपका साहित्य पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती। तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो, नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ, क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो, तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां है। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी, कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी, कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तथस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात। तो सुकरात ने कहा मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों पूछा पूछने वाले ने, क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोलकर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले तीन सूत्र सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवेरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनसुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनसुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपद वासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपद वासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई, वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे, उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए।
1: हाथियों और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्पमात्र बनते, ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का बुद्ध ने पूछा, राजा और भी सक्षम है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्पमात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गमाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं है, उनके शब्द शब्द में अर्थ है, और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में, उतने ही चौंकोगे कि तू सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में, और मालिक खींचे चले आए। तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उखड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकर है, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है, और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया। कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया। स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है, और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साख्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन

भोग रहे, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जैसा कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है? तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़ा ही शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े, यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है, और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं। इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो,
जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की यह कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: यार हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: क्योंकि तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया कि मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने

0: करेंगे और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है. जैसे वो थॉट क्रिएट कर दिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम. वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है. और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया है, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दे, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे, हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
1: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
0: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे तो उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है,
1: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
0: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा. तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
1: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. You know, thought में नहीं, मतलब action में नहीं तो कहीं ना कहीं thought में तो है ही, लेकिन action में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम crime के scene से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
0: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम you know, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
1: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
0: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चली जाऊं तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं. बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. Become a cycle, and then it is how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation.

0: के लिए टाइम नहीं है या आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ. वट वी डोंट रियलाइज इज इट्स नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, इट्स फॉर माई फैमिली,
1: फॉर माई ऑल लव्ड वंस, यू नो, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ. अनअवेयरनेस में मैं कहाँ तक कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में.
0: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
1: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, यू नो समवेयर, ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
0: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही,
1: और ये मेरे लिए जरूरी है.
0: वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका, वो भूल चुके, अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग, टिल व्हेन?
1: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक,
0: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट्स सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
1: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं, और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. सर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का, और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है, लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है, और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है, और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिप्रेक्ष्य क्या हो?
0: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो, बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना. जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
1: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
0: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूं, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूं. तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फॉरगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फॉरगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट. सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं. तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा. और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ. अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर. सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए. I can only forgive if I'm filled with love, if I know the truth, if I'm at peace, then I can forgive. Agar main disturbed hu, mujhe mere andar nafrat hai aur pyar ka bilkul koi trace hi nahi, to forgiveness kahan, wo possible nahi. To wo victim ki feeling se bahar nikal aaye ki jo hai wo maine create kiya hai, finish bhi
1: main karu,
0: mujhe karna. Agar kisi ne mujhe physically harm kar diya, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी. क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ तो चोट किसको लगी. तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है, मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है. तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है, और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं. से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया. अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाते हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा. तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ. अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस. एक्चुअली मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे. नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या.
1: बिल्कुल. और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है.
0: एब्सोल्युटली. और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ. तो क्या होता है वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं, वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर, कि और नेगेटिव, सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है. और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं.
1: पेन में हूँ,
0: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा. मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है, दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम हूँ, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट, कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, you know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big
1: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually itna zyada
0: aapko pata hai mere sath kya hua, and wo ek record ki tarah play hota jata hai ki jahan jahan baithe logon ke sath apna, जैसे जैसे बोलते हैं ना, अपना रोना रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ. वी आर नॉट एबल टू मूव अहेड. तो मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की, मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं.
1: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. इट इज, यू नो, एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल एक्चुअली गेटिंग इन टू इट, और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस विक्टिमाइज, जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पार है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते.
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर. अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है, या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है, या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है,
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं. तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
0: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा. तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल, क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो. तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
1: आई थिंक समवेयर यू नो व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट यू नो वी आर एबल टू हेल्प समबडी.
0: True.
1: Because we don't, we would like to help somebody.
0: Right, but we're not really helping.
1: Yes.
0: You know, a help at that time would mean empowerment. Lekin baar baar keh kar ke hai aapke saath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga? Ya even ye kehna, koi baat nahi, sab theek ho jayega. Matlab it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi, sab theek ho jayega, wo theek hai. But by saying that, we're saying ke abhi sab galat hai. You know, to jitna hum normalcy ko create kar sake. सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.